0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
2: अपना हम सफर ग्लोबल

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga
2: जी हाँ 905-275-3555 ग्लोबल ट्रेवल टूर के रास्ते का नंबर है. दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो इनसे रब्ता कीजिए. तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं. इसके अलावा उम्र और हज के स्पेशल पैकेज इनके होते हैं. साथ साथ मनी ट्रांसफर की सर्विसेज, इमिग्रेशन की सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं. और कमल रशीद साहब रोहे रवा हैं, CEO हैं तमाम ऑपरेशंस को, और ख़ास तौर पे हज के हवाले से और उम्र के हवाले से इन्होंने बहुत सी खुद जाते हैं वहाँ जाके चीज़ों को देखते हैं. और अभी भी माशाल्लाह इनका हज का जो है पैकेज टूर जो है वो जाने वाला है. खुश आमदीद कहेंगे कमल भाई. अस्सलाम वालेकुम.
3: जी वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया शेपटी साहब और आपकी वसाफत से मैं अपने तमाम सामईन को भी बहुत सलाम पेश.
2: थैंक यू वेरी मच. पहले मुबारकबाद. बहुत ज़बरदस्त हज सेमिनार था आपका. इस पर थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला आगे बात करेंगे. मैं सिर्फ थोड़ी सी टिकट सेल के हवाले से बात कर लें कि कुछ अभी सीट सेल वगैरह हैं अवेलेबल हैं इस वक्त जाने के लिए.
3: जी मैं अर्शद पटी साहब सच कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सीट से जो जिसका मुझे इंतजार रहता था और मेरी पसंदीदा डेट्स के ऊपर खास तौर पे. जी हाँ, PIA ने दोबारा 15% सीट सेल जो दी है वो इस दफा 30 मई नहीं बल्कि 24 जून तक का ट्रैवल पीरियड इसमें शामिल कर
2: दिया.
3: यानी अब जो बच्चे स्कूल के पेरेंट्स फैमिलीज जो समझते थे कि हमारे बच्चों के हाई स्कूल हैं तो इतना अर्ली जाना मई एंड में मुश्किल है, तो उनके लिए बिल्कुल अब जो है आप 24 जून तक जो है अपनी ट्रैवलिंग को मैनेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ. और टिकट लेना है आपने वो आपने 10 जो है मई तक टिकट बाय करना जरूरी है. टाइम आपके पास है, अभी से प्लान करें और यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी. और ये बताता चलूं ये टिकट 6 मंथ वैलिड होता है. आप अभी 24 जून को जा रहे हैं, आप ज्यादा अरसा वहाँ काम करना चाहते हैं, तो और ये भी बताता चलूं कि मई के फौरन बाद जैसे कि उमरा सीजन शुरू हो जाता है, उमरा के वीजे खुल जाते हैं, तो आप अपने पाकिस्तान ट्रिप के साथ सऊदीया का, उमरे का, ये ज़ियारत का ये ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं बिलखसूस अपनी कौमी एयरलाइन के साथ. और हमें कॉल कर सकते हैं इस तमाम डिटेल्स को लेने के लिए 905-275-3555
2: पे कॉल कर लीजिए. एक तो 15% सेल है प्लस आप उमरा भी कर सकते हैं उसी दौरान में, तो खुद ये कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं. चाहे 2 लोग जा रहे हों चाहे 30 लोग जा रहे हों आप इनसे रब्ता कर लीजिए. अच्छा हज के हवाले से अभी आपका माशाल्लाह ग्रुप जो है वो जा रहा है इसी महीने जा रहा है इंशाल्लाह, और सेमिनार भी आपका बड़ी अच्छी वहाँ मैं मौजूद था, लोगों तक आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई. थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए हज के हवाले से, और जो लोग अगले साल हज करना चाहेंगे तो उनको भी थोड़ा एडवाइस कर दीजिए.
3: जी बहुत शुक्रिया. अल्हम्दुलिल्लाह ताला शक नहीं, और खुसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शिरकत को. मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की शिरकत समझता हूँ और आपकी हौसला अफजाई हमारी कम्युनिटी की हौसला अफजाई होती है, और आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया. और आपने हाजियों के लिए जो खूबसूरत तोहफा दिया एहराम अपनी तरफ से, मैं उसको भी कम्युनिटी की जानिब से तोहफा समझता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. और आपकी मोहब्बत हमारे लिए बेशुमार के कहने के अनमोल तोहफा होती है. अल्लाह ताला इसमें बरकत दे. अर्शद भट्टी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप फाइनलाइज हुआ, लेकिन आगे आने वाले ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिलखसूस सऊदी हज कमीशन की जानिब से, तो पता चल रहा है कि इस हज के फौरन बाद नेक्स्ट ईयर का वो पोर्टल ओपन करेंगे. और इन एडवांस बुकिंग ओपन करने का मकसद यही है कि वो जल्द से जल्द क्लोज कर देते हैं. उनका सर्टेन कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा, प्राइवेट हजाज का कोटा जो है उसमें आप अगर जाने का इरादा रखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप अपने अपना नाम कम अज कम रजिस्टर्ड करवा लें. अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बने हुए यही टाइम है आप अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे से रब्ता कर लें. और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम जो बार बार इतनी एडवांस बात करते हैं, आप इस तरह से नियत कर लें कि मैं आज से ही अपने हज के लिए अपने कोई खास एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में आप अपनी कमेटी डाल रहे हैं, पर मंथ $1,000 सेफ्टी कर सेव करते चले जाएं. और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बेस्ट रेट के साथ, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस बजट में जाना चाहता हूँ, कामरा भाई मैं आपके साथ या आपके साथ बैठ कर अपने बजट को डिस्कस करके अगले साल हज के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं वेलकम करता हूँ. हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाएं, आप बैठे हमारे साथ, और आपके हज के लिए मैं इसको इबादत समझ कर ही आज आपको दावत दे रहा हूँ आए, बैठे, डिस्कस करें और उसमें हर चीज ओपनली डिस्कस हो जाने से आपका एक बोझ हल्का हो जाता है, आपको लगेगा कि यस कि मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हज का पैकेज कस्टमाइज किया है, जब तक इस फील्ड में थे नहीं तो बात करते नहीं थे, अब हैं तो बताते हैं कि यस आपके बजट को भी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको कस्टमाइज किया जाएगा। तो आप उसके लिए हमसे जरूरी है कि ऑन टाइम रब्ता कर लें। इंशाल्लाह 19 मई को हमारा डिपार्चर है, इस साल अपना हज का काफिला लेकर 19 मई से पहले मैं मौजूद हूँ, आप आए अगले साल के लिए प्लानिंग करें, आए मिलके बैठें और इसको डिस्कस करें।
2: 905-275-3555 रابطے کا نمبر ہے کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے۔ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کامران صاحب؟
3: جی میں بتاتا چلوں کہ اس میں حج کے لیے 10 دن 12 دن 14 دن 16 دن مختلف دنوں کے پیکج ہوتے ہیں، اس سے میں نے آپ کو کہا آئیں بیٹھیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو کہ اس کو کسٹمائز کریں۔ اور پاکستانی کانسٹنٹ کی تمام آن لائن سروسز جس میں آپ کا ضروری ہے کہ پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہو وہ ضرور رکھیں، نائکو کارڈ کو دیکھیں وہ ایکسپائر نہ ہو، کبھی بھی ایمرجنسی میں سفر کرنا ہو تو مشکل نہ ہو، کیونکہ آج کل پاکستانی ویزا لینے میں بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے 8-10 دن لگ جاتے ہیں۔ تو اپنا ریکویسٹ ہے بینگ اے پاکستانی، اگر آپ کے پاس اپنے پاکستانی ڈاکومنٹس ہیں تو ان کو ایکسپائر مت ہونے دیجیے گا، اس کو ہمیشہ اپنی ضرورت کے لیے ریڈی رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا ٹائم آنے والا ہے، اپنے پیاروں کو پاکستان رقم بھیجنی ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے سے منگوانی ہو، اعتماد کے ساتھ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ریٹ کے لیے نمبر ہے 905-275-3555
2: تھینک یو ویری مچ کمران صاحب، بہت شکریہ، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔
3: تھینک یو سر۔
2: نمبر نوٹ کر لیجیے 905-275-3555 905-275-3555۔ اچھا ایک ریسٹورینٹ کی آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں، رجوے پلازا میں ہی ہے، چائے خانہ، یہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے، فائن اوریجنل پاکستانی اسٹائل چائنیز فوڈ آپ کو ملے گا، ایک بار آپ وزٹ ضرور کیجیے گا۔ اور یہ تمام کوالیفائڈ شیف ہیں پاکستان میں، پی سی لاہور میں یہ شیف تھے اور 14 سال سے ان کا تجربہ ہے، اور رجوے پلازا میں گریٹ ایڈیشن ہے جناب فوڈ لورس کے لیے، اسپیشلی چائنیز کھانے والوں کے لیے، 100% حلال، فریش اینڈ اتھینٹک فوڈ ہے، نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ، نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، اپنے مسالے ہیں اور ویری ریزنیبل پرائز بھی بہت زبردست ہیں، اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے، ریڈیو پاکستان کا والا دیں گے تو فار شیور ڈسکاؤنٹ آپ کو دیں گے، اور 4-12 بجے ویک ڈیز میں اور 2-12 بجے رات تک ویکینڈس پہ آپ کے لیے اوپن ہیں۔ 3920 ایگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30 ہے اس کا، رجوے پلازا میں، اور اس ویکینڈ پہ چائنیز پاکستانی اوریجنل پاکستانی چائنیز کھانے کھانے ہیں تو آپ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین پہ چلے جائیے، نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایڈوانس بک کروا لیجیے 905-514-7877 905-514-7877 چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین۔
4: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں، رابطے کے نمبر 4165930003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آزان مغرب۔ اللہ

0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: CUNY Global Advisor Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे जायद है। आप घर के कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 437-264-3175। इट्स 437-264-3175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: हाँ जी हाँ, 416-710-6777 पे आप कॉल कर लीजिए, शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है, कैपिटल बैंकवेट हॉल जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी भट्टी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना, तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है, इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही हैं, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे राब्ता करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं, आपको पता है।
2: 416-710-6777 पे आप राब्ता कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरी डे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरी डे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल्स हमसे रब्ता कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के।
2: तो
3: जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंकवेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 416-710-6777, 416-710-6777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच श्याम भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
3: इंशाल्लाह।
2: और जनाब अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके लिए दिया जाएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं, कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। 2-3 छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है। लीजर्स कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस से سیل آپ اس ویکینڈ پہ تشریف لے جائیے 135 کامرس فیری ڈرائیو ایسٹ مارکھم میں, اور اپ ٹو 80% سیونگ آپ کو ہو سکتی ہے. اور پروفیشنل آپ کو ہیئر کٹ پروڈکٹس, ہیلتھ اینڈ بیوٹی پروڈکٹس, کاسمیٹکس اینڈ اسکن ٹریٹمنٹ پروڈکٹس, برانڈ نیم پرفیومز ملیں گے فری. اس کے علاوہ ڈیزائنر سن گلاسز ہیں, فائن چاکلیٹ آپ کو ملے گی, اور مدرس ڈے کے لیے اسپیشل گفٹ ملیں گے. 135 کامرس ویلی ڈرائیو ایسٹ مارکھم یا لیزاز کاسمیٹکس ڈاٹ کام پہ جا کے آپ مزید انفارمیشن جو ہے اس حوالے سے لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے, آپ ویکینڈ پہ تشریف لے جائیے. آپ پی سی کے یہاں پہ جو شیف ہیں جن کا 14 سال کا تجربہ ہے اور بہت ہی ریزنیبل پرائسز ہیں. یونٹ ان کا 3 ہے, 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30 رج وے پلازا میں ہے. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, پاکستانی سٹائل کے چائنیز کھانے آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. جناب ایک کمرشل بریک, اور اس کے بعد آپ لے چلیں گے پاکستان جہاں ہمارے ساتھ ہوں گے بلا زمان صاحب. اسٹے ٹیون.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisuites.ca.
1: आज की रियल एस्टेट मार्केट में रियल एस्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल एस्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
2: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Events.

0: माशाल्लाह वो तो मतलब एक महीने का 2-3 लाख रुपया जो है वो कमाना उनके लिए कोई इतनी बड़ी
1: मुश्किल
0: बात
1: है।
0: नहीं है।
1: सही। अच्छा, ईरान जंग के खात्मे के लिए नई तरकीब सामने आई है। ट्रंप का अख्तियार ईरान से और जंग करनी है या नहीं, फैसला अमरीकी कांग्रेस करेगी। अमरीकी सेक्रेटरी ने ईरान जंग को पहले ही ख़त्म करार दे दिया है, तो क्या जंग का इख्तियार अमरीकी कांग्रेस के पास जाने से अमरीका को ईरान से निकलने का मौका मिल जाएगा? वैसे सदर ट्रंप तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा इख्तियार है।
0: जी देखें, बिल्कुल वो तो अपना बहुत कुछ जो है ना वो मानते हैं, लेकिन बहरहाल जो अमेरिकी कानून है वो तो यही कहता है कि अब उनको जो है 60 दिन के अंदर अंदर इजाजत लेनी होती है, चाहे जाए कि वो
1: कांग्रेस
0: खुद कोई, हाँ जी, चाहे जाए कि वो खुद जो है ना वो कोई
1: फैसला
0: और
1: करे।
0: कानून पास करने की कोशिश करें, लेकिन अभी जो है ना फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक तो उनको एक रास्ता जो है वे आउट मिल रहा है। खुद भी बहुत सारे जराये जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि जितने मुजाकरात की बात हो रही है, जितना जो है ना वो जिक्र हो रहा है कि जी आ जाए, बात कर लें, फोन कर लें, हम तैयार हैं, बैकडोर रबते हो रहे हैं, जो है ना वो चैनल खुला हुआ है, अभी एक दोबारा जो है वो तजवीज भी पाकिस्तान के जरिए जो है वो अमरीका को भिजवाई गई है। तो बहुत सारी जो है ना वो मतलब लोगों का ख्याल है कि अमरीका खुद भी जो है ना इसमें से अब निकलना चाहता है, और उन्होंने अपने लोगों को वहां पे भी जो है ना जितने उनके सेनेटर्स हैं और आवाम के अंदर भी वहां पे जो बेचैनी पाई जाती है, वहां पे भी प्राइसेस बड़ी जो है ना वो ऊपर गई हैं, और भी ऊपर जाने की जो है ना वहां पे है, तो वहां पे आपको पता है कि वो तो हमारी तरह नहीं है, वहां पे तो जैसी जो है ना थोड़ी सी भी महंगाई होती है तो वो बिल्कुल जो है ना वो लोग सवाल पूछते हैं कि जी क्या जरूरत थी आपको जो है ना वैसी जंग के अंदर अपना हिस्सा डालने की जिसमें आपका कोई लेना देना जो है ना उसके अंदर नहीं था। तो वो
1: ठीक
0: बाहर एक प्रेशर वो भी जो है ना वो अमरीकी आवाम का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस जंग से जो है ना जल्द अज जल्द जो है ना वो निकले। तो बहरहाल
1: ठीक
0: एक रास्ता जो है उनको जरूर मिला है जिसके द्वारा वो कह सकते हैं कि नहीं मैं तो जंग मजीद करना चाहता था लेकिन अब मुझे कांग्रेस ने जो है ना वो इजाजत नहीं
1: इजाजत
0: दी,
1: नहीं दी।
0: तो इसलिए जो है
1: ठीक,
0: ना वो हम वायदा करने जा रहे हैं।
1: आप सुन रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। हमारे स्टूडियोज में आपके नंबर 416-593-0003। पाकिस्तान से बिलाल जमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपकी लाइव कॉल लेंगे। इमरान खान साहब की नाहक कैद को 1,000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर राजा ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर यौम मजदूर रैली से आज खिताब भी किया है। सवाल उनकी तरफ से या हमारी तरफ से या लोगों की तरफ से कि क्या अगले इलेक्शन तक जेल ही अब इमरान खान साहब का मुकद्दर है, और क्या इस हवाले से कोई गैर तहरीरी माहिदा पहले ही PTI की क़यादत कर तो नहीं चुकी है? बिलाल साहब,
0: ये देखें जो जाहरी हालात है ना वो कुछ इसी तरह की पिक्चर पेंट करते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब जो है वो कोई मतलब उनके इल्म में ये बात है, लेकिन बाहर जो लोग हैं जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, सुहेल अफरीदी हैं, ये लोग आए तो बड़े एंथुजियाज्म के साथ थे। आपको याद होगा कि जब अली मीन गंडापुर को
1: हाँ
0: हटाया
1: हटाया
0: गया
1: था
0: था
1: जी, बिल्कुल सही है।
0: तो लगता था कि अब तो बस मतलब ये कि देखें 2024 नवंबर की तारीख थी जब ये लास्ट जो एहतजाज था, एक बड़ा एहतजाज PTI की तरफ से सामने आया था, उसके बाद तो कोई बड़े जलसे भी जो है वो PTI की तरफ से सामने नहीं आए। KPK के अंदर कहीं पे वो ऐसा कोई बड़ा क्राउड जो है वो नहीं इकट्ठा कर सके जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें। फिर उन्होंने एक वो इमरान खान की रिहाई की फोर्स बनानी थी, उसका जो है ना मतलब क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, किसने करवाई, कितने बंदे उसके अंदर रजिस्टर हुए, तो जमा कहते हैं ना जुबानी जमा खर्च जो है वो सिर्फ नजर आता है क्यादत की तरफ से। और अब PTI की अपनी जो मतलब जो आप कह लें कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे वो अब जो है ना वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आया जो क्यादत बाहर मौजूद है जिस तरह के सोहेल अफरीदी हैं और दूसरे लोग हैं, ये चाहते भी हैं कोई तहरीक जो है ना वो रन करना या नहीं जो है ना वो चाहते। अलीमा खान की तरफ से भी हमने जो है ना वो देखा है कि सिर्फ बयान की हद तक,
1: तक
0: लोगों को
1: है।
0: कॉल करने की हद तक जो है वो मामला है, लेकिन कोई इतना सीरियस जो है ना वो देखें 1,000 साल का मतलब 1,000 दिन का मतलब है कि 3 साल से ऊपर जो है वो खान साहब को जो है ना वो हो गए हैं जेल जेल के अंदर, तो एक बड़ा जो है ना वो टाइम पीरियड है।
1: होता है
0: चार
1: बिल्कुल,
0: साल बाद तो वैसी हुकूमत जो है ना वो अपना टाइम
1: इलेक्शन
0: पीरियड जो है ना
1: हो
0: वो
1: जाए
0: पूरा
1: बिल्कुल
0: पूरा
1: ठीक।
0: कर लेती है,
1: अच्छा, अभी
0: तो लगता है
1: तो
0: कि कोई कोई इस तरह का फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी
1: तय
0: तय है
1: किया हुआ है,
0: कि
1: ठीक
0: इस इलेक्शन तक जो है ना वो खान
1: उनको
0: साहब
1: अंदर ही
0: बाहर नहीं
1: रखना है।
0: आएंगे।
1: ठीक। अच्छा, अभी सोहेल अफरीदी साहब की बात की आपने, वो कहते हैं सूबे को इसके हक की गैस ना मिली तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गैस पैदा करने वाला सूबा होने के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। क्या सूरत हाल ओवरऑल कैसी है? क्या ओवरऑल गैस की KP में लोड शेडिंग बाकी जगहों से ज्यादा हो रही है?
0: जी देखें, जो इस वक्त गैस की लोड शेडिंग है वो तकरीबन हमने सर्दियों के महीनों में देखा था कि जब गैस की जरूरत ज्यादा होती है, गर्मियों के अंदर हुकूमत की पहली प्रायोरिटी जो है वो इंडस्ट्रीज होती है, और ये हुकूमत पहले ही वाजे कर देती है कि जब सर्दियां आती हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर खपत भी ज्यादा होती है और हमारे यहाँ पे सर्दी भी दो दो महीने तो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो

0: में हुकूमत की कोशिश होती है कि लोगों को कम से कम गीजर के लिए और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, मैं खुद मतलब कि जितनी देर भी हम लोग सर्दियों में कोई ऐसी तंगी नहीं थी, लेकिन
1: जी
0: गर्मियों के आते ही जैसे ही यूजेज कम हुआ है कि अब सिर्फ चूल्हे जलाने हैं आपने और तो कोई आपका और तो कोई मतलब यूज ही नहीं है, तो अब वो चूल्हे जलाने के लिए भी जो है ना सारा दिन जो है ना वो गैस अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपको हैरत होती है कि कहाँ इतनी गैस जो है ना वो चलेगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री को जो है ना वो प्रायोरिटी देती है, तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके साथ जो घरेलू एरियाज जो है ना वो लगते हैं वहां पे सारा सारा दिन भी अवेलेबल है।
1: सही
0: उसके अलावा जो बाकी मार्केट के जो एरियाज हैं वहां पे जो क्या कहते हैं अपना हुकूमत की प्रायोरिटी होती है कि लोग सिलेंडर वगैरह जो है ना कमर्शियल
1: इस्तेमाल
0: सिलेंडर्स
1: करें।
0: वगैरह यूज करें, तो वहां पे जो है ना वो लोड शेडिंग ज्यादा की जाती है, और नॉर्मल एरियाज के अंदर जो है ना वो नॉर्मल जो हुकूमत की एक
1: सही।
0: रूटीन है सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, और फिर जो है ना वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और
1: सही
0: फिर शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ये टाइमिंग
1: ठीक
0: है। इस टाइमिंग के अंदर जो है ना वो गैस
1: नहीं
0: अवेलेबल
1: होती।
0: होती है।
1: अच्छा, वफाकी वजीर तवन अवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता रोज़ हमें एलएनजी गैस मौसूल हो चुकी है, अब बिजली की लोड शेडिंग का वो कहते हैं मुकम्मल खात्मा हो गए हैं। हुकूमत ने लोड मैनेजमेंट को अवामी रिलीफ मैनेजमेंट का नाम भी दिया था, तो क्या इस बार हुकूमतें आवाम को बिजली के बिलों में भी रिलीफ देंगी, लगता है आपको?
0: जी देखिए, पिछले साल जब ये नई पीटीएम की हुकूमत आई थी तो मरियम नवाज ने भी जो है वो वजीर आला बनते ही एक अच्छे रिलीफ का जो है ना वो ऐलान किया था। और जरूरत होती है जब गर्मियों का महीना आता है तो आपको पता है कि लोड जो है वो बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी पंखे लाइटें और ये मतलब ये कूलर
1: चलते
0: वगैरह ये चीजें जो है ना वो चलती हैं, तो जो आपका जो कंज्यूमर होता है जो अपने कोशिश करता है कि उसका बिल 100 यूनिट से 200 यूनिट से कम रहे, वो भी जो है ना वो ना चाहते हुए उसको उससे जंप जो है ना वो करना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है, और उससे आपका जो बिल है वो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो आपका वो ज्यादा आता है। तो अब
1: ठीक है।
0: हुकूमत जो सोलर की नई पॉलिसी लेकर आया है वो भी बड़ी अजीब है कि एक तरफ जो है वो सोलर सार्फीन जो है वो आपको 4,000 मेगावाट जो है वो बिजली मुफ्त और सस्ती जो है ना वो पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन उसका भी सारा बोझ जो है वो अपने सार्फीन के ऊपर जो है ना वो डाला हुआ है कि वो जो आपको 4,000 मेगावाट मिल रहा है वो आप 13 रुपए यूनिट में उनसे खरीद रहे हैं, और आगे आवाम को वही जो यूनिट्स हैं वो चालीस चालीस
1: चालीस
0: रुपए में जो
1: रुपये
0: है ना वो दे
1: ठीक
0: दे रहे हैं। तो अगर कम से कम जो है ना वो आप इतनी कमाई जो है वो लोग वो वहां से कर रहे हैं तो
1: सही,
0: उसके जरिए जो है वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ
1: कुछ
0: जो
1: ना
0: है
1: कुछ
0: वो
1: होना
0: जरूर
1: चाहिए।
0: मिलना चाहिए।
1: चलें और चलें कॉल्स की तरफ चलेंगे जनाब। स्टूडेंट्स में रबते के नंबर 416-593-0003, फर्स्ट कॉलर है 6910, आप ऑन एयर सर। 6910, 6910 आप ऑन एयर सर, बात कीजिए।
2: वालेकुम भाई
1: जी वालेकुम सलाम।
2: साहब, बहरहाल है ये कि दिन ब दिन गैस के प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये तो बड़ी एक अजीब सी तजर्बा किया गया है पूरी दुनिया में, खाली पहली दफा नहीं हो रहा, हम तो खैर इससे हो संभाला है। ये हमेशा रिपब्लिकन जब भी बैठते हैं ये कोई ना कोई नई गेंद छेड़ते हैं, इनकी एक हिस्ट्री है तो। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुल्कों को होता बहुत है, ये कि लगता है ये गुर्बत की जगह गरीब खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं नए नए। हालांकि पोप ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि यानी कि बिगाड़ने में तो सेकंड लगते हैं लेकिन बनाने में कई
1: टाइम
2: साल लग
1: लगता है।
2: जाते हैं,
1: ठीक।
2: लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे जो कि इस टाइप के लोग हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो फिर वही है कि हाँ कुछ बेहतरी नजर आई थी, लेकिन अब है ये कि जब तक ये जंग के आसार खत्म नहीं होंगे, और अल्लाह करे पाकिस्तान कम से कम इसमें अपना एक फायदा तलाश कर लेके, एटलीस्ट के
1: ठीक।
2: जो इन्होंने ईरान से राहदारी खोलने की कोशिश की है, तो ये एक अच्छा है कि कम से कम पाकिस्तान को अमेरिका से ये तो तवक्को करनी चाहिए कि भाई ठीक है आपको लड़ना लड़ते रहे, लेकिन हमारे लिए ये
1: सही।
2: फ्री हैंड दे दे कि हम कम से कम ईरान से अपने तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई ले लें। तो मैं समझता हूँ शायद अभी जो लग रहा है कि फिलहाल जो गैस इतनी पेट्रोल इतना महंगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उस जैसी कीमतें नहीं पड़ी, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में भी बढ़ने के बड़े चांसेस हो गए, खबरों में आया था, और
1: ठीक
2: पूरी दुनिया ही यानी कि यहाँ तो खैर
1: चल
2: जो हो ही रहा है गैस की प्राइसेस, और
1: सही।
2: इवन अमेरिका का भी यानी कि
1: जी
2: खबरें
1: हम
2: आ
1: आप
2: रही
1: भी
2: कि
1: कुछ पढ़ें।
2: 6 डॉलर पर गैलन, तो ये तो बहुत
1: बिल्कुल
2: बड़ा
1: ठीक।
2: यानी
1: ऑलराइट,
2: कि वो है।
1: थैंक यू सर,
2: तो बहरहाल
1: बहुत
2: अल्लाह
1: शुक्रिया।
2: ताला जो है बेहतर
1: ठीक, थैंक यू। 7997 सर आप ऑन एयर हैं। 7997
2: कैसे हैं आप? ठीक
1: जी,
2: है,
1: शुक्रिया सर, थैंक यू।
2: मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा आज। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिसी का सालिस जो होता है, जो मेडिएटर होता
1: जी
2: है,
1: जी
2: वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी दोनों तरफ बड़ी ग्रिप होती है, वो दोनों को समझाती है कि भाई ये नहीं ऐसे करना है, और किसी डिसीजन पे लाती है।
1: जी
2: तो एक तो सालिसी होता है और एक होता है वो मैसेंजर होता है कि इधर का मैसेज पकड़ा उसको पहुंचा दिया, उसका मैसेज पकड़ा इधर पहुंचा दिया।
3: میرا سوال یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ پاکستان میں لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہے گورنمنٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے. ابھی یہ 10-15 دن یا 20 دن جتنے بھی دن اسلام آباد بند رہا ہے یہ تو وہ کنٹری والے ہی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. باقی جو یہ گیس ویس کا جو معاملہ ہے ابھی جو بتا رہے ہیں کہ 15 یا 13 ڈالر کا یہ روپے کا لیتے ہیں اور 40 روپے کا دیتے ہیں, تو کیا یہ اسٹیٹ پبلک کے لیے, کیونکہ ابھی مزدوروں کا دن منانے لگے ہیں, یہ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں انصاف اور اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے ایماندار ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو آپ باہر جا کے لوگوں کی نیگوسیشنیں کراتے پھر رہے ہو. پہلے اپنے ملک کو تو ٹھیک کر لو. ایک تو بات یہ تھی. دوسری آخری بات میں جو کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں اس میں, یہ جو بھی کنٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یا فوج ہے, اگر کچھ نہیں ہوتا پرابلم صحیح ٹھیک نہیں ہوتا. یہ میں نے
1: کسی کو, وہ ایک منیر نیازی کا شعر ہے, کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے. 5794 سر آپ آن ایئر ہیں. 5794
4: السلام علیکم جناب. بٹی صاحب یہ دیکھیں, جب تک یہ جنگ لگی ہے نا اس میں مسائل تو ہوں گے, اور ان مسائل میں الٹیمیٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بھائی ان کو ریلیف دینا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں, آئی ایم ایف بھی ہے, اور اس سے سب سے بڑی بات جو ہے دیکھیں پاکستان کے کم از کم کہنے پہ چلے سیز فائر تو ہوا ہے نا بٹی صاحب, یہ تو دنیا تسلیم کر دی ہے نا کہ چلے سالسی, اب یہ سالسی دیکھیں شاید ایران کو تو ہم منا لیں, اب امریکہ کو منانا تو بڑی مشکل بات ہے. تو بات وہی ہوگی جو آپس میں بیٹھ کے ان لوگوں نے اپنی شرائط طے کرنی ہے, اور پاکستان کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ انشاءاللہ پاکستان کی بہتری اور حمایتی کرے گا ایران کی. تو باقی رہ گئی بات بٹی صاحب, اس میں ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جناب پاکستانی گورنمنٹ لوگوں کے ساتھ, لیکن اب یہاں دیکھ لیں, اب یہاں نہیں, کل بھی آپ نے بتایا تقریباً 400 روپے کے مترادف ہمارا بھی پٹرول ہو گیا, اب ہمارا کروڈ آئل بھی ہے, ہمیں کیا گورنمنٹ کینیڈا نے دیا ہے, کچھ نہیں. یہ دیکھیں یہ سرمایہ دار جگیردار, ان کا نقطہ نظر اور ان کا لوٹنے کا واردات طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. باقی رہ گئی بٹی صاحب, ہاں صاحب نے تمام پتے اپنے جو ہے نا وہ استعمال کر لیے ہوئے ہیں, اب ایک ہی بات ہے, اب وہ بھیک مانگ رہے ہیں عدالت سے, یار کبھی مجھے ضمانت دے دے میں تھوڑی سی دیر کے لیے باہر آ جاؤں. بٹی صاحب کب سے میں کہہ رہا ہوں پالیٹیشن وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے, اپنی پارٹی کو بچاتا ہے. نواز شریف آپ کے سامنے مثال ہے, 3 دفعہ کیا اس کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں زیادتی کی گئی. یار جس وقت 2 روپے کی روٹی اور 5 روپے کا جناب آپ کو مختلف چیزیں مل رہی تھی, 30 روپے 40 روپے 50 روپے آپ کو چینی مل رہی تھی, اس کے ساتھ ملک کے ساتھ بگاڑ کیا گیا نا, اور جن لوگوں نے کیا آج وہ اسی پہ پریشان ہے اور پشیمان ہے. تو اس لیے سیاست کرنی چاہیے ملک کے خلاف, جو لوگوں کا انڈیا ہو جائے, اسرائیل ہو جائے یا افغانستان, جو ان کا نقطہ نظر ہے اس سے ہٹ کے سیاست کریں, سیاست میں واپس آئیں اور اپنے آپ کو بچائیں, اپنے فالوورز کو بچائیں. ٹھیک ہے صاحب,
1: تھینک یو, اس طرح نہ کریں. تھینک یو, بہت شکریہ. 5415 سر آپ آنے رہے ہیں. 5415
5: السلام.
1: وعلیکم السلام سر. جی وعلیکم السلام جناب. میں آپ ڈسکنیکٹ ہو گیا چوئی صاحب, آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, دوبارہ کال کر لیں. اچھا ہمارے پاس 3-0010 آپ بات کرنا چاہیں گے؟ 0010 لاسٹ 4 ڈیجٹ 0010
6: سر. میرا آپ کے سامعین سے اور آپ سے یہ سوال ہے اور بلال صاحب سے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, لیکن آئی پی پی کے مالک کون ہیں؟
1: بتایا تو وہ سارے وہی بڑے لوگ ہی ہیں سر, آئی پی پی کے مالکان بھی
6: ان کے بڑے کے نام تو پتہ لگنے چاہیے.
1: بلال صاحب کے ذمہ لگاتے ہیں سر کہ وہ ان کے نام بتائیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت شکریہ. 6141 سر آپ آنے رہے ہیں. 6141 اچھا. 5415 واپس آ گئے سر, آپ بات کیجیے. 5415 آج ذرا جلدی کیجیے گا, ٹائم تھوڑا کم ہے میرے پاس. 5415
5: السلام علیکم. میں صرف دو باتیں کروں گا.
1: جی جی.
5: پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرح ان ملکوں میں گورنمنٹوں پر پریشر ہوتا ہے. بٹی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کینیڈا میں کتنے مہنگائی کے خلاف جلوس نکلے ہیں, کتنے مظاہرے ہوئے ہیں. आप मुझे बताएं अमेरिका में कितने मदारे हो रहे हैं, लोग कितने सड़कों पर बैठे हुए हैं दिन रात। और डोनाल्ड ट्रंप तो वो बंदा है जिसकी उम्र 87 ईयर है और उसने अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता वो, उस पर क्या अवामी सोशल मीडिया का दबाव होगा भाई।
1: ठीक
5: यार, ये बातें मैं कहता हूँ ना, जब मैं भट्टी साहब कहता हूँ कि नियत का फतूर है, तो फिर ये नियत का फतूर इन चीजों से नजर आता है कि बंदे का हर वक्त अपने आप को अपने सर में जो मट्टी डालने वाले हालत है ना, इन लोगों को इस चीज से निकलना चाहिए। और एक बात भट्टी साहब, एक बात मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूँ बात।
1: जी जी
5: भट्टी साहब देखें, या तो आप किया करें तबसरा, मतलब तबसरा रोज वही बात, आप एक पार्टी बन के जब बैठ जाते हैं ना तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है, हम मजबूर होते हैं, हमें और बात करनी पड़ती है, हमें और बात करनी पड़ती है। मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप तबसरा करें, हम आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: मुझे कह रहे हैं
5: और आपका भी कद बड़ा होगा।
1: मुझे कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं
5: नहीं, आज जो तबसरा करते हैं भाई, आप तो सवाल करते हैं।
1: ठीक है, थैंक यू। 8156 आप फोन ले रहे हैं, 8156 8156
7: हेलो।
1: जी जी, आप बात जल्दी बात कीजिए।
7: देखिए, आईपीपी का तो सबको पता है किसके हैं, 52% तो गवर्नमेंट के अपने, 28% सरमाएदारों के पाकिस्तानी, बाकी 8% चाइना के, 7% को गल्फ के लोगों के, कुछ और तो वो तो है, नाम भी सबको पता है, मियां मंशा के चार हैं,
1: अच्छा
7: शहबाज शरीफ के लड़के सलमान, शहबाज का भी एक है।
1: चलिए, अच्छा किया सर, आज आपने बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।
7: जांगी
1: तरीन भी, अच्छा ठीक है, हो गया। ठीक है सर जी, आज टाइम थोड़ा कम है, मैं तो बाकी कॉल 6141 सर आप ऑन ले रहे हैं, 6141 6141।
8: अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब।
1: जी वाले सलाम सर।
8: भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े जब हुकूमत में आए थे ना, ऊपर से फ्लड आ गया, फिर जंगें आ गई, फिर एक बाजू में जंग, फिर दूसरे बाजू में जंग। देखें, दुनिया भी जानती है कि ये पाकिस्तान अगर आज बांध के कुटाई करता है ना, तो अगर इसे एनर्जी सस्ती मिल गई तो इसे संभालेगा कौन? तो अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: ठीक, थैंक यू। 9558 आप बात करना चाहेंगे? 9558 9558। अच्छा चलिए, आप सुन रहे हैं। बिलाल साहब, मैंने बरसबीले तस्करा जो है वो उनका मुनीर नियाज़ी का शेर कह दिया था, तो भाई के सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप?
0: नहीं नहीं, वो तो जो है ना, क्या कहते हैं, अपना सवालों के जवाब अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत सारे मामलों के अंदर जो तजिया होता है, देखें जब आप ग्राउंड रियलिटीज को जो है ना वो देखते हैं ना, अभी भाई ने बात की महंगाई की और एहतजाज करने की, देखें एक जो है ना वो लेवल होता है, उसको आप क्या कह लें कि जब पानी जो है ना वो सर से जो है ना वो गुजर जाता है,
1: ठीक।
0: तो अभी जो है ना वो देखेंगे वो स्टेज जो है ना वो ठीक है कि हम हकूमत की भी जो है ना वो सपोर्ट अपनी जगह पे होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि हकूमत अपनी अयाशियां जो अपने मामलात हैं उनको जो है ना वो नहीं कवर करती और सारा का सारा बोझ जो है सिर्फ आवाम के ऊपर ही डाल देती है, तो फिर जो है ना वो बहरहाल एक जो है ना सवाल जो है ना वहां
1: जरूर। और सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीकेंड है, आप भी 2 दिन रेस्ट कीजिए, मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
0: जरूर। थैंक यू
1: एंड लिसनर्स, आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआओं में रखिएगा, हौसला निहारना, बल हौसला भी खोने की चीज, इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशत जिंदगी। इंशाल्लाह मंडे शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम पर मेजबान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्दे माला।

0: जब से हमने इनाम घर शुरू किया है, एक दोस्त हमारा ऐसा है कि उन्होंने, मेरा ख्याल है जितनी दफा वो इनाम घर में आए हैं और जितने टिकट इनाम घर के उन्होंने खरीदे हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि उन जितने इनाम घर के टिकट किसी ने नहीं खरीदे, और शायद इतने ज्यादा शोज में राबी भी ना आई हो जितने ज्यादा शोज में हमारे ये दोस्त आए हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है इनाम घर के लिए, मेरे लिए, कि इनको खड़े होकर इनके लिए क्लैप करें, असद अहमद के लिए, असद अहमद।
1: जी सर, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। इनाम घर जो है हमारा एक, जब शुरू किया था तो एक पौधा था, छोटा सा बीज लगाया, तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो 10 15 20 50 लोग थे, करते करते मेहनत की इन्होंने। और अच्छी बात ये है कि रेगुलर और परसिस्टेंस जो होती है किसी भी चीज एफर्ट्स के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो बहुत जरूरी है। और हर कंपटीशन को इन्होंने फेस किया, मार्केट के कंपटीशन को फेस किया, हर डोमेन को फेस किया, स्पॉन्सर्स मिले इनको। और सबसे अच्छी जो बात इस प्रोग्राम की शुरू से रही है कि ये प्योर फैमिली प्रोग्राम है, हमेशा फैमिली एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, प्योर फैमिली इवेंट रहा है। इसमें आप देखें कि आप बड़े बिछड़े हुए लोग भी मिल जाते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो 3 साल पहले चमचे मुलाकात हुई थी, इनाम करने में दोबारा से मिला दिया।
2: एग्जैक्टली,
1: और वो प्रोग्राम मुझे अभी भी याद है कि जब टोरंटो हमारे 360 में और इन स्टूडियो में था, वो प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम, अर्शद भट्टी साहब आपको याद होगा, साबिर भाई भी उधर ही थे, और फर्स्ट इवेंट था, उसमें 30-35-40 लोग थे, उस वक्त 40-50 लोग थे, और लेकिन स्टार्ट जब हुआ था और बड़ा उसका एक करिश्मा क्रिएट हो गया, वो उन्होंने $1500 का बम्पर प्राइज रखा, और उसमें जब पर्चियां डली तो मेरे 40-50 पर्चियां डली, और इनका जो स्टाइल होता है तो बड़ा अच्छा होता है कि जो पर्ची निकलेगी वो गेम से बाहर है, जो पर्ची निकलेगी वो गेम से, ऐसे ही
3: एलिमिनेट
1: हो जाता है। करते करते 10 पर्चियां लगी तो हम सबकी दिल की धड़कने तेज होगी, मेरी पर्ची भी उसके अंदर ही थी, $1500 नजर आ रहे थे, बच्चे भी पीछे थे, बच्चे कह रहे थे ये क्या होने वाला, मैंने कहा ये सब कुछ देखते जाओ क्या होता है। करते करते 5 पर्चियां पीछे रह गई, मैंने शम्स भाई को देखा, शम्स भाई मुझे देखा, कहते हौसला करो कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिक्र ना करो बन जाएगी बात, है तेरा करम है आका के, बात अब तक बनी हुई है, सबकी दिल धड़कने तेज हो गई, कुछ लोग सीट पे, एक पर्ची निकलती तो सीट से लोग यूं पड़े हो गए, ऐसे हो गए। 3 पर्चियां रह गई, मुझे याद है अभी भी, उस वक्त तो टोरंटो 360 के कैमरे यूं चेहरों पे जा रहे थे, कभी उसके चेहरे पे, कभी उसके चेहरे पे, कभी उसपे, वो ऐसे ऐसे तो निकल रहे थे लोग अपने, 3 बंदे रह गए और $1500 सामने, एक पर्ची निकली तो मैं तो बिल्कुल साइलेंट हो गया था, मुझे मुझे भी याद है, खामोश हो गया था कि अब $1500 के पीछे सिर्फ 2 पर्चियां
3: निकल गए।
1: हाँ, तो बस सांस रुक गए सारों के, उधर से साबर भाई ने कैमरा ऐसे लगाया, सारों की दिल की धड़कने तेज हो गई, तो सब देखते रहे। अब जो आखिरी पर्ची वो निकली ना किसी की, जब एलिमिनेट हुआ तो हम लोग सब खड़े होकर जंप हो गए, उसमें आखिरी में मेरा नाम था और $1500 जीते, और वो आज तक मुझे याद है कि वो जब सेलिब्रेशन थी वो इतनी, वो मतलब ऐसी थी, क्रिसमस सेलिब्रेशन थी, उसको लोगों ने हाँ देख के बड़ा एंजॉय किया।
0: एक जब इनका निकल आया ना 1500, इत्तेफाक से जो अगला शो था वो भी हमारे फ्रेंड ग्रुप में किसी का निकल आया, अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई अंदर से मिले हुए हैं। एक खातून जीटीए में जो हर पार्टी में जाती थी, हर पार्टी में होती थी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो मिले हुए हैं आपस में। अल्लाह का करना ऐसा देखें कि अगला इनाम उसका निकल आया, उस खातून का,
1: हम नाम नहीं बताएंगे,
0: तीसरा हम नाम नहीं लेंगे, तीसरा इनाम उस खातून का निकल आया,
1: फिर वो क्या कहने लगी थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत ही आला प्रोग्राम है। और इसके साथ मैं उनके लिए भी कहूंगा कि एक तरह जोरदार तालियां बजाएं, जो मेरी लाइफ पार्टनर है, हमारे साथ रही, शगुफ्ता असद, इधर आइए शगुफ्ता, इधर आना,
3: आ जाए आ जाए,
1: इधर बैठो। ये पॉजिटिव पर्सनैलिटी, हमेशा लोगों को जोड़ के रखना, कम्युनिकेशन कम्युनिटी के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव रोल रहा है, और हम सबको कम्युनिटी के अंदर जोड़ के रखते रहे, और इस प्रोग्राम में और इनाम घर में भी इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, शम्स भाई के साथ हमेशा खड़ी रही, हम सपोर्ट करते रहे एनी प्रोग्राम, और आगे भी हम खड़े,
0: जो लोग राबी भी ना आई हो जितने ज्यादा सोच में हमारे ये दोस्त आए हैं, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शहर से इस वक्त निकाल देना है कि आप माशाल्लाह सर्जन है टोरंटो हॉस्पिटल में, हम ये समझेंगे कि आप, हम आपके साथ यूनिवर्सिटी में मिले हैं और ये आपका आखिरी साल है।
1: ठीक है,
2: ठीक है। तो मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर नासिर साहब, नासिर चौधरी साहब। रिसेंटली इन्होंने इनाम घर में आए थे और हमें बड़ी खुशी मिली, क्योंकि वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, वेरी डाउन टू अर्थ, और माशाल्लाह टोरंटो हॉस्पिटल में सर्जन है। तो इनसे थोड़ी दो चार बातें करते हैं। सर ये बताइए कि पहली दफा किसी खातून को देख के दिल कब धड़का था और वो कौन सा ईयर था?
4: धड़का ही नहीं किसी और को देख के।
2: स्टेथोस्कोप लाओ, चेक करो ये सिंदर है कि नहीं।
4: रियली नहीं धड़का।
2: अच्छा
4: क्योंकि क्योंकि क्योंकि मैं किसी औरत को औरत नहीं, उसको पेशेंट समझ के मतलब उसको ट्रीट करता हूँ।
2: अरे डॉक्टर साहब, ये तो यूनिवर्सिटी का जमाना है।
4: अच्छा अच्छा,
2: ये यूनिवर्सिटी का जमाना है।
4: वो तो बहुत,
2: आप डॉक्टर नहीं बने अभी।
4: बहुत दफा धड़का।
2: अच्छा बहुत दफा धड़का। पहली दफा कब धड़का था वो बताइए।
4: पहली दफा धड़का था, मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था लाहौर में।
2: अच्छा,
4: तो वहाँ पे मेरे साथ एक
2: क्लास फेलो थी।
4: क्लास फेलो थी।
2: अच्छा वेरी गुड।
4: उसको देख के धड़का था वो।
2: चले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप इनाम घर में आए, और बस इनको आपसे मुतारफ कराना था, आज इनको बुलाने का मकसद यही था, और आते रहिए इनाम घर में
4: इंशाल्लाह।
2: एंड कीप इन टच। और क्या कहेंगे आप इनाम घर के लिए?
4: इनाम घर एक भाई जबरदस्त, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, मुझे तारिक अजीज की याद जो है वो दोबारा से ताजा हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं कि ये बिल्कुल उसी लेवल पे चला जाए जो तारिक अजीज साहब का प्रोग्राम था, और बिल्कुल उससे मिलता जुलता। मुझे तो सिर्फ एक चीज थी कि वहां पे तारिक अजीज की जगह पे शमस खड़े हुए नजर आए हैं, और कोई फर्क नहीं नजर आया, और अल्लाह ताला इसको बहुत ज्यादा कामयाबियां दे। और
2: घर में हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं क्योंकि हमारा बड़ा पैक्स कैजुअल होता है, और वन टू वन हम बैठ के किसी के साथ ना उनके दिल का हाल जान सकते हैं, ना उनको अपने दिल का हाल बता सकते हैं। तो आज की जो महफिल है ये दिल का हाल बताने के लिए, इसीलिए बिग बॉस भी आ गया, इसके भी देखेंगे दिल में क्या है। तो बहुत शुक्रिया अरशद भट्टी साहब आपका, थैंक यू वेरी मच, जिस तरह से आप इनाम घर को प्रमोट कर रहे हैं, और साबिर गाया साहब हमारे साथ होते हैं, हमारा जो भी इवेंट होता है उसको कवरेज देते हैं, और रेडियो पे आप हमारी एड चला रहे हैं, टीवी पे आप चला रहे हैं, हम आपके बहुत ज्यादा मशहूर हैं, और थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आप?
5: नहीं शुक्रिया आपका भी, आप एंटरटेनमेंट जो है वो लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं माशाल्लाह फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, अब तो काफी महीने हो गए बल्कि साल हो गए, और इनाम घर के बाद अब आपका ईद बाजार जो है
2: जी,
5: ईद बाजार का जो आपका माशाल्लाह एक नया वेंचर है, तो बहुत आप, हम आपके साथ हैं और पूरी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कामयाब भी होगा, क्योंकि एक चीज आप, मैंने देखी आप मेहनत बहुत करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है।
2: थैंक यू।
5: और जहाँ पे जरूरत है मेहनत की वहाँ भी ज्यादा करते हैं। आजकल आपको पता है कि ईद बाजार तो बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे चीज हो रहे हैं
2: जी,
5: लेकिन कुछ आपने बहुत सी इनोवेटिव इनोवेशन लगता है कि मुझे बहुत सारी नई चीजें लेकर आ रहे हैं, तो
2: आज आपको सारी तफसील मिलेगी इंशाल्लाह।
5: वेरी गुड। हम उम्मीद है कि बहुत कामयाब रहेगा, और जो हम इसके लिए कर सकते हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, जितना कर सकते हैं।
2: थैंक यू।
5: और कोशिश कर भी रहे हैं, होपफुली बी वेरी सक्सेसफुल।
2: बहुत शुक्रिया। और टोरंटो 360 टीवी और रेडियो पाकिस्तान जी, इन दोनों में कितने साल का फर्क था जब रेडियो पाकिस्तान टोरंटो शुरू हुआ और फिर आपने टोरंटो 360 टीवी शुरू किया?
5: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो शुरू हुआ था 2002।
2: ओके।
5: और टोरंटो 360 टीवी को 7 साल, 2017 कह ले, मतलब 8 से 9 साल है, तो बहुत फर्क है।
2: ओके।
5: मतलब 10 से 15 साल का फर्क है दोनों।
2: ओके। तो आपके खैर से अब हम कह सकते हैं कि जी आपके दो बेबी हैं।
5: तीन हैं मेरे वैसे।
2: हाँ, तीसरा बेबी भी बता दें सर, वो क्यों छुपा के रखा?
5: वो जो असल बेबी है वो दो बेटे और एक बेटी है, और ये जो है ये मेरे दूसरे हैं।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह।
5: ये जो है ये मेरा ब्रेड एंड बटर है।
2: अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोगों ने टीवी स्टेशन खोले
5: जी जी,
2: ठीक है, और चैनल्स भी खोले
5: जी जी,
2: और बहुत से आते जाते रहते हैं
5: जी जी,
2: आप सुनते हैं 2 साल बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं, टोरंटो 360 की क्या रीजन है माशाल्लाह कि अभी तक टिका हुआ है, आप ऐसा क्या करते हैं जो और लोगों को फॉलो करना चाहिए?
5: अच्छा, मेरे ख्याल है कि बेसिक आपके पास चीजें होनी बड़ी जरूरी है
2: जी।
5: एक तो आपको जर्नलिज्म का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बेसिक प्रोफेशन तो रेडियो था, टीवी तो मैंने यहाँ वहाँ टीवी थोड़ा बहुत करते थे
2: जी,
5: क्योंकि टीवी तो यहाँ पे वक्त के साथ था, जो है इंसान जो है अपने आप को इन्वॉल्व करता है। तो मेरे ख्याल में इसमें भी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को देखने की जरूरत है, स्टूडियो अच्छा होना चाहिए
2: जी,
5: आपके पास एडिटर अच्छा होना चाहिए, आउटडोर के लिए साबिर साहब हमारे साथ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम शुरू से ही, जब से मैंने कही भी इम्पोर्टेंट अच्छा होना चाहिए
2: जी।
5: बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो नीयत अच्छी होनी चाहिए
2: ठीक,
5: अगर आप बस चुप करके काम करते रहे, सभी लोग करते, मेहनत तो सारे कर रहे हैं ना, हर बंदा मेहनत करता है तो किसी का खुदा हाथ पकड़ लेता है, अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ तो काम चल रहा है इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है, लेकिन सारे लोग अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा प्रोफेशनली अगर करेंगे तो ठीक रहेंगे, मेरे ख्याल वो है कि शॉर्ट टर्म नहीं है ये, लॉन्ग टर्म है।
2: एक आखिरी सवाल ऑन द लाइटर मोड, साबिर गाया को कैसे काबू किया हुआ आपने अपने माशाल्लाह?
5: साबिर गाया जैसा मेन टीशर्ट कोई भी नहीं, बस वो क्योंकि ये भी यहाँ पे जो मैंने पहले बात की ना प्रोफेशनलिज्म की, ये इतने अरसे से 30-35 साल से, तो इनको बड़ा अजीब लगता है कोई जब इनके आगे को हर्डल आ जाए तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम, मेरी कोशिश तो बड़ी की है इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन बेहद में वो जितनी कोशिश करते हैं कैमरे के आगे कोई ना आए, तो मेरे ख्याल ये लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, एक बंदा इसकी मेहनत से जो काम कर रहा है तो उसकी मेहनत का कम से कम ये ख्याल जरूर रखें कि इस, वरना माशाल्लाह जितने मेहनती ही हैं, मतलब रात को आप 1-2 बजे भी बात बात मैं कॉल करता हूँ कोई काम होता है तो माशाल्लाह ये करते हैं हमारी। मेरे ख्याल एक और बात जैसे शादी की टीम वर्क हमारा जो है ना वो बहुत जबरदस्त है,
2: जबरदस्त,
5: हम लोग सारे जो है एक टीम की तरह फैमिली की तरह काम करते हैं, शायद यही काम होती है।
2: आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको और तरक्की दे, थैंक यू वेरी मच। इमराना चौधरी से रिक्वेस्ट है कि आ जाए, आपके साथ भी दो दो हाथ हो जाए, आ जाइए इमराना चौधरी, आइए। मैं फिजियो क्लिनिक को ऑन करती हूँ और माशाल्लाह इनके 3 क्लिनिक है, अगर आप लोगों को कनाडा में तो जरूरत पड़ती रहती है, स्लिप एंड फॉल होता है, बड़ी चीजें होती है, तो इनसे जरूर रब्ता करें, ये पूरी आपकी हेल्प करेंगी और इनाम घर का डिस्काउंट इनसे जरूर लिया करें। और हमारा आपको पता है ईद शॉपिंग फेस्टिवल भी आ रहा है, उसके लिए भी कुछ बोल दे हमें, कुछ बेस्ट विशेस दे दे।
6: इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो तो जरूर ही विन होएगा और टॉप ऑफ द लिस्ट होएगा, क्योंकि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे सारे अवाम ही आपके साथ है और खासकर मैं तो हूँ इंशाल्लाह।
2: थैंक यू वेरी मच। साथ एक हमारी बहन बैठी हुई है, काफी माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल है, नॉलेजेबल है, उनसे बात करते हैं रुबाब सैयदा से, और हमारा जो ईद फेस्टिवल होने जा रहा है हमें उसमें इनकी हेल्प चाहिए, तो आके बताएंगे कि हमारी ईद फेस्टिवल में रुबाब सैयदा क्या हेल्प करेंगी। ईद फेस्टिवल हमारा मई को 23, 24, 25, 26 को होने जा रहा है और हर दिन हमारी एक्टिविटीज प्लान है, हर दिन सोने का इनाम दिया जाएगा, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी आए और जो वेंडर्स सुन रहे हैं वो भी आए। सो थैंक यू वेरी मच रुबाब सैयदा, आप इनाम घर में आती हैं और बहुत से लोगों को भी लेके आती हैं।
7: जी अस्सलाम वालेकुम, असल में काफी माशाल्लाह मेरी जो ग्रुप्स हैं उसमें 100-200 लेडीज हैं और उनको मैं लेकर आती हूँ और प्रेशर भी देती हूँ कि कोई बुक करा दे टेबल, तो काफी लेडीज बुक भी कराती है, पूरी पूरी टेबल 20-22 औरतें। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि इनाम घर में मेरे अलावा भी जो ये फेस्टिवल हो रहा है उसमें मैं कुछ पंजाबी सॉन्ग्स तो मैं गाऊंगी, लेकिन एज ए वॉलंटियर मैं वहाँ पर डिसिप्लिन भी कर सकती हूँ, और कई जगह पर जैसे मैं जिम जाती हूँ कहीं भी जाती हूँ, तो जैसे मैं अपनी कंट्री में माशाल्लाह मैंने एज ए कैरपेक्टर इंग्लैंड से मैंने कोर्सेज किए थे, तो इंशाल्लाह ताला अगर किसी को कमर में ऑल बॉडी में कहीं पेन है या कोई हड्डी में कोई एज ए कैरपेक्टर, मैं कह रही हूँ आपको कि मैं एज ए वॉलंटियर आप लोगों का काम कर सकती हूँ जो इनाम घर में। उसके अलावा मैं किसी फिजियोथेरापी में जैसे इमराना है, इन्होंने भी मुझे चांस दी है, तो अगर वहाँ कोई पेशेंट्स आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बहुत रिजनेबल प्राइस करूंगी, और यानी इंस्टेंट उसी वक्त आपको आराम आ जाएगा, यानी कि आपको 2-3 weeks लगेंगे और विद मेडिसिन विद आपको एक्सरसाइज के।
2: जी क्या होने जा रहा है पहले दिन पे?
8: अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो ये कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको मुइज भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुइज भाई जो है वो ऑन एयर सबको लेके जाते हैं और पता लगता है कि कैमरे पे कौन कैसा लगता है। और शान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको मौका दिया कि इस बार हम लोग थोड़ा सा फैशन शो का ट्विस्ट जो है आपके मशहूर इनामदार से रिलेटेड और जो आप इस बार आपने इनिशिएटिव लिया है ईद बाजार का उसमें लेके आए। ये कोई इतना बड़ा फुल फ्लेज्ड फैशन शो नहीं होगा लेकिन अच्छा सा हम कर रहे हैं और आप सबको पसंद आएगा। इसकी जो डिटेल है वो मैं अपनी बेटर हाफ को देता हूँ, वो बेटर बता सकेंगी।
9: वैसे तो मुझे माइक की जरूरत होती नहीं, मेरी आवाज ही इतनी है, शब्द हमारी सही है, यू नो हमारी आवाज ही बहुत है।
8: अच्छा हुआ इन्होंने बोल दिया।
9: So,
0: घर में इन पे हाथ वाला रखा।
9: ये सभी कहते हैं, पता नहीं मैंने कौन सा भारी हाथ रखा हुआ इनके ऊपर। हाँ ना, इन्होंने किया। सो यस, थ्रेड्स ऑफ द वर्ल्ड इज माय फैशन कंपनी जो कोलैबोरेशन विद इनाम घर। सो इनाम घर में थ्रेड्स ऑफ द वर्ल्ड फैशन शो कर जो रहे हैं, इट्स आवर एक्चुअली प्रिविलेज कि हम इतने बड़े इनाम घर के शो में वी आर डूइंग अ फैशन शो।
0: सलमा एंड काशिफ, ये माशाल्लाह दोनों सिद्दीकी हैं। इन्होंने भी आई थिंक चार माह पहले इनाम घर को ज्वाइन किया था और काफी दफा ये इनाम ले चुकी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको इनाम घर कैसे लगा।
10: तो इनाम घर मुझे लगा कि वो पहला प्रोग्राम है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इंजॉय करते हैं एंड प्लस इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ प्रोग्राम। सो जब हमने पहला ज्वाइन किया उसके बाद तो हमें इतना मजा आया कि हमने सोचा कि नाउ वी विल बिकम इनाम घर फैमिली एज वेल, इनकी टीम का पार्ट होंगे और वी आर नॉट गोना मिस एनी ऑफ इट्स एपिसोड्स। सो वी लव इनाम घर और जहां इनाम घर होता है वी आर ऑलवेज देयर। शम्स भाई, रवि जहां पे भी होते हैं वी आर देयर टू सपोर्ट देम and congratulations to them for their festival that they are doing,
0: Eid festival.
10: Eid festival.
11: Ye Kashif Siddiqui. Bas yehi hai, Eid festival ke liye we can't wait and I think it's going to be amazing. Aur jaise aap log uske liye events vagera announce kar rahe hain, it seems very interesting and we will definitely like to be a part of it and participate inshallah.
0: Thank you so much. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ईद का पहला दिन तो नहीं, ईद का कह रहा हूँ, ईद फेस्टिवल का, ईद फेस्टिवल जो होने जा रहा है 23, 24, 25, 26, उसकी डिटेल्स हम दे रहे हैं। 23 को आपने देख लिया कि थ्रेड्स ऑफ द वर्ल्ड बीना ब्यूटी ये फैशन शो आपके लिए लेके आ रही है। अब हम दूसरे दिन के लिए जो हमारी प्लानिंग है उसके बारे में बताते हैं और उसके लिए जो इसको कंडक्ट करेंगी दो खवातीन, मैं उनको बुलाता हूँ, माशाल्लाह इनाम घर पे जुड़ी हुई हैं और उनमें से एक ने बम्पर प्राइज भी जीता हुआ है, तो रुखसाना को और रास्का को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे आ जाएं और इस कंपटीशन के बारे में
12: तफसील करें। और मैं रास्का एहसन हूँ और शम्स भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें सिलेक्ट किया कि हम इसको करें। और मेरे साथ रुखसाना है, तो 30 लोग जो है वो इस सिंगिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और जो जीतेगा उसको गोल्ड का प्राइज मिलेगा।
9: तो सही कह रही हूँ,
12: मैं भी गाना चाहूंगी क्योंकि शौक तो मुझे भी है थोड़ा थोड़ा, मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन जब हम लोग घर में गाते हैं तो दिल चाहता है कि थोड़ा सा गाएं।
0: हाँ, लेकिन टीम के लोग जो है वो इनाम नहीं हासिल कर
12: तो हमने कब कहा कि हम इनाम दें।
13: Assalamualaikum. Everybody, मेरा नाम रुखसाना रिजवी है और जैसा कि शम्स भाई ने कहा कि वो रिंग देते हैं, ये देखो मैंने पहनी हुई है, प्रूफ है कि गोल्ड रिंग, ये डायमंड रिंग, डायमंड रेयर, हाँ मेरे पास है। तो इस दफा जो है वो एक बड़ा अच्छा इन्होंने एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ईद फेस्टिवल के नाम से। आई थिंक इज अ प्लेटफॉर्म जो कि क्रेडिट गोज टू शम्स भाई एंड राबी कि ये नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टेज के ऊपर। और मैं भी काफी अरसे से इनके साथ मंसलिक हूँ, इनके स्टेज पे मैं भी गाती हूँ और मैं भी गाऊंगी लेकिन इनाम की हकदार नहीं होगी।

0: बहुत अच्छा काम है। तो मेरा जो काम है वो मैं अपना परफेक्ट काम करता हूँ, मैं किसी को ना तकलीफ देता हूँ, जो मुझे तकलीफ देते हैं मैं झगड़ा करता हूँ क्योंकि मेरा काम खराब ना हो। अब जैसे ये मोइस खड़े हैं यहाँ पे, अगर मैं कोई मेरे सामने कैमरे के आ जाता है, अगर मैं मोइस के कैमरे के सामने आ जाऊं तो क्या फील करेंगे ये? तो इसलिए मैं तारीख को भी कई दफा हटाया मैंने।
1: अच्छा, कहते हैं कि नेक काम में जल्दी करनी चाहिए, आप झगड़े में जल्दी क्यों करते?
0: नहीं, झगड़े में जल्दी नहीं, पहले आराम से कहता हूँ भाई प्लीज जगह दे दो, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर मैं आवाज उठाता हूँ। बाबा जी होते हैं, बाबा जी कभी आ जाते हैं तो मैं सिर्फ आवाज निकालता, बाबा जी हट जाते हैं, तो उनको पता है कि भाई उनके पीछे कैमरे। लेकिन
1: आज भी बाबा जी को आपने हटाया?
0: नहीं नहीं हटाया नहीं, उनको तो आना चाहिए था।
1: अच्छा,
0: आपने शायद बुलाया नहीं होगा उनको, या वो सो रहे हैं इस वक्त, वीकेंड अपना सही कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं अरशद भट्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा था कि आप जाके सेल फोन से बना लेना, लेकिन मैंने देखा ऐसी महफिल अगर टीवी पे ना दिखाए, और जो भी काम मैं करता हूँ वो सेल फोन का अगर हो तो वो टीवी पे नहीं नजर आता सही तरह, क्वालिटी नहीं आती है। तो इस कैमरे के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब मैं कैमरे लगाऊं तो उसके सामने ना आया करें प्लीज। फिर बाजी आप भी कभी कभी आइए, कभी आप मैंने आवाज जरूर लगाई है आप लोगों के सामने, लेकिन कोई बात नहीं।
1: थैंक यू,
0: ओके,
1: क्लैप फॉर सामने आया।
0: आप लोगों का, आप लोग इज्जत देते हैं, आप लोग हमें बुलाते हैं, 360 आपका स्पॉन्सर है इस प्रोग्राम का, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। क्या इसी तरह से देखें ना, मैंने कुछ सीखा भी तो है आप लोगों से, ये थोड़ी कि मैं खुद ही सीख रहा हूँ। आप लोग जो करते हैं गलत तो मैं उसको सही करता हूँ, जो सही मैं गलत करता हूँ आप लोग सही कर रहे होते हैं उसको मैं सीखता हूँ, उसको ठीक करता हूँ। तो शमजी बहुत शुक्रिया आपका, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस। थैंक यू,
1: थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे ताकि आप हमारी हेल्प करते रहे।
0: जितनी लिख दिया।
2: अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, अरशद भट्टी ने यहाँ कहा था कि उनका टीवी जो है 7 से 8 साल पहले 2017 राइट उसी वक्त में आई अपना KCXL मीडिया लेकर, एंड दैट वाज द टाइम आई एंटर्ड इनटू प्रमोशंस। The reason to get into promotions was कि मेरा अपना business था INSAR, English or Immigration or PR Settlement का, जिसके लिए मुझे promotion चाहिए थी, और मैंने देखा था कि majority लोग यहाँ जाहिल हैं, आता नहीं है, बस Facebook में picture डाल देते हैं और उसको वो promo कहते हैं और उसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं। तो मैंने अपने business की promo खुद start की, and that was the first time मैंने देखा कि community में ये चीज missing है, the real promotion was missing। प्रोमो प्रोमो किसी के हाथ में भी सेल फोन पकड़ के आप कहते हैं कि उसको आप प्रोमो कर रहे हैं, नहीं। अ पर्सन लाइक मी, जैसे कि शम्स ने मेंशन किया, आई हैव 3 मास्टर डिग्रीज, आई एम अ प्रोफेसर इन इंग्लिश, आई हैव टॉट एट डिफरेंट कैनेडियन यूनिवर्सिटीज, सनिका, सेंटिनियो, ब्रॉक, और मेरा अपना यहाँ कॉलेज है। तो जब मैं अपने कॉलेज की प्रमोशन लेके निकली और मैंने देखा कि कम्युनिटी में जो भी डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनको भी प्रमोशन चाहिए और कोई खास यहाँ है नहीं जो प्रमोशन करना जानता हो, सो आई वेंट लाइव विद माय सेल फोन्स एंड अ पर्सन लाइक मी। मैं समझती थी कि नो वेज आई कैन कम ऑन टीवी बिकॉज ऑफ माय फिगर, बिकॉज ऑफ माय फिजिक, बट इट हैपेंड ऑपोजिट। विद इन 3 मंथ्स आई गॉट द फर्स्ट अवार्ड फ्रॉम कनाडा, 40 एब्सोल्यूट फैबुलस वुमेन कमिंग। उसके बाद मुझे वुमेन डेज अवार्ड मिला, उसकी वुमेन इंटरनेशनल अवार्ड मिला, तो कम से कम 6 से 7 अवार्ड मिले। और ये क्यों मिले? मैंने उनसे क्वेश्चन किया, व्हाई आर यू गिविंग मी एन अवार्ड? मैं टीवी शोज करती थी और उस वक्त मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पर आती थी, आई वाज कनेक्टेड विद इंडियन मीडिया। उन्होंने मुझे कहा, यू आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस अवार्ड। सो दैट वाज वन
1: थिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया केसी। और हमारा ईद शॉपिंग फेस्टिवल होने जा रहा है, इसके बारे में 2 लफ्ज कह दें कि हमें आपकी बेस्ट विशेस मिल जाए ईद शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से।
2: दो नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा कहूंगी। मैं यहाँ पढ़ रही थी, द सुपर बेस्ट, टोटली अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑसम, इनाम घर कनाडा। सो द एडजेक्टिव्स, द एडवर्ब्स सेज ऑल देयर, सुपर बेस्ट, टोटली अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑसम, इनाम घर कनाडा। इनाम घर, जिस तरह मैंने फर्स्ट, जैसे मैंने मेंशन किया, आपको कैश प्राइजेस मिलते हैं, व्हाट एल्स? और जो मैंने चीज यहाँ इनाम घर में देखी, of course.

0: pass through Shamsamand, your sense of humor, sir. Comedy, funny, lighter mode. Hum sab depressed hai kisi na kisi cheez ko lekar. Inaam ghar wo aapki depression dur karta hai. Aapko wo entertainment deta hai. Aur jab maine dekha ki so many of community members, they wanna, it's been third year now.
1: Yeah.
0: 3 saal se main inke saath judi hui aur dekh rahi hu ki log badhte hi ja rahe hain aur entertain hote ja rahe hain. And beautiful people like Bina, they dropped in. Shagufta was there from the beginning. So, ab iski kya ek wajah hai? Wo ye hai that the very Inaam Ghar, the super best, the extra amazing, is for the people. It's for you all. It's for the community. And that's why it's Eid shopping festival, jisme aapko Eid ki shopping bhi milegi. And at the same time, Inaam Ghar ki jo activities hai, jaise ki humne abhi suna, wo bhi aapko dekhne ke liye milega. All the best, Shams. I do have questions for you, but that will be jab aap shuru karenge apni video.
1: Thank you.
2: Main apni sari community ka thank you karna chahungi ki jo itne supportive hain aur sabse badhkar hamare Shams Rehman. और मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ टोरंटो 360 मिस्टर अर्शद भट्टी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और ऑफ कोर्स हमारे साबिर भाई इनको कौन नहीं जानता है. तो किसी भी काम के पीछे मैं कहती हूँ कि टीम वर्क होता है और यहाँ पर मैंने देखा कि शम्सुर रहमान ने जिस तरह अपने इस बेबी, मैं इसको बेबी कहूंगी, इनाम घर कैनेडा को लेकर चल रहे हैं और चले हैं. तो माशाल्लाह मैं कहूंगी कि इसमें इनका बहुत सारा अमल दखल इन्हीं का है और जिस तरह ये कंट्रोल करते हैं, मतलब इनका थोड़ा सा एक डोमिनेंट मिजाज है जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को लेकर चलने के लिए, क्योंकि अगर आपका ये मिजाज नहीं होगा तो फिर आप थोड़ा सा लीनियंट होंगे तो फिर आप चीजें जो है वो इधर उधर लोग कर देते हैं, राइट. तो अभी मैं आपको पिछले जमाने इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ कि हमारे ईद मेले मेला होता था और एक फेयर उधर कौन सा फेयर ग्राउंड था, मार्टर फेयर, हाँ, तो वहां पे एक अदद पाकिस्तानी सिंगर आता था जिसका हम वेट करते थे और ये इस तरह का मेले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जो कि इस तरह के ईद मेले लगे. ये गुज़िश्ता 10 सालों से ये मेले लगना शुरू हुए हैं और हमारी कम्युनिटी जिस तरह ग्रो की है इस दौरान और इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारी कम्युनिटी को बहुत जरूरत है कि इस तरह के मेले और मजीद हों. और उसी सिलसिले में जो है इनाम घर कैनेडा लेकर आ रहा है ईद शॉपिंग फेस्टिवल. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें आप लोग, ये 23rd को हो रहा है, 23rd से लेके 26th मई तक हो रहा है, सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक. और इसमें हमारे 4 जो है हर दिन की मुख्तलिफ एक्टिविटी है, जिसमें हमारा फैशन शो है, जिसमें हमारी सिंगिंग का है, जिसमें हमारी मदर्स डे के उसमें हवाले से, और फिर कपल्स डे जो है मैं लेकर आ रही हूँ
1: चांद रात
2: को. तो आप लोग तैयार हो जाएं, कपल्स तैयार हो जाएं, अपनी अपनी बीवी के साथ आना है, खबरदार जो कोई इधर उधर से कोई लेके आया और बीवियों को भी उन्हीं के साथ आना है.
1: और अगर बीवी की तबीयत ठीक ना हो उस दिन,
2: नहीं तो फिर एक काम कर, जूम पे ले लेंगे सिंगल, वो हमारी तरफ साइड में खड़े होके देख रही है. अभी भी टाइम है, अभी कितना 23rd मई तक टाइम है.
1: सिंगल्स के लिए भी कुछ
2: कर लेते हैं, क्या ख्याल है?
1: बिल्कुल,
0: इसी कहा मसला
1: नहीं, सिंगल्स के लिए जरूर कुछ करेंगे क्योंकि पता नहीं क्यों मैं हर वक्त सिंगल फील करता हूँ.
3: मोहित हमारे बहुत अच्छे, हमेशा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे हर इवेंट पे आते हैं, हर फंक्शन हमारा बहुत अच्छे से कवर करते हैं. तो थोड़ा इनाम घर के बारे में बताइए.
4: जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले शम्स रहमान भाई भाभी सबका शुक्रिया अदा करूंगा. वो हमेशा कोई भी यहाँ पे इनाम घर का इवेंट हो या इनके फैमिली इवेंट हो, वो हमेशा भूलते नहीं है और मैं भूल जाता हूँ, मगर मुझे रिमाइंड कराते रहते हैं. बहुत अच्छी बात है, आज भी मैं भूल गया था, सुबह इनका मैसेज आया. और इनाम घर में काफी साल हो गए, 3-4 साल हो गए इनाम घर, मैंने उनके साथ जुड़े हुए भी. और इनाम घर के जो कॉन्सेप्ट है, मुझे शुरू में हम लोग छोटे थे तो देखते थे तारिक अजीज का, देखते थे ये टीवी आपका हुआ, तो उस तरह के शोज अब तो नहीं आते, और वो जो महफिल इन्होंने जमाई हुई है शम्स भाई ने और पूरी इनकी टीम ने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हमारे लिए नहीं है, लेडीज के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और मैं खुद अपने जो है बच्चे यहाँ लेके जाता हूँ बहुत दिन।
5: जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले शम्स भाई आपका बहुत शुक्रिया, भाभी आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह इंट्रो दिया मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये मैंने तब भी बोला था जब आपने मुझे स्टेज पे बुलाया था फर्स्ट डे, तो तब भी मैंने यही कहा था कि मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि जब इंसान आपको इतनी अच्छी और दिल से कोई किसी को रेस्पेक्ट देता है तो फिर एक लाइक हार्ट टचिंग होता है कि वो उसके पास वो डिस्क्राइब करने के लिए वो अल्फाज नहीं होते, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अल्फाज नहीं है तो उनकी तारीफ नहीं है। तो ये आपकी माशाल्लाह से ये तारीफ भी है क्योंकि आप हर किसी को इज्जत देते हैं, वो छोटा हो वो बड़ा हो। और ये जो आपने मुझे रिकग्नाइज किया जब मैं काम मैंने स्टार्ट किया आज से 3 साल पहले, तो आप मुझे हमेशा हर जगह पे देखते थे, लोग मुझे अप्रिशिएट तो करते थे लेकिन वो सिर्फ जुबानी कलामी होता था, लेकिन यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने मुझे स्टेज पे बुलाया, इज्जत दी, कैश प्राइज से आपने मुझे नवाजा। तो ये देखिए कैश प्राइज जो होता है वो इंसान पैसा आने जाने वाली चीज है, पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन उस पैसे के पीछे उस प्राइस के पीछे जो मोहब्बत होती है, जो प्यार होता है, जो रेस्पेक्ट होती है, वो हमेशा सारी जिंदगी जो है ना वो आपके दिल से नहीं निकलती, वो हमेशा बच जाती है। तो इनामगर जो है माशाल्लाह से इतना प्यारा और अच्छा प्रोग्राम है।
1: हमारे शॉपिंग फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहेंगे?
5: जी बिल्कुल, इनामगर के बाद अब ईद शॉपिंग फेस्टिवल होने जा रहा है जो 23, 24, 25 और 26 को, माशाल्लाह से आप सब तशरीफ लाइएगा और एक सुनहरी मौका है, ईद है, शॉपिंग कीजिएगा। मैं तो सिंगल हूँ लेकिन मैं तो किसी को लेके नहीं आ सकता, लेकिन आपके पास तो ये मौका है, तो तो वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि और भी दोस्त हैं, तो मैं अपना शम्स भाई वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहे, आपकी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
2: कहते हैं कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, सो ये दोनों जो हैं हस्बैंड एंड वाइफ फुल ऑफ अदब से भरे हुए हैं, सो अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और हमारी तमाम गुड विशेस और दुआएं के साथ हैं। मैं इस वक्त जरूर ये जिक्र करूंगी कि हम इनके एक्स हैं, मतलब ई आवाज जो है उसका आरफा मुजफ्फर जो है हमारा कुछ थोड़ा साथ रहा है उनके साथ, और मुझे ई आवाज की तरफ से ही इतना रिकग्निशन मिली है, सो ये बात है। और हमारे साबिर का है बहुत जबरदस्त किस्म के अमेजिंग हीरो हैं अर्शद भट्टी साहब 360, सबको गुड लक। और आपका जो ये फेस्टिवल आ रहा है ये बहुत बड़ा कदम है आपका, अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत सख्त किस्म की कामयाबी दे, एंड आई एम श्योर बहुत जबरदस्त होगा। आप देखें कितने हसीन चेहरे, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जोश और खरोश के साथ बैठे हुए हैं, सो मेरी सारी दुआएं,
6: गुड लक इंशाल्लाह। यू नो मैं जहां भी देख रही हूँ माशाल्लाह आपके फ्लायर्स एंड यू नो मार्केटिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह लोग भी आएंगे।
1: थैंक यू। आप हमारी क्या मदद करेंगे, ईस्ट साइड से कुछ लेके आए ना हमारे लिए वेंडर्स?
7: थैंक यू,
6: इंशाल्लाह हो सके जो भी,
1: मुझे पूरी उम्मीद है इनसे। ये हमारा नाम काफी फैलाती है क्योंकि 3-3 टेबल बुक करती है एक शो में, तो और इनके साथ इनकी वालदा भी होती है माशाल्लाह, तो और इनका अपना भी एक शो आ रहा है उसके बारे में बताएं हमें।
6: जी May 1st को है, इट्स अ कॉमेडी नाइट एंड म्यूजिकल नाइट, तो ये गैलेक्सी बैंक्वेट हॉल में होने वाला है May 1st को।
1: तो ये चार्टर्ड सिनेमा था सिर्फ हमारे लिए इन्होंने बुक किया था, तो बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि आपको इनाम घर कैसा लगता है और इसके बारे में बताइए।
8: इनाम घर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और मैं पहले कभी भी किसी में नहीं गया, फर्स्ट टाइम मैं इनाम घर में आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, सारा कुछ है, और मैं सब आवाम से अपील करता हूँ कि वो भी जरूर आए इनाम घर में, और स्पेशली जो ये मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसमें आप सब विजिट कीजिए, क्योंकि आप लोग आएंगे तो इस मेले में 4 चांद लग जाएंगे, और इस मेले में आप शॉपिंग कीजिए, सारा कुछ कीजिए, ताकि सब लोग खुश खुश अपने डॉलर जो क्रेडिट कार्ड मशीन क्रेडिट कार्ड है वो थोड़े खत्म हो, इजीली पे कर सके बाद में आप। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया,
1: थैंक यू। नहीं, थैंक यू। थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताइए, इनका माशाल्लाह लेमोजीन का बिजनेस है, तो आप क्या खिदमत कर सकते हैं लोगों?
8: हमारा लेमोजीन का बिजनेस है, तो मैं तो सबसे यही कहूंगा, मैं इनाम घर की तरफ से यही कहता हूँ कि सब आए, मोस्ट वेलकम। जब आप लोग चाहें आप गाड़ी बुक करवाएं, जहाँ जाएं, नियाग्रा फॉल जाना चाहें, ब्लू माउंटेन जाना चाहें, मशकोका जाना चाहें, जहाँ जाना चाहें, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और जो भी हो सका इनाम घर की वजह से आपको डिस्काउंट मिलेगा।
1: Thank you.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. My name is Musarrat Tahira.
1: Musarrat Tahira.
7: So, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी किसको बुला रहे हैं. मेरे कजन सिर्फ मुझे तायरा बुला सकते हैं. तो that's why I was, anyways. मैंने तो समझा था कि ये कुछ इनफॉर्मल सी गैदरिंग होगी. मैं तो अपने संडे कपड़े पहन कर आई हूँ, ग्रैंड किड्स को साथ ले आई हूँ. But anyways, mashallah, it's a very formal gathering. तो इनाम घर, आई मीन व्हाई एम आई अटैच्ड टू यू, इज बिकॉज एक तो आपका जो शो है ना, इट्स लाइक वेरी फैमिली ओरिएंटेड, इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, लिटिल बिट ऑफ सिंगिंग, लिटिल बिट ऑफ मॉडल्स, एंड द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट इट इज इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु आर टैलेंटेड बट वांट द एक्सपोजर टू एन ऑडियंस बेस्ड कम्युनिटी, सो इट अलाउज यू टू डू दैट. Like me, I'm not a person who came from a public background. I'm actually from the medical field. So for me to stand up in front of people, I did like teaching. I did teach. To stand up in front of people and to talk to people was quite embarrassing, or I was very shy. And now I can't stop talking. I have somebody to tell me shut up now. So what else can I say about myself? The other reason why I like Inaam Ghar, like I said, is the food. It's a nice ambience, nice environment. I like dressing up. The place looks beautiful. You know, banquet halls are beautiful. So it allows you to get out and forget about your family. Okay, can you listen to your like smug mulaki? Sab kuch surma paake. You know, usko gaana suno hai na. Wo saab hota hai Inaam Ghar mein jab aati hai. Now. It's funny, आपको मैंने आपसे मैंने एक सवाल करना है
1: जी.
7: ये सवाल जब मैं आपने इनवाइट भेजी व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने एक्सेप्ट की, मैंने कहा अब इनाम जाके पूछूंगी शम से, ये जो आप कर रहे हैं ईद फेस्टिवल इनाम घर, व्हाट्स गोइंग ऑन? बिकॉज मैं जब जहाँ जाती हूँ, आप कपड़े खरीदने जाते हैं, जूते खरीदने जाते हैं, ग्रोसरी जाते हैं, सो आई आस्क पीपल, ओह हैव यू हर्ड ऑफ इनाम घर? वो कहते हैं वो क्या है? मैं कहती हूँ वो शो है जिसमें क्विज होता है, एंड द बेस्ट पार्ट टू बी विन अ बम्पर प्राइज, सो यू नो व्हाई डोंट यू कम टू द नेक्स्ट वन, आई विल इनवाइट यू और समथिंग, यू नो. सो मैं उनको ये इंट्रोडक्शन करती हूँ नाम घर. अब ईद बाजार आ गया, जब उससे कोई ईद बाजार का पूछता है तो कहती है वो क्या होता है कि वहां पे वेंडर्स आएंगे, लॉट्स ऑफ स्टॉल्स, चीजें भी तो फूड स्टॉल्स आएंगे, तो शायद थोड़ा सा बीच में कोई गाना शाना हो, शायद कोई थोड़ा सा फैशन शो हो, तो दैट्स अ नीड बाजार. अब ये दोनों मिक्स हुए हैं तो ये क्या हो गया? अब मुझे समझ नहीं आती मैं उनको क्या बताऊंगी. जब आपके
9: डॉक्टर फैसल सईद है, मैं बैंक में काम करता हूँ, आईटी का काम है, और इसके अलावा मैं अखबारों में लिखता हूँ, मैगजीन, टीवी शोज, मैं मुख्तलिफ चीजों पे, सोशल मौजूदात पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कोई भी इंटरेस्ट की चीज हो जो चल रही हो उसके ऊपर लिखता हूँ. टीवी इंटरव्यूज होते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस होते हैं, इस तरह की चीजें. और इनाम घर में मैं काफी दिनों से आ रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है. टोरंटो में मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं और मैंने कम्युनिटी को डिफरेंट तरीकों से ग्रो करके देखा है. इनाम घर एक बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम है जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट किया जाता है. दूसरे प्रोग्रामों में लोग आते हैं, अटेंड करते हैं, सारी परफॉर्मेंसेस स्टेज पे होती हैं. ये प्रोग्राम जो है इसमें सब अटेंडीज को शरीक होने का मौका मिलता है और सब लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए ये
10: यूनिक शौक है गाने का. बाकी मैं शुरू से गा रहा हूँ और मैं इधर आके बहुत डिप्रेस्ड हो गया था. कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, काम पे जाना, मुश्किल से काम मिला, काम पे जाना और घर वापिस आके सो जाना, फिर उठना, फिर काम पे जाना. मेरे को ऐसा लगा कि खत्म हो जाऊंगा यहाँ पे. फिर मैंने सर्च करा, भाई मिले मेरे को उधर, तो मैंने इनको बोला कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे गाने का शौक है. तो भाई बोलने लगे कि हाँ हमारे इवेंट्स होते हैं तो आप प्लीज आइए. तो लास्ट टाइम इनके घर गया तो मेरे को इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे फैमिली में बैठ गया हूँ मैं आके, जैसे हम सब कजन बैठते थे, गाते थे, इतना अच्छा लगा उस दिन के बाद मैं हमेशा ही मतलब देखता रहता हूँ कभी इवेंट आने वाला है कभी इवेंट आने वाला है। तो आज भाई ने फिर से बुलाया, बहुत अच्छा लगता है। मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बस मेरे को गाना अच्छा लगता है, मेरे को रिलैक्सेशन मिलती है। और आप सब लोग को देख के इतने पॉजिटिव फेस है आपके, हमेशा हर एक बंदा स्माइल कर रहा है हर एक, तो ये कनाडा में बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच भाई कि इतना आपने मेरे को मौका दिया, और थैंक यू सो मच।
1: आज आपने कम से कम 4-5 गाने हमें सुनाने हैं नाश्ते के बाद, पहले नाश्ता कराएंगे आपको ताकि एनर्जी आ जाए, फिर आप गाना सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
11: वालेकुम अस्सलाम। ये इस शो पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई, और पाकिस्तान से जब से हम आए हुए, मैं, मेरी बेगम, मेरे बच्चे, और इनके बारे में जब पता चला कि ये नाम घर शो है, इसमें हम पहली दफा आए, और आके बड़ी खुशी हुई हमें। मतलब इनके साथ इस तरह लगता है कि जिस तरह हमारे घर के ही फर्द है। फिर बाद में बेगम को मैंने तारुफ कराया कि ये मेरे क्लास फेलो भी रहे फॉरवर्ड हाई स्कूल पिशावर में, और मेरे काफी दोस्त जो है बड़े खुश हैं कि आप लोग वहाँ पे कनाडा में इकट्ठे हो गए, और आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। और मजीद हम इनाम घर में कोशिश करेंगे कि इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी दें, और हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमारे कम्युनिटी के जानने वाले भी, खास तौर पे इमाम बारगांव में, या जो हमारे शिया कम्युनिटी के जितने लोग हैं, सादात कम्युनिटी के जितने लोग हैं, हम उनको इस प्रोग्राम में लाने की कोशिश भी करेंगे, और साथ साथ लेके भी आ रहे हैं। और उम्मीद है कि ये इनका जो नया ईद का जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है 23, 24, 25 और 26 का, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम कम्युनिटी के लोगों को जमा करके वो इस प्रोग्राम को कामयाब करें, और इंशाल्लाह आप लोग भी इसमें जरूर आए, और इस प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देंगे हम लोग। और शम्स भाई के लिए दुआ करेंगे कि दिन दुगनी रात चुगनी उनको, उनकी बेटी, उनकी फैमिली जितने भी है, वो आगे से खुश रहे और आगे बढ़े।

0: बहुत अच्छा मेरी बहन माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। वाह वाह
1: और जिन्हें मरने से हो गई है।

जीना मेरा जीना है क्या जीना।

0: हम तेरे।
1: हम उनके मशहूर हैं और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ की आवाज बुलाऊंगा कि आप स्टेज पे आए और हम आपको रिकॉग्नाइज करें। अक्षत भट्टी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको आप 360 टीवी के सीईओ से रिक्वेस्ट करो कि ई आवाज वालों को गुलदस्ता दे दें जिन्होंने हमारे साथ ऑपरेट किया। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टेज पे आइए।
2: आपका शुक्रिया कि आपने आरफा मुजफ्फर को ये आवाज
1: दी। जी,
2: बहुत मशहूर।
1: हाँ, वो बताएंगे कहाँ खड़ा होना है हमने।
3: माशाल्लाह, तो इसी तरह से करते रहे तमाम लोग आपसे माशाल्लाह बड़े खुश भी रहते हैं।

0: It all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
1: At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves,
2: which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases. Our legal team.
3: Many legal professionals.
4: Every individual deserves
5: representation that will aggressively fight for your rights. Contact Alam Law Firm today.
6: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे
7: मिसिसागा रिजवे
6: स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी.
8: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपकी हसीन लम्हों में शामिल. खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर. खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी. पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में. कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स. आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा. कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca.
9: You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage?
10: Oh yes, Shiraz Hussein, who did our mortgage too.
9: Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. They're expert in their services. And you know what Shiraz said?
11: We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders and program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise.
12: Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams.
13: A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable, Alam Law.
14: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए. इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक. ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे. रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के. वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए. फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग. वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777. इट्स 416-710-6677.
15: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
14: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
15: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: वेलकम बैक टू शो केस जी। बाबा जी आप क्या कह रहे थे, आप वहां से कंटिन्यू करें फिर मैं।
1: जी मैं ये कह रहा था, देखिए जी मैं सब बात ये होती है कि मैं जाती तौर पे अपनी बात करता हूँ। मैं जिस महकमे में था वहाँ रिश्वत मांगनी नहीं पड़ती, आपको पता है इस बात। बहुत सारे महकमे पाकिस्तान, हर महकमे ही समझ,
0: पाकिस्तान में किसी भी महकमे में मांगनी नहीं पड़ती, लेकिन हम लोग
1: बहुत सारे लोग जो थे आराम नहीं कमा सकते, ठीक है। कनाडा में आके हर चीज रिस्क के हलाल है सर। आप मेहनत करते हैं, जितनी आप मैकडॉनल्ड में जॉब कर रहे हैं, आप ऊबर चला रहे हैं, आप कोई फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आपको पैसा ना मिले, ठीक है।
0: ठीक हो गया जी।
1: कारोबार में भी यही
0: जवाब दे लूं इस पे कि नहीं
1: जी।
0: देखिए जी, कारोबार का तो नाम ही है कभी नफा कभी नुकसान।
1: हाँ जी,
0: इसमें कोई शक नहीं। मेरे सारे वो बहन भाई जो यहाँ पे लीगल तरीके से, ये बात अगर आप कर लें तो आई अग्री, लीगल तरीके से जो भी कमाते हैं वो सब रिस्क के हलाल है।
1: हाँ जी,
0: ठीक है जी। अब जब आप आ जाते हैं ना कि यहाँ पे हराम नहीं है, तो ये गलत फहमी है। गलत फहमी इसलिए है कि खवातीन हजरात ये जो रोजाना रात को गाड़ियां चोरी करते हैं ना, वो रिस्क के हराम में आ गया। ये जो रोजाना घरों में बैंक जो घरों में रॉबरीज होती हैं, अभी रिसेंटली आपने सुना है ना, ये क्या माल्टन में वो गुरुद्वारे के लिए गए हुए थे, गुरुद्वारे से वापस आए तो सारा उनका कोई 1.5 लाख डॉलर का सामान गायब था। तो वो रिस्क हराम है।
1: मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा हूँ।
0: अच्छा, मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई, मेरी सारी सुनता
1: हूँ। मैं एक छोटी सी वजाहत करना चाह रहा हूँ। रिस्क हलाल और रिस्क हराम, जो आप जिन बातों जिन चीजों की तरफ इशारा करे वो गैर कानूनी चीजें,
0: वही तो कह रहा हूँ।
1: उसमें रिस्के हराम,
0: यही तो मैंने कहा,
1: रिस्के हराम और रिस्के वो रिजक तो है ही नहीं, वो तो एक इलीगल चीज।
0: तो फिर ये ना करें कि कनाडा में सारे हलाल खाते हैं।
1: हाँ जी,
2: आपकी बात का जवाब देने लगा हूँ। मुझे ये बताएं रिस्के हलाल, बाबा जी ने बहुत सारा कहा जी कि यहाँ पे हर तरह के जो है ना, जो भी कोई काम कर रहा है वो रिस्के हलाल कर रहा है। जो यहाँ पे वॉलंटियर के नाम के ऊपर लोगों के साथ इस्तेहसाल करते हैं, वो उनका रिस्के हलाल बनता है या रिस्के हराम बनता है बाबा जी?
0: लो जी, खवातीन हज़रात, सबसे पहले तो यू ब्रॉट अप अदर टॉपिक व्हिच ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट इट, ठीक है। खवातीन हज़रात, सबसे पहले तो आयशा के पुरजोर इसरार पे, बाकी किसी ने नहीं कहा क्या
1: करें,
0: आयशा के पुरजोर इसरार पे मैं ये कहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे बहुत मेहनत दरकार होती है। लेकिन इन सब ने इतने प्यारे जवाब दिए कि मेरे पास शायद वो अल्फाज नहीं है कि मैं इनका जवाब दे सकूं, क्योंकि माशाल्लाह ये सारे जिंदगी का तजर्बा साथ लेके बैठे हुए हैं। और माशाल्लाह शी हैव ब्रॉट अप किड्स, ही हैव ब्रॉट अप किड्स, ही इज ब्रिंगिंग अप किड्स, ही इज माशाल्लाह सक्सेसफुल, उसके भी आने हैं, लग पते जाने हैं,
3: ठीक है।
0: तो ये सारा कुछ है, लेकिन खवातीन इसमें मैं थोड़ा सा कुछ इतना सा एड ऑन कर सकता हूँ शायद, कि जिस तरह उसने कहा ना कि उनका दोस्त बन के रहे। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि खुआओ सोने का निवाला ते देखो शेर दी आखना, ठीक है ना। अगर आपको आपका कोई बेटा या बेटी कहती है ना कि आई एम जस्ट गोना गो फॉर स्टडीज 9 o'clock, 10 o'clock एट नाइट, नो,
4: यस,
0: ठीक है जी, आई एम गोना गो समवेयर फॉर स्लीप ओवर, नो, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि कोई और भी स्लीप ओवर के लिए नहीं आएगा। और मेरे घर का एक असूल है कि घर का हर दरवाजा हर वक्त खुला रहेगा, मेरा बस चले तो मैं वो डोर उतार ही दूं। बट यू नीड दैट फॉर पर्दा, व्हेनेवर यू आर चेंजिंग और व्हाटएवर, ठीक है। अदरवाइज दूसरा, बच्चों के असूल होते हैं। मेरा बेटा जो है, जब उसने जिंदगी में पहली ख्वाहिश की थी ना कि बाबा मुझे साइकिल चाहिए, मैंने कहा था कि बेटा नो वरी, मैं उसकी मोहब्बत में एक मिनट भी लेके दे सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह इतना रब ने दिया था मुझे। मैंने कहा बेटा ओके, व्हेन इज योर नेक्स्ट टेस्ट? उसने बोला कि जी सच सच दिस डेट। मैं कहा ओके, यू गेट मी एज, आई गेट यू बाइक, ठीक है। अगर आप बच्चों को ये आदत डाल दो ना कि चीज़ें अर्न करें, तो जिंदगी आसान हो जाती है। मेरे माशाल्लाह बेटा, फख्र है मुझे उस पर, अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे, माशाल्लाह ब्रिस्टर बना है, अपनी मेहनत से बना।
3: अरे वाह,
0: बाबा जी के माशाल्लाह दो बेटे हैं, एक तो खैर मेरी बेटी इन्होंने अडॉप्ट की हुई है
1: जी जी,
0: ठीक है, बेटा भी और बेटी भी दोनों ही माशाल्लाह डॉक्टर बने, ठीक है जी,
1: थैंक यू सर।
0: और वो देखें वो उन बच्चों की मिसाल है कि वो पाकिस्तान से आए, उन्होंने यहाँ का माहौल अडॉप्ट किया, ठीक है, और फिर माशाल्लाह अपनी पूरी ग्रोथ करके और माशाल्लाह दे बोथ बिकेम डॉक्टर। इसी तरह तैयब की बेटी है माशाल्लाह, देखें वो एक ऐसी मिसाल है कि उसने अपनी स्टडी की खातर इसे यहाँ पे सफर कराया, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है, उसके बाद एक बिल्ला है इसके पास जिसकी शक्ल देख के भी जो है ना आता है, ठीक है, तो इस उसने इसको सेक्रीफाइस करके बाबा लेट मी कंप्लीट माय डिग्री देन आई विल कम। माशाल्लाह वो भी डॉक्टर बनी, डॉक्टर बनने के बाद वो यहाँ पर आई और माशाल्लाह उसने अब वही मेहनत जारी रखी, यहाँ पे आके माहौल उसे बिगाड़ नहीं सका।
3: बिल्कुल,
0: माहौल आपका घर का ही आपका खुद का होता है, आपके अंदर का होता है। लेट मी सी के फाउल स्टार्ट गोइंग क्लबिंग, डू यू थिंक सो कि माय सन इज गोना से फाउल, यू गो आई गो। मैं जिंदगी में अपने बेटे से हमेशा एक ही चीज से शर्मिंदा रहा हूँ और वो ये थी कि मैं स्मोक करता था, ठीक है ना, तो जब मैं उसके सामने स्मोक करता था ना तो मुझे एक हक मैंने खो दिया था कि मैं कभी इसको मना नहीं कर सकता, पर लकीली ही डिडंट गो दैट वे, ठीक है ना, वो मेरी खुशकिस्मती है। सो मेरा ख्याल है कि जैसे आयशा ने भी कहा था और बाबा जी ने भी कहा था ना, ये हमारी मजबूरी है, यहाँ पे अपनी बीवियों से काम करवाएं वो आपकी स्ट्रेंथ है, खुद ना कुट कुट के कुस कुस के मर जाएंगे जी, क्या होगा क्या नहीं होगा, जहां पे भी उनको मौका मिले लेट हर गेट आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल गेन द कॉन्फिडेंस व्हाट एवर यू नीड योर कंपेनियन टू बी, मतलब जैसा होना चाहिए। और फर्ज करो खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, मैं किसी पे कहते ही नहीं, एक ए है बी है, ये मियां है ये बीबी है, मियां दुनिया जहान के काम संभाल के बैठा हुआ है और खुदा ना खास्ता लकी मर्जी है ना, जब उसने ले जाना है वो ले जाता है, तो ये बेचारी क्या करेगी जिसको दुनिया का पता ही नहीं।
2: बिल्कुल सही।
0: सो नॉट फॉर मनी सेक, फॉर कॉन्फिडेंस सेक, फॉर ऑल दोस थिंग्स, बट एवर इज गोना कम आफ्टर यू शी हैव टू फेस, लेट हर बी अ स्ट्रांग वुमन। और वो स्ट्रांग वुमन वो तभी बनेगी जब बाहर निकलेगी आपका जिसको कहते हैं ना पहाड़ शेयर
4: करेगी।
0: और याद रखिए दुनिया पूरी में मां से बेहतर दोस्त कोई नहीं है, और स्पेशली बेटियों का,
3: स्पेशली बेटी,
0: ठीक है, और आपकी अगर बेगम बेटियों की दोस्त बन के रहेगी ना तो ट्रस्ट मी शी विल फाइंड आउट एवरीथिंग लाइक दैट।
3: सबसे पहले हमारे नबी पास सल्लल्लाहु अलैहि
0: वसल्लम, जब तूने तकरीर की थी तो मैंने नहीं बोला था, चलो कह रही
3: माँ की गोद पहली दस्तगाह है,
0: दस्तगाह,
3: और 7 साल तक बच्चों को स्कूल मत भेजें, ये कहा गया था, लेकिन हम क्या करते 3-3 साल के बच्चों को जिनको अभी बोलना तक नहीं आता हम स्कूल में उनको डाल देते हैं, लेकिन सबसे पहली दरसगाह घर से ही शुरू होती है,
0: घर से ही शुरू होती है।
4: कल मेरी बेटी का एग्जाम था तो वो इधर टोरंटो में वो गई, तो एक तो मुझे उससे वहीं से फोन किया व्हेन शी वाज डन विद द एग्जाम, मामा आई जस्ट नीड टू थैंक यू, मैंने कहा अच्छा किस चीज के लिए, यू ब्रॉट अस अप सो कॉन्फिडेंटली, मैंने कहा क्यों कि तुम मतलब आउट ऑफ नो वेयर तुमने मुझे क्यों बात की, कि मेरी एक कोलीग है मैं देख रही हूँ उसे शी इज जस्ट सिटिंग देयर, उसको समझ नहीं आ रही है, सो लाइक आई वॉन्ट टू हेल्प हर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको इशू क्या है, तो मैं अपने आप को अब देख रही हूँ कि मैं मतलब आई एम कॉन्फिडेंट आई एम बोल्ड इनफ एवर एवर, तो उसने भी मुझे जब ये बात कही ना तो मतलब मुझे लगा कि बाकी आई गेस आई एम एट द राइट,
0: यू डिड अ गुड जॉब,
4: या आई डिड अ गुड जॉब, आई एम ऑन द राइट पाथ।
0: चले जी अब हम आते हैं प्रोड्यूसर साहब, वो एक लफ्ज चलाइएगा जिसपे अब बाबा जी के और इनके इनपुट इस पे दूंगा, ये है लफ्ज वॉलंटियर। वॉलंटियर की यहाँ पे बहुत सारी किस्में हैं, बाबा जी कहते हैं, बाबा जी का ईमान है, मतलब इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, वॉलंटियर करना जो है ना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल स्कूलिंग से शुरू हो जाता है। बाबा जी वॉलंटियर के बारे में आप क्या कहते हैं, या पहले पहले शिकायती वाले को शिकायत वाले को
1: पहले शिकायत पहले सुन ले,
0: पहले शिकायत सुनिए, लो जी शिकायत ले आए वॉलंटियर के बारे में।
2: अच्छा मुझे शिकायत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि वॉलंटियर का मतलब ये नहीं है कि उस बंदे ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपके पास काम करना है। वॉलंटियर की 2-3 डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, कोई कम्युनिटी वर्क है तो उसके लिए आप फ्री काम कर सकते हैं, कोई एनजीओ है उसके लिए आप काम कर सकते हैं, अगर आप किसी मस्जिद में जा रहे हैं तो आप समझे कि आप अगर चंदा नहीं दे सकते फंड्स नहीं दे सकते तो आप वॉलंटियरली जॉब करके आप उनकी जो है ना हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जहां प्रोफेशनल लाइफ आती है, जहां पे रोजगार का मसला आता है,
0: वहां पे
2: आप कितनी देर वॉलंटियर, जबकि एक बंदा डिग्री लेता है, अगर आप
0: आगे मत जाओ ना, आगे मत जाओ, पर इसका
2: सब मैं चले कर रहा हूँ,
0: पूरा सवाल
2: शोबे में जाता है या मेरे शोबे में जाता है या किसी और शोबे में जाता है, वहां पे इंटर्नशिप होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ बजट रखा जाता है। लेकिन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आए और उसे ये कहा जाए कि वॉलंटियर जॉब करो और अनलिमिटेड करोगे, कोई पता नहीं है कब खत्म होगी ये तुम्हारी वॉलंटियर जॉब और कब तुम अर्न करना शुरू करोगे, जहां पे जो अभी जो पिछला हमारा टॉपिक था कि जो पाकिस्तान से आते हैं लोग, वहां पे उन्हें अगर जॉब करके सैलरी मिल रही होती है और वो अच्छे मुस्तकबिल के लिए आते हैं और उन्हें आके अगर मैं ही आगे बैठा हुआ मैं कहा वॉलंटियर जॉब करो, चार महीने
0: बाबा जी आपके भाई सारा सवाल में टाइम खा जाओगे, सारा सवाल में टाइम खा जाओगे, फिर कहता
1: बोलता कोई नहीं, सवाल है बहुत लंबा कर देते हैं,
2: मैं जवाब दे
1: बाबा जी, जवाब दे विचो सवाल भी आप ही क्रिएट करी जाते हैं, गल है उन्होंने लॉजिकली गल सही है, जे कितने इस तरह होया इस तरह साल बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक गल याद रखो मैं हमेशा
0: वेरी वेल सेड, अल्फाज दो हो गए वॉलंटियर और एसएसएस,
1: अच्छा ये दोनों अलग चीज
0: है, अलग चीज
1: इंडिविजुअल केसेस ने कि किसी पर हो सकता है किसी बच्चे ने ज्यादती हुई है और हुई होनी है यकीन, मैं हमेशा हमेशा जरा प्रीच करना है वो करना है कि वॉलंटियर करो, वॉलंटियर करोगे तो नौकरियां मिलनगी, खाओ पॉलिटिक्स है, खाओ सिटी है, खाओ कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट वाले तो कहते हैं साढ़े ना तीन महीने तो वो जॉब निकल दी है, वॉलंटियरशिप दिया करो जरूर करो, लेकिन अपना इस्तेहसाल तो तुम देखना जी, तीन महीने बाद चार महीने बाद तो नहीं जॉब मिल रही लीव इट, गल तो वो है ना, हुण तुसी ये एक्सपैक्ट करो कि जे असी वॉलंटियर नहीं करांगे ना ते असी कम्युनिटी दे विच साडी कम्युनिटी जिहड़ी है उहदा इंटरैक्शन नहीं होएगा बच्चियां दा गोरियां नाल,
0: अच्छा,
1: और जे गोरियां नाल इंटरैक्शन नहीं होएगा ना ते सानूं जॉब गोरियां नाल इंटरैक्शन जॉब नहीं मिलणगी,
0: अच्छा,
4: बिल्कुल भाई मैं तो यही कहती हूं कैनेडा इज ऑल अबाउट वॉलंटियरिंग, वॉलंटियर हम लैंड हुए थे तो तब से वॉलंटियरिंग कर तब से शुरू की थी, अभी तक कर
1: रहे हैं,
4: बच्चे भी यही कर रहे हैं
0: पहले। जुबैर टाइम
3: सर, मेरा ख्याल वॉलंटियरशिप या पेड वॉलंटियर होना चाहिए, वॉलंटियर ऐसा नहीं होना चाहिए,
0: वॉलंटियर में पेड नहीं होता,
3: पेड नहीं होता वॉलंटियर, इसका मतलब बदल लेना ठीक है, और पेड होना चाहिए जब आपके पास डिग्री है, आपके पास वो टैलेंट है, जब आप शो करते हैं उसको पेड होना, हाँ जब हाई स्कूल में आप जाते हैं आपको को ऑप के नाम पे एक दी जाती है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, तो उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लेते हैं आप प्रोफेशनलिज्म में आ जाते हैं, मियां साहब वाली बात, वो पेड होनी चाहिए।
0: चलो शौकत अली वॉलंटियर करने ही मैं तो फर्ज कर लै कि तू गल काम कितने करना है भला, विलेज टेस्ट, विलेज टेस्ट वाले तेन कह महीना दो साढ़े ना ला फिर वेखा तेरा काम तो फिर काम मतलब वेखा तेन पैसे देने ने,
1: नहीं तो उन्हें किया है ना, उन्हें दो महीने वॉलंटियर किया है।
0: लो बाबा जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि शौकत ने एक दिन भी बगैर पैसे के वहां पर काम नहीं किया, फ्रॉम द डे वन He got paid from each and every hour he have worked there.
1: अच्छा
0: दूसरे नंबर पे अब आप जो है ना दो काम इकट्ठे कर रहे हैं, वॉलंटियर हर कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो वॉलंटियर क्या है जिसमें आप समाज की खिदमत करते हो, जिसमें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत करते हो। यस आई एग्री विद दैट वॉलंटियर कि जी यार ये इलेक्शन है ठीक है बाबा जी इलेक्शन पे हैं तो हम सारे वॉलंटियर जाएंगे कि जी टू हेल्प हिम आउट, आई 100% एग्री विद दैट। आपकी सिटी जिस सिटी में आप रहते हो सिटी हॉल को किसी चीज की जरूरत है यू गो एज अ वॉलंटियर, जब आपका रमजान आता है और आप माशाल्लाह रात को वॉलंटियर करते हो कि गाड़ियां इधर नहीं इधर लगाओ गाड़ियां ये करो वो करो, प्लस और जुमा आता है और बहुत सारे वॉलंटियर आपको नजर आते हैं कि जुमे में पार्किंग लगवा रहे होते हैं क्योंकि हमारी जहां जहां पे भी मस्जिदें हैं वहां पे पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बहुत ही ज्यादा आपकी मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है कि जब आप बच्चों को सुबह स्कूल लेके जाते हैं ना उस स्कूल के रास्ते में आपको कितने वॉलंटियर स्टॉप गो वाले नजर आते हैं, रोड क्लोज करके वो सारे वॉलंटियर हैं, पर ये वॉलंटियर है कम्युनिटी वर्क
2: जी
0: ठीक है जी, ये कम्युनिटी वर्क है, दिस वॉलंटियर हैज टू बी डन, अल्लाह मुझे भी चांस दे तो मैं करूंगा बार बार, بلکہ میں والنٹیئر خود ہم لوگ بلکہ بابا جی از دا بیسکلی پائنیئر آف کہ ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم اولڈ ہومز میں جا کے والنٹیئر کریں
1: جی.
0: ہم اولڈ ہوم میں والنٹیئرلی جو ہے نا فوڈ لے کے جائیں
4: جی.
0: یہ والنٹیئر ورک جو ہے یہ بہت ضروری ہے
1: بہت ضروری
0: ٹھیک ہے جی. اب میں مثال لیتا ہوں کہ جیسے عائشہ نے اس میں پوچھا تھا مجھ سے, عائشہ میری ورک شاپ ہے, ورک شاپ مین کہ جہاں پہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ کا یہ وہ سارے کام ہوتے ہیں, ایوری باڈی نوز اباؤٹ اٹ, اور آپ کو نکال کے یہ سارے میرے کلائنٹس بھی رہ چکے ہیں اور ماشاء اللہ ان کی وجہ سے بہت سارے اور لوگ بھی آتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ جب مرضی میری شاپ پہ چھاپا ماریں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے, حالانکہ یہ مکینکی جو ہوتی ہے انہوں کہتے ہیں سکھانے آتے ہیں مہینہ دو مہینے کام کر پائے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید آئی ول ناٹ پے ہم فل پے, میں اس کہوں گا کہ جی آپ کو ملے گا ضرور تاکہ اس کی روٹی روزی تو چلے, اس کا خرچہ تو چلے نا, اف ہی از ولنگ ٹو لرن. ایون کہ وہ جو ایک ہفتہ ہر بندے کو یہ ہوتا ہے نا کہ دو سے تین ہفتے پروویژن پیریڈ ہوتا ہے,
4: ٹھیک
0: ہے جی, وہ پروویژن پیریڈ پہ بھی پے دیم, لیکن تب تک ہم کوئی کانٹریکٹ نہیں ان سے سائن کرتے کہ ناؤ یو کین ورک ایٹ دس پے اور واٹ ایور, وی پے دیم. اور خواتین حضرات اگر آپ کے پاس کوئی معصوم پاکستانی یا معصوم انڈین یا کوئی بھی, میں آئی ڈونٹ گو آن اے نیشن اور واٹ ایور, اب فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میری فارمیسی ہے اور ایک فارماسسٹ جو ہے کہ مطلب بن کے وہ پاکستان سے آ گیا ہے, تو آف کورس اس کو آپ کو سپورٹ کرنی ہے. سپورٹ کس طرح سے کرنی ہے بجائے اس کے آپ بولو گے اچھا آ جا ایک دوائیاں بنائے گا والنٹیئر, تیرے کو تو لائسنس ہی کو نہیں, یار اس کو ٹائم تو دو, وہ سب سے پہلے اپنا لائسنس لے گا پڑھے گا, پڑھ کے مطلب دو سے تین پیپر ہوتے ہیں وہ دے گا, اور جب دے کے وہ باہر نکلے گا نا تو آف کورس دین تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگو گے, اور کوئی پتہ نہیں کل کو آپ سے زیادہ اسٹور بنا کے خود بیٹھا ہو. تو والنٹیئر کا فائدہ ہم اٹھائیں, والنٹیئر کو والنٹیئر رہنے دیں, اور والنٹیئر کو ہے نا لفظ جو ہے وہ ایسا رکھیں کہ وہ کمیونٹی کے لیے کیا جائے جتنا اتنا کم ہے, ٹھیک ہے جی. والنٹیئر کرنا بہت ضروری ہے, لیکن والنٹیئر کا فائدہ اٹھانا بھی بہت ضروری ہے. آئے نا پہلے چار دہاڑیاں لوا, آ نا پہلے کریے بس جا یار, جس دن پے منگی. ایک مجھے کسی نے واقعہ سنایا تھا, میں آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں, کہ ایک بندے نے کہیں کام شروع کیا, تقریباً وہ والنٹیئر میں 4 سے 6 مہینے کام چلا گیا, چار مہینے کام چلا گیا, اور 4 مہینے کے بعد جب انہوں نے کہا نا کہ جی اوکے نو دس از مور دین انف والنٹیئر, وہ تو قدرتی تھا ایسا کہ اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا تھا, ادروائز کیسے چل سکتا ہے یار 4 مہینے کینیڈا میں. تو جب وہ انہوں نے کہا نا کہ اوکے گڈ بائے ٹاٹا آئی ایم لیونگ, کہ جی میں جیسے بابا جی نے کہا جی ایک جگہ دوسری جگہ تین جگہ والنٹیئر, تو وہ اسی دن سے انہوں نے اس کی پے شروع کر دی. So basically they were taking advantage under the banner of volunteer, which is wrong. ٹھیک ہے جی, تو یہ والنٹیئر بہت اچھی چیز ہے, خواتین ضرور کیجیے گا, آپ کو بھی موقع ملے تو ضرور کیجیے گا. آشا اچھی بات کوئی آج کی آپ نے کہنی ہے کہ نہیں کہنی؟
4: اچھی بات یہی ہے, والنٹیئرنگ کا آپ نے ذکر کیا اور وہی ہم لوگ کا ٹاپک چل رہا ہے, تو میں یہی کہوں گی تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے ہمیں, بی پیشنٹ, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کن وقتوں میں کس سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ صبر کر لیں تو اچھی بات ہے, کیونکہ وقت بدلتا ہے اور تبدیلی جو ہے اس کائنات کا اصول ہے.
0: واہ ویری ویل سر, تبدیلی اس کائنات کا اصول ہے. خواتین و حضرات ہمارا وقت ہوا جاتا ہے ختم, دل تو چاہتا ہے کہ ہم یوں ہی بیٹھے رہیں آپ سے باتیں کرتے رہیں. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں, آنیسٹلی میں آئی انجوائڈ دس پروگرام ڈوئنگ اٹ ایون, ٹھیک ہے ماشاء اللہ اب سب کی بڑی اچھی آؤٹ پٹ تھی. اور جیسے عائشہ نے کہا کہ مت بھولیں وقت بدلتا رہتا ہے, اور شاید جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کل کسی اور کے ہاتھ میں ہو, اور کہیں آپ کو والنٹیئر نہ بننا پڑے. دعاؤں میں رکھیے گا یاد, زندگی رہی تو اگلے ہفتے ہوگی دوبارہ ملاقات, تب تک سب کو اللہ حافظ.

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
4: TCFSE कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अत्यात और जकात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं। तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां।

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677

0: है ना कहीं की ठुरकी।
1: फिलहाल तो नहीं आई।
0: फिर ठीक है,
1: पर यार सानू भी टाइम दे दिया कर।
0: दे दिंदे हैं तेनू टाइम, चाह पिलानी पाऊगी।
1: चाचा जी दो स्पेशल चा।
0: आज स्पेशल चा मैं पिया रहे हैं। खैर है,
1: स्पेशल बंदा जो आया मेरे को।
0: स्पेशल बंदा तो हले आना है। आज लेट नहीं होगी वैसे थोड़ा जा?
1: ऐ तो फिर थानू ही पता है।
0: मैं तिकबर आ गया, मैं क्या लाया लगता टू की होनी जान तो पहले ही।
1: इन्ना टाइम सानू भी दे दिया करो।
0: यार तू मेरी घड़ी ला ले।
1: नहीं नहीं घड़ी नहीं चाहिए।
0: गरम गरम चाय
1: ले भी आ गई।

0: इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी थी. इस गाने में बड़ी मुश्किल मुश्किल मींडे थी, बीच में जगह थी, वो चीज भी आपने अच्छी निभाई, और फिर जो उसमें वेस्टर्न बिट्स थे वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से किया. देन ऑफ कोर्स टुडे यू आर आल्सो ऑन अनदर लाइक यू नो इन अनदर एवटार, यू आर वेरी यू नो फ्रॉम वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम, एंड beautiful, enjoyable performance. Thank you so much for it.
1: Thank
0: it was
1: so
0: wonderful. Thank you
1: so much.

0: और चाय दूं?
1: नहीं काफी।
2: अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी।
0: वालेकुम सलाम पुत्र। अरे पुत्र, तुझे पता है तेरी खाला जुबैदा ने ना कल घर में दुआ रखी है और मैं भी ना पीर साहब के मजार पे मन्नत मांग कर आई हूँ।
2: पर अम्मी जी, परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है
0: ना बेटा, दुआओं में भी बड़ा असर होता है।
2: सही है,
1: कल के मैच का ज्यादा प्रेशर मत लेना तुम, और ये हुक शॉट खेलते हुए अपना टेम्पर मत लूज किया करो, ध्यान से खेला करो।
2: जी अब्बा जी।
1: और नजर मोहम्मद साहब ने इस मैच के लिए खास कर दुकान पर नया टीवी लगवाया है, आधे सियालकोट को उन्होंने अपने वहां मधु किया हुआ है।
2: चाचा जी भी बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं वैसे। बहुत मिस करूंगा, बस ये बताओ हो गया पैक? फोन पे फोन आ रहे हैं यार।
3: जानती हूँ कितना याद करोगे मुझे।
2: मैं तुम्हें भूलता ही कब हूँ जो याद करूँ, हर वक्त तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ।
3: अच्छा, तभी लेडीज इंक्लोजर के सामने फील्डिंग करते हुए 32 निकली हुई थी तुम्हारी, है ना?
2: मुझे मेरा कैप्टन है ना, वही खड़ा करता है मुझे वहाँ पे। वो कहता है मेरा सबसे गुड लुकिंग बंदा वही खड़ा होगा बस। वैसे भी जिस लड़की को देखता हूँ मुझे तुम्हारी शक्ल नजर आती है।
3: अच्छा, वो डैडी का फोन आया था, वो मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाऊँ, फिर मैं वहीं से तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाऊंगी। हाँ प्लीज।
2: ओके।
3: तुम्हें पता है डैडी और क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पिछले मैच में तुमने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी।
2: कम ऑन यार, मुझे पता है तुम्हारे डैड मुझे कितना पसंद करते हैं, छोटी तारीफें नहीं करो मेरी।
3: 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है अकबर।
2: तुम्हारे डैड 40 साल में नहीं बदलेंगे मेरी गुड्डी। ओए, तुम्हारी बातें सुन रहा है छोटू, सो जा सो जा सो जा सो जा।

0: वन स्कॉच विद वाटर. तू क्या लेगा?
1: ऑरेंज जूस.
0: ऑरेंज जूस पिएगा?
1: क्योंकि शायद तू जानता है कि मैं शराब नहीं पीता
0: हूँ. ऑरेंज जूस.
1: भाई कल मेरा फाइनल है, कुछ तो ख्याल कर.
0: तो जानता हूँ फाइनल तू ही जीतेगा. मैं एक मिनट शेख साहब से मिल के आ रहा हूँ.
1: यही रहा. वी हैव टू लीव अर्ली.
0: हाँ आई नो.
2: बंदे को अजहर मजीद कहते हैं
1: जी.
2: आपसे पहले भी बात हुई थी, साउथ अफ्रीका वाली बुक. पिछली सीरीज में भी आपसे कांटेक्ट किया था. कल के मैच का भाव बहुत ऊपर है.
1: मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है.
2: अगर एक मैच फिक्स हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है?

0: ישר! שבב! שגום! גום, ישר! יאללה! יאללה, גום! קלימה! קלימה! שיבת! קלה! ישר!
1: מה לי זה הרום, אחי?
0: יאללה! יאללה, יאללה! חושרה! צמי תפתיש מיה ולמיה! צמי תפתיש מיה ולמיה! חושרה! חוש ישר!
1: חפל!
0: חושרה! יאללה, שבב!
2: क्या बात?
3: चाचा टीवी लगाए तो
2: अच्छा।
4: ने अपनी हिरासत में ले लिया। अकबरदीन को होटल के कमरे में मनुष्यात के साथ नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर अकबरदीन की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान ये मैच हार गया बल्कि मुल्क भर में मौजूद क्रिकेट के लाखों शायकीन के दिल भी टूट गए। इस वाकये से दुनिया भर में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है। उधर दुबई पुलिस भी अकबरदीन से मिलने जुलने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है।
0: Where did you find this drug? How did you find this drug?
1: I don't know.
0: I want to know. I want to know. Who is your boss?
1: No, what?
0: Who is your boss? Answer me. Kasir Ras bane kalima na Pakistani. Kasir Ras.
5: I don't know.
6: ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए।

0: मैं बेकसूर हूँ। आप जानते हैं मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं हूँ।
1: तुम्हें यहाँ आने की इतनी जल्दी थी? तुम जैसे अपस्टार्ट लोगों का यही तो मसला है, जहां थोड़ा सा पैसा देखा, थोड़ी सी शोहरत मिली, अपने आपे से बाहर हो जाते हो और इवेंचुअली तुम लोग ऐसी जगहों पे आके एंड करते हो।
0: ये आप कैसी बातें कर रहे हो?
1: मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पेपर्स हैं, इन्हें चेक कर लेना।
0: ये क्या है?
1: डाइवोर्स डीड है। मेरी बेटी सारा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और उसने साइन भी कर दिए।
0: ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है।
1: जब शौहर दुनिया के सामने मुंह काला करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर वो आपस का मामला नहीं रहता।
0: आप मेरा घर तबाह करने की कोशिश नहीं कर सकते।
1: मेरा घर तो उसी दिन तबाह हो गया था जब तुमने मेरी अकलौती बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया था।
0: देखिए, ये लड़ाई हम बाद में भी लड़ सकते हैं, अभी मुझे निकलना है यहाँ से।
1: अब सारा और मिकाल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है।
0: मिकाल मेरा बेटा है।
1: था। मिकाल तुम्हारा बेटा था, आज से वो मियां आसिफ कुरैशी का नवासा कहलाएगा। बस
0: ऐसा नहीं हो सकता।
1: मैं मिकाल को इतना दूर ले जाऊंगा कि अगर गलती से भी उसे अपने बाप का ख्याल आए तो वो उसे बहम लगे, समझे?
0: रुको रुको, ये जुल्म है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते।

0: ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰ ਜਾਣੀ ਜੇ।
1: ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ।
2: ਆਓ ਆਓ ਕੁੱਤੋ ਸੇ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰੋ ਆ ਜਾਓ।
3: बैटिंग
4: वक्त पहुंच जाएगा।
2: मैच के दौरान कितने दफा हो गया वो?
5: ओ जी टक्कर कटे करने शादी में गया जी।
2: टक्कर
6: यार शायद तेरी मेहरबानी चली यार।
7: ओ यार मजा आ लगे किसी टक्कर में से भी कुछ निकल आए।
6: ओ यार शादी हॉल से लेके होटलों तक सारे पेप्सी की टक्कर खोल लिए और लेकिन तेरी स्कीम का एक भी टक्कर नहीं मिला।
7: ओए मिलेगा मिलेगा वड्डा आया नवाब जादा।
6: ओए बस कर दे
8: भाई। काशी भाई
6: तू क्या कर रहे हैं?
8: मलिक साहब बुला रहे ने। सो के छे आउट हो गए ने।
6: ओ सो बच्चे बिट्टे ठीक है। ओ तू चल। ओ शायद ओ सो बच्चे बिट्टे आउट हो गए यार। चल मेरा भरा हो चल। ओ चल यार।
7: यार 2 मिनट साथ वाले शादी हाल से भी जरा चेक कर लेते हैं।
6: मैं बोतल पड़ के ना अपने सर पार ले रहा है। चल यार।
7: यार चल ठीक है चल आ जा अब।
0: मलिक साहब 20 रुपए में मुझसे क्या क्या करवाएंगे आप?
2: चल इक्की ला ले। साढ़े लोकल शाहिद अफरीदी साहब तशरीफ ले आए।
7: हाय मलिक साहब कसम से जब भी आप मुझे शाहिद अफरीदी कहते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है।
2: ये शाहिद अफरीदी से मिलने वाला टक्कर मिला तुम्हें?
7: किथे
2: टक्कर का ख्याल कर लो। मैच जीत लो मेरे माठे। मैच जीतो
0: जीत लो यार। मेरे भी 20 रुपए फंसे हुए हैं।
7: अच्छा जी लो जी फिर होने लगी है बूम बूम।

0: है पुत्र, ये तुम्हारे और ये तुम्हारे मैन ऑफ द मैच के, ठीक है?
1: मलक साहब, मैन ऑफ द मैच के तो पूरे 1000 रुपए दे दे, उसमें से भी 500 रुपए काट लिए आपने।
0: ये जो पैसे कटे हैं बेटा, ये क्लब में लगेंगे सुईटू। हमेशा याद रखो, खुद ही मिट्टी खून ही लग दिए।
2: मार ना मार, एस्क जूसी।

0: 对对，我准备。
1: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: की हाल?
2: मैं ठीक हूँ। ले भी सलमा, इतना अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ ना कि तेरी टी के पांग ही खुल जाएंगे।
1: नौकरी पक्की है ना?
2: हाँ हाँ, तुझे तो पता ही है कि सोरा ने कभी कच्ची नौकरी वालों को मुंह नहीं लाया।
3: सलाम अलैकुम अम्मी।
1: वालेकुम सलाम।
3: ओ खाला, सलाम अलैकुम।
2: वालेकुम, कैसा है तू?
3: मैं ठीक।
1: सुना, मैच कैसा रहा?
3: अम्मी, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच।
1: ओ जिंदा रहे, जिंदा रहे। देखिया,
2: मैं तो कहती हूँ कि इसको भी किसी चंगी जगह पर सेट करा दे, मैं इसके लिए भी कोई सोनी मनमोनी सी ढूंढ कर लाऊं।
3: ओ खाला, खुदा के लिए, मेरी अभी शादी में बड़ा टाइम है और वैसे भी अभी मुझे टीम में जाना है ना?
2: कर लो गल। पागल जिया।
3: बाजी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ।
4: शाहद, तू सारे पैसे चूड़ियों पे खर्च कर देता है।
3: तू मेरी पैन है, पैन पे तो खर्च करता हूँ और वैसे भी तुझे पसंद तो आती है ना।
4: हाँ लेकिन।
3: अच्छा बाजी, ऐ ते मैनू दसो, ये खाला चुगला कब से आई हुई है?
4: शाहद,
3: मजाक कर रहा था। वैसे ये रिश्ता तुम्हें कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा है?
4: शाहद चल, जा लेके जा, चल।
2: देख सलमा, रिश्ता बहुत चंगा है, तू ये हाथ से न जाने देना।
1: जी।
2: बस तूने ना मुंडे को कमरा ही सजवा कर देना है।
1: जी।
2: हाय हाय, ये टीवी, एसी, फ्रिज और पलंग, आखिर को ये चीजें हमारी आयशा के काम ही तो आनी है ना। और साथ में लाख दो लाख थमा देना ताकि मुंडा अपना कोई जाती कारोबार भी शुरू कर ले।
1: आपा, तां ते पता है मैनु फैक्ट्री तो किन्ने पैसे मिलते ने और आशी दे सिलाई कढ़ाई दे पैसे होंदे ने। बस
2: मेरी बात सुन, तेरी ती के हाथ का भी मसला है। बड़ी मुश्किल से मैंने मुंडे वालों को राजी किया इस रिश्ते के लिए।
1: जी।
2: अब कह ना उसके प्यो को भी कि वो भी कुछ हया करे ना, उसको तो अपने शुगर लगाने से फुर्सत नहीं मिलती।
1: जी।
2: चल मैं अब जा रही हूँ, उनके साथ ही आऊंगी तेरे घर अब। ठीक है, चंगा फिर।
1: ठीक,
2: रब रख।
1: रब रख।
4: मुझे नहीं करना व्याशा, ये मुंह पर पर के पैसे मांगते हैं लोग, हया भी नहीं आती लोगों को। बेचारी औरत फैक्ट्री में काम करती है, कहाँ से कमा के लाएगी पैसे?
3: बाजी तू फिक्र क्यों करती है, मैं भी तो हूँ ना।
4: लेकिन ये हाथ, इससे तो बेहतर ही हाथ दिला।
3: ऐसा ना करो बाजी, ऐसा ना करो। तुसे
4: मैं तंग आ गई इस मजदूरी से।
3: बाजी ठीक ही तो है, लोगों को क्या मालूम कि तुम सारा कार का काम कर लेती हो। लोगों के तो मुंह से निकल जाता है और जिनके हाथ है वो लोग भी तो बेकार ही बैठे होते हैं ना।
1: वे
3: हैं?
1: शायद।
3: आया अम्मी जी।
1: जा पत्ती ले क्या।
3: अच्छा जी। बाजी मैं जरा जाके पत्ती ले आता हूँ, वरना पट्टी साहब आ गए ना तो उनकी चाय के लिए पत्ती नहीं होगी।
4: ओ तू फिक्र ना कर, अब बात जल्दी नहीं आएगा, शेरे का मुकाबला है ना आज।

0: अब मेरी जान मेरा चन है।
1: पट्टी साहब आप सोहरा आई सी, कह रही सी कि वो मुंडे वाले मन गए ने, मुंडा रेलवे च मुलाजिम है। कह रही सी कि एक कमरे का समान देना होगा ते होर 2 लाख रुपया चाहिए।
0: ओ याद आया करमाली, कुदू 400 रुपया दे दे, मेरे शेरे आस्ते पिस्ते तो बादाम खत्म होए ने।
1: तुसी सुनिया नहीं मैं तन की के मैं तानू तड़ी ती दे रिश्ते बारे गल कर रही हूँ।
0: ओ सुन लिया ना, होर की कहां, गुर्दा वेच दिया अपना। जाके अपने फैक्ट्री वालों पूछ जे कोई कर्जा वगैरह दे दें ते
1: इन्ने पैसे किन्ने देने ने। देवी दिए तो वापस कैसे करेंगे।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: वालेकुम सलाम। जनाब किधर?
2: प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ।
0: माशाल्लाह, मैं जनाब नू शायद अफरीदी आखा के शायद पट्टी साहब।
2: वैसे सूट तो अफरीदी करता है।
0: मैं जुत्ती मारनी है खिंच के तेरे मुंह ते। ओए बाले को होटल दे काम करना से क्यों नहीं गया?
2: गया था वहां, उसने खाने के ऑर्डर लेने वाली टेबल पे बिठा दिया था मुझे।
0: मैट्रिक पास एथे वजीरे आला लग जाएगा।
2: पता नहीं जी, वैसे वजीरे आला दी रिक्वायरमेंट मैंने कभी चेक नहीं की।
0: बकवास बंद कर, प्यो जी का मजाक उड़ा रहे हैं।
2: तो आप जो करते हैं वो क्या है? वो हमारा मजाक उड़ाना नहीं है।
1: शेद,
0: मैं तेरा मुंह तोड़ देना ही।
2: कार में एक जवान बेटी बैठी है और आपको इससे ही फुर्सत नहीं है?
1: शेद चुप कर जा। शेद
2: नहीं अम्मी जी नहीं, जरा इनको भी तो सुनने दे कि हम किस हाल में बैठे हैं।
0: एनू चुप करा ले सलमा, मैं तेनू कह रही हूं।
3: ओए शायद चुप कर।
2: अम्मी 10-10 घंटे बैठकर मशीन के सामने काम करती है और बाजी सिलाई कर करके आधी हो गई है और आप कुछ को बादाम खिलाने के लिए पैसे चाहिए, इसकी तो मैं
3: अल्लाह के वास्ते चला जा।
0: ये तू कोई मेरे शेरे दे बारे च गल की थी थे।
2: जितना मारना है मार ले, लेकिन कसम खुदा दी जितनी शेरा मुझे अकेला मिल गया ना चिमड़ ओढ़ दूंगा। आपका सारा दूर हम पे चलता है।
3: अल्लाह के वास्ते जा शाहिद।
2: जाता हूँ बाजी जाता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में इसलिए पढ़ना छोड़ा क्योंकि मेरी सारी फीस मेरी बाजी देती थी, समझे पट्टी साहब?
0: इनू आज मैं छोड़ दे रही हूँ।
2: अल्लाह करे इस पट्टी का हार्ट फेल हो जाए, बेड़ा कर को जाए इसका।
1: बस जवान औलाद दे हाथ चुक दे पट्टी साहब।
4: ओ चल छोड़ना ही है।
2: कैसे छोड़ दूं? मार मार के कमीज पाड़ दी है।
4: तुझे शेरे के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था।
2: एक बटे रही तो है, कोई पीर साहब थोड़ी ना है, जिसे कुछ कहेंगे तो गुनाह मिलेगा। इतना तो कोई सोतेला बाप भी नहीं मारता होगा अपने बच्चों को।
4: वैसे कहते तो सही है तेरे अब्बा, सारा दिन हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, पैसा एक भी निकाल लेके आते।
2: वो दिन भी आएगा, तू बस एक बार अपने पाई नू टीम भी चा लेंदे, फिर देखना तेरा पाई भी इसी तरह बोर्ड पे लगा होगा।
4: इसको तो बी बैंक ने उठाया, तुझे तो अल्लाह ही उठाएगा।
2: अल्लाह तो उठाएगा मगर ये लोग भी उठाएंगे। तेरा भाई सिटी कप में ऐसी परफॉर्मेंस देगा फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे सियालकोट की टीम में आने से।
4: ओ मेरे सोने, टीम में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
2: अच्छा, अगर हम इस बार का टूर्नामेंट ही जीत लें तो कितनी देर लोगों की नजरों से बचेंगे?
4: पिछले साल जो क्लब कप जीता था उसकी परफॉर्मेंस में और हमारे क्लब की परफॉर्मेंस में तूने फर्क देखा है?
2: तो हम मेहनत करेंगे और वैसे भी परफॉर्मेंस कोई आसमान से नीचे नहीं उतरती।
4: ये बात मलिक साहब को कौन समझाएगा?
2: मैं समझाऊंगा, तू चल।
4: उड़ी?
2: हाँ हाँ उठे यार, चल
4: क्लोज तो जा।
2: उठे यार,
4: जूती तो पहन दे,
2: जल्दी चल चल चल चल।
5: बंदा पूछे मलिक साहब आपने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया? बूटे गुज्जर को आम आदमी ना समझो।
2: लेकिन उन्होंने मार कुटाई क्यों की?
6: उसकी बीवी को छेड़ा था मैंने।
4: कब?
6: अब मैं शक्ल से तुमको ऐसा लगता हुआ है?
5: 18 लाख रुपए देने थे उसके,
6: टैक्स काट के बता रहा है 20 लाख देने ने।
4: 20 लाख?
5: हाँ, 4 साल पहले लिए थे, अब तो उसने फट पड़ना है ना।
2: मगर मलक साहब, 20 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं।
6: तो पुत्र क्रब जेड़ा है ना, और मुफ्त में नहीं चलता। और मेरी बीवी सही कह रही थी कि पुराने असासे बेच के जान छुड़ाओ, हर उसकी बात मैंने मानी, ये नहीं मानी मैंने।
5: जान छूट जाएगी जब बूढ़े गुजर ने कब्जा किया ना ग्राउंड पे और दफ्तर पे।
2: क्या मतलब?
5: मतलब उसने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो ग्राउंड भी मेरी, दफ्तर भी मेरा। हां जी,

0: शाहर, ओए यहाँ क्यों बैठा है? बुखार हो जाएगा, चल नीचे चल।
1: काफी अरसे बाद बारिश हुई है, सोचा थोड़ा मजा ही ले लूं।
0: मजा ले रहा है या आंसू छुपा रहा है? काशिफ आया था मेरे पास, सब बता दिया उसने मुझे।
1: पता नहीं मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है।
0: अल्लाह एक बुआ बंद करता है ना, तो 100 खोल भी देता है। देखना जब उसने देना है ना, तो ना वक्त देखना और ना बंदे को देखना, सारे रास्ते खोल देने।
1: मगर इधर सारे रास्ते ही बंद हो गए।
0: छोड़ सारी बातें, चल खड़ा हो, चल उठ, उठ भी, चल नीचे चल के मुझे बता कि कल कौन से कपड़े पहन के जाएगा, मैं इस्त्री कर देती हूँ। आजा शाबाश।
2: ओ क्यों ओए, ओए अब क्यों आए हो?
1: इकबाल साहब मुझे यहाँ काम करना है।
2: ओए अकल ठिकाने आ गई तेरी, ओए अब मैच नहीं खेलना?
1: नहीं जी।
2: ओ वड्डा शाहद अफरीदी, ओए काउंटर पे बैठना है तूने, और खबरदार जो अगर तूने कोई मैच लगाया तो, यहाँ पर सिर्फ एक चैनल आता है, वो भी न्यूज। चल जा टेबल से ऑर्डर ले।
1: जी जनाब बहुत बहुत शुक्रिया।
2: चल सही है।

0: ओ वसीम, ये रोटी इन लोगों को दे, तो क्या करते हैं यार?
1: क्रिकेट के दीवानों के लिए वो घड़ी आ गई है जो उनके ख्वाबों को देगी हकीकत का रंग। क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान का पहला अंडर 19 T20 कप, जिसमें जीतने वाली टीम को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। क्रिकेट के मैदान में अपनी महारत साबित करने का ये है एक सुनहरी मौका।
2: वो किथे गया शायद? ढूंढो किथे।

0: और मैंने इश्तिहार पढ़ लिया था यार।
1: तो मलक साहब सोचना क्या है, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा ये क्लब बचाने का।
0: और तू पागल हो गई, और बड़े हाई लेवल की क्रिकेट होगी, हाई लेवल की।
1: अरे हमने कौन सा तलवारें लेके मैदान में उतरना है, हमने भी तो क्रिकेट ही खेलनी है ना।
0: मैं तुम्हें समझाता हूँ, और पहले हम लोगों ने सियालकोट के क्लबों को हराना है, और अगर ये हो गया तो फिर 12 टॉप क्लास के क्लब है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है।
2: ओ यार मलिक साहब,
0: हम मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ आई?
1: बगैर खेले कैसे कह सकते हैं मलिक साहब के मुकाबला नहीं हो सकता?
0: अभी तुमने बड़े शहरों की टीमें देखी नहीं है, और यहाँ सवाल है 5 करोड़ रुपए का, समझ आई? ऐसे ऐसे पाए के खिलाड़ी है कि हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। वो हमारी आधी टीम जो है वो चप्पलों और पाटे पजामों वाली है। कितने कब
3: तो कितने उनका ढूंढ कोला,
0: और मैंने बाक्सते हो यार, मैं बस इस पंगा ले ही नहीं सकता। असल में हम लोग पंचर हो गए यार।
1: अच्छा
0: वो एक ही करण दिया है
4: और शायद
0: और बेनू कितने लाते ने है।
1: मैं बड़े मलिक साहब की तस्वीर यहाँ से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब इन्होंने क्लब बनाया था ना, तो ये नहीं सोचा था कि ये हारेंगे या जीतेंगे, और हार जीत का फैसला तो खेल के ही होता है ना सर। और अगर इस क्लब के मुकद्दर में उस बूटा गुजर की भैंसों का तबेला बनना लिखा है ना, तो बने, लेकिन कम अज कम इस जिगरे वाले बंदे की तस्वीर के सामने नहीं। हट जा।
0: प्यो मेरा सी गैरत और दोवें रल के मेरा जमीर जगाओ, और ये होगा कैसे बताओ आके। हैं हैं आओ प्योनू मोड़ो।

0: और स्वीटू ये बहुत बड़ा जुआ है, बहुत बड़ी गेम है।
1: क्लब तो हमारे हाथ से वैसे ही जा रहा है, क्या पता इस तरह चांस बन जाए क्लब बचाने का।
0: वो इन टीमों के पास एक से एक बढ़कर प्लेयर होती हैं और हर टीम के पास एक पुराना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता है कोच के रूप में। हमारे पास तो कोई कोच ही नहीं है, हम तो पंचर हो गए।
2: मलिक साहब है ना जी मसला।

0: और मैं क्लब का मालिक नहीं लगता, कोच कहां से लगूंगा?
1: आपके क्लब से इतने लोग खेल के निकले, उनमें से किसी को रख लें।
0: और 3-4 पुराने खिलाड़ियों से बात की थी, कोई कोच बनने को तैयार ही नहीं है। और मुश्किल वक्त में कौन किसी का साथ देता है?
1: मेरी बाजी कहती है जब अल्लाह में किसी का हाथ पकड़ लेना तो ना वक्त देखता है ना दिन, फिर उसके रास्ते खुलते ही जाते हैं, खुलते ही जाते हैं।
0: तो ये तेरा कोच कौन से रास्ते से आ रहा है?
2: उससे क्यों नहीं बात करते?
0: किससे है?
2: वो जो गलती से पाकिस्तानी टीम में चला गया था।
3: साडे क्लब दा मुंडा?
0: ओ ते बड़ी पुरानी गल है, अब काम आनेगा वो।
1: लेकिन क्यों?
0: वो सियालकोट के लिए कभी खेलेगा ही नहीं।
1: मगर ट्राई करने में क्या जाता है?
0: वो अब मैं उसको कहां लबूं यार?
2: कल 15 अप्रैल है। कल 15 अप्रैल है।
0: तो मैं की करा यार?
2: बड़े मलक साहब की बरसी है।
0: ओ पता है मेनू।
2: किसी और की भी बरसी है।
0: 15 अप्रैल? ओ स्वीटू, लगता है तेरा कोच आ रहा है।

0: चाची की बरसी पे आ गया है।
1: मलिक, क्या हाल है तेरा?
0: यार ऐसी भी क्या नाराजगी अपने शहर से है स्वीटू?
1: बस अम्मी के बाद
0: 15 साल हो गए इस बात को।
1: चाय पीने के लिए सिर्फ इसलिए माना हूं कि तू कोई पुरानी बात नहीं करेगा।
0: यार एक मशवरा लेना है तुझसे।
1: बोल।
0: ये जो कप हो रहा है, जो जीतेगा ना स्वीटू, वो यार सुना है 5 करोड़ रुपए मिलेंगे उसे।
1: हाँ, अगर अनाउंस किया है तो मिल भी जाएंगे।
0: और सुना है जो लड़का टैलेंटेड निकलेगा उसको पाकिस्तान में अंडर 19 में सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी है?
1: निकाल दे।
0: है?
1: अपने जहन से ये बात निकाल दे, तेरे क्लब के बस की बात नहीं है।
0: अच्छा,
1: जिस जिस लेवल का क्लब इस मुकाबले में होगा तुम लोगों का कोई चांस नहीं है।
0: लेकिन वो
1: क्या अगर
2: अगर आप हमारे कोच बन जाए तब तो जानत बन सकता है ना।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: यार अक्कू, ये मेरे क्लब के लड़के हैं, ये काशिफ है और ये शाहिद है।
2: देखें सर जी, मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा, ये तो आपसे बात करते हुए हिचकिचाएंगे। हम सारे चाहते हैं जी कि इस टूर्नामेंट में आप हमारे कोच बन जाए। मैं मानता हूँ कि दूसरों की टीम के मुकाबले हमारी टीम बड़ी कमजोर है,
3: लेकिन जी क्रिकेट तो बाई चांस होती है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमारे कोच बन जाएंगे ना तो हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे ना हमारी टीम में बड़ा टैलेंट है।
1: बोल लिया। इसीलिए बुलाया मुझे क्या?
0: वो
1: ना मुझे कोचिंग करनी है ना मेरा क्रिकेट से कोई वास्ता है।
2: ओह, लेकिन सर
1: देखो, मुझे नहीं पता मलिक ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया, लेकिन गौर से सुनो, मैं वो आदमी नहीं हूं जिससे तुम उम्मीदें लगाओ।
4: सर जी, मलिक साहब ने बूटा गुजर के 20 लाख रुपए देने ने, पहले टाइम पे ना दिए तो क्लब और ग्राउंड दोनों पर कब्जा हो जाएगा। मेहरबानी तुम्हारी।
1: तुम लोग क्या समझते हो, टूर्नामेंट जीत के तुम क्लब बचा लोगे? ये तो बच्चे हैं, तू क्या पागल हो गया? कहां से लाएगा उस लेवल के प्लेयर्स? और प्लेयर्स तो दूर की बात, इस टूर्नामेंट की फीस 2.5 लाख रुपए है, कहां से करेगा?
0: बीबी के जेवर भेज दूंगा मैं।
1: इसी किस्म के जाहिल पने की उम्मीद थी मुझे तुझसे। क्लब तो तेरे हाथ से जा ही रहा है, अब चाहता है कि बीबी भी जाए? बच्चों को क्रिकेट के नाम पे ख्वाब दिखाना छोड़ दे, 18 करोड़ अवाम में से सिर्फ 11 खेलते हैं, बाकी सब ख्वाब देखते रह जाते हैं।
0: और तेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए तो इनके तो होने दे, और तू तो पेंशन हो ही गया है, इनको तो ना कर यार। और एक बात मत भूल तू, ये वसीम अकरम, जावेद मियादाद, कादिर इसी ख्वाब के सहारे ऊपर गए हैं, कहां पहुंच गए वो, और तू कोचिंग कर या ना कर यार, लेकिन हम लोगों की उम्मीदें तो ना तोड़ यार, मैं तो जरूर ट्राई करूंगा। चाहे बीबी का जेवर बेचना पड़ जाए या कार। और 15 मिनट से ज्यादा रुकी गया तो अपने बूढ़े बाप से तो मिल ले, जिसको यही नहीं पता कि वो जीते जी तुझे देख सकेगा भी कि नहीं। ओ अकबरा।

0: चार जे बाबा भी कमाली है।
1: कौन है?
0: अपना इमाम दीन है, जिसका बेटा क्रिकेट नहीं खेलता था।
1: अच्छा अच्छा, वो जरा पकड़िया गया था।
0: हाँ वही यार, इस बेचारे ने भी क्या किस्मत पाई है। बस यार, जिस अकलौते बेटे ने सारे शहर में इसको मशहूर कराया, आखिर में वही इसके मुंह पर कालक मल के चला गया। बड़ा ही अफसोस होता है इसको देखकर।
2: अब्बा जी
0: ठहरो।
3: इस दहलीज को पार करने की कोशिश मत करना, मर गया अब्बा तुम्हारे लिए।
2: अब्बा
3: मत कहो अब्बा मुझे, मेरा कोई बेटा नहीं है, दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ।

0: ये लो अपने पे है। चलो जी आ जाए मलक साहब।
1: ओ फार्म वगैरह चेक कर लिए ना?
0: वो तो चेक कर लिया है मलक साहब, मगर पैसे?
1: वो पैसे है ना मेरे को
0: है।
1: देख लो, गलत ना हो
2: मलिक, कैच इट। तू आज तक कैच नहीं पकड़ सका।
1: और तुझे तो पता है कि कैच के मामले में पेंचर हूं मैं यार।
2: चल तेरी टीम को भी चेक करते हैं, उनका भी तेरे जैसा हाल तो नहीं है।
1: मतलब
2: कोच को ये मालूमात तो होनी चाहिए ना।
1: ये अपनी टीम कैसी है?
2: ये पूरी तो नहीं है।
1: और पूरे 11 ने यार की हो गया यार।
2: गौर से पढ़, ये अंडर 19 कप है।
1: अंडर? हाँ
2: तो इनकी उम्रें चेक करो।
1: अरे यार, इनके तो अभी शनाख्ती कार्ड ही नहीं पड़े।
0: मैं टीम का कैप्टन और विकेट कीपर हूँ। ये जुबैर है, बड़ा चंगा बॉलर है जी, स्विंग का बादशाह है। बादशाह
2: कौन कितना बड़ा बादशाह है मैं रजिस्टर में स्कोर कार्ड देख के पता कर लूंगा। और कोई काम
0: नहीं?
2: इस सियालकोट के वो सात बेहतरीन क्लब्स हैं, इनमें से जो जीतेगा वही सियालकोट को रिप्रेजेंट करेगा।
1: वो साढ़े क्लब जाते ना ही नजर नहीं आ।
2: इसलिए कि ये सात बेस्ट क्लब्स हैं।

0: आपने जुबैर को क्यों निकाल दिया?
1: 12 महीनों में सिर्फ 9 विकेट लिए उसने।
0: और सर जी आजकल फॉर्म में नहीं है, सही हो जाएगा।
1: कौन सही होगा कौन नहीं ये फैसला करना मेरा काम है।

0: हमारे सारे बैट्समैन को छक्के मारने की बीमारी है।
1: मजा भी तो छक्के ही चाहता है यार।
0: 11 बॉलों में टीम बाहर भी हो सकती है। हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक एंड बचा सके, जरा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेले।
1: ओ यार ये हो जा प्लेयर में कुछ पैदा करा हूं।
2: दीवारें टीम से क्यों नहीं बात करते?
3: दुनिया में दो ही दीवारें मशहूर हैं जी, ओथे दीवारें चीन ते एथे दीवारें टीम। पर सीधी सी बात है जनाब, ये पैसे नहीं देते और दीवारें टीम पैसों के बगैर नहीं खेलता।
0: पैसे मिलेंगे लेकिन टूर्नामेंट के बाद।
3: ना जी ना, शेहों का बालू, और ये डील मेरी समझ में नहीं आती।
0: पर मैच पौने 3 लाख रुपए समझ में आते हैं। फाइनल तक 13 मैचेस हैं, अगर जीत गए तो 36 लाख रुपए मिलेंगे।
3: रिस्क है, फाइनल में पहुंचेंगे इसकी क्या गारंटी है?
0: तुम्हारी दुकान में ग्राहक आएंगे इसकी क्या गारंटी है?
3: हैं आप कोच, ऊपर तबीयत के बड़े ही शेख हैं। डन
0: डन, मैं तुम्हें नेट्स में देखने के बाद करूंगा।
3: हैं जी,
0: तबीयत का शेख हूं पर पेशे से कोच ही हूं।

0: फास्ट बॉलर हूँ।
1: ये बड़ी ग्राउंड वाले क्लब के लिए खेलता भी रहे।
2: हाँ तो छोड़ क्यों दिया पा?
3: वो मैच के दरमियान मैं उसका टाइम नहीं देता था।
4: ओ मौलवी साहब, मैच के टाइम मैच खेलो, नमाज बाद में पढ़ लो।
5: ढेर दा काफिर बच्चा थे, गली से दा खर बच्चा। साफ वलार दे कार में खराब हो गली शा।
4: ओए खान साहब, पश्तो में क्या गालियां निकाल रहे हो?
2: तू यार बोलो।
5: खाना खराब ने मस्क बारे में बात करते हैं।
1: बच्चा गली शा।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: साहब जी आपने बुरा नहीं मनाना, इसका भेजा काम नहीं करता।
1: कौन कौन करो?
2: सर जी ये जी पागल आदमी है, बॉल ही मारी जा रहा है।
3: अभी तो शुक्र करो यार कर नहीं कराए। ये तुम्हारा कोपड़ी तो हेलमेट ने बचा लिए, लेकिन इन चप्पलों में अंगूठे कैसे बचते हैं?
1: खान अगर नमाज का वक्फा मिलेगा तो खेलोगे?

0: इधर आ जाओ सब, कमन कमन जल्दी, ये कल का बैटिंग ऑर्डर है। दीवारे टीन और साद ओपन करेंगे, उसके बाद जुबैर, सलीम, नवाजिश और फिर शायद।
1: कोच में पहले नहीं जाऊंगा,
0: रेस लगानी है कि क्रिकेट खेलनी है, तो जल्दी जाने की टेंशन है।
2: और सरजीत, इसमें तो बॉलिंग का लिखा ही नहीं हुआ।
0: मैं जानता हूँ, ये मैं कल सुबह बताऊंगा, आप लोग जा सकते हैं।
1: चल यार।
0: इधर आओ शायद।
1: जी कोच।
0: ये लो।
1: नहीं कोच, मैं घर से खाना खा के आया हूँ।
0: मैंने खाने के लिए नहीं दिया। ब्रेक करने की कोशिश करो, इसकी प्रैक्टिस करो रेस्ट घुमा के।
1: मगर क्यों कोच?
0: पहला ओवर कल तुम कराओगे।
1: मैं क्यों?
0: तुम्हारी गेंद तेज पड़ती है, लेकिन गुगली का मसला है, रिस्ट की मूवमेंट तेज होनी चाहिए।
1: मगर
0: क्यों, क्या हुआ? शायद अफरीदी की तरह बैटिंग करनी है, बॉलिंग नहीं करनी।
1: करनी है जी।
3: यार ओपनिंग में फास्ट बॉलर भेजते, तुम स्पिनर भेज रहे हो।
0: कल देख लेना।
3: कल देख लेना, क्या क्या देखूंगा मैं? ये समझ नहीं आ रही कि एक तो ये बॉल और ये सेब में क्या साइंस है।
0: ये तो अब्दुल कादिर से पूछो, जिसने शेन वॉन को सेब के जरिए गूगली सिखा दी थी।
3: ओ यार।
4: ओए, छट दे सेब को और सो जा।
1: तुसी सो जाओ बाजी।

0: यार 15 साल हो गई है, मिकाल से कोई कांटेक्ट नहीं है तुम्हारा।
1: पहले सालगिरह पे खत लिखा करता था, फिर बड़ी मुश्किलों से ये नंबर मिला, लेकिन आज तक उससे बात नहीं हो सकी।
0: पापी से कभी कोई? तो तुमने अदालत से कोई रिजू किया है?
1: पिछले 5-6 साल से इतने अदालत के चक्कर लगाए, अब तो ये भी पता नहीं चलता कि तारीख लगी भी है कि नहीं।
0: यार वो तुम्हारा पुत्र है यार,
1: मियां आसिफ कुरैशी का नवासा भी है। अब तो वैसे भी वो 15 साल से इंग्लैंड चला गया, पता नहीं उसको मेरी शक्ल याद भी होगी कि नहीं।
2: मलक साहब क्यों यार जल्दी से बाहर आए? ओ मुंडे गुथम गुथा हो गए।
3: ओ छड्डो छड्डो यार छड्डो, ओ मलक साहब छड्डो छड्डी यार काशी
4: की यार
3: तू छड्डी यार मुझे छोड़। तेरा क्या मसला है? मैं तो मर्जी करूं।
4: सर जी ये टॉयलेट बैठ के ये वाला सिगरेट पीता है।
3: ओ तो
4: अदर दिखा मेनू। ओए चल सारी सर्कट।
3: ओ नहीं जी ये तो वो
4: छूना काका नहीं आएगा, मैं समझ आई ना।
3: मैंने सलीम को कई बार ये सिगरेट पीते हुए देखा। ओए तू चुप रह। मलक साहब ये मेरा जाती मामला है।
5: चर्स पीना कानूनी मसला है, और जहाँ तुम पी रहे थे ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कप्तान होते हुए ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम।
3: तो फिर क्यों है? इससे मैच पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
5: मैच का मसला नहीं है, उसूल की बात है।
4: और तेरी बेहतरी नहीं कैंडे ने।
3: और मलक साहब अब्बा बनने की जरूरत नहीं है।
4: और तो तेरी माँ बना।
3: मुंह ना लगाए मुझसे।
5: ये किस तरह बात कर रहे हो तुम?
3: तो और किस तरह करूँ, क्रिकेट के कोच है, हमारी जिंदगी के नहीं है।
4: अब बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे दा पुत्र।
3: ओ मलिक साहब मैं इन लड़कों की तरह नहीं हूँ जो इनके थल्ले लग के रहूंगा।
4: ते उत्ते चढ़ के रहो।
5: अपनी बकवास बंद करते हो वरना मैं।
3: वरना क्या निकाल दोगे? निकालो। बॉलर और बैट्समैन के बगैर टीम चल जाती है, विकेट कीपर के बगैर नहीं चलती। जा रहा हूँ छोड़ के।
5: ओए विकेट कीपर के बगैर टीम नहीं चल सकती, लेकिन चर्सी के बगैर चल सकती है।
3: देखूंगा जब चलाओगे।
5: जाओ यहाँ से।
3: जा रहा हूँ मैं।
2: अकबर साहब किसी अस्पताल से आपका फोन आया।
6: जैसे ये होश में इनको 2 पैनाडॉल और ये इंजेक्शन दे देना।
7: जी सर।
5: क्या वो डॉक्टर साहब सब ठीक तो है?
6: सड़क पर बेहोश मिले थे, वॉलेट में से एक चिट मिली जिसमें आपका नाम और नंबर था। गालिबन आप इनके बेटे हैं।
1: जी।
6: कुछ देर पहले इनको होश आया तो बताया कि आपको बुलाया है, तो लड़ना शुरू कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं मर जाऊँ तो सिर्फ तभी बुलाइएगा। आप ऐसा करें, हर आधे घंटे बाद इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। ओके
7: राइट सर।
1: अब कैसी हालत है इनकी?
6: अल्लाह ने करम किया है, बचत हो गई है। बस सिर्फ बाएं हाथ की हड्डी पे चोट आई है, दर्द बहुत ज़्यादा था इसलिए पेन किलर के साथ नींद का इंजेक्शन दिया है। आप ऐसा करें कि घर से इनके कुछ कपड़े मंगवा लें, इनको कुछ दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। ठीक है?
7: जी ठीक है।
6: ठीक है।

0: Bak bana.
1: Ha.
0: Bak bana. Yer ye değil zara. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ ਹੈਗਾ। ਓ ਬਿਸਮਿਲਲਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ।
2: ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿਆ। ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਲੀਨ ਗੁਮਸਮ ਕਹਤੇ ਹੈ।
3: ਸਦਕੇ
2: रोजनामा शगाफ, स्पोर्ट्स एडिटर।
1: जी बोलिए।
2: परसों के फाइनल मैच के बारे में आपके क्या तासुरात है?
1: देखें क्या होता है।
2: देखेगा तो गुमसुम। आप बस एक जुमला इनायत कर दीजिए।
1: जुमला आप इनसे लीजिए, मेरे पास जुमले जरा कमी होते हैं।
2: अरे साहब, सहाफी बरादरी से आपकी ऐसी क्या नाराजगी है? उस बात को तो 14-15 साल गुजर चुके हैं,
1: मगर कुछ चीजें फिर भी नहीं बदली।
0: मला खालिद खिदमत के लिए हाजिर है कलीम साहब।
2: बड़े मिजाज हैं। वैसे टीम के यही नाम छुपवाए थे ना आपने?
0: दिखाइए। यही नाम है।
2: विकेट कीपर कौन है?
3: सलीम छीमा पागल।
2: वही जिसे आप लोगों ने निकाल दिया है। खबरें सब रखता है गुमसुम। विकेट कीपर मिला या खुद ग्लव्स पहनकर मैदान में उतरने का इरादा है?
1: मिल जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
2: चलो
3: ठहरे, चाय आ रही है।
2: चाय भी इनको ही पिलाएं, बल्कि इनको तो ठंडा पिलाएं, बहुत गर्म चल रहे हैं। मलिक साहब, गुमसुम एक सच्चा सहाफी है। एक नाम लिख लो।
0: बताइए।
2: माइकल जोसेफ, माइकल मैग्रिट भी कहते हैं। मैं बताऊं, 2 साल पहले सियालकोट यूनाइटेड का विकेट कीपर था, आजकल फारिग है। लड़का बहुत काम का है।
0: बड़ा नाम निकाला है आपने।
2: कलीम गुमसुम है, मगर इतना भी नहीं कि टैलेंट को पहचान न सके। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: बड़े ही मिजाज हैं।
0: बड़े मिजाज हैं।
1: माइकल मैग्नेट कहाँ मिलेगा? हमें पता है पिछले क्लब ने तुम्हारे पैसे मार लिए थे, लेकिन अब मैं तमाम बातों का कॉन्ट्रैक्ट बना के लाया हूँ, चाहो तो किसी से भी चेक करवा लो।
0: बिल्कुल जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है। जब साइन कर रहा था ना, पैंचर ही हो गया सी में।
4: मारने वाले तो उसके होते हुए पहले मार लेते हैं सर, लेकिन जहाँ इतना जुआ खेल लिया वहाँ एक और सही। ट्रायल कब लेंगे?
0: और ट्रायल का तो अब टाइम ही नहीं रहा। अब जो भी निकलेगा, मोइन खान या कामरान अकमल, मैच में ही निकलेगा सवेरे 8 बजे।
4: देख लो, आज आपके घर के सामने मुआयदा किया है मैंने।
1: मैग्नेट, मोइन खान ही निकलेगा। आप मुझे बता देते, मैं पिला देता आपको। आपकी नाराजगी मुझसे है, खुद से नहीं। यही समझ के पानी पी लीजिए कि मैं नहीं, एक अनजान आदमी कुछ सबाब कमाना चाहता।

0: सर जी, सर जी सुना तो सर जी, वो चाचा शायद मार देंगे सर जी।
1: सारी दुनिया दे बच्चे खराब कर छड़े ने। ओए मेरी गल कन खोल के सुन लो।
2: नहीं अम्मी जी नहीं, नहीं
1: होए दे मैं अपने घर च। बड़ा शहद फरीदी।
3: ओ हेलो सुनो सारे, ये हमारा नया विकेट कीपर है माइकल जोसेफ, सारे इसको मैग्नेट कहते हैं।
4: हेलो
3: मिल ले सारों से।
4: हेलो
2: ओए कैसा है?
4: एकदम मैग्नेट, तू सुना?
2: फिट?
5: बाल से बड़े चंगे लग रहे हैं।
4: ठीक है भाई।
2: ओ मौलवी क्या हुआ?
0: पूरे शहर में और कोई बेटा कीपर नहीं मिला था तुमको।
2: वो तो इसको क्या है?
0: खाना खराब काफिर है।
2: काफिर है तो?
0: तो तुमको नहीं पता है?
2: और मैच खेलना है, मिलाद नहीं करानी।
0: मानन बख्त काफिर शक्ल मिल दू, खुद एक खबर शहर हुआ इस बात संगे तेरे की।
2: और क्या बोल रहा है?
0: उस काफिर का बच्चा की वजह से मैच में बरकत नहीं पड़ेगा।
2: अब बात कर दे मोदी।
6: मलक साहब 9:30 बज चुके हैं, हम सिर्फ 20 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हमने मैच शुरू करना है। आप प्लीज उन लोगों को जल्दी से बुला लें।
0: अच्छा जी, अच्छा जी।
7: मलक साहब तुसी टेंशन ना लो।
1: और टेंशन क्यों ना लवा यार? और शायद तो चला गया, और कोच भी गायब हो गया, मेनू तो पंचर ही कर गए यार। उफ किथे जावा मैं।
8: माशाल्लाह
7: भट्टी साहब प्लीज।
8: ओ भाई मैंने अपना मुंडा गेंद और बल्ले के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया। चंगा भला 8,000 रुपए महीने पर काम करता था वर्कशॉप में, आपके चक्कर में होर पता नहीं कितना नुकसान कर बैठेगा।

0: अकेले बैठने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन फायदा तभी है जब इंसान के पास बहुत वक्त हो। जहां तक मुझे याद है इस वक्त तुम्हारा एक मैच है जो तुम्हें खेलना है, चले?
1: पूछू आपकी बाइक कहां गई
0: है? लेकिन फिलहाल किसी और के हाथ में, चलो। हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर कम से कम 170 से 190 के बीच में होना चाहिए। टीम तुम ओपन करोगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहना।
1: ठीक है सर जी, लेकिन मेरे साथ कौन है?
0: शायद जाएगा तुम्हारे साथ
1: कोच। मैं?
0: हाँ, आज कप्तान को लीड करना चाहिए।
2: अश्के भाई अश्के।

0: ये आपका ऑफिशियल लेटर है। इनॉग्रल फंक्शन के लिए आपको इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। बाय द वे, ये सियालकोट से आपकी टीम का कोई नाम है या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप?
1: शाहीन, सियालकोट शाहीन।
0: बेस्ट ऑफ लक।

0: हमने टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है, मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा है कि आप घर जा सकते हैं। मैंने कंपाउंडर से कह दिया, वो घर आके आपकी पट्टी चेंज कर देगा, आपको यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा।
1: सुनो, वो घर तुम्हारी मां का है, उसमें तुम्हारा भी उतना ही हिस्सा है जितना मेरा है। वहां आने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं है।

0: यार तुझे इस्लामाबाद हंटर टीम के बारे में वाकई कुछ नहीं पता?
1: पिछले 15 साल में कुछ पता नहीं चला तो इसका क्या पता चलना था?
0: लेकिन तुझे उससे मिलना चाहिए था यार, आखिर वो तेरा पुत्र है।
1: मगर मुझे तो सिर्फ मियां आसिफ कुरैशी का नवासा लगा।
0: ऊपर वाले के काम में बेहतरी होती है, देख ले इस टूर्नामेंट के जरिए तुझे तेरा बेटा मिल गया।
1: लेकिन मलिक, लड़कों को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए।

0: ओए पैहा ही बड़ा लाता है यार,
1: ये पाकिस्तान है या फिर अमेरिका?
2: यार ये क्या बदतमीजी हो रही
3: है, यार ये क्या बदतमीजी हो रही है यार।
4: गौर से सुन लो, कोई कुछ पिएगा नहीं
3: यार। वो मोटा जब भी देखो किसी ना किसी औरत को जप्पी डाल के खड़ा होता है यार। एक आदमी का इतना बीवी कैसे हो सकते है?
1: और ये बीवी वाली जप्पी नहीं है।
0: वो कितने की है भाई?
5: फ्री है सर।
0: और जान दे यार जान दे, कितने फ्री है?
1: मैं फेमस ही बहुत हूँ, क्या करूँ, लड़कियाँ मेरे पीछे खुद ही आती हैं।
6: ओह दैट्स ट्रू।
1: ओया
3: फटा आया हुमायूं सईद, पार्टी हो रही है पार्टी।
4: ओ कैसी पार्टी यार, लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं।
3: ओए अच्छी बात है, वो बच्ची चक्कर बच्ची।
4: नहीं यार।
7: हेलो
4: आप कैसी हैं?
7: ठीक।
1: वाह काशी, वो बताया था ना तुझे, वो रसाले वाली रिपोर्टर।
5: ओ अच्छा, याद आया।
7: सो कैसी लगी ये पार्टी?
4: पार्टी मैंने तो देखी नहीं, आंखें खुली की खुली।
5: ओ जी बस ठीक है।
7: वैसे यहाँ के लोगों के हिसाब से पार्टी काफी अच्छी है, नहीं?
3: ओ जी कभी हमारे साथ पार्टी करे, ओ पूरा सियालकोट झूम रहा होता है।
7: रियली?
4: एक मिनट
7: जाओ।
4: ओ हमारे यहाँ तो 14 अगस्त और सिर्फ चांद रात को ही नाचते हैं, और तू सारा सियालकोट।
7: जी
5: ओ जी कह रहा है इसने आपसे बड़ी सारी बातें करनी है, लेकिन बेचारे को कभी कल्ले में मौका नहीं मिला ना।
4: काशी के बच्चे, मैंने ऐसा कब कहा?
3: ओ जी बड़ा शर्मीला है। ओ स्वीट टू
5: अलीना मैडम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगी।
8: आप माइंड तो नहीं करेंगी ना?
7: नो
5: ओ देखा, ओ जी बहुत ताला, आप दोनों बातें करें, मैं भी आया। ओ
7: काशी,
1: काशी।
7: आप सियालकोट के बारे में कुछ बता रहे थे।
4: आप क्या सुनना चाहती हैं सियालकोट के बारे में?
7: आप अपने बारे में कुछ बता दें।
4: मैं सियालकोट के बारे में बता देता हूँ। सियालकोट ना बड़ा ही खूबसूरत शहर है, मैं सच बोल रहा हूँ। तमाम स्पोर्ट का सामान ना वहीं से जाता है, और वहाँ शुएब मलिक भी है, और तो और सानिया मिर्जा भी वहीं पर है।
7: आप बहुत क्यूट हैं।
4: हैं जी?
9: अरे मियां साहब इनसे मिलिए, ये हैं सियालकोट की टीम के मालिक
3: मलिक खालिद।
10: आपकी टीम से हमारा पहला मैच।
9: हाँ। और ये हैं सियालकोट के कोच अकबर दीन।

0: इनकी टीम को टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स कहा जा रहा है बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है।
1: वो तो होनी ही थी, इनफैक्ट इसका एक्सपीरियंस काम आया होगा।
0: ओके गाइस, यू कैरी ऑन प्लीज।
1: वाह, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ा।
2: छोड़ने की आदत आपके यहां पाई जाती है, मेरे आने की
1: किस्मत मिले भी तो ऐसी जगह जहां मैं तुमसे खुल के मिल भी नहीं सकता।
3: मुझे इजाजत।
2: नहीं मलिक, कोई जरूरत नहीं है। मियां आसिफ कुरैशी अपनी बेटी का घर तो तबाह करना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस क्राउड के सामने कोई सीन क्रिएट करना नहीं।
1: मैं तुम्हें
0: आजी, क्या बातें हो रही थी?
2: मियां आसिफ कुरैशी साहब अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि इनका दामाद एक्स क्रिकेटर रह चुका है।
0: ओ रियली? मैं भी कहूं कि उसमें इतना टैलेंट कहां से आया।
2: बाप ही से आया होगा। एक्सक्यूज मी,

0: and let Talhavati serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhavati. 647-295-7861. Then let Talhavati serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी.
2: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: थोड़ा पानी दीजिएगा प्लीज।
1: पूछोगी नहीं कि मैं कैसा हूं?
0: कोई मुझसे पूछे कि तुम कैसे हो?

0: Oi. Hey, Samba. Look, even the beggars are here.
1: Beggars in the party.
0: Oi. तुम लोगों के शहर में कोई डांस वास भी होता है कि ऐसे ही उठ के आ गए हो?
1: डांस? They can't even play cricket.
0: Let's go, baby.

0: मुजरा खत्म, चल निकल यहां से।
1: छोड़।
0: नहीं छोड़ूंगा।
1: गिरेबान छोड़।
2: निकल।
3: Enough, Mikan. Let's go.
4: I'll take leave now. But ये ख्याल रहे आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो. Please, good day.
5: My foot. मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमारे खानदान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है. वैसे तो नहीं पहुंच सकता. अब गली मोहल्लों की टीम बनाकर यहां आ गया है। मैं भी देखता हूं वो लड़के कैसे खेलते हैं। उनको
1: आप
5: तो
1: कुछ
5: मैं...
1: नहीं करेंगे। वो टूर्नामेंट खेलने के लिए अपनी टीम लाया है ना, उसका जवाब भी मैं उसको ग्राउंड में दूंगा।

0: टॉस के लिए इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शाहीन से कप्तान तैयार, और टॉस जीता है इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मिकाल ने, लेकिन हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो इब्तदाई से राइवलरी दोनों कप्तानों के दरमियान, और बिल्कुल सही कहा शाहीन ने कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, शायद इसीलिए यहाँ पर मिकाल ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। और यहीं से इस मैच की गर्मा गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पहला मैच इस टूर्नामेंट का।
1: हेलो, इधर इधर इधर, क्राउड पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये इन लोगों का होम ग्राउंड है, और रात के वाक्य को अपने जहन से निकाल कर खेलना है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं।
0: मैच की पहली गेंद, और जिस तरह से आगाज किया उसी से ही अजायम का इजहार होता है। पहली गेंद पे 4 रन हासिल किए इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने, और ताबड़तोड़ स्ट्रोक से खेले जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज स्कोर की जा रही हैं, और बहुत ही मुश्किल में है शाहिद भट्टी, सियालकोट शाहीन से कप्तान, एक और चौका हासिल किया। कोच की स्ट्रेटेजी इस वक्त बिल्कुल भी नाकाम नजर आ रही है, और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स के जो बैट्समैन है होम ग्राउंड और होम क्राउड का पूरी तरह से एडवांटेज उठाने में कामयाब है।
1: अमन बॉयज, जो होना था हो गया, घबराने की बात नहीं है, हमें सिर्फ 225 रन पे फोकस करना है। अगर वो लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। पहले भी कहा कि क्राउड पे ध्यान नहीं देना है, यूं समझो कि हम सियालकोट में खेल रहे हैं। साथ तुम टीम के साथ ओपन करोगे।
2: कोच मुझसे पहले साथ को क्यों भेज रहे हैं?
1: तुम बैठ जाओ अभी।
2: कोच समझा करें, अगर शुरू में प्रेशर पड़ गया तो लड़के कैसे बनाएंगे स्कोर?
3: ठीक कह रहा है यार, ठीक कह रहा है। और शुरू के 6 ओवर में तो रन बनाने हमने।
1: मैंने कह दिया है नहीं।
2: कोच प्लीज।
3: और चल यार तू पैड बन, यार पैड बन।
2: ठीक है।
3: और चल टीम तू भी पैड बन यार।
0: सियालकोट शाहीन के लिए शाहिद भट्टी और शेख इनिंग का आगाज करते हुए बड़ा उमदा आगाज। पहली गेंद पे उठता हुआ स्ट्रोक, फिल्डर गेंद के पीछे 225 रन चेस करने हैं, और इस किस्म के स्ट्रोक्स खेलना होंगे शाहिद भट्टी को। अगली गेंद, एक और उमदा स्ट्रोक, फिल्डर गेंद को नहीं पहुंच सके, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इम्प्रोवाइजेशन और बाउंड कर दिया। पूरा कर सकेंगे या नहीं, और आप देख सकते हैं किस तरह से विकेटें गिरती जा रही है। कदमों का इस्तेमाल, स्टंप का चांस, और एक और विकेट हासिल की इस्लामाबाद हंटर्स ने। कोच के चेहरे में परेशानी, डग आउट में परेशानी, माइकल तमाम तर उम्मीदों का मरकज, सामना करने के लिए तैयार। स्ट्रोक माइकल की जानिब से, और उम्मीदों की शमा रोशन की अपने स्ट्रोक के जरिए, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और उमदा स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में माइकल कामयाब। डग आउट में खिलाड़ियों ने तारीफ की स्ट्रोक की। इस मर्तबा गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया। इस्लामाबाद हंटर्स के बॉलर्स और फील्डर्स दबाव डालते हुए मिकाल हर वो मुमकिन हर बात बांधते हुए जिससे बैट्समैन पे दबाव पड़ सके। इस मर्तबा अपना बदला लिया और क्रीज पे से हट गए सामने से।
2: डर गया
0: की कोशिश की माइकल ने। एक अच्छी राइवलरी दोनों
4: के जुड़े देख के
0: ना सिर्फ ऑन द ग्राउंड बल्कि ऑफ द ग्राउंड भी। अंपायर से शिकायत की मौलवी मजीद ने। माइकल खेलने के लिए तैयार, आखिरी विकेट इस वक्त मौजूद है सियालकोट शाहीन की। रन लेने की कोशिश मजीद और माइकल के दरमियान मिस अंडरस्टैंडिंग, रन आउट होने का खतरा, और यकीनी तौर पर रन आउट हो जाएंगे। तो इस तरह इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में कामयाबी हासिल की। इफ्तिताही मैच अपने नाम किया। माइकल और मौलवी दोनों सर को झुकाए हुए, दोनों जानू इस वक्त पिच पर मौजूद है, और इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ी अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए जुबिलेशन सेलिब्रेशन देखी जा सकती है इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ियों के दरमियान। और ये सर को झुकाए हुए, एक जानब कहीं खुशी और दूसरी जानब कहीं गम के मनाजिर आप देख सकते हैं।

0: और शक्लें तुम लोगों की देखने वाली थी। और तुम लोग मैच खेलने आए थे या किसी के कुलों पे आए थी है?
1: मलक साहब वो खेल गया था रहते, इतना स्कोर मारा उन्होंने।
0: हाँ हाँ, तो विकेट छोड़ के खलो जाना सी।
2: वो खाना खराब हर बॉल के लिए उनके पास एक शॉट था, हम क्या करता?
0: तो कह देते ना हमें, हम उनसे कह देते कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। और तुम, बल्कि तू, और तू एक बॉल नहीं पकड़ सका।
3: मलक साहब, क्राउड देना शोर सी फोकस ही नहीं हो रहा था।
0: और कुड़ियों से फोकस हटता तो बॉलों पे फोकस करता ना। और बैटिंग के टाइम पे क्या हो रहा था दसो? और तुम लोग विकेट ऐसे दे रहे थे जिमें मोहम्मद दुआमा दे दिया ने। और मैग्नेट, और तू 20 ओवर पूरे नहीं कर सका, अब बस घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं।
4: ओ मलिक साहब, वो लोग मुझे गालियां निकाल रहे थे।
0: ओ केड़िया गाला करन दे
5: बस कर मलिक।
0: ओ नहीं यार, मेरी सारी जायदाद दांत लगी है, मैं तो पेंशन हो गया।
5: मैं जानता हूं बड़े मैच का प्रेशर ऐसा ही होता है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज में जाकर खेले तो इसका मतलब वो तो जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनका सपोर्टिंग क्राउड ही नहीं होता। और दूसरी बात ये कि तुम लोग शाहिद पे बहुत भरोसा करते हो, शाहिद के आउट होते ही तुम लोगों की लाइन लग जाती है, इसीलिए मैं शाहिद को ओपन नहीं करवाना चाहता था। कोई भी मैच एक प्लेयर से नहीं, पूरी टीम से जीता जाता है।
4: हेलो,
0: फोन बंद कर यार तू।
4: मलिक साहब, वो न्यूज पर।
0: और क्या न्यूज पर?
6: मिकाल, इज दैट ट्रू?
7: जी, ऑल्दो ये बात मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था, मेरे टीम मेंबर्स और मेरे कोच को भी नहीं पता ये बात। मैं उनको इस बात से एसोसिएट नहीं करना चाह रहा था कि वो मेरे फादर की टीम के अगेंस्ट खेले।
6: लेकिन आपने अपने फादर को इस्लामाबाद हंटर्स का कोच क्यों नहीं बनाया?
7: देखिए, अब हमारे उनके साथ कोई लिंक्स नहीं है। जैसा कि कुछ लोग वाकिफ होंगे कि 15 साल पहले उन्हें ड्रग स्कैंडल में पकड़ा गया था। एंड मी एंड माय फैमिली हैव नो कांटेक्ट विद हिम एवर सिंस।
8: राजी साहब, करना पड़ता है, जीत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खास तौर पे जब हारने की आदत ना हो। $5,000 फॉर दिस पॉट
9: डन।

0: मुझे पता था तुम जरूर आओगे।
1: आपने अच्छा नहीं किया।
0: देखो अकबर, आजकल ऐसी बातें कहां छुपी रहती है।
1: छुपी रहती है अगर आप चाहते तो।
0: तुम्हें तो खुश होना चाहिए, किसी तरह तो तुम अपने बेटे के काम आए। एक इंटरव्यू ने, सिर्फ एक इंटरव्यू ने उसे इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बना दिया है। सबकी नजरें मिकाल पर हैं। आज के न्यूज़पेपर में उस पर आर्टिकल लिखे गए हैं। मीडिया इज लविंग हिम एंड ही इज लविंग द अटेंशन।
1: वो मेरा बेटा है, आपकी बिसात का कोई मोहरा नहीं।
0: सही कहा, अगर मोहरा होता तो कब का तुम्हारी तरह उठा के बाहर फेंक चुका होता।
2: मैं?
0: तुम नहीं, मैं। तुमने जो करना था 15 साल पहले कर चुके। अब मेरी बारी है।
1: तुम जैसा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
0: और ये घटिया आदमी इतना बड़ा काम करने जा रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मैं ये गेम हमेशा के लिए बदलने वाला हूं। बहुत खेल लिया गली मोहल्ले वालों ने, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। ये गेम इसलिए नहीं बना था कि तुम जैसे सड़क छाप इसमें गन मारे। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ख्याल में मैं इस टीम पर यूं ही पैसा लगा रहा हूं? इस टूर्नामेंट के बाद ये टीम इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के साथ लीग मैचेस खेल रही होगी। 5 साल के अंदर मैं इस टीम को पाकिस्तानी टीम से बड़ा स्टार बना दूंगा और 5 साल बाद इस टीम के लड़के तुम्हें पाकिस्तानी नेशनल टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी इन 65 सालों में पाकिस्तान की गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज तो दूर कर दी गई है सिवाय क्रिकेट के। अब वक्त आ गया कि यह भी उनकी पहुंच से दूर कर दी जाए।
1: तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
0: कौन रोकेगा मुझे, हाँ? तुम या तुम्हारी सड़क छाप टीम? कहां से लाओगे ऐसी फैसिलिटीज, टैलेंटेड प्लेयर्स, पैसा, फॉरेन कोचेस? इस्लामाबाद हंटर इज अनबीटेबल। हमसे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं बनता।
1: इस टूर्नामेंट के शुरू में मैंने भी एक मां से यही सवाल किया था। जानते हो उसने क्या जवाब दिया?
3: दूसरों के पास चाहे दुनिया की हर चीज हो,
1: लेकिन वो जानमाज़ पे गिड़गिड़ाती माँ की दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकती।

हार और जीत खेल का हिस्सा होता है। अगर आज तुम लोग हार भी जाओ तो कम से कम ऐसे हारना कि एक दूसरे से आंखें मिला सको, क्योंकि आज हार तुम 11 लोगों की नहीं होगी, सियालकोट के 10 लाख लोगों की होगी।

0: किया क्या डॉक्टर साहब ने?
1: अब्बा जी वो कहता है दिल का मामूली सा दौरा था और हम लोग तमा समझते रहे। डॉक्टर कहता है दिल की नालियां भी बंद है, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब्बा जी वो अम्मी जी के ऑपरेशन के पैसे कहां से आएंगे?
0: पैसों के बारे च फैक्ट्री वाले ने गल
1: की थी मैनेजर से बात अब्बा जी, वो कहता है 50-60 हज़ार तो दे सकते हैं, पर अब्बा जी डॉक्टर कहता है 7-8 लाख का खर्चा है।
0: 7-8 लाख?
2: अभी अभी खबर मिली है कि क्रिकेट टूर्नामेंट में इस्लामाबाद हंटर्स ने कराची लायंस को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है।
3: Come on now, cheer up. देख लेना, तुम वापस फॉर्म में आ जाओगे।
4: पिछले 3 मैचों से यही कोशिश कर रहा हूँ, मगर बॉल है कि बैट पे मिडल ही नहीं होती है।
5: और शायद कोच बुला रहे हैं यार।
4: आता हूँ 2 मिनट।
3: देखो, फेसबुक पे मैंने तुम्हारा फैन पेज बनाया है, इतने सारे फैंस हैं अभी से, देखो।
4: क्या फायदा? मुझसे ज्यादा फैंस तो निकाल के होंगे।
3: तो हु केयर्स, मैं तो उसकी फैन नहीं हूं ना।
4: क्यों? अमीर है, खूबसूरत है, पैसा है उसके पास। और वैसे
5: शायद कोच बुला रहे हैं यार।
6: वो कोच से बोलो रुक जाए, क्या मौत पड़ी है।
7: टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेलना, ये मौत पड़ी है।

0: ये मत भूलें कि हम यहां टूर्नामेंट खेलने आए हैं। लाहौर की टीम पिछले 3 साल से फैल्कन ट्रॉफी जीत रही है। उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग है। उनके 2 खिलाड़ी अंडर 19 क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इसलिए अगर हमें यह मैच जीतना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट की तरफ।
1: कोच मैं तो सिर्फ
0: मैं नहीं सुनना चाहता कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा।
1: वो बेचारी तो
0: क्या बेचारी, हाँ ऐसी बेचारियां तुम्हें बहुत मिलेंगी आगे। पहले वो कर लो जो करने आए हो। इस्लामाबाद की टीम फाइनल में पहुंच गई है।
1: फिर तो आप शुक्र करें।
0: क्या बोला? क्या बोला
2: यार? छठ यार की होगी।
0: एक मिनट, क्या शुक्र करूं? पिछले 2 महीने से कुत्ते की तरह रात दिन एक कर रहा हूं मैं, और उस टीम के जीतने पे शुक्र करूं मैं? साला उस टीम का बाप लगता हूं मैं जो शुक्र करूं?
1: उस टीम के कप्तान के तो लगते हैं ना।
0: क्या बोला?
1: कोच कॉलर छोड़े।
2: छठ दे अकबर,
1: कॉलर छोड़े कोच।
0: मेरी नीयत पे शक किया तुमने? हाँ,
1: अगर इतनी नीयत साफ थी तो पहले क्यों नहीं बताया कि वो आपका बेटा है? और ये क्यों नहीं बताया कि 15 साल पहले आपको चर्सी और जानी होने की वजह से टीम से निकाल दिया गया था?
2: अकबर,
1: हर मैच के बाद मेरी परफॉर्मेंस की बजा रहे होते हो और अपने बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते।
2: ओ यार, एक मिनट समझ करो।
1: छोकरे खानदान का नहीं हो सकता, हमारा क्या होगा? नहीं खेलूं क्रिकेट के साथ खेलने लगे।
2: छोड़ मुझे, मार निकालो।
1: चल इधर बाहर, चल
0: पट्टी बाहर निकालो इसे।
2: तू पास करते हो यार?
1: वड्डा है वो, चुप जा रहा हूं मैं, जा रहा हूं। वड्डा अपने आप नु समझता पिया है। छटा यार, बस मैं कह दिए।
0: ये तो बाहर है टीम से, और तुम में से भी अगर किसी के यही ख्याल आते ना तो दफा हो जाओ यहाँ से अभी, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को बाहर निकाल
2: दूं। यार की करे क्या हो? अकबर वो सारी टीम का कप्तान है ना यार।
0: कैप्टन था है नहीं? टीन, अब से तुम कैप्टन हो, टॉस की तैयारी करो।
2: पता नहीं की हो इंडिया, सब बकवास।
3: Gil Lahore Thunders. Amateurs out of the night. What a performance. Can't really blame these people, can you? You should never have put so much hope in their hearts. It's wrong of you. They never amount to anything but street players. Enjoy your life in Sialkot. Just one more thing. What does the Muslims say amongst each other again? Mere liye Allah hi kafi hai. Kaha hai tumhara Allah.

0: impossible.
1: और बादल बरसना शुरू हुए और इस बारिश के जरिए मौका मिल गया है सियालकोट जायंट्स को कि इस मैच में कमबैक कर सके, क्योंकि बैटिंग करते हुए उनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा खराब थी और डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम के तहत अब एक ओवर में 13 रन स्कोर करने हैं लाहौर थंडर्स की टीम को। और क्या काशिफ उर्फ काली आंधी सियालकोट जायंट्स के लिए ये रन सेव कर सकेंगे या नहीं? पहली गेंद करने के लिए तैयार काशिफ आए, ऑन साइड पर बैट्समैन ने खेला आसानी के साथ, एक रन चहलकदमी के से अंदाज में मुकम्मल किया और दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन बैट्समैन ने वापस क्रीज में लौटने पे मजबूर कर दिया साथी बैट्समैन को। एक दफा फिर आया शॉर्ट बॉल, गेंद की लाइन को मिस किया और टेंशन मुसलसल बढ़ते हुए दोनों टीमों के डगआउट में। और इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक के लिए फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद दो फील्डर्स को बीट करने के बाद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, तो अब 3 गेंदों पर 8 रन दरकार। एक और शॉर्ट बॉल उठता हुआ स्ट्रोक इस मौके पर फील्डर के सर के ऊपर से होती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, तो अब 2 गेंदों पर 4 रन दरकार है। देखना यह है लॉर्ड थंडर्स इस मैच में इन 2 गेंदों पर 4 रन स्कोर कर सकेगी या नहीं। एक और शॉट इस मरतबा फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, तो 2 रन का यकीनी तौर पे स्कोर में इजाफा हुआ। तो अब क्या काशिफ और काली आंधी इन 2 रन को सेव कर सकेंगे या नहीं, या बैट्समैन राणा जावेद मीदाद की तरह आखिरी गेंद पे छक्का लगाने में कामयाब हो सकेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच होता हुआ लाहौर थंडर्स के सपोर्टर लाहौर की टीम को सपोर्ट करते हुए। काशिफ बॉलिंग के निशान पे तैयार, तमाम तर टेंशन इस वक्त ग्राउंड में मौजूद और आसमान की जानिब निगाह है काशिफ की जानिब से। आखिरी गेंद, इस गेंद पर फैसला होगा इस मैच के नतीजे का।

0: Mr. Nick, you have been very confident of your team.
1: Of course, Simon. You can't really blame us for that now, can you?
0: But as we know, cricket is by...
1: Look, Mike. I have every confidence in the world that tomorrow's match will be like every other match we played this season, okay?
2: और रिजल्ट्स भी वही होंगे जो पिछले मैचेस में आप लोग देखते आए हैं।
3: लेकिन सियालकोट शाइंस तो बहुत ऊपर आई है।
2: देखिए, मैं ये नहीं जानता कि कौन ऊपर आया है और कौन नहीं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी टीम टॉप पर है और रहेगी।
4: शाहिद, आपको आपकी टीम में शाहिद आफरीदी भी कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही।
5: जी, मुझे मालूम है।
4: वैसे आपके कोच से आपको कुछ टिप्स मिले?
5: जी, यही कि कोशिश किया करो कि हर बॉल में डलो और
2: नशा करके गेम खेलने के बारे में नहीं बताया। आप लोगों को तो इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि इस किस्म के रेपुटेशन के कोच के साथ इन लोगों को और सीखने को क्या क्या मिला।
5: क्या मतलब है तुम्हारा?
2: तुझसे बात नहीं कर रहा हूं।
6: लेकिन ये तो आपके वालिद हैं।
2: व्हाटएवर, मेरा इस किस्म के आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं।
7: खामोश मिकल, चुप,
2: उंगली नीचे रख के बात करें।
7: देखो, मैं जैसा भी हूं मगर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप ही हूं।
2: फिलहाल उसी के बनिए जिसके साथ बैठे हुए हैं, और क्या पता उस क्लब डांसर की तरह इसकी फर्क सिर्फ इतना है कि अभी पकड़े नहीं गए होंगे। लकी है तेरी माँ।
5: चुप होए।
8: क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शाइंस के कप्तान एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी। लोगों का ये कहना है कि दोनों खिलाड़ी क्रिकेट पर एक बदनुमा दाग है।
9: अब ये सड़क छाप टीम मियां आसिफ कुरैशी की टीम से जंग लड़ेगी। ये दो टके का आदमी, ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग मी डाउन। आई टीच हिम अ लेसन।
1: नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। टुमॉरो नाइट वी गोना लिफ्ट दैट कप एंड आस्क फॉर द यग्बा गाय। When has he ever created a problem for you?
9: तुम साले गोरे लोगों को सही वक्त पर सही बात करने आती है। 15 साल पहले उसने मेरा क्या बिगाड़ लिया था जो अब बिगाड़ेगा। बड़ा राइजिंग स्टार बना फिरता था, लेकिन नेक उसे एक जर्ब लगाना बहुत जरूरी है। उसे ऐसी चोट पहुंचाओ जिसकी तकलीफ मुझे कल स्टेडियम में नजर आए। Who do you want to choose from the team?
1: If I was to choose someone, I'd choose it someone that they couldn't replace. I'd go for the wicket keeper, Michael Magnet.
9: Wow, I like it. Right, cheers.
10: Hello, Akbar.
7: Michael, कहाँ?
0: Taxi, ओ taxi और रुक जा भाई।

पटवा नहीं, हाथ चाहिए हाथ।

0: स्टोर तशरीफ लाइए अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
1: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
2: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: माइकल
1: क्या हुआ इन्हें?
2: सर काफी इंजर्ड है, खून बहुत ज्यादा हो गया।
1: इनको सीधा ओटी में लेके जाए और आई विल लाइन मेंटेन करें।
3: पर क्या हुआ?
0: माइकल को कुछ लोगों ने मारा है बहुत ज्यादा।
3: ओह माय गॉड।
4: वैसे तो इनके लेफ्ट हैंड में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लेकिन इनका जख्म गहरा होने की वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि इनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जो कि बहुत रेयर है।
0: डॉक्टर साहब, इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए।
4: इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप बस फौरन खून का इंतजाम कीजिए। आपने जो सैंपल्स दिए थे उनमें से कोई भी वो नेगेटिव नहीं,
0: लेकिन तीन चार लड़के और भी हैं।
4: तो प्लीज बुलवाएं उनको, बल्कि आप पहले उनसे मालूम करें अगर किसी का वो नेगेटिव हो तो। वक्त बहुत कम है, प्लीज।
3: की कह रहे हैं डॉक्टर?
0: वो नेगेटिव ब्लड चाहिए, सैंपल्स मैच नहीं हुए। तुम में से है किसी का वो नेगेटिव ग्रुप? तीन सात कहां से लाऊं मैं वो नेगेटिव?
5: कोच, हमारा ओ नेगेटिव
6: मौलवी, तू तो
5: मजहब एक नहीं है तो क्या हुआ? बनाया तो अल्लाह पाक नहीं है ना?

0: जितना खून निकालना निकाल लो कोच खाना, लेकिन उसका जान बचना चाहिए।
1: शाबाश।
2: बच्चे को होश आ गया है, आप में से जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं वो मिल सकते हैं।
1: ओ शुक्र है मालका।
3: सिर्फ घर वाले जा सकते हैं।
0: भाई है हमारा।
4: अपना आएगा अपना।
3: भाई है।
4: भाई है अपना।
3: ओए भाई है। प्राय भाई आएगा।
5: सक्का प्राय।
3: मैं फाइनल खेलूंगा ना कोच, मुझे फाइनल खिलाना कोच। मुझे फाइनल खिलाना मलिक साहब, मुझे फाइनल खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाएं। मलिक साहब मुझे मैच खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाना। कप्तान
0: ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ।
1: ओ यार अकबर तेरा क्या कसूर है? ओ जिसने ये हरकत करवाई है असल खबीसु नसल तो वो है। अकबर यार अल्लाह सब ठीक कर देगा।
0: मैं क्या करूं मलिक, बीवी बेटा करियर सब कुछ छिन गया मुझसे, और क्या क्या कुर्बानियां दूं अब मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरा कसूर क्या है। यही कि मैं गरीब था, या यही कि मैं इन गरीबों का साथ दे रहा हूं, उनकी मदद करना चाहता हूं।
1: ओ यार अकबर जब इतने सारे सवालात हो ना तो एक ही जगह से जवाब आते। यही है वो जगह, यही है।
0: 15 साल से एक ना करता गुनाह की सजा भुगत रहा हूं मैं। तू जानता है कि मैं बेकसूर हूं, पर इतना इम्तिहान क्यों? अगर इसी मुकाम पे लाना था तो फिर इन बच्चों के साथ क्यों खड़ा किया? मुझ में मजीद इम्तिहान की हिम्मत नहीं है, इस इम्तिहान को खत्म कर दे। इतना भी गुनाहगार तो नहीं हूं ना मैं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।

0: मैंने कुछ नहीं किया था।
1: मैं जानता हूं बेटे, मैं जानता हूं। कौन कहता है कि अल्लाह सिर्फ अपने गुनाहगार बंदों का इम्तहान लेता है। मैंने तुम्हें गलत समझा, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो।
0: मैं नहीं जानता आज रात के बाद हमारी जिंदगियां कैसी होंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि हम में से ज्यादातर तो शायद इस खेल से जुड़े भी ना रहे। कौन जाने हमारी किस्मत ने हमारे लिए किस मंजिल का तायुन किया है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आज हमारी मंजिल सिर्फ एक है। जीत हमारे कदम चूमे ना चूमे, लेकिन आज हम हारेंगे नहीं। आज इस ग्राउंड में कोई मुस्लिम, हिंदू या ईसाई नहीं, इस मुल्क का गरीब उतरेगा। हर वो गरीब जिसके सर पे चाहे छत हो या ना हो, लेकिन दिल में ईमान जरूर है। खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ईमान को नहीं। इसलिए कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने कहा था कि हार के लफ्ज से मेरी आशनाई नहीं। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने ईमान की ताकत से एक हुजूम को एक कौम बना दिया था। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने शिकस्त को भी शिकस्त फाश दी। तुम आज नहीं हारोगे, कसम खाओ कि तुम नहीं हारोगे। आज तुम नहीं हारोगे।
2: आजादी का

0: सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली ये टीम बॉलिंग करने जा रही है।
1: आजा, आजा, ले आजा, आजा, आजा।
2: ठीक है, और कोशिश करने के बाद मिडिल
3: शैतान ओवर अंप कराने दे यार। यार खान कोच ने क्या सी दूजा एंड तू संभालेगा यार।
2: सही तो कह रहे।
3: वो यार तुमको दोस्ती का वास्ता यार ये ओवर अंप को कराने दो।
2: दे दे काशी, दे दे। शाबाश, शाबाश, शाबाश।
4: मजीद मौलवी पहला गेंद करने आए हैं, जोर से भागते हुए। देखते हैं कि पहला गेंद वो क्या करते हैं। पहला ही बॉल बाउंसर और बैट्समैन जमीन के ऊपर। व्हाट अ बॉल! और गुस्से से घूरते हुए मौलवी मजीद
3: मार न छोड़े।
4: मजीद मौलवी गेंद करने आ रहे हैं, दूसरा गेंद है उनका। उन्होंने गुस्से से बैट्समैन की तरफ देखा, भागे। देखते हैं ये कौन सा गेंद करते हैं। उन्होंने गेंद की, बैट पे गेंद लगी, जोरदार अपील। लगता है कि वो आउट हैं, मगर ये क्या?
5: चुप!
4: मौलवी मजीद सबको कह रहे हैं खामोश रहो।
5: ये अपील क्यों नहीं कर रहा यार?
3: अभी हम नो बॉल करा के तेरा सर पड़ेगा। बच गया तो फ्री हिट ले लेना।
4: मौलवी मजीद तीसरा गेंद करने आए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है बैट्समैन कांपते हुए। मजीद मौलवी आए गेंद की और बॉल कर दिया। बहुत ही अच्छा बॉल विकेटों के दरमियान।
6: मियां साहब व्हाट अ स्टार्ट।
3: पठान को बेवकूफ समझता है।
7: ओए क्या बात है।

0: शाहिद भट्टी बॉल कराने आए, कप्तान है, राउंड द विकेट गेंद करेंगे, विकेट कीपर तैयार, आए गेंद की
1: मिस कर दिया माइकल मैग्नेट ने।
0: व्हाट अ मिस, मैग्नेट को पहले ही चोट लगी हुई है, शायद यही वजह है कि उनके हाथ में गेंद नहीं आई। फ्लिक किया स्क्वेयर की तरफ, मिस फील्ड और ये चार रन। बॉल की बॉलर ने गेंद की स्क्वायर काट, जबरदस्त किस्म का फ्लिक।
2: 203 रन बनाना है सियालकोट शाहीन की टीम को।
3: इस्लामाबाद हंटर्स की शानदार बल्लेबाजी, 203 रन का हदफ सियालकोट शाहीन।
0: बॉल की रिटर्न शॉट, कैच छूट गया, जोरदार हिट और पुल शॉट।
3: और सिकंदर यहाँ आया, इनका पहला ओवर तो खत्म हो गया और अब देखना यह है कि कप्तान निकाल अगले ओवर के लिए किसको लेकर आते हैं।
0: डका उससे कोई इशारा कोच का, वो क्या कह रहे हैं? मिकाल खुश नहीं है इस बात पर, लगता है कि कोई नए बॉलर की तरफ इशारा किया जा रहा है। और बॉलर आ गए हैं फहद।
4: बॉल कराओ और ये बताओ कि फील्ड क्या सेट करनी है।
5: जो फील्ड है वो ही रहने दो।
4: जिस हिसाब से बॉलिंग कराओगे उस हिसाब से फील्ड सेट करनी पड़ेगी।
5: बस कीपर से कहो 4 फीट पीछे हो जाए।
3: बैट्समैन ने स्टांस लिया, दौड़ना शुरू किया उन्होंने। फहद इस मैच में क्या करेंगे?
0: 153.9, फहद अपना दूसरा गेंद करने आ रहे हैं। देखते हैं कि पहला गेंद तो बहुत तेज किया था, दूसरा गेंद कितना तेज करते हैं। वाओ, व्हाट अ बॉल, इतना तेज। बॉल की स्पीड इतनी थी कि बैट्समैन को पता ही नहीं चला कि गेंद कहां से गई।
3: और फहद अगली गेंद करने के लिए तैयार, तमाशाइयों का जोश उरूज पर। फहद ने गेंद की और 7 बोल्ड हो गए। मिडिल स्टंप दो चुका और यूं लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स ने फिर सियालकोट शाहीन्स के पर उतर दिया। और ये फहद का जज्बाती अंदाज, बैट्समैन को कहा पवेलियन वापस जाओ। और लंबी डाइव, बेहतरीन रनिंग
0: और रन आउट मिस,
3: खूबसूरत डगआउट की तरफ हेलमेट का इशारा।
0: कवर ड्राइव, क्विक कट, बहुत अच्छी रनिंग, बोल्ड,
3: बेहतरीन डिफेंस,
0: खूबसूरत शॉट,
3: एक और बोल्ड।
4: नवाजिश तुम जाओगे।
6: कोच क्या हो गया?
4: जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बैठ जाओ आराम से।
7: ओ अकबर यार, 5 खिलाड़ी आउट हो गए ना, की करंट है?
4: मुझे किसी भी तरह ये 5 गेंदे गुजारनी है, ठीक है? सुनो, कुछ भी हो जाए ये 5 गेंदे खेलनी है तुमने, समझे? जान क्यों निकली हुई है? जाओ, कम ऑन, घबराओ नहीं।
6: नवाजिश संभाल के, शाबाश
4: शाबाश।
3: और सिकंदर यहाँ बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की है सियालकोट शाहीन ने। और फहद जो तबाही फेर रहे हैं उनके आगे एक और बैट्समैन को भेजने के बजाय एक नॉन रेगुलर बैट्समैन आया है। देखिए फहद क्या करते हैं इस बार। और ये फुल टॉस सीधा जिस्म पे लगा।
6: यार
3: नवाजिश नीचे गिर गए।
6: नवाजिश नवाजिश जल्दी आ, जल्दी जल्दी,
4: चोट लगी है उसे, देख के आओ।
6: इसकी तो कोच, अब मैं जा रहा हूँ।
4: तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मना किया, तुम बैठ जाओ आराम से।
6: कोच वो हमारे सर पे सर फाड़ रहे हो और आप कहते हैं बैठे रहो।
4: जो भी कर रहे हैं मैंने तुम मना किया है ना।
6: पर
8: लड़न रहे हो, जिन्हें जाना सी वो चला भी गया।
3: मजीद बॉल ने बल्ला घुमाया और गेंद हवा में। एक बार फिर मैच में ट्विस्ट,
9: ये तुम्हारा पापा के लिए।
3: बॉलर के गुस्से पर बैट्समैन का गुस्सा हावी दिखाई देता है।
0: कवर ड्राइव, फुल टॉस, सरों के ऊपर से ड्रेसिंग रूम में।
9: जो लेके आओ ये तुम्हारा मामा के लिए।
3: जज्बात उरूज पर, क्रिकेट चंद में बदल गई है, गुस्सा गुस्सा हो गए हैं। और गेंद इस बार मजीद बॉल के पल्ले पर नहीं आई और इस बार वो हो गया जिसकी उम्मीद 3 गेंदों पहले की जा रही थी।
4: शायद अब तुम जाओ और हुक नहीं करना।
6: कोच अब मैच में रही क्या गया?
4: 106 रन, जब शायद अफरीदी 37 गेंदों पे सेंचुरी बना सकता है, तुम्हारे पास तो 54 बॉल्स हैं। जाओ।
6: वाह,
0: अब नए आने वाले बैट्समैन हैं सियालकोट शाहीन के कप्तान शाहिद। पूरा क्राउड उनके लिए शोर मचाता हुआ

0: बहुत ही जारहाना बैटिंग है शाहिद की और इस दफा रन आउट का खतरा। भागे बॉलर बीच में आ गए
1: और यहाँ रन आउट हो गए।
2: की बकवास है यार,
1: सियालकोट शाहीन को एक और सदमा।
0: ये बहुत गलत हुआ है, इसलिए कि शेख बहुत देर से खेल रहे थे। ये बहुत बुरा हुआ है, लगता यह है कि बैट्समैन ने बिल्कुल नहीं देखा बॉलर को और बॉलर की बैट्समैन की तरफ, पता नहीं चला, दोनों आपस में टकरा गए
1: और शाहिद भट्टी फिर चल पड़े। शॉट लग रहे हैं, रन कम हो रहे हैं, हर गेंद पर रन बन रहे हैं। शाहिद भट्टी के उमदा शॉट,
0: हमीद ने सीधा खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में और वो आउट हो गए।
3: संभाल के काशी,
1: इंतहाई गैर जिम्मेदारी, काशिफ कालिया दिया आउट।
0: नए आने वाले बैट्समैन है माइकल मैग्नेट और साथ देंगे वो अपने कप्तान का हाथ, उनका पहले ही इंजर्ड है।
1: सियालकोट के लिए हालात गंभीर, 7 गेंदें 22 रन और सिर्फ 1 विकेट इस्लामाबाद हंटर्स को।
3: माइकल यार तू, ओ ये देख, बैट उठा सकता हूँ मैं, और हमारे लिए कितनी कुर्बानी देगा। अगर आज पीछे हट गया ना शायद, तो आइंदा कभी किसी की माँ अपने बच्चे को ख्वाब नहीं दिखाएगी। चल जा शाबाश।
0: माइकल मैग्नेट ने सिर्फ रोकना है, इसलिए कि 6 बॉलें अगर शाहिद भट्टी को मिलती हैं, तो शाहिद भट्टी जो हैं, वो ये मैच जिता भी सकते हैं।
1: बात का हैट्रिक बॉल सीधा माइकल के,
3: माइकल माइकल माइकल माइकल
4: तू ठीक तो है ना?
3: हाँ, टूटे हुए को और क्या तोड़ेंगे यार, इसका ओवर खत्म हो गया ना, बस यही करने आया था मैं।
4: मगर तेरे तो खून निकल रहा है। मैं चुप,
3: एम्पायर को पता चल जाएगा, उठा मुझे।
4: अच्छा उठ उठ शाबाश।
1: और अब सियालकोट शाहीन के लिए सूरतेहाल को जिस तरह, 6 गेंदें बाकी 22 रन और 1 विकेट सियालकोट शाहीन के पास, और अच्छी खबर उनके लिए ये कि कप्तान शाहिद भट्टी के पास स्ट्राइक। इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मीकाल गेंद की योग करना चाहते थे, कोई रन नहीं बनेगा, 1 गेंद जाया हो गई। मीकाल की अगली गेंद शाहिद भट्टी के बल्ले पर हवा में और गेंद बाउंड्री के बाहर।
2: शाबाश,
0: बहुत ही खूबसूरत शॉट।
1: और मिकाल की अगली गेंद शॉट गेंद, शायद भट्टी ने छोड़ दिया।
3: अंपायर
1: अपनी जगह खामोश खड़े हैं। रवैये पर हैरान कुन तौर पर,
0: मुझे हैरत है, बैट्समैन ने भी इशारा किया मगर अंपायर ने कहा कि नहीं, ये वाइट बॉल नहीं है।
2: अंपायर खरीद लिया इन्होंने।
1: इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मीकाल एक बार फिर, और इस ओवर में ये दूसरा छक्का होगा।
0: अब कोई चांस नहीं है, 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, बड़े छक्के लगने हैं, या तो चौका या छक्का, इसके अलावा कोई चारा नहीं।
2: कम ऑन,
1: 2 गेंदें 10 रन, मीकाल की अगली गेंद को कवर में खेला है शाहिद भट्टी और 4 रन हो गए।
0: आपने देखा, उन्होंने थोड़ी सी जगह दी, रूम दिया और उन्होंने कट खेला 4 रन के लिए, फील्डर को भी मौका नहीं मिला गेंद रोकने का।
1: आखिरी गेंद, अगर मगर का खेल खत्म। इस्लामाबाद हंटर्स को 1 विकेट, सियालकोट शाहीन्स को 6 रन

0: सिलेक्टर्स जा चुके हैं, कल फिर चक्कर लगाना पड़ेगा।
1: कोच आप रोज ही ऐसा बोलते हैं।
2: हाँ।

0: तो तुम हो सियालकोट के शाहिद आफरीदी?
1: जी मैं।
0: जो जात तुम्हें यहाँ तक लेके आई है वही जात तुम्हें आगे पहुँचाएगी, 3 मैचेस में चांस मिले या 300 में। लेकिन इस सब यूनिफॉर्म को पहनने के बाद पिच पर किसी एक शहर का आफरीदी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का शाहिद खड़ा होना चाहिए।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्बे मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मैं देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए। राबते के नंबर है 905-257-1342।

0: बेहतरीन वक्त है इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से रابطہ कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at Law and Personal Injury Lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: करम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजविक स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 905-828-0009। यो लॉगिन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अपने प्यारों को

0: आईसीसी इमिग्रेशन के RD/MD और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते का नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब से होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैशी साहब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 416-570-0157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले अपने लॉयर के साथ। आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ वक़्त पता चल जाता है, बाज़ वक़्त नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ वक़्त जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी या मेरी बेटी बैठी हुई थी या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, ये कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को लालच, हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, प्लीज मुझे कॉल करें। मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, 570-0157 मेरा नंबर है. बहुत बहुत शुक्रिया.
3: बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैश साहब. और मंडे इंशाल्लाह से बात करते हैं. थैंक यू. नंबर नोट कीजिए 416-570-0157 416-570-0157 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम. सदर ट्रंप कहते हैं कि अभी भी मैं ही फैसले करता हूं, मैं ही करूंगा, कांग्रेस जो है वो फैसला नहीं करेगी. बाजी खबरें थी कि उनसे जो है अब वो क्या फैसला नहीं कर सकेंगे, उनकी ख़त्म हो गई है जो कह लीजिए अथॉरिटी. लेकिन उनका कहना है कि मेरी ही अथॉरिटी है. उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से बातचीत हो रही मगर आगे नहीं बढ़ रही. और इसके साथ साथ ईरान का 90% उनकी बहरी और फ़ज़ाई तबाह होगी. बहुत सी बातें इस हवाले से की हैं, थोड़ी देर में से बात करेंगे. लेकिन इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की इशारी.

छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते, तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: चंद में सिसागा तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777। याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773। मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी। अगर आप ब्रांड न्यू, पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मिठा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी। मिसिसागा, ब्रामटन, स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की चारों लोकेशंस पर ब्रांडेड, ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वैरायटी। फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट। दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ। चारों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 416-901-2810। इट्स 416-901-2810। ये लॉग इन हो mithafurniture.com। हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए। मिठा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर।
1: जी हाँ, मिठा फर्नीचर होलसेल गैलरी। मिड टू हाई फर्नीचर की बहुत बड़ी वैरायटी आपको मिलती है और बेस्ट डील्स आपको मिलती हैं। एवरी वीक स्पेशल डील मिलती हैं और 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी किसी भी स्टोर से, ब्रांड नेम स्टोर से, क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर्स के कंटेनर्स रेगुलरली आते हैं, इसलिए आपको ये मार्जिन दे सकते हैं। मिसागा में लोकेशन उनकी 3050 वेगा बुलेवार्ड, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रॉम्पटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारबोर, 35 बुश रोड कैम्ब्रिज, और बहुत जल्द पाँचवीं लोकेशन भी इनकी ओपन होने वाली है। चारों लोकेशन के लिए की नंबर है 416-901-2810। mithafurniture.com इनकी वेबसाइट है। पवन मीरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे मीरा साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
2: थैंक यू भट्टी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल, मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं, पांचवी का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे। और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और फिर कंटेनर बाइंग। आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद जैसे भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने देखने में हो सकता है हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60, अप टू 80, ये तो इवन वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है हमारी, उससे 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही पांचवी का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा। और जो कंटेनर में लाते हैं, क्योंकि लोकल चाहे एशले फर्नीचर, अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है, और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल है उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है, तो वो फिर जो बचत होती है, हम तो दो पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, मेरा तुझको सौंप दूं वापिस कर देते हैं आपको, और वीकेंड आता है, तीन चार आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मेड एक्सेप्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम $16.99 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको दे रहे हैं $10.99। ये देखो ये है हुनस्ती, आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी हैं वो। तो मतलब ये एक डील होगी। एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड ड्रेसर मिरर और नाइट टेबल हम $9.99 का बेचते हैं, आपको $7.99 का देंगे। लैकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास तीन मॉडल है $16.99 के, आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी। कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास $3.99 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड्स हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं। क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन भाई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है। तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है। तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं, माइकल अमीनी का एक सोफा 3000 से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलता है 4500 का, हम देते हैं 3000 का। तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए। तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है $22.99 का, हम बोलते हैं $14.99 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है। तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं एक बार या फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मंद होंगे, तो आपको हमारा स्टोर जो हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा, और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में। तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 4169012810, 4169012810। थैंक यू वेरी मच,
1: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, नेक्स्ट अरुण आपसे बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कर लीजिए 4169012810, 4169012810 medhafurniture.com इनकी वेबसाइट है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। ब्रैम्पटन में सबसे ज्यादा मॉर्गेज डेलिक्वेंसी हो रही, यानी सबसे ज्यादा मॉर्गेजेस लोग पीछे जा रहे हैं, उसके तीन तीन महीने पीछे हैं, और कह रहे हैं कि 20 घर लगते हैं तो एक जो है वो पावर सेल पे। तो थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात भी करूंगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो बहुत इज्जत करते हैं। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान की क्यादत तकसीम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता, ईरान की क्यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, ईरान की मौजूदा क्यादत उलझन का शिकार है, नेवी और फिजाई सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क्यादत किसके पास है। और दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। 4169300003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। लीजाज कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल जनाब आज कल परसों और तरसों मंडे यानी चार दिन जो है आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में। इस वीकेंड पे मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल आपको गिफ्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, और परफ्यूम ब्रांड नेम परफ्यूम्स की बहुत बड़ी वैरायटी आपको हर ब्रांड नेम आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा फाइन चॉकलेट्स और डिज़ाइनर सनग्लासेस भी मिलेंगी। लीजा कॉस्मेटिक्स.com पे जाके आप मज़ीद डिटेल ले लीजिए। और अगर हम बात करें टाइमिंग्स की तो सैटरडे 9 से 6 बजे और संडे 10 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए ओपन है लीजाज कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। इसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है वो है जनाब विंडोज़ के हवाले से। अगर आपके विंडोज़ और डोर्स पुराने हो गए हैं तो आप कॉल कर लीजिए राइट विंडो फोर्स के सुभानु जी को 4162063200। ये मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज़ और डोर्स इंस्टॉल करते हैं और इनसे आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक जो है वो कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर इनकी, आप विंडोज़ और डोर्स अभी इंस्टॉल करवा लें, पेमेंट चाहे एक साल बाद कर दीजिए, कुछ डाउन पेमेंट देनी होगी, सम कंडीशंस में अप्लाई, इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद आप बना सकते हैं। कॉल कर कंफर्मेशन लीजिए 4162063200, 4162063200। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710
2: 6777
3: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइन से डील करते हैं पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट उमरा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
4: ग्लोबल ट्रेवल टूर के रास्ते का नंबर है दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो इनसे رابطہ कीजिए तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं इसके अलावा उम्र और हज के स्पेशल पैकेजेस इनके होते हैं साथ साथ मनी ट्रांसफर की सर्विसेज इमिग्रेशन की सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं और कमर रशीद साहब रूह रवा हैं CEO हैं तमाम ऑपरेशंस को और खास तौर पे हज के हवाले से उम्र के हवाले से इन्होंने बहुत सी खुद जाते हैं वहां जाकर चीजों को देखते हैं और अभी भी माशाल्लाह इनका हज का जो है पैकेज टूर जो है वो जाने वाला है खुश आमदीद कहेंगे कमर भाई अस्सलाम वालेकुम
5: जी वालेकुम सलाम बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ़ साहब और आपकी वसासत से मैं अपने तमाम सामेईन को भी बहुत सलाम पेश
4: थैंक यू वेरी मच पहले मुबारकबाद बहुत जबरदस्त हज सेमिनार था आपका इस पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह तआला आगे बात करेंगे मैं सिर्फ थोड़ी सी टिकट सेल के हवाले से बात करने की कुछ अभी सीट सेल वगैरह हैं अवेलेबल हैं इस वक्त जाने के लिए
5: जी सर मैं अशरफ पटी साहब सच कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सीट से जो जिसका मुझे इंतजार रहता था और मेरी पसंदीदा डेट्स के ऊपर खास तौर पे जी हाँ पीआईए ने दोबारा 15% सीट सेल जो दी है वो इस दफा 30 मई नहीं बल्कि 24 जून तक का ट्रैवल पीरियड इसमें शामिल कर लिया यानी अब जो बच्चे स्कूल के पेरेंट्स फैमिली जो समझते थे कि हमारे बच्चों के हाई स्कूल है तो इतना अर्ली जाना मैं एंड में मुश्किल है तो उनके लिए बिल्कुल अब जो है आप 24 जून तक जो है अपनी ट्रैवलिंग को मैनेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ और टिकट लेना है आपने वो आपने 10 जो है मई तक टिकट बाय करना जरूरी है टाइम आपके पास है अभी से प्लान करें और यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी और ये बताता चलूं ये टिकट 6 मंथ वैलिड होता है आप अभी 24 जून को जा रहे हैं आप ज्यादा अर्सा वहाँ काम करना चाहते हैं तो और ये भी बताता चलो कि मई के फौरन बाद जैसे कि उमरा सीजन शुरू हो जाता है उमरा के वीजे खुल जाते हैं तो आप अपने पाकिस्तान ट्रिप के साथ सऊदीया का उमरे का ये ज़ियारत का ये ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं बिलखसूस अपनी कौमी एयरलाइन के साथ और हमें कॉल कर सकते हैं इस तमाम डिटेल्स को लेने के लिए 905-275-3555
4: 905-275-3555 पे कॉल कर लीजिए एक तो 15% सेल है प्लस आप उमरा भी कर सकते हैं उसी दौरान में तो खुद ये कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं चाहे दो लोग जा रहे हों चाहे 30 लोग जा रहे हों आप इनसे रब्ता कर लीजिए अच्छा हज के हवाले से अभी आपका माशाल्लाह ग्रुप जो है वो जा रहा है इसी महीने जा रहा है इंशाल्लाह और सेमिनार भी आपका बड़ी अच्छी वहाँ मैं मौजूद था लोगों तक आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए हज के हवाले से और जो लोग अगले साल हज करना चाहेंगे तो उनको भी थोड़ा एडवाइस कर दीजिए
5: जी बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह ताला शक विशक ने और खुसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शिरकत को मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की शिरकत समझता हूँ और आपकी हौसला अफजाई हमारी कम्युनिटी की हौसला अफजाई होती है और आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया और आपने हाजियों के लिए जो खूबसूरत तोहफा दिया इहराम अपनी तरफ से मैं उसको भी कम्युनिटी की जानिब से तोहफा समझता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मोहब्बत हमारे लिए एक बेशुमार के कहने के अनमोल तोहफा होती है अल्लाह ताला इसमें बरकत दे अशरफ भट्टी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप फाइनलाइज हुआ, लेकिन आगे आने वाले ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिलखसूस सऊदी हज कमीशन की जानिब से पता चल रहा है कि इस हज के फौरन बाद नेक्स्ट ईयर का वो पोर्टल ओपन करेंगे, और इन एडवांस बुकिंग ओपन करने का मकसद यही है कि वो जल्द से जल्द क्लोज कर देते हैं। उनका सर्टेन कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा, प्राइवेट हजराज का कोटा जो है, उसमें आप अगर जाने का इरादा रखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप अपने आप ना नाम कम अज कम रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बने हुए तो यही टाइम है आप अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे से रब्ता कर लें। और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम जो बार बार इतनी एडवांस बात करते हैं, आप इस तरह से नियत कर लें कि मैं आज से ही अपने हज के लिए अपने खास एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में आप अपनी कमेटी डाल रहे हैं, पर मंथ $1,000 सेफ्टी कर सेव करते चले जाएं, और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बेस्ट रेट के साथ, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस बजट में जाना चाहता हूँ, कामरा भाई मैं आपके साथ या आपके साथ बैठ कर अपने बजट को डिस्कस करके अगले साल हज के लिए तैयारी करना चाहता हूँ तो मैं वेलकम करता हूँ, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाएं, आप बैठे हमारे साथ, और आपके हज के लिए मैं इसको इबादत समझ कर ये आज आपको दावत दे रहा हूँ, आए बैठे डिस्कस करें, और उसमें हर चीज ओपनली डिस्कस हो जाने से आपका एक बोझ हल्का हो जाता है, आपको लगेगा कि यस कि मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हज का पैकेज कस्टमाइज किया है, जब तक इस फील्ड में थे नहीं तो बात करते नहीं थे, अब हैं तो बताते हैं कि यस आपके बजट को भी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको कस्टमाइज किया जाएगा। आप उसके लिए हमसे जरूरी है कि ऑन टाइम रब्ता कर लें। इंशाल्लाह 19 मई को हमारा डिपार्चर है इस साल अपना हज का काफिला लेकर, 19 मई से पहले मैं मौजूद हूँ, आप आए अगले साल के लिए प्लानिंग करें, आए मिलके बैठें और इसको डिस्कस करें।
4: 905-275-3555 रابطے کے نمبر ہے کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے۔ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کامران صاحب؟
5: جی میں بتاتا چلوں کہ اس میں حج کے لیے 10 دن 12 دن 14 دن 16 دن مختلف دنوں کے پیکج ہوتے ہیں، اس سے میں نے آپ کو کہا آئیں بیٹھیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو کہا کہ اس کو کسٹمائز کریں، اور پاکستانی کانسٹنٹ کی تمام آن لائن سروسز جس میں آپ کا ضروری ہے کہ پاسپورٹ आपके हाथ में हो वो जरूर रखें, नाइको कार्ड को देखें वो एक्सपायर ना हो, कभी भी इमरजेंसी में सफर करना हो तो मुश्किल ना हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी वीजा लेने में भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 8-10 दिन लग जाते हैं। तो अपना रिक्वेस्ट है बेइंग अ पाकिस्तानी, अगर आपके पास अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको एक्सपायर मत होने दीजिएगा, उसको हमेशा अपनी जरूरत के लिए रेडी रखें। इसके साथ साथ कुर्बानी का टाइम आने वाला है, अपने प्यारों को पाकिस्तान रकम भेजनी हो या दुनिया के किसी भी हिस्से से मंगवानी हो, एतमाद के साथ आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट रेट के लिए नंबर है 905-275-3555।
4: थैंक यू वेरी मच कमान साहब, बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू,
5: अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू,
4: नंबर नोट कर लीजिए 905-275-3555। अच्छा जनाब, एक रेस्टोरेंट की आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, रिजवे प्लाजा में है चाय खाना, ये पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, फाइन ओरिजिनल पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड आपको मिलेगा, एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा, और ये तमाम क्वालिफाइड शेफ हैं, पाकिस्तान में पीसी लाहौर में ये शेफ थे और 14 साल से इनका तजर्बा है, और रिजवे प्लाजा में ग्रेट एडिशन है जनाब फूड लवर्स के लिए, स्पेशली चाइनीज खाने वालों के लिए 100% हलाल फ्रेश एंड ऑथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट, नो पैकेट मसाला एट ऑल, अपने मसाले हैं और वेरी रीजनेबल प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पेशल डिस्काउंट है रेडियो पाकिस्तान का वाला देंगे तो फॉर श्योर डिस्काउंट आपको देंगे, और 4 से 12 बजे वीकडेज में और 2 से 12 बजे रात तक वीकेंड्स पे आपके लिए ओपन है। 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है इसका रिजवे प्लाजा में, और इस वीकेंड पे चाइनीज पाकिस्तानी ओरिजिनल पाकिस्तानी चाइनीज खाने खाने हैं तो आप चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन पे चले जाइए। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस बुक करवा लीजिए 905-514-7877, 905-514-7877, चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रबते के नंबर 4165930003। टोरंटो और इसके गिरदनवाह में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है, दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम उल औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें।

0: Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: UniGlobal Advisor Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 437-264-3175। इट्स 437-264-3175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए, इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: जी हाँ, 416-710-6777 पे आप कॉल कर लीजिए, शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है, कैपिटल बैंकवेट हॉल जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई मरसद मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी भट्टी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना। तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है। इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही हैं, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे।

0: हमारा सिंगर सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है, और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के। तो जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंकवेट हॉल में।
1: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 416-710-6777 416-710-6777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
0: इंशाल्लाह। थैंक
1: यू। और जनाब अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके लिए आएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। दो तीन छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है। लीजर्स कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कहम में और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है। और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री। इसके अलावा डिज़ाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी और मदर्स डे के लिए स्पेशल स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ़ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ़ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं। यूनिट इनका 3 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज़ खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल ज़मान साहब। स्टे ट्यून्ड।
2: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scar Romain 2155 Lawrence Avenue East Lawrence Bridgemount ka intersection 416-757-9999 दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-5678
1: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861. अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा डेडलाइन इज कमिंग सून अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922 इट्स 905-783-1922 SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टीमोर हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक्स सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे पेवेन्यू करम ज्वेलर्स अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अल करम ज्वेलर्स जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के बेहतरीन सेट्स शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे आज ही विजिट कीजिए अल करम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा 9582800009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari.

0: अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, हाजिर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ्ता आपका बड़ा क्लासिक गया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी ठंड थी, बाकी मौसम बहुत अच्छा था, और स्पेशली कल का और आज का वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वेदर। हाँ, थोड़ी सी बारिश भुगती है, पर दैट्स फाइन। तो आइए लिए चलते हैं हंसियों का भंडार, हंसियों का बाजार, हमारी को होस्ट आयशा।
1: अस्सलाम वालेकुम आपको, मेरी सारी टीम को, सब देखने वालों को मुअद्दबाना सलाम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, आप ठीक होंगे, टीम ठीक होगी, सब जबरदस्त।
0: हाँ जी, नहीं सारी ठीक हो भाई। फिर से बताओ, आयशा पूछ रही है।
1: श्योर टीम है भाई, हमारी टीम है, रखना पड़ता है।
0: हाँ जी, यू करेंगे ना, वीकडेज में भी वो हमारा जो ग्रुप बना हुआ ना टीम का, उसमें कनेक्टेड रहा करो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि थर्सडे। मेरे मोहतरम, मेरे साईं, अदा साईं, बाबा जानी, क्या हाल है जी आपका?
2: बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र सर।
0: अल्लाह का शुक्र,
2: बिल्कुल।
0: बाबा जी आजकल बढ़िया पार्टियां गा रहे हो।
2: पार्टियां जी,
0: एक ही मौजू पे इतनी है पार्टियां। लोगों से कि आपके लिए दुआ करें, क्योंकि कभी आपको नजला हो जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी 18, 9, 7, ये कुछ आंकड़े उंकड़े सही नहीं चल रहे आपके।
3: हाँ, बस दुआ करनी चाहिए, वैसे भी दुआ करनी चाहिए,
0: दुआ करनी चाहिए,
3: सही भी चल रहा हो तो तब भी दुआ करनी चाहिए।
0: चोरी शौकत लई मौजा लग गई ने, मौसम आ गया सीधे सीधे।
4: मौसम सीधा है।
0: अच्छा, मैंने ना अक्सर इसको देखा था कि जब सर्दियों में आता था ना, तो ये हमेशा टी शर्ट में आ रहा था, ठीक है। तो आज भी मैंने देखा, पिछले वीक भी देखा, दोनों वेदर वॉज फाइन, लाइक यू डोंट हैव टू बी वरी के जी कुछ ठंडा गर्म पहनो, ठीक है। तो दोनों दिन ये जैकेट पहन के आया है, ये उल्टा चलने वाला जो है ना सीधा नौजवान है।
1: तो पता है मैं कनाडा में रहता हूँ, जहाँ पे वेदर का कोई जो है ना भरोसा नहीं।
3: डब्ल्यू का
0: लेकिन तीनों का नाम ना लेना,
3: एक डब्ल्यू का नाम नहीं लेना।
0: हाँ जी जुबैर, सबसे पहले तो आपसे हम पूरी टीम मिलकर पूछते हैं कि जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लास्ट वीक, यू वॉज यू नो बेसिकली विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए, आप ये समझो कि टीम ऑफ द शो, आप शो में पहले तो आ चुके हो, पर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, को बाहर से फीडबैक मिला के जी नम यम यम यम
5: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, सब तो पहले तो सब व्यूअर्स को मेरा सलाम, टीम को मेरा सलाम, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा लास्ट वीक बहुत अच्छा रहा, सब टीम मेंबर्स ने मुझे बड़ा वार्म वेलकम किया, ठीक है, समेत आपके भी।
0: अच्छा चलो जी, हमारी तारीफ होगी नेक्स्ट।
5: और जिन जिन को मैंने वो शो का बताया, उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा, वेलकम टू द शो केस विद बिलाल चीमा।
0: थैंक यू। ये बेसिकली नाम जरूर ऐसा रखा गया, रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन ये शो आपके बगैर कुछ नहीं है। बिलाल चीमा समझे कि जी साफ कहता है इस शो में कि बेसिकली शो इज नथिंग विदाउट यू गाइस, सो इट्स ऑल टीम एफर्ट एंड इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, इट ऑलवेज विल बी द टीम एफर्ट।
5: आई रियली अप्रिशिएट दैट,
0: नो वरीज। बाबा जी के एक और बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी बड़ी शिद्दत से जो है ना हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हालांकि पटी साहब ने लास्ट वीक जिक्र किया था, तो प्रॉब्ली सून वो विल बी गेटिंग हिम इन अ शो, और लगता ही है कि जी माशाल्लाह शो बढ़ता जाएगा और जगह कम होती जाएगी। और एक जमाना था कि जब हमने ये बहुत साल पहले, अब तो माशाल्लाह इस प्रोग्राम को चलते हुए भी 7 साल से ज्यादा गर्सा हो गया, और मेरा ख्याल है कि ये आप ये समझे कि दुनिया से तो मैं मुवाजना नहीं करता, लेकिन टोरंटो में दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन शो सो फार, और एक्चुअली यू नो लेट्स क्लैप फॉर आवर सॉन्ग, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, हम किसी वजह से जैसे फर्ज करें कि अगर आयशा छुट्टियों पर चली जाए तो हम शो ना करें, या मतलब मलिक साहब गायब हो, मलिक साहब ऐसे कम गायब होते हैं,
1: हाँ,
0: दूसरे नंबर पे मियां साहब जो है अक्सर गायब रहते हैं, तो हो ना तो लोग पूछते हैं बकायदा कि जी नया शो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आए, या वट एवर। सो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी इस इज्जत का शुक्रिया जो आप हमें बख्शते हैं, और प्रोग्राम में सबसे ज्यादा आपको पता है किसको मिस किया जाता है, हालांकि बाहर प्रोग्राम में बैठे होते हैं, बाबा जी को।
1: बाबा जी
5: मैं थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं, ये सबसे पहले वो जो एक कवाली और वो एक वो शुरू हुए थे, वो नुसरत फतेह अली खान साहब से शुरू हुए थे, उनका नाम तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना चाहता है। और बाबा जी उनको सुनते सुनते जवान हुए हैं, बचपन सारा अपना जवानी सारी उन्होंने नुसरत फतेह अली खान पे गुजारी है,
3: उन्होंने अपने बचपन जीता ही बाबा जी, वो
5: नहीं, अब इख्तिताम जो है ना अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, चाहत फतेह अली खान पे।
0: अच्छा, ये आप चाहत वाली बात
5: खास है, चाहत फतेह,
0: वाह जी वाह,
5: कैसा एक लॉन्ग पीरियड है,
0: नहीं लेकिन इसमें कोई शक नहीं है,
3: राहत से चाहत तक का
0: राहत से चाहत
3: मिल जाएगी बाबा जी।
0: बाबा जी ये राहत भी आपको, नुसरत भी आपको कह रहे हैं, राहत भी आपको कह रहे हैं और चाहत भी आपको ही कह रहे हैं।
2: देखो जी वो तो बात ये है कि फन और फनकार, कल भी मैंने एक वीलॉग किया था एक जगह बैठ के, अगर चाहत फतेह अली खां जैसे लोग फनकार कहलाए जाएंगे ना तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्लासिकल म्यूजिक की इंडिया पाकिस्तान में नहीं होती,
0: किसी भी म्यूजिक की
2: किसी भी। ठीक नहीं, मैं एक खास म्यूजिक
0: क्लासिकल तो वो बनना चाहता है लेकिन
2: मैं
0: करता
2: अपने,
0: तो
2: अपनी कौम पे, अपने लोगों पे, अपनी कम्युनिटी पे हैरान हूँ कि चाहत फतेह अली खां जैसे बंदे को फंक्शनों पे बुलाते हैं और उससे गाने जो सुनते हैं चीमा साहब, ये मैं शो में बैठ के आपको बता नहीं सकता।
0: बेहुदा, लफ्ज़ बेहुदा यूज करें।
5: नहीं नहीं, वो असल में बच्चों को, जो बच्चे स्कूल ही ना जाते हैं उनके लिए वो ए बी सी डी सिखाने के लिए और अलिफ बे पे सिखाने के लिए उनको बुलाया जाता है।
2: नहीं, उनको जो बुलाया जाता है के लिए। पिछले दिनों लंदन में उनका शो हुआ था और उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे इस्तारे इस्तेमाल किए कि फैमिलियां उठ के चली गई। तो मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी नुसरत फतेह अली खान, गुलाम फरीद साबरी, चाहत फतेह अली खान, इनका तकाबुल जो है चाहत अली खान से नहीं करना चाहिए बल्कि चाहत अली खान को जूते मारने
0: चाहिए। एक सेकंड, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कोशिश करेंगे चाहत फतेह अली खान की पिक्चर जो है ना वो लाएं, क्योंकि कई दफा नाजरीन या सामीन जो नाजरीन उनको नहीं पता चलता है कि चाहत फतेह अली खान किस बला का नाम है। ठीक है, तो आप बड़ा मेहरबानी अगर हो सके इसी गुफ्तगू के दौरान ना तो उनकी पिक्चर जरूर लाइएगा। जी
3: भाई, आप अनारकली की तरफ कभी गए हो? पुरानी अनारकली से
5: बानो बाजार,
3: न्यू हॉस्पिटल की तरफ या नहीं?
0: बिल्कुल,
3: वहां पे मदारी बैठे होते थे, वो बंदर का डांस भी हो रहा होता था,
0: ये चाहत फतेह अली खां है जी।
3: तो मैं तो तस्वीर इनको उसी मदारी से
0: मदारी से मैं बंदर से दूंगा बस।
3: मैं यही कहने लगा था, लेकिन अब फर्क आप खुद निकाल लें कि ये मदारी है या बंदर है।
0: ना नहीं, लेकिन पता क्या, आयशा बड़ी इंप्रेस है सिंगर से।
1: अल्लाह खैर,
0: यार मैंने अगले दिन आपकी गाड़ी में मैंने इनको सुना, लेकिन एक हकीकत आपको बताता चलू, बेसिकली ये बहुत पुराने क्रिकेटर है।
5: यस,
0: ठीक है ना, ही यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, और ये पहली दफा इंग्लैंड जो है ना वो काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे।
2: हाँ जी,
0: ठीक है जी, और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है, नहीं तो आप देखे ना इनकी थोड़ी सी मुशाबत जो है
5: वो ये क्रिकेट की इनकी तस्वीरें भी उधर ये आ रही होंगी स्क्रीन पे।
0: हाँ जी,
5: जब ये उधर आए थे।
0: बिल्कुल जी, वो प्रोड्यूसर साहब इस काम में माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, तलाबट्टी की वजह से तो ये प्रोग्राम चलता है। अक्सर हम कहते हैं कि उनका शुक्रिया, द मिनट वी से समथिंग ही ऑलवेज प्रोड्यूस दैट एवरीथिंग। तो लेकिन एक चीज मैं और भी कहूंगा, मैं भी इसे कुछ कह सकता हूँ कि इजाजत है मुझे? कह सकता हूँ खवातीन, मैं ये समझता हूँ कि एक आजकल हमें याद है हम पहले एक घंटे का ड्रामा देखा करते थे, तीन तीन घंटे की फिल्में देखा करते थे, ठीक है, अब मेरे ख्याल में ड्रामे भी आधे घंटे पे आ गए हैं, फिल्में भी डेढ़ घंटे पे आ गई हैं, लेकिन जमाना इतना तेज हो गया ना कि अब रील्स पे आ गए लोग।
2: हाँ जी,
0: कि दो मिनट वो भी छोड़े जो है कोई second. किसी का वीलॉग जो है ना वो 15 मिनट का बड़े मुश्किल से सुना जाता है,
2: 3 मिनट से
0: समझे कि यही होता है कि जी आप जो है ना स्क्रॉल करो आगे क्या है आगे क्या है, तो ये एक एंटरटेनमेंट असल में। लेकिन ये वो एंटरटेनमेंट है जिसको हमने उछाल तो बहुत दिया। अगर देखा जाए तो ना वो सिंगर है ना उनको किसी सुर का पता है, उन्होंने माशाल्लाह अपने सुर भी बना लिए अब तो, ठीक है जी, लेकिन खवातीन इसको उस हद तक रखे तो ठीक है, बाकी आपकी सेहत और आपकी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं है कि आप इनके शो अरेंज करें।
3: बिल्कुल ऐसे,
0: और स्पेशली आप फैमिलीज के साथ बैठ के ये शो देखेंगे तो जिस तरह के उनके गाने हैं ऑनेस्टली अगर उसकी आप वर्डिंग सुने ना, और वो बड़े जूम इन है, और जूम इन भी इतने है कि बेहूदगी दी आता है कि बाबा जी ने तो बड़े शराफत से टाइम काम लिया था, तो बाबा जी ने जो शराफत से काम लिया था वो हम नहीं लेते, हम इनको उस स्क्रोल के हद तक या मजाक की हद तक या उनको एक ऐसा सिंबल दिखाने की हद तक, और यार चाहत फतेह अली खां ना बन, ठीक है ना, ये चलेगा। ही इज नॉट अ सिंगर, प्रॉब्ली ही वाज अ गुड क्रिकेटर, आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नेवर प्लेड विद हिम, लेकिन मैं ये वो चीज है जो बच्चों के साथ साथ अपनी फैमिलियों की पहुंच से भी दूर रखे।
2: जी जी,
5: दिखा
1: सस्ती शोहरत, अटेंशन सीकर, ये उस कैटेगरी में
2: नहीं, लेकिन जो बंदे उनको बुलाते हैं उनकी दिमागी तवाज़ुन भी
0: बाबा जी, वो तो पैसा कमा रहे हैं।
1: हाँ, तो पैसा
0: आप उन पे तो जाए ना, ही इज स्मार्ट। कि जब आई एम सॉरी टू से कि जी, जब कुछ भी हो आप ये देखो ना, पाकिस्तान वो मुल्क है कि अगर आप खंबे के नीचे खड़े हो जाओ और यूं उंगली कर दो ना और ऐसे देखना शुरू कर दो, तो कम से कम 20-30-40 बंदे आपके गिर्द इकट्ठे होकर ना वही चीज ढूंढना शुरू कर देंगे जो आप कर रहे हो।
2: मुंडे ने नारकली का नाम लिया ना, उसे जाके उत्ते वेखना शुरू कर दो ना, 5 मिनट तो ते इर्द गिर्द 50 बंदे इकट्ठे हो गए, वो भी वेखना शुरू कर देते
0: हैं। सो यही चीज है दुनिया में। आप ये देखें ना, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ले लेते हैं, अब ये नहीं मैं कहता कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री माठी है, नहीं यार, मौला जाट जैसे शिकार दिए उसने, नूरी नाथ जैसे करेक्टर दिए उसने, लेकिन अगर आप उनको गौर से देखोगे ना तो ये भेड़ चाल ही चल जाती है। हमारे जो पाकिस्तानी कौम है उसमें जाहिर है शरा खानगी बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। लेकिन उसको फिर जैसा वो कहते होते हैं ना कि फिर वैसी ऑडियंस चाहिए ना आपको, और जैसी ऑडियंस है वैसी ही प्रोडक्ट आपने बना के देनी है। तो ये मशहूर तो होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इस बोतल के लेबल पे ये लिखा होना चाहिए कि बच्चों और फैमिली की पहुंच से दूर है, किसी इज्जतदार महफिल में आने के काबिल नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: नहीं बस, आप दूसरे टॉपिक की तरफ चले।
0: दूसरा टॉपिक जो है ना, हमें सेगमेंट में बहुत थोड़ा टाइम रह गया।
3: अच्छा,
0: ठीक है ना,
3: मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इसी पे बात करनी है, ये इतना ही अच्छा क्रिकेटर होगा जितना ये।
0: अच्छा,
3: ये
0: है।
5: नहीं, अच्छा आपने चाहत से दिखाएंगे तो रेलिवेंट हो गई बाबा जी से चली के राहत से चाहत तक का सफर जो है। तो बाबा जी की जी पार्टी है, उन्होंने उधर वो पेप्सी क्या नाम है उस,
0: हाँ, बाबा जी की पार्टी ने नहीं, वो मियां साहब की पार्टी,
5: मियां साहब की पार्टी, वो लिबर्टी चौक में,
0: हाँ,
5: जो
0: बाबा जी वो आपको पता है खबर का, एक कोई पेप्सी साहब है, उनको सुने कभी आपने?
2: नहीं सुना।
5: वो भी सेकंड
3: जिसकी आवाज लड़कियों की तरह पूरा वो बोलता है बंदा।
0: अच्छा, मुझे नहीं पता है
5: ना, वो अजीब सा लिबर्टी चौक में करेक्टर है। लिबर्टी चौक में उन्होंने नून लीग वालों ने जब इलेक्शन आना था तो उनको जनाब जी खड़ा कर दिया लिबर्टी चौक में कि जी ये जरा आवाम
0: जेड़े चार वोट पहने वो भी ना पहन,
5: वो भी ना पहन।
0: नहीं नहीं, वो तो खैर स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कि आपको मिल्टन में
1: ऐसे चाहत साहब के,
0: चाहत साहब का शो दिया जाए, तो आप विल यू बी एबल टू सेल इट, यानी सोल्ड आउट वाला ये वो कर सकेंगे?
1: मैं तो अपने हाथों से काम नहीं कर सकूंगी कि मैं उनके टिकट बेचूं, लेकिन उनको देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, ये मैं गारंटी के
0: इसके पीछे है। क्या वजह, क्यों आते हैं उनको देखने के लिए लोग?
1: क्योंकि लोगों को ऐसी एंटरटेनमेंट चाहिए चीप किस्म की, उसके लिए कहीं भी किसी वक्त भी कहीं भी बंदा जा सकता
2: है। देखें, नेगेटिविटी की भी अपनी वैल्यू होती है ना, एक पॉजिटिविटी की वैल्यू है, नेगेटिव लोग देखना चाहते हैं कि यार इसकी मुखालफत क्यों हो रही है, ये क्या शख्स है, इसको देखें तो सही कि लोग वाकई सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, तो नेगेटिविटी देखने के लिए भी तो लोग
1: क्यूरियोसिटी से लोग
2: जाएंगे।
0: ठीक है, लेकिन एक चीज, हमारे पास टाइम है सिर्फ 2 मिनट, आप सबके लिए एक सवाल करूंगा और वन बाय वन में उसका आंसर लूंगा।
2: अच्छा,
0: क्विक एंड शॉर्ट, आप इसको वल्गैरिटी कहते हो? इसके गाने मैंने सुने हैं, थोड़े देखे हैं, सामने आते हैं क्योंकि आई यूज्ड टू वॉच हिम फॉर फन, गंदे हैं। हमारी आज की अगली नस्ल जिन रैपर्स को सुनती है, जो इंग्लिश में वो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आशा से शुरू होते हैं।
1: सुनते हैं, सब कुछ होता है, और मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा उन्हें हर चीज की नॉलेज है, बच्चों को यहाँ की अवेयरनेस है इस टाइम, मतलब उन वो जो एजेस में उन्हें सब जो सब कुछ पता चल गया जिसकी चीज की उन्हें अवेयरनेस है, हमारी एज में मतलब ये चीजें नहीं थी जब हम थे यंग। बस ये कि आप उन्हें समझाएं, बच्चों को हर चीज डिस्कस करें, ऐसा उनके साथ रिलेशनशिप रखें कि आपके साथ जो है वीकली डिस्कशन हो, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में जरूर आप देखें, और यू नो कीप पोस्ट, कीप अपडेटेड।
0: बाबा जी
2: देखें सर जी, जमाना बदलता रहता है, जब हमने फिल्में देखनी शुरू की उस वक्त हीरोइन का हाथ पकड़ना भी जो है सेंसर वाले काटते थे, उसके बाद मुख्त एतवार रहते रहे, अब बात जो है बहुत आगे बढ़ गई। अब जो आपने रैपर्स की बात की है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम आपस में हम लोग कहना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन वो एक रिवाज बन गया है। आप अपने बच्चों को देखें, जब दूसरे दोस्तों के साथ खड़े होते हैं तो सारे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि सब्र शुक्र करके बैठ जाना चाहिए।
5: ये रैपर्स जो लैंग्वेज यूज करते हैं गानों में वो नहीं होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को भी इस तरह का तैयार करना चाहिए कि वो इस मूवमेंट पे इनको फॉलो मत करें।
0: शौकत अली जो गंदे गंदे गाने अजकल ज्यादा ने, तुसी क्या आंदे हो इस बारे च?
5: तेन
0: पता ना इतने एक नंबर है बहुत वड्डा, कहते 911। इन्हें मैं तेरी सारी उम्र जमानता ही करांदा रहा बाहर जाना घर रहे। आपका क्या कहना
3: सर? घर का माहौल जो है ना वो बहुत असर रखता। आप अगर एक पौधे को टाइम पे पानी देते हैं तो वो बीज बड़ा होके एक दरख्त बनता। तो हमें अपने बच्चों को इस अंदाज में परवान चढ़ाना चाहिए कि जो हमारा माशरती माशी और इस्लामी माहौल जो है ना वो उनके अंदर सारी चीज़ें पाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इतने बैकवर्ड हो जाएं, इतने पीछे रह जाएं कि वो दौड़ में शामिल ही ना हो सकें। लेकिन उन्हें अच्छे बुरे की पहचान माँ और बाप दोनों का फर्ज है कि वो उन्हें दें।
0: जरूर। सो खवातीन हज़रात, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, राइट आफ्टर द ब्रेक विल सी यू अगेन।

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: इस सीढ़ी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बेटी के लिए तालीम का रास्ता चुन सकूं।
6: TCF ऐसी कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अत्यात और जकात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं, तो TCF का साथ दें और बदलें लाखों जिंदगियां।
7: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.

0: मिस करते हैं, इवन कि यहाँ पे दो भाई भी हैं ना, अपने अपने घरों में रह रहे होते हैं. इस पे मेरा ख्याल है कि इज दिस डू यू थिंक सो वन ऑफ द रीजंस टू?
1: Yes, of course. This is the main reason. I think so. This is the main reason.
0: अच्छा थोड़ी सी इंग्लिश मैंने बोली, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू इंग्लिश में जवाब देगा. मेरी तो फ्लुएंट ही निकल गई भाई, नहीं बोलता आगे से.
1: उसमें भाईजान देखें,
0: जज्बाती हो
2: गया.
1: उसमें ये है कि ये जो हमारा फैमिलीज का, बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इमीडिएट फैमिली इज अ फैमिली. लेकिन जो एक चाचा दादा, आपने तो बात की ना कि आप अपने चाचे से और ताए से डरते होते थे. हमारे मोहल्ले में कोई बुजुर्ग भी बड़ा वो गुजर जाता था ना, तो अगर कोई काम बच्चा कोई गलत उधर राह पे चल रहा होता था तो उसको देख के वो नुकरे चला जाता था, यार वो चाचे ने देख दिया तो मेरे प्यों को दसना.
0: एग्जैक्टली
1: ठीक है.
0: तो वो अच्छा मुझे ये लगा कि कहने लगे कि आप तो सिर्फ कह रहे हो कि चाचे ताए से डरते थे या भाइयों से डरते थे. मैं तो उन्होंने जुती को भी डरता था. मुझे ये लगा कि ये कहने लगे कि ऐसी तो उन्होंने छित्र को भी डरते.
1: एग्जैक्टली लाइक उन्होंने उधर हम किसी भी मोहल्ले में जो बड़ा बुजुर्ग होता था उसको समझ के हम अपने बाप के अपने वालिद की जगह पे रखते थे उसको और देखते थे कि यार नहीं वो आ रहा है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उधर ही खड़े हो जाते थे एहतराम से.
0: एग्जैक्टली.
1: दूसरा जो बच्चों में फ्रेंडशिप है ना वो होनी चाहिए. मैंने जो चीज नोट की है, आप मेरे घर जिस तरह आपने जिक्र किया बारहा आ चुके हैं, आप इधर भी आ चुके हैं मेरे घर में, आपने मेरे बच्चों के दरमियान और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी देखी होगी. क्योंकि जो गैप मैंने फील किया अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिद के साथ, ठीक है, मैं वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ वो गैप आए. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ अच्छी बॉन्डिंग रखें, उनके साथ अच्छे और बुरे हर चीज को शेयर करें. और उसकी सबसे मेन रीजन क्या होनी चाहिए, उसका तरीका क्या होना चाहिए कि जब बड़ों की महफिल बैठी हो, हमें तो छोटे होते निकाल दिया, चलो बड़े बैठे हैं बाहर निकल, जब बड़े भी बैठे हो, आप मेरे घर रहे हैं, बाबा जी मेरे घर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को अपने साथ बिठाएं ताकि वो हमारे से कुछ लर्न करें.
0: वेरी वेल सैड. एक चीज और मैं इसमें मेंशन करता चलूं, और ये जैसे बाबा जी ने कहा ये बात सिर्फ इस्लाम फैलाने के लिए नहीं है या कुछ ऐसा वैसा, लेकिन एक चीज मैंने बड़ी अच्छी नोट की कि हम लोग जब इसके घर इकट्ठे हुए ना, तो इसने अपने नमाज का वक्त आया ना, तो नमाज पढ़ने के लिए हमने जमात, तो जमात के लिए माशाल्लाह इसके बेटे ने हमारी मान रखी, विच आई पर्सनली लाइक, ठीक है ना. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ऐसा ही होना चाहिए, अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस हमें खुद देना है, ठीक है, उनको प्राउड फील करवाना है कि जी वी लव यू दिस वे एंड हमारी इमामत वो करवाएं. चलिए साहब, वो कहते हैं ना जी देर आए दुरुस्त आए, आप मुझे ये बताएं कि ये जो हमारे पाकिस्तानी हैं, आपका ख्याल है ये दो कश्तियों में सवार नहीं होते हैं? पाकिस्तान से तो आ जाते हैं, पाकिस्तान साथ लेके आते हैं, यहां वो खुल के वो नहीं बन सकते जो यहां है, और ये एक डिफरेंट सी पर्सनैलिटी नहीं आ जाता कि जैसे वो सोच उधर की ख्याल इधर का, इधर जब आते हैं तो लिबर्टी वो नहीं है जो वहां पे थी, और वो मतलब बेसिकली देखा जाए ना वो लिबर्टी नहीं है जो वहां पे थी, लेकिन वो लिबर्टी उससे 10,000 गुना बन के यहां पे मिलती है, और हर चीज आजादी से और आराम से मिलती है एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल फॉर इट. तो क्या वो दोहरी पर्सनैलिटी का शिकार नहीं हो जाते?
3: मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनकी बुनियाद प्रॉपर नहीं बनी, वो आके यहाँ पे डैमेज हो जाते, लेकिन जिन बच्चों का आप माँ बाप ने, जैसे अभी जुबैर भाई ने कहा कि बच्चों के साथ दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है. हम अगर पाकिस्तान की एक मस्जिद का थोड़ा सा तजर्बा कर लें, मोहल्ले की मस्जिद, वहाँ पे जब नमाज का टाइम होता है या जुमे का टाइम होता है तो उस वक्त सबसे पहले क्या आवाज़ आती है, ऐ बच्चे नु पीछे कर दो, बच्चों को पीछे निकाल दो. अगर वही एक बड़े के साथ एक बच्चा खड़ा हो तो वो शरारत नहीं करेगा, और जब आप सारे बच्चों को इकट्ठा कर दें पीछे तो वो एक दूसरे को थप्पड़ भी मारेंगे, शरारतें भी करेंगे, दौड़ेंगे. बात ये है कि तरबियत करना माँ बाप का फर्ज है, और सबसे पहली चीज जैसे आपने कहा कि बाप तो सारा दिन बाहर रहता है, माँ जो है ना वो एक जेवर देती है अपनी बेटी को भी बेटे को भी, और जो माएँ अपने बच्चों की ऊंच नीच को खराफात को बाप से छुपाती हैं वो सबसे बड़ी दुश्मनी करती हैं अपने बच्चे के साथ, अपने साथ, अपने बच्चे के साथ और अपने खामन के साथ, और वहीं से एक घर में जो है ना वो तनाजात शुरू हो जाते हैं. एक वक्त आता है कि बाप जो 10 घंटे 12 घंटे काम करके है, उसका काम वो जब सुबह जाता है बच्चे

0: या स्कूल जा चुके होते हैं या वो सोए होते हैं। वो जब घर आता है तो बच्चे सोए होते हैं, बाप घर आता है और खाना खाता सो जाते हैं। अगर वो नहीं बताती ना तो वो अपने बच्चों को डैमेज कर रही है, वो नुकसान कर रही है। उसे चाहिए कि अपने बच्चों की अगर पॉजिटिविटी बताती है तो वो नेगेटिविटी भी बताए, और बच्चे तभी परवान चढ़ सकते हैं। और जैसे आपने कहा, जहाँ वहाँ से जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ के आते हैं और यहाँ पे आके उन्हें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, यहाँ पे चाम है, यहाँ पे पैसा भी है, वहाँ पे अगर पैसा कम है तो वहाँ पे उन्हें वो प्रोटोकॉल ज़रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियर है तो उसे एक प्रोटोकॉल है, एक डॉक्टर है उसके लिए एक प्रोटोकॉल।
1: यू आर इंजीनियर और एमबीए वहां पे मैकडॉनल्ड्स पे जॉब कर रहे होते हैं, आर यू किडिंग मी, आई डोंट बाय दैट।
0: पता नहीं कहां आपने पाकिस्तान में इंजीनियर और डॉक्टर्स को मैकडॉनल्ड पे काम करते
1: हैं। डॉक्टर का मैंने नाम नहीं लिया, मैंने इंजीनियर्स ठीक है और एमबीए का नाम लिया है, तुम्हें डॉक्टर सुनाई दिया है क्योंकि तुम्हारे गिर डॉक्टर फिरते हैं। लेकिन मैं आपको इतला नहीं करता हूँ कि जब मेरे छोटे भाई ने, जो सबसे छोटा भाई था, उसने जब एमबीए किया तो उसके बाद जो है ना उसने कहा जी कि आई फाउंड अ जॉब। हमने कहा फिक्र न कर, हम तुम्हारी नौकरी करवा देते हैं। नहीं आई फाउंड अ जॉब माय सेल्फ। किधर? उनके जी मैकडॉनल्ड्स में। आर यू किडिंग मी ब्रो? हमारे मैं ये नहीं कहता कोई भी जॉब माड़ी है या कुछ ऐसा वैसा है, लेकिन जॉब के साथ जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए बंदे के साथ कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसे जॉब कौन सी मिल रही है। ओके आई एग्री विद दैट। इसको जो इसने कहा है वो देख दू कि तरह दिल कर रहा है बच्चे इतने उड़ के
2: ਉਨੇ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਭਾਅ ਤੁਲਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਅ
1: ਤੁਲਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆਉਂਦੇ ਚੜੀ ਸ਼ੌਕਤ ਜੇ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆਏ ਹਫਤੇ ਕੋ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ
2: ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ
3: ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ
1: ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ
2: ਲੈਣਾ।
1: ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਰਫਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਹੇ ਡੈਡ ਹਾਊ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਵਟਸ ਅਪ ਟੂਡੇ।
2: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ?
1: ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ।
3: ਆਪਕੀ ਰਾਏ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਰਮ,
0: ਤਬ ਸੇ ਯਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ।
1: अच्छा ये सारी तकरीर मैंने यार खवतीन हज़रात, मैं तो बड़ा तंग हूँ अपने पैनल से कि मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ और फिर भी कह रहे हैं सबसे यही राय दे रहे हैं।
4: सर मैं एक चीज, सॉरी
1: एक सेकंड, पहले मुझे एक सवाल बाबा जी से करना है। बाबा जी मैं ये चाहता हूँ क्योंकि माशाल्लाह जितनी दुनिया और आपने देखी है या जितना वाइस तजर्बा आपका शायद हमारा नहीं, जैसे इसने कहा कि ये जो दो कश्तियों के सवार हैं, अब देखे ना माशाल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि माशाल्लाह कमाल के काम करते हैं कि फख्र किया जाता है।
4: टैलेंटेड,
1: ठीक है जी, टैलेंटेड हैं और बड़ा पॉजिटिव टैलेंट लेके चलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ, जो कहते हैं जो घर पड़े हो बाहर भी पड़े, कुछ ऐसे भी हैं। ये एक नेगेटिव पॉजिटिव के भी होता है ना कि कई दफा थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव चलती है और कई दफा सिर्फ नेगेटिव चलती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
5: सर जी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बात है दो किश्तियों की, इतना किसी ने गल की थी। छोटे बच्चे सन को अठ अठ नौ नौ साल दे, उन्हां नूं कहा कि जी कौमी तराना सुनाए। वो पांच बच्चे उठ के शुरू हो गए पाकिस्तान
1: जमीन
5: शाहबाद। यानी उस बच्चे उन्हां बच्चे गल है कि मां प्यो नूं चाहिदा है कि जे तुसीं बच्चे इत्थे लै आए हो ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ, ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ, ਅੱਛੀ ਜੌਬਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸਵਾਰ ਰਹੋ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਨੰਬਰ ਦੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ 6,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਆਟੋ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਤੋਂ, 6,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਔਰ ਊਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿ ਕੌਣ ਤਰਬੀਅਤ, ਕਿਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਆ?
1: ਉਸ ਕੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਨ ਕੀ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੇ ਰਿਸਕ ਕੇ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਕੋ
4: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

जैन, मुझे लगा कि तुमने शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था तुम्हारी आवाज में, लेकिन जिस तरह ये गाना चलता गया मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल होते जा रहे हो। अंतरे में आके मुझे लगा कि तुमने गाने को पकड़ा और उसके बाद से गाना खुल गया। मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस थी और आई होप कि लोगों को भी अच्छी लगे।

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and hello. Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी. कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे. अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए. आमीन सुम आमीन. प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्फ मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मैं देते हैं मस्जिद नूरुल हरम. मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है. स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है. दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए. राबते के नंबर है 905-257-1342.

0: ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो तीम भट्टी से रब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल तीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain, 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, it's 9058280009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.

0: ICC Immigration के RDMD और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रोक और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर ले 905-461-2424। इट्स 905-461-2424।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
4: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैश साहब के रबते का नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब से होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैश साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 416-570-0157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैश साहब, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है, तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है, तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले अपने लॉयर के साथ। आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद, कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ औक़ात पता चल जाता है, बाज़ औक़ात नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी, या मेरी बेटी बैठी हुई थी, या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, ये कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं, और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है, बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को लालच, हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें, ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, پلیز مجھے کال کریں. میں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 میرا نمبر ہے. بہت بہت شکریہ.
4: بہت شکریہ انجم قریشی صاحبہ, اور منڈے انشاءاللہ آپ سے بھی بات کرتے ہیں. تھینک یو. نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 FM. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ہی فیصلے کرتا ہوں, میں ہی کروں گا, کانگریس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے. بعض یہ خبریں تھیں کہ ان سے جو ہے اب وہ کیا فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ان کی ختم ہو گئی ہے جو کہہ لیجیے اتھارٹی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میری ہی اتھارٹی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بات چیت ہو رہی مگر آگے نہیں بڑھ رہی, اور اس کے ساتھ ایران کا کہ 90% ان کی بحری اور فضائی تباہ ہوگی. بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں, تھوڑی دیر میں سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی اشاری.

मोहल्ला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते, तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: Toronto have received judicial authorization to release the photos of a youth suspected in two separate synagogues shooting in the GTA last month. Registrations open for candidates in October's municipal election. Fort McMurray marked 10 years since destructive wildfire. Hamilton police are investigating a deadly shootout that took place inside a city housing building and believe shooter may have been injured. A young person is facing charges in connection with an investigation in a small community outside of Kingston, Ontario. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर चरगा लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, chicken tikka masala, chicken biryani, सीख कबाब, रेशमी कबाब, chicken boti, chicken tikka, बिहारी कबाब, lamb chops, अफगानी tikka, नेहारी और बहुत कुछ. खूबसूरत कुशादा patio Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga. तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए. इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक. ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे. रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के. वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए. फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग. वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777. इट्स 416-710-6777.
2: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773. कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं. फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773.
1: मेटा फर्नीचर होलसेल गैलरी. अगर आप ब्रांड न्यू, पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मेटा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है. बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी. मिसिसागा, ब्रामटन, स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की चारों लोकेशंस पर ब्रांडेड, ट्रेडिशनल और हाई एंड फर्नीचर की बेहतरीन वैरायटी. फ्लोर मॉडल्स पर स्पेशल डिस्काउंट. दूसरे स्टोर से 10-30% तक डिस्काउंट मॉडल नंबर की गारंटी के साथ. चारों लोकेशंस के लिए एक ही नंबर 416-901-2810. इट्स 416-901-2810. योर लॉगिन हो metafurniture.com. हर हफ्ते स्पेशल डील्स का फायदा उठाइए. मेटा फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर होलसेल प्राइस पर.
2: जी हाँ, मीठा फर्नीचर होलसेल गैलरी. मिड टू हाई फर्नीचर की बहुत बड़ी वैरायटी आपको मिलती है और बेस्ट डील्स आपको मिलती हैं. एवरी वीक स्पेशल डील मिलती हैं और 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी किसी भी स्टोर से, ब्रांड नेम स्टोर से, क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर्स के कंटेनर्स रेगुलरली आते हैं, इसलिए आपको ये मार्जिन दे सकते हैं. मिसागा में लोकेशन इनकी 3050 वेगा बुलेवार्ड, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रामटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारबोर्ड, 35 बुश रोड कैम्ब्रिज, और बहुत जल्द पांचवीं लोकेशन भी इनकी ओपन होने वाली है. चारों लोकेशन के लिए के नंबर है 416-901-2810. metafurniture.com इनकी वेबसाइट है. पवन मीरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. खुश आमदीद कहेंगे मेरे साहब. वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो.
3: थैंक यू वटी साहब. और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. बिल्कुल मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं. पांचवीं का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे. और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से अब पांच, और फिर कंटेनर बाइंग. आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद जैसे भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने देखने में हो सकता है हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60, अप टू 80, ये तो

0: वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि
1: असल
0: ऐसे लिखते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है हमारी उससे 10 मिनिमम 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही पांचवी का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा। और जो कंटेनर में लाते हैं, क्योंकि लोकल चाहे एशले फर्नीचर अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है, और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है। तो वो फिर जो बचत होती है, हम तो 2 पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, 13 सूच को सौंप दूं वापिस कर देते हैं आपको, और वीकेंड आता है 3-4 आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मेड एक सेक्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम 1699 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको दे रहे 1099। ये देखो ये है हुनर, ये आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी है वो, तो मतलब ये एक डील होगी। एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड ड्रेसर मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं, आपको 799 का देंगे। लैकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास 3 मॉडल है 1699 के, आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी। कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड्स हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन भाई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है,
1: बिल्कुल,
0: तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है। तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं, माइकल अमीनी का एक सोफा 3000 से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलता है 4500 का, हम देते हैं 3000 का, तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए। तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है। तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं एक बार, या फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मंद होंगे, तो आपको हमारा स्टोर हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा, और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में। तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 4169012810, 4169012810। थैंक यू वेरी मच,
1: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, नेक्स्ट अरुण आपसे बात करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कर लीजिए 4169012810, 4169012810, middhafinish.com इनकी वेबसाइट है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। ब्रैम्पटन में सबसे ज़्यादा मॉर्गेज डेलिक्वेंसी हो रही, यानी सबसे ज़्यादा मॉर्गेजेस लोग पीछे जा रहे हैं, उसके 3-3 महीने पीछे हैं, और कह रहे हैं कि 20 घर लगते हैं तो एक जो है वो पावर सेल पे, तो थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात भी करूँगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो बहुत इज्जत करते हैं। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान की क्यादत तकसीम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता, ईरान की क्यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, ईरान की मौजूदा क्यादत उलझन का शिकार है, नेवी और फिजाई सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क्यादत किसके पास है। और दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। 4169300003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। लीजाज कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल जनाब आज कल परसों और तरसों मंडे, यानी 4 दिन जो है आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में। इस वीकेंड पे मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल आपको गिफ्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, और परफ्यूम ब्रांड नेम परफ्यूम्स की बहुत बड़ी वैरायटी आपको हर ब्रांड नेम आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा फाइन चॉकलेट्स और डिज़ाइनर सनग्लासेस भी मिलेंगी। lizacosmetics.com पे जाके आप मज़ीद डिटेल ले लीजिए। और अगर हम बात करें टाइमिंग्स की तो सैटरडे 9 से 6 बजे और संडे 10 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए ओपन है लिजास कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। इसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है वो है जनाब विंडोज़ के हवाले से। अगर आपके विंडोज़ और डोर्स पुराने हो गए हैं तो आप कॉल कर लीजिए राइट विंडो फोर्स के सुभानु जी को 4162063200। ये मेरिन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज़ और डोर्स इंस्टॉल करते हैं और इनसे आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक जो है वो कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर इनकी, आप विंडोज़ और डोर्स अभी इंस्टॉल करवा लें, पेमेंट चाहे 1 साल बाद कर दीजिए, कुछ डाउन पेमेंट देनी होगी, सम कंडीशंस में अप्लाई, इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद आप बना सकते हैं। कॉल कर कंफर्मेशन लीजिए 4162063200 4162063200। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर, सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में, और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777.
2: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स
3: मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइन से डील करते हैं, पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उमरा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
4: ग्लोबल ट्रेवल टूर के रास्ते का नंबर है। दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो, इनसे रब्ता कीजिए। तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं, इसके अलावा उम्र और हज के स्पेशल पैकेज इनके होते हैं, साथ साथ मनी ट्रांसफर की सर्विसेज, इमिग्रेशन की सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। और कमर रशीद साहब रोहे रवा हैं, CEO हैं, तमाम ऑपरेशंस को और ख़ासतौर पर हज के हवाले से, उम्र के हवाले से इन्होंने बहुत सी खुद जाते हैं, वहाँ जाके चीज़ों को देखते हैं और अभी भी माशाल्लाह इनका हज का जो है पैकेज टूर जो है वो जाने वाला है। खुश आमदीद कहेंगे कमर भाई, अस्सलाम वालेकुम।
5: जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ भट्टी साहब, और आपकी वसासत से मैं अपने तमाम सामईन को भी बहुत सलाम पेश।
4: थैंक यू वेरी मच। पहले मुबारकबाद, बहुत जबरदस्त हज सेमिनार था आपका, इस पर थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ी सी टिकट सेल के हवाले से बात करने की, कुछ अभी सीट सेल वगैरह हैं अवेलेबल हैं इस वक्त जाने के लिए?
5: जी सर, मैं अशरफ भट्टी साहब सच कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सीट से जो जिसका मुझे इंतजार रहता था और मेरी पसंदीदा डेट्स के ऊपर खास तौर पे, जी हाँ, PIA ने दोबारा 15% सीट सेल जो दी है वो इस दफा 30 मई नहीं बल्कि 24 जून तक का ट्रैवल पीरियड इसमें शामिल कर लिया। यानी अब जो बच्चे स्कूल के पेरेंट्स फैमिली जो समझते थे कि हमारे बच्चों के हाई स्कूल है तो इतना अर्ली जाना मैं एंड में मुश्किल है, तो उनके लिए बिल्कुल अब जो है आप 24 जून तक जो है अपनी ट्रेवलिंग को मैनेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ। और टिकट लेना है आपने वो आपने 10 जो है मई तक टिकट बाय करना जरूरी है, टाइम आपके पास है, अभी से प्लान करें और यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। और ये बताता चलूं ये टिकट 6 मंथ वैलिड होता है, आप अभी 24 जून को जा रहे हैं, आप ज्यादा अर्सा वहाँ काम करना चाहते हैं, तो और ये भी बताता चलो कि मई के फौरन बाद जैसे कि उमरा सीजन शुरू हो जाता है, उमरा के वीजे खुल जाते हैं, तो आप अपने पाकिस्तान ट्रिप के साथ सऊदीया का, उमरे का, ज़ियारत का ये ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं बिलखसूस अपनी कौमी एयरलाइन के साथ, और हमें कॉल कर सकते हैं इस तमाम डिटेल्स को लेने के लिए 905-275-3555
4: पे कॉल कर लीजिए। एक तो 15% सेल है, प्लस आप उम्रा भी कर सकते हैं उसी दौरान में, तो खुद ये कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं, चाहे 2 लोग जा रहे हों चाहे 30 लोग जा रहे हों, आप इनसे रब्ता कर लीजिए। अच्छा, हज के हवाले से अभी आपका माशाल्लाह ग्रुप जो है वो जा रहा है, इसी महीने जा रहा है इंशाल्लाह, और सेमिनार भी आपका बड़ी अच्छी, वहाँ मैं मौजूद था, लोगों तक आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए हज के हवाले से, और जो लोग अगले साल हज करना चाहेंगे तो उनको भी थोड़ा एडवाइस कर दीजिए।
5: जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला बशक कुशक ने, और खुसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शिरकत को, मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की शिरकत समझता हूँ, और आपकी हौसला अफजाई हमारी कम्युनिटी की हौसला अफजाई होती है, और आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, और आपने हाजियों के लिए जो खूबसूरत तोहफा दिया एहराम अपनी तरफ से, मैं उसको भी कम्युनिटी की जानिब से तोहफा समझता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी मोहब्बत हमारे लिए एक बेशुमार के कहने के अनमोल तोहफा होती है, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। अशरफ भट्टी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप फाइनलाइज हुआ, लेकिन आगे आने वाले ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिलखसूस सऊदी हज कमीशन की जानिब से पता चल रहा है कि इस हज के फौरन बाद नेक्स्ट ईयर का वो पोर्टल ओपन करेंगे, और इन एडवांस बुकिंग ओपन करने का मकसद यही है कि वो जल्द से जल्द क्लोज कर देते हैं। उनका सर्टेन कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा, प्राइवेट हजाज का कोटा जो है, उसमें आप अगर जाने का इरादा रखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप अपने आप ना नाम कम अज कम रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बने हुए तो यही टाइम है आप अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे से रब्ता कर लें। और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम जो बार बार इतनी एडवांस बात करते हैं, आप इस तरह से नियत कर लें कि मैं आज से ही अपने हज के लिए अपने खास एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में आप अपनी कमेटी डाल रहे हैं, पर मंथ $1,000 सेफ्टी कर सेव करते चले जाएं, और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बेस्ट रेट के साथ, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस बजट में जाना चाहता हूँ, कामरा भाई मैं आपके साथ या आपके साथ बैठ कर अपने बजट को डिस्कस करके अगले साल हज के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं वेलकम करता हूँ, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाएं, आप बैठे हमारे साथ, और आपके हज के लिए मैं इसको इबादत समझ कर ये आज आपको दावत दे रहा हूँ, आए बैठे डिस्कस करें, और उसमें हर चीज ओपनली डिस्कस हो जाने से आपका एक बोझ हल्का हो जाता है, आपको लगेगा कि यस कि मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हज का पैकेज कस्टमाइज किया है, जब तक इस फील्ड में थे नहीं तो बात करते नहीं थे, अब हैं तो बताते हैं कि यस आपके बजट को भी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको कस्टमाइज किया जाएगा। आप उसके लिए हमसे जरूरी है कि ऑन टाइम रब्ता कर लें। इंशाल्लाह 19 मई को हमारा डिपार्चर है इस साल अपना हज का काफिला लेकर, 19 मई से पहले मैं मौजूद हूँ, आप आए अगले साल के लिए प्लानिंग करें, आए मिलके बैठें और इसको डिस्कस करें।
4: 905-275-3555 905-275-3555 रابطے کے نمبر ہے کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے۔ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کامران صاحب؟
5: جی میں بتاتا چلوں کہ اس میں حج کے لیے 10 دن 12 دن 14 دن 16 دن مختلف دنوں کے پیکج ہوتے ہیں، اس سے میں نے آپ کو کہا آئیں بیٹھیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو کہا کہ اس کو کسٹمائز کریں، اور پاکستانی کانسٹنٹ کی تمام آن لائن سروسز جس میں آپ کا ضروری ہے کہ پاسپورٹ आपके हाथ में हो वो जरूर रखें, नाइको कार्ड को देखें वो एक्सपायर ना हो, कभी भी इमरजेंसी में सफर करना हो तो मुश्किल ना हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी वीजा लेने में भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 8 से 10 दिन लग जाते हैं। तो अपना रिक्वेस्ट है बेइंग अ पाकिस्तानी, अगर आपके पास अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको एक्सपायर मत होने दीजिएगा, उसको हमेशा अपनी जरूरत के लिए रेडी रखें। इसके साथ साथ कुर्बानी का टाइम आने वाला है, अपने प्यारों को पाकिस्तान रकम भेजनी हो या दुनिया के किसी भी हिस्से से मंगवानी हो, एतमाद के साथ आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट रेट के लिए नंबर है 905-275-3555 905-275-3555।
4: थैंक यू वेरी मच कमान साहब, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे फिर बात करें। 9052753555 9052753555। अच्छा, एक रेस्टोरेंट की आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, रिजवे प्लाजा में है चाय खाना, ये पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, फाइन ओरिजिनल पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड आपको मिलेगा, एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा। और ये तमाम क्वालिफाइड शेफ हैं, पाकिस्तान में पीसी लाहौर में ये शेफ थे और 14 साल से इनका तजर्बा है, और रिजवे प्लाजा में ग्रेट एडिशन है जनाब फूड लवर्स के लिए, स्पेशली चाइनीज़ खाने वालों के लिए। 100% हलाल फ्रेश एंड ऑथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट, नो पैकेट मसाला एट ऑल, अपने मसाले हैं और वेरी रीजनेबल प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त हैं। स्पेशल डिस्काउंट है, रेडियो पाकिस्तान का वाला देंगे तो फॉर श्योर डिस्काउंट आपको देंगे, और 4 से 12 बजे वीकडेज में और 2 से 12 बजे रात तक वीकेंड्स पे आपके लिए ओपन है। 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है इसका रिजवे प्लाजा में, और इस वीकेंड पे चाइनीज पाकिस्तानी ओरिजिनल पाकिस्तानी चाइनीज खाने खाने हैं, तो आप चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन पे चले जाइए। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस बुक करवा लीजिए 905-514-7877 905-514-7877। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रابطے کے نمبر 4165930003। ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آذان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔

0: Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Uni Global Advisory Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे जायद है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 4167106777। इट्स 4167106777।
2: जी हाँ, 4167106777 पे आप कॉल कर लीजिए, शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकवेट हॉल, जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई मरसद मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी भट्टी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना। तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है। इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही हैं, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे रापता करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं, आपको पता है।
2: 4167106777 पे आप रापता कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरीडे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरीडे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल्स हमसे रब्ता कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के। तो जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंक्वेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 4167106777, 4167106777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शाम भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
3: इंशाल्लाह। थैंक
2: यू जनाब। अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके लिए आएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं, एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। 2-3 छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है। लीजर्स कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कहम में और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है। और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री। इसके अलावा डिजाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी और मदर्स डे के लिए स्पेशल स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ़ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ़ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। यूनिट इनका 3 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज़ खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल ज़मान साहब। स्टे ट्यून्ड।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhaniswitch.ca।
1: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते।

को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East Lawrence Bridgemount ka intersection 416-757-9999. Daanton ki koi bhi bimari ho aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye. Tamam insurance plan accept karte hain. Insurance na rakhne walon ke liye special discount. Root canal treatment aur retreatment ke specialist hain. Mississauga location 1110 Bloor Street East Bloor or Dixie ke intersection 905-232-5678.
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: अगर आपकी कॉर्पोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉर्पोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राबता कर सकते हैं साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा डेडलाइन इज कमिंग सून अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922 इट्स 905-783-1922
5: एसएसआर ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक्स सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राबता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप एसएसआर ऑटो सर्विस 921 पे पेवे
6: करम ज्वेलर्स अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अल करम ज्वेलर्स जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के बेहतरीन सेट्स शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे आज ही विजिट कीजिए अल करम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा 9582800009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari.
7: Festival from May 22nd till May 26th from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
8: Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
7: Log on to eventsbyteamoftwo.com.
9: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential lawyer.

0: कमर्शियल फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
1: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
2: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
3: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में आप देखिए नंबर 416-593-0003। पाकिस्तान लिए चलेंगे माजरा, दो तीन मिनट लेट हो गए। फ्राइडे थोड़ा सा बिजी होता है तो इसलिए बात को हमें एड्स भी चलाना पूरे पड़ते हैं और कुछ गुफ्तगू भी रहती है। बिलाल जमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम सलाम।
3: बिलाल साहब, यौमे मई मजदूरों का आलमी दिन है, पाकिस्तान में तो मनाया गया, यहाँ उस तरह से नहीं मनाया जाता, दुनिया में वैसे बहुत सी जगहों में मनाया जाता है। मजदूर को उजरत पाकिस्तान में सुनाया बढ़ा दी गई है, लेकिन क्या हकूक के हवाले से भी मजदूर या गरीब तबका अपनी आवाज बुलंद कर सकता है?
4: जी देखें, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर जो बुनियादी इश्यूज हैं वो है ही गरीब लोगों के, और जो मजदूर तबका है इसको जो है वो सबसे डाउन द लेन जो तबका है वो तसव्वुर किया जाता है, और इसीलिए हुकूमत ने उसको देखते हुए जो मजदूर की उजरत है वो कम से कम 40,000 रुपए जो है ना वो रखी है, और वो मिलती है, और अच्छी बात है कि मतलब ये कम से कम जो है ना वो एक हाउस होल्ड के अंदर इतना होना चाहिए कि वो अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है, जो क्या कहते हैं अपना राशन वगैरह है, उसको पूरा कर सके। और बाकी ठीक है कि हुकूमत के बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो भी ऐसे लोगों को जो है ना वो केटर करते हैं, और हुकूमत का जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और दूसरे गरीबों के लिए प्रोग्राम है, बहुत सारी जगहों पे हुकूमत ऐसे लोगों की हेल्प करती है। लेकिन बहरहाल बुनियादी हकूक के हवाले से जो है ना वो अगर कहीं भी हमारे हम देखते हैं कि इस तरह का कोई मामला हो जाए, आप कहीं जो है ना वो सिविल लिटिगेशन के अंदर या ऐसे किसी मामले के अंदर या किसी ताकतवर शख्स के साथ अगर आपका कहीं कोई ऐसा मामला हो जाए, तो वहां पे हमने देखा है कि एक तबकाती डिफरेंस जो है ना वो हमें नजर आता है कि गरीब को उस तरीके से जो है ना वो इंसाफ जो है ना वो नहीं मिल पाता, और जो तगड़ा और ताकतवर आदमी जो है वो अपने असर और रसूख को और वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो बच निकलता है। तो ये डिस्पैरिटी जो है इसके ऊपर भी साथ साथ हुकूमत को, आपने उजरत तो उसकी कर दी है, अच्छी बात है, लेकिन मुआशरे के अंदर जब तक आप उस तबके को अपलिफ्ट करने के लिए, उसको उस गुरबत से निकालने के लिए और स्किल प्रोग्राम और दूसरी चीजें जो है ना वो आप नहीं जो है ना वो लेकर आते, तब तक मैंने देखा यहाँ पे जो है ना स्किल्ड वर्कर्स जो है, एक तो मजदूर तबका है ना, लेकिन जिनके पास स्किल्स हैं माशाल्लाह वो तो मतलब ये महीने का 2-3 लाख रुपया जो है वो कमाना उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
3: सही। अच्छा, ईरान जंग के खात्मे के लिए नई तरकीब सामने आई है, ट्रंप का इख्तियार ईरान से और जंग करनी है या नहीं फैसला अमरीकी कांग्रेस करेगी। अमरीकी सेक्रेटरी ने ईरान जंग को पहले ही खत्म करार दे दिया है, तो क्या जंग का इख्तियार अमरीकी कांग्रेस के पास जाने से अमरीका को ईरान से निकलने का मौका मिल जाएगा? वैसे सर ट्रंप तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा इख्तियार है।
4: जी देखें, बिल्कुल वो तो अपना बहुत कुछ जो है ना वो मानते हैं, लेकिन बहरहाल जो अमरीकी कानून है वो तो यही कहता है कि अब उनको जो है 60 दिन के अंदर अंदर इजाजत लेनी होती है, चेंज है कि वो खुद कोई, हाँ जी चेंज है कि वो खुद जो है ना वो कोई और कानून पास करने की कोशिश करें, लेकिन अभी जो है ना फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक तो उनको एक रास्ता जो है वे आउट मिल रहा है। खुद भी बहुत सारे जराए जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था कि जितनी मुजाकरात की बात हो रही है, जितना जो है ना वो जिक्र हो रहा है कि जी आ जाएं बात कर लें, फोन कर लें, हम तैयार हैं, बैकडोर रबते हो रहे हैं, जो है ना वो चैनल खुला हुआ है, अभी एक दोबारा जो है वो तजवीज भी पाकिस्तान के जरिए जो है वो अमरीका को भिजवाई गई है, तो बहुत सारी जो है ना वो लोगों का ख्याल है कि अमरीका खुद भी जो है ना इसमें से अब निकलना चाहता है, और उन्होंने अपने लोगों को वहां पे भी जो है ना जितने उनके सेनेटर्स हैं और आवाम के अंदर भी वहां पे जो बेचैनी पाई जाती है, वहां पे भी प्राइसेस बड़ी जो है ना वो ऊपर गई हैं, और भी ऊपर जाने की जो है ना वहां पे है, तो वहां पे आपको पता है कि वो तो हमारी तरह नहीं है, वहां पर तो जैसी जो है ना थोड़ी सी भी महंगाई होती है तो वो बिल्कुल जो है ना वो लोग सवाल पूछते हैं यदि क्या जरूरत थी आपको जो है ना ऐसी जंग के अंदर अपना हिस्सा डालने की जिसमें आपका कोई लेना देना जो है ना उसके अंदर नहीं था। तो वो बाहर एक प्रेशर वो भी जो है ना वो अमरीकी आवाम का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस जंग से जो है ना जल्द अज जल्द जो है ना वो निकले। तो बहरहाल एक रास्ता जो है उनको जरूर मिला जिसके द्वारा वो कह सकते हैं कि नहीं मैं तो जंग मजीद करना चाहता था लेकिन मुझे कांग्रेस ने जो है ना वो इजाजत नहीं दी, तो इसलिए जो है ना वो हम वायदा करने जा रहे हैं।
3: आप सुन रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम, हमारे स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। पाकिस्तान से बिलाल जमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपकी लाइव कॉल देंगे। इमरान खान साहब की नाहक कैद को 1000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर राजा ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर योम मजदूर रैली से आज खिताब भी किया है। सवाल उनकी तरफ से या हमारी तरफ से या लोगों की तरफ से कि क्या अगले इलेक्शन तक जेल ही अब इमरान खान साहब का मुकद्दर है और क्या इस हवाले से कोई गैर तहरीरी माहिदा पहले ही पीटीआई की क्यादत कर तो नहीं चुकी? बिलाल साहब
4: ये देखें जो जाहिरी हालात है ना वो कुछ इसी तरह की पिक्चर पेंट करते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब जो है वो कोई मतलब उनके इलम में ये बात है लेकिन बाहर जो लोग हैं जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, सुहेल अफरीदी हैं, ये लोग आए तो बड़े एंथुजियाज्म के साथ थे। आपको याद होगा कि जब अली मीन गंडापुर को हटाया गया था
3: जी बिल्कुल सही,
4: तो लगता था कि अब तो बस मतलब ये कि देखें 2024 नवंबर की तारीख थी जब ये लास्ट जो एहतजाज था एक बड़ा एहतजाज पीटीआई की तरफ से सामने आया था। उसके बाद तो कोई बड़े जलसे भी जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने नहीं आए, केपीके के अंदर कहीं पे वो ऐसा कोई बड़ा क्राउड जो है वो नहीं इकट्ठा कर सके जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें। फिर उन्होंने एक वो इमरान खान की रिहाई की फोर्स बनानी थी, उसका जो है ना मतलब क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, किसने करवाई, कितने बंदे उसके अंदर रजिस्टर हुए, तो जमा कहते हैं ना जुबानी जमा खर्च जो है वो सिर्फ नजर आता है क्यादत की तरफ से। और अब पीटीआई की अपनी जो मतलब के जो आप कह लें कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे वो अब जो है ना वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आया जो क्यादत बाहर मौजूद है जिस तरह के सुहेल अफरीदी हैं और दूसरे लोग हैं ये चाहते भी हैं कोई तहरीक जो है ना वो रन करना या नहीं जो है ना वो चाहते। अलीमा खान की तरफ से भी हमने जो है ना वो देखा है कि सिर्फ बयानात की हद तक लोगों को कॉल करने की हद तक जो है वो मामला है लेकिन कोई इतना सीरियस जो है ना वो देखें 1000 साल का मतलब 1000 दिन का मतलब है कि 3 साल से ऊपर जो है वो खान साहब को जो है ना वो हो गए हैं जेल जेल के अंदर, तो एक बड़ा जो है ना वो टाइम पीरियड है। 4 साल बाद तो वैसी हुकूमत जो है ना वो अपना टाइम पीरियड जो है ना वो पूरा
3: बिल्कुल
4: पूरा कर लेती है।
3: अच्छा
4: तो लगता है कि कोई इस तरह का फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी तय है कि इस इलेक्शन तक जो है ना वो खान साहब बाहर नहीं आएंगे।
3: ठीक, अच्छा अभी सुहेल अफरीदी साहब की बात की आपने, वो कहते हैं सूबे को इसके हक की गैस ना मिली तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गैस पैदा करने वाला सूबा होने के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। क्या सूरत ओवरऑल कैसी है, क्या ओवरऑल गैस की केपी में लोड शेडिंग बाकी जगहों से ज्यादा हो रही है?
4: जी देखिये जो इस वक्त गैस की लोड शेडिंग है वो तकरीबन हमने सर्दियों के महीनों में देखा था कि जब गैस की जरूरत ज्यादा होती है। गर्मियों के अंदर हुकूमत की पहली प्रायोरिटी जो है वो इंडस्ट्रीज होती है और ये हुकूमत पहले ही वाजे कर देती है कि जब सर्दियां आती हैं क्योंकि सर्दियों के अंदर खपत भी ज्यादा होती है और हमारे यहाँ पे सर्दी भी दो महीने तो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसमें हुकूमत की कोशिश होती है कि लोगों को कम से कम गीजर के लिए और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, मैं खुद मतलब कि जितनी देर भी हम लोग सर्दियों में कोई ऐसी तंगी नहीं थी, लेकिन गर्मियों के आते ही जैसे ही यूजेज कम हुआ है कि अब सिर्फ चूल्हे जलाने हैं आपने और तो कोई आपका और तो कोई मतलब यूज ही नहीं है, तो अब वो चूल्हे जलाने के लिए भी जो है ना सारा दिन जो है ना वो गैस अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपको हैरत होती है कि कहाँ इतनी गैस जो है ना वो चलेगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री को जो है ना वो प्रायोरिटी देती है, तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके साथ जो घरेलू एरियाज जो है ना वो लगते हैं वहां पे सारा सारा दिन भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो बाकी मार्केट के जो एरियाज हैं वहां पे जो क्या कहते हैं अपना हुकूमत की प्रायोरिटी होती है कि लोग सिलेंडर वगैरह जो है ना कमर्शियल सिलेंडर वगैरह यूज करें, तो वहां पे जो है ना वो लोड शेडिंग ज्यादा की जाती है और नॉर्मल एरियाज के अंदर जो है ना वो नॉर्मल जो हुकूमत की एक रूटीन है सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक और फिर जो है ना वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ये टाइमिंग है। इस टाइमिंग के अंदर जो है ना वो गैस अवेलेबल होती है।
3: अच्छा वफाकी वजीर तवने अवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता रोज हमें एलएनजी गैस मौसूल हो चुकी है, बिजली की लोड शेडिंग का वो कहते हैं मुकम्मल खात्मा हो गए हैं। हुकूमत लोड मैनेजमेंट को आवामी रिलीफ मैनेजमेंट का नाम भी दिया था, तो क्या इस बार हुकूमतें आवाम को बिजली के बिलों में भी रिलीफ देंगी लगता है आपको?
4: जी देखिए, पिछले साल जब ये नई पीटीएम की हुकूमत आई थी तो मरियम नवाज ने भी जो है वो वजीर आला बनते ही एक अच्छे रिलीफ का जो है ना वो ऐलान किया था। और जरूरत होती है, जब गर्मियों का महीना आता है तो आपको पता है कि लोड जो है वो बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी पंखे लाइटें और ये मतलब ये कूलर वगैरह ये चीजें जो है ना वो चलती हैं। तो जो आपका जो कंज्यूमर होता है, जो अपने कोशिश करता है कि उसका बिल 100 यूनिट से 200 यूनिट से कम रहे, वो भी जो है ना वो ना चाहते हुए उसको उससे जंप जो है ना वो करना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है और उससे आपका जो बिल है वो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो आपका वो ज्यादा आता है। तो अब हुकूमत जो सोलर की नई पॉलिसी लेकर आया है वो भी बड़ी अजीब है कि एक तरफ जो है वो सोलर सार्फीन जो है वो आपको 4,000 मेगावाट जो है वो बिजली मुफ्त और सस्ती जो है ना वो पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन उसका भी सारा बोझ जो है वो अपने सार्फीन के ऊपर जो है ना वो डाला हुआ है कि वो जो आपको 4,000 मेगावाट मिल रहा है वो आप 13 रुपए यूनिट में उनसे खरीद रहे हैं और आगे आवाम को वही जो यूनिट्स हैं वो 40-40 रुपए में जो है ना वो दे रहे हैं। तो अगर कम से कम जो है ना वो आप इतनी कमाई जो है वो लोग वहां से कर रहे हैं तो उसके जरिए जो है वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ जो है वो जरूर मिलना चाहिए।
3: चलें कॉल्स की तरफ चलेंगे जनाब। स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। फर्स्ट कॉलर है 6910। आप ऑन एयर सर। 6910 6910 आप ऑन एयर सर, बात कीजिए।
5: मॉर्निंग मिस्टर साहब।
3: जी वालेकुम सलाम।
5: है ये कि दिन ब दिन गैस के प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये तो बड़ी एक अजीब सी तजर्बा किया गया है पूरी दुनिया में, खाली पहली दफा नहीं हो रहा। हम तो खैर इससे संभाला है, ये हमेशा रिपब्लिकन जब भी बैठते हैं ये कोई ना कोई नई गेंद छेड़ते हैं, हिस्ट्री है तो। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुल्कों को बहुत है ये कि लगता है ये गुर्बत की जगह गरीब खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं नए नए। हालांकि पोप ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि बिगाड़ने में तो सेकंड लगते हैं लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे जो कि इस टाइप के लोग हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो फिर वही है कि हाँ कुछ बेहतरी नजर आई थी, लेकिन अब है ये कि जब तक ये जंग के आसार खत्म नहीं होंगे और अल्लाह करे पाकिस्तान कम अज कम इसमें अपना एक फायदा तलाश कर लेंगे, एटलीस्ट के जो इन्होंने ईरान से राहदारी खोलने की कोशिश की है तो ये एक अच्छा है कि कम अज कम पाकिस्तान को अमेरिका से ये तो तवक्को करनी चाहिए कि भाई ठीक है आपको लड़ना लड़ते रहे, लेकिन हमारे लिए ये फ्री हैंड दे दे कि हम कम अज कम ईरान से अपने तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई ले लें। तो मैं समझता हूँ शायद अभी जो लग रहा है कि फिलहाल जो गैस इतने पेट्रोल इतना महंगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उस जैसी कीमतें नहीं पड़ी तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में भी बढ़ने के बड़े चांसेस हो गए खबरों में आया था और पूरी दुनिया ही, यानी कि यहाँ तो खैर जो हो ही रहा है गैस की प्राइसेस और इवन अमेरिका का भी, यानी कि खबरों में डॉलर पर गैलन तो ये तो बहुत
3: बड़ा वो है। थैंक यू।
6: मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा आज। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिस जो होता है, जो मेडिएटर होता है, वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी दोनों तरफ बड़ी ग्रिप होती है, वो दोनों को समझाती है कि भाई ये नहीं ऐसे करना है और किसी डिसीजन पे लाती है।
3: जी।
6: तो एक तो सालिस ही होता है और एक होता है वो मैसेंजर होता है कि इधर का मैसेज पकड़ा उसको पहुंचा दिया, उसका मैसेज पकड़ा इधर पहुंचा दिया। मेरा सवाल ये है कि हम बहुत दफा पाकिस्तान में लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। अभी ये 10-15 दिन या 20 दिन जितने भी दिन इस्लामाबाद बंद रहा है ये तो वो कंट्री वाले ही जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बाकी जो ये गैस वैस का जो मामला अभी जो बता रहे हैं कि 15 या 13 डॉलर का ये रुपए का लेते हैं और 40 रुपए का देते हैं, तो क्या ये स्टेट पब्लिक के लिए, क्योंकि अभी ये मजदूरों का दिन मनाने लगे हैं ये, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने मुल्क में इंसाफ और अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए ईमानदार उनके साथ नहीं है तो आप बाहर जाके लोगों की नेगोशिएशन कराते फिर रहे हो। पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लो, एक तो बात ये थी। दूसरी आखिरी बात में जो कहना चाहूंगा कि जो जो भी लोग हैं इसमें, ये जो अभी जो भी कंट्री में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या फौज है, अगर कुछ नहीं होता प्रॉब्लम सही ठीक नहीं होता। ये मैंने अब ये पूछा है, मैंने जवाब दे दिया
3: किसी को। वो एक मुनीर नियाजी का शेर है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। 5794 सर आप ऑन एयर हैं। 5794
7: अस्सलाम वालेकुम जनाब।
5: بٹی صاحب یہ دیکھیں جب تک یہ جنگ لگی ہے نا اس میں مسائل تو ہوں گے اور ان مسائل میں الٹیمیٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بھائی ان کو ریلیف دینا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں, آئی ایم ایف بھی ہے, اور اس سے سب سے بڑی بات جو ہے دیکھیں پاکستان کے کم از کم کہنے پہ چلے سیز فائر تو ہوا ہے نا بٹی صاحب, یہ تو دنیا تسلیم کر دی ہے نا کہ چلے سالسی, اب یہ سالسی دیکھیں شاید ایران کو تو ہم منا لیں, اب امریکہ کو منانا تو بڑی مشکل بات ہے. تو بات وہی ہوگی جو آپس میں بیٹھ کے ان لوگوں نے اپنی شرائط طے کرنی ہے, اور پاکستان کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ انشاءاللہ پاکستان کی بہتری اور حمایت ہی کرے گا ایران کی. تو باقی رہ گئی بات بٹی صاحب, اس میں ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جناب پاکستانی گورنمنٹ لوگوں کے ساتھ, لیکن اب یہاں دیکھ لیں, اب یہاں نہیں, کل بھی آپ نے بتایا تقریباً 400 روپے کے مترادف ہمارا بھی پٹرول ہو گیا, اب ہمارا کروڈ آئل بھی ہے, ہمیں کیا گورنمنٹ کینیڈا نے دیا ہے, کچھ نہیں. یہ دیکھیں یہ سرمایہ دار جگیردار, ان کا نقطہ نظر اور ان کا لوٹنے کا واردات طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. باقی رہ گئی بٹی صاحب, ہاں صاحب نے تمام پتے اپنے جو ہے نا وہ استعمال کر لیے ہوئے ہیں, اب ایک ہی بات ہے, اب وہ بھیک مانگ رہے ہیں عدالت سے, یار کبھی مجھے ضمانت دے دے میں تھوڑی سی دیر کے لیے باہر آ جاؤں. بٹی صاحب کب سے میں کہہ رہا ہوں پالیٹیشن وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے, اپنی پارٹی کو بچاتا ہے. نواز شریف آپ کے سامنے مثال ہے, 3 دفعہ کیا اس کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں زیادتی کی گئی. یار جس وقت 2 روپے کی روٹی اور 5 روپے کا جناب آپ کو مختلف چیزیں مل رہی تھی, 30 روپے 40 روپے 50 روپے آپ کو چینی مل رہی تھی, اس کے ساتھ ملک کے ساتھ بگاڑ کیا گیا نا, اور جن لوگوں نے کیا آج وہ اسی پہ پریشان ہے اور پشیمان ہے. تو اس لیے سیاست کرنی چاہیے ملک کے خلاف, جو لوگوں کا انڈیا ہو جائے اسرائیل ہو جائے یا افغانستان جو ان کا نقطہ نظر ہے اس سے ہٹ کے سیاست کریں, سیاست میں واپس آئیں اور اپنے آپ کو بچائیں, اپنے فالوورز کو بچائیں.
3: ٹھیک ہے صاحب, تھینک یو,
5: اس طرح نہ کریں.
3: تھینک یو, بہت شکریہ. 5415 سر آپ آن ایئر ہیں. 5415
5: السلام
3: علیکم. وعلیکم السلام سر. جی وعلیکم السلام جناب, میں آپ ڈسکنیکٹ ہو گیا. چوئس صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, دوبارہ کال کر لیں. اچھا ہمارے پاس 3001 0 آپ بات کرنا چاہیں گے؟ 0010 لاسٹ 4 ڈیجٹ 0010.
7: سر میرا آپ کے سامعین سے اور آپ سے یہ سوال ہے اور بلال صاحب سے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, لیکن آئی پی پی کے مالک کون ہیں؟ کبھی آپ کے کسی سامعین نے یہ بتایا
3: تو ہے سر, بتایا تو وہ سارے وہی بڑے لوگ ہی ہیں سر, آئی پی پی کے مالکان بھی
7: ان کے نام, بڑے کے نام تو پتہ لگنے چاہیے.
3: بلال صاحب کے ذمہ لگاتے ہیں سر کہ ان کے نام بتائیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت شکریہ. 6141 سر آپ آنے رہے ہیں. 6141 اچھا, 5415 واپس آ گئے سر, آپ بات کیجیے. 5415 آج ذرا جلدی کیجیے گا, ٹائم تھوڑا کم ہے میرے پاس. 5415
8: السلام علیکم. میں صرف دو باتیں کروں گا.
3: جی جی,
8: پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرح ان ملکوں میں گورنمنٹوں پر پریشر ہوتا ہے. بٹی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کینیڈا میں کتنے مہنگائی کے خلاف جلوس نکلے ہیں, کتنے مظاہرے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں امریکہ میں کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں, لوگ کتنے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دن رات. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ بندہ ہے جس کی عمر 87 ایئر ہے اور اس نے اگلا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا, وہ اس پہ کیا عوامی سوشل میڈیا کا دباؤ ہوگا بھائی. یار یہ باتیں میں کہتا ہوں نا, جب میں بٹی صاحب کہتا ہوں کہ نیت کا فطور ہے تو پھر یہ نیت کا فطور ان چیزوں سے نظر آتا ہے کہ بندے کا ہر وقت اپنے آپ کو اپنے سر میں جو مٹی ڈالنے والا حالت ہے نا, ان لوگوں کو اس چیز سے نکلنا چاہیے. اور ایک بات بٹی صاحب, ایک بات مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات کر کے ختم کر رہا ہوں بات. بٹی صاحب دیکھیں, یا تو آپ کرا کیا کریں تبصرہ, مطلب تبصرہ روز وہی بات. آپ ایک پارٹی بن کے جب بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے, ہم مجبور ہوتے ہیں, ہمیں اور بات کرنی پڑتی ہے. میں آج آپ سے یہ بات کروں کہ آپ تبصرہ کریں, ہم آپ کی زیادہ ریسپیکٹ کریں گے.
3: مجھے کہہ رہے ہیں,
8: اور آپ کا بھی قد بڑا ہوگا.
3: مجھے کہہ رہے ہیں, کسی کو کہہ رہے ہیں
8: نہیں, آج جو تبصرہ کرتے ہیں بھائی آپ سوال کرتے.
3: ٹھیک ہے, تھینک یو. 8156 آپ آن لے رہے ہیں. 8156
9: ہلو.
3: جی جی, آپ بات جلدی بات کیجیے.
9: دیکھیں آئی پی پی کا تو سب کو پتا ہے کس کے 52% تو گورنمنٹ کے اپنے 28% سرمایہ داروں کے, پاکستانی باقی 8% چائنا کے, 7% کو گلف کے لوگوں کے, کچھ اور تو وہ تو ہے, نام بھی سب کو پتا ہے, میاں منشا کے چار ہیں, شہباز شریف کے لڑکے سلمان, شہباز کا بھی ایک ہے.
3: اچھا کیا سر, آج آپ نے بتا دیا, ٹھیک ہے سر, تھینک یو برادر, تھینک
9: یو.
3: جانگی ترین بھی اچھا, ٹھیک ہے, ہو گیا, ٹھیک ہے سر جی, آج ٹائم تھوڑا کم ہے, میں ادھر باقی کال دی. 6141 سر آپ آن لے رہے ہیں, 6141, 6141.
10: السلام علیکم بھٹی صاحب.
3: جی وعلیکم السلام سر.
10: بھٹی صاحب, شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑے جب حکومت میں آئے تھے نا, اوپر سے فلڈ آ گیا, پھر جنگیں آ گئیں, پھر ایک بازو میں جنگ, پھر دوسرے بازو میں جنگ. دیکھیں دنیا بھی جانتی ہے کہ یہ پاکستان اگر آج باندھ کے کٹائی کرتا ہے نا, تو اگر اسے انرجی سستی مل گئی تو اسے سنبھالے گا کون؟ تو اپنی حکومت پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ پاکستان زندہ باد.
3: تھینک یو. 9558 آپ بات کرنا چاہیں گے, 9558, 9558. اچھا چلیں, آپ سن رہے ہیں بلال صاحب. میں نے برسبیل تذکرہ جو ہے وہ ان کا منیر نیازی کا شعر کہہ دیا تھا, تو بھائی کے سوالوں کے جواب دینا چاہیں گے آپ؟
4: نہیں نہیں, وہ تو جو ہے نا کہتے ہیں اپنا سوالوں کے جواب اپنی جگہ پہ, لیکن بہرحال ہمارا بہت سارے معاملات کے اندر جو تجزیہ ہوتا ہے, دیکھیں جب آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں نا, ابھی بھائی نے بات کی مہنگائی کی اور احتجاج کرنے کی, دیکھیں ایک جو ہے نا وہ لیول ہوتا ہے, اس کو آپ کیا کہہ لیں کہ جب پانی جو ہے نا وہ سر سے جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے,
3: ٹھیک.
4: تو ابھی جو ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ سٹیج جو ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ ہم حکومت کی بھی جو ہے نا وہ سپورٹ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنی عیاشیاں جو اپنے معاملات ہیں ان کو جو ہے نا وہ نہیں کور کرتی, اور سارا کا سارا بوجھ جو ہے صرف عوام کے اوپر ہی ڈال دیتی ہیں, تو پھر جو ہے نا وہ بہرحال ایک جو ہے نا سوال جو ہے نا وہ
3: ضرور. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, ویکینڈ ہے, آپ بھی دو دن ریسٹ کیجیے, منڈے ان شاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو, بہت شکریہ,
4: ضرور, تھینک یو.
3: لسنرز آپ کی کالس کا بہت بہت شکریہ, آپ سے اجازت چاہیں گے, دعاؤں میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا, حوصلہ بھی کھانے کی چیز, اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشرط زندگی. انشاءاللہ منڈے شام 7 بجے آپ سے ملاقات ہوگی, ویکینڈ ہے, بچوں کو وقت دیجیے گا, انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہے. اسٹوڈیو انجینئر مریم پر میزبان اشرف بھٹی کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ اور سپرد مالا.

0: अस्सलाम वालेकुम तीनों हज़रात, हाजिर खिदमत हूँ लेके आपका अपना शोकेस। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ्ता आपका बड़ा क्लासिक गया होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी ठंड थी, बाकी मौसम बहुत अच्छा था, और स्पेशली कल का और आज का वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वेदर। हाँ, थोड़ी सी बारिश भुगती है, पर दैट्स फाइन। तो आइए लिए चलते हैं हंसियों का भंडार, हंसियों का बाजार, हमारी को होस्ट आयशा।
1: अस्सलाम वालेकुम आपको, मेरी सारी टीम को, सब देखने वालों को मुअद्दबाना सलाम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, आप ठीक होंगे, टीम ठीक होगी, सब जबरदस्त।
0: हाँ जी, नहीं सारे ठीक है, ठीक हो भाई? फिर से बताओ, आयशा पूछ रही है।
1: श्योर श्योर, टीम है भाई, हमारी टीम है, रखना पड़ता है।
0: हाँ जी, यू करेंगे ना, वीकडेज में भी वो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ना टीम का, उसमें कनेक्टेड रहा करो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि थर्सडे के थर्सडे। मेरे मोहतरम, मेरे साईं, अदा साईं, बाबा जानी, क्या हाल है जी आपका?
2: बिल्कुल ठीक सर, अल्लाह का शुक्र सर।
0: अल्लाह का शुक्र,
2: बिल्कुल।
0: बाबा जी आजकल बढ़िया पार्टियां गा रहे हो।
2: पार्टियां ही पार्टियां जी,
0: एक ही मौजू पे इतनी है पार्टियां,
2: पार्टियां ही पार्टियां। हुण भी जाना सर, इस तों बाद तुसीं खतम करोगे तो जावांगे सर।
0: ठीक हो गया सर, बाबा जी को रोटी घर की नहीं हजम होती ना, इसलिए जी। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है?
0: मैं ठीक ठाक हूँ। मियां साहब, कोई अपील करनी है लोगों से कि आपके लिए दुआ करें, क्योंकि कभी आपको नजला आ जाता है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी 18, 9, 7, ये कुछ आंकड़े उंकड़े सही नहीं चल रहे आपके।
3: हाँ, बस दुआ करनी चाहिए, वैसे भी दुआ करनी चाहिए,
0: दुआ करनी चाहिए,
3: सही भी चल रहा हो तो तब भी दुआ करनी चाहिए।
0: नहीं है चोरी शौकत रही?
4: हाँ जी,
0: मौजा लग गई है, मौसम आ गया सीधे सीधे।
4: मौसम सीधा है।
0: अच्छा, मैंने ना अक्सर इसको देखा था कि जब सर्दियों में आता था ना, तो ये हमेशा टी शर्ट में आ रहा था, ठीक है। तो आज भी मैंने देखा, पिछले वीक भी देखा, दोनों वेदर वाज फाइन, लाइक यू डोंट हैव टू बी वरी के जी कुछ ठंडा गर्म पहनो, ठीक है। तो दोनों दिन ये जैकेट पहन के आया है, ये उल्टा चलने वाला जो है ना सीधा नौजवान है।
1: तो पता है मैं कनाडा में रहता हूँ, जहाँ पे वेदर का कोई जो है ना भरोसा नहीं।
3: डब्ल्यू गवर्नर,
0: लेकिन तीनों का नाम ना लेना,
1: एक डब्ल्यू का नाम नहीं लेना।
0: जुबैर, सबसे पहले तो आपसे हम पूरी टीम मिलकर पूछते हैं की जी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस लास्ट वीक, यू वॉज यू नो बेसिकली विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए, आप ये समझो कि टीम ऑफ द शो, आप शो में पहले तो आ चुके हो, पर हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? को बाहर से फीडबैक मिला के जी नमयम यमयम
4: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो सब व्यूअर्स को मेरा सलाम, टीम को मेरा सलाम, और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा लास्ट वीक बहुत अच्छा रहा, सब टीम मेंबर्स ने मुझे बड़ा वार्म वेलकम किया, ठीक है, समेत आपके भी।
0: अच्छा चलो जी, हमारी तारीफ होगी नेक्स्ट।
4: और जिन जिन को मैंने वो शो का बताया, उन्होंने कहा कि जी बहुत अच्छा, वेलकम टू द शो केस विद बिलाल चीमा।
0: थैंक यू। ये बेसिकली नाम जरूर ऐसा रखा गया, रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन ये शो आपके बगैर कुछ नहीं है। बिलाल चीमा समझे कि जी साफ कहता है इस शो में, बेसिकली शो इज नथिंग विदाउट यू गाइज, सो इट्स ऑल टीम एफर्ट एंड इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट, इट ऑलवेज विल बी द टीम एफर्ट।
4: आई रियली अप्रिशिएट दैट,
0: नो वरीज। बाबा जी के एक और बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी बड़ी शिद्दत से जो है ना हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हालांकि पट्टी साहब ने लास्ट वीक जिक्र किया था, तो प्रॉब्ली सून वो विल बी गेटिंग हिम इन अ शो, और लगता ही है कि जी माशाल्लाह शो बढ़ता जाएगा और जगह कम होती जाएगी। और एक जमाना था कि जब हमने ये बहुत साल पहले, अब तो माशाल्लाह इस प्रोग्राम को चलते हुए भी 7 साल से ज्यादा गर्सा हो गया, और मेरा ख्याल है कि ये आप ये समझे कि दुनिया से तो मैं मुवाजना नहीं करता, लेकिन टोरंटो में दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन शो सो फार, और एक्चुअली यू नो लेट्स क्लैप फॉर आवर सेल्व्स, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, हम किसी वजह से जैसे फर्ज करें कि अगर आयशा छुट्टियों पर चली जाए तो हम शो ना करें, या मलक साहब गायब हो, मलक साहब ऐसे कम गायब होते हैं, दूसरे नंबर पे मियां साहब जो है अक्सर गायब रहते हैं, तो हो ना तो लोग पूछते हैं मुकायदा कि जी नया शो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं आए, या व्हाटएवर। सो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी इस इज्जत का शुक्रिया जो आप हमें बख्शते हैं, और प्रोग्राम में सबसे ज्यादा आपको पता है किसको मिस किया जाता है, हालांकि बाहर प्रोग्राम में बैठे होते हैं, बाबा जी को।
1: बाबा जी
4: मैं थोड़ी सी चीज ऐड कर दूं, ये सबसे पहले वो जो एक कवाली और वो एक वो शुरू हुए थे, वो नुसरत फतेह अली खान साहब से शुरू थे, उनका नाम तो पूरे वर्ल्ड वाइड में जाना चाहता है। और बाबा जी उनको सुनते सुनते जवान हुए हैं, बचपन सारा अपना जवानी सारी उन्होंने नुसरत फतेह अली खान पे गुजारी है,
3: उन्होंने अपने बचपन की बिताई बाबा जी उधर जवान।
4: नहीं नहीं, अब इख्तिताम जो है ना, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, चाहत फतेह अली खान पे।
0: अच्छा, ये आप चाहत वाली बात
4: कर रहे हैं, खास एक चाहत।
0: वाह जी वाह,
4: देखिए कैसा एक लॉन्ग पीरियड है,
0: नहीं लेकिन इसमें कोई
3: राहत
0: शक
3: से चाहत तक का
0: राहत से राहत से चाहत
3: नहीं जाएगी बाबा जी।
0: बाबा ये राहत भी आपको नुसरत भी आपको कह रहे हैं, राहत भी आपको कह रहे हैं और चाहत भी आपको ही कह रहे हैं।
2: देखो जी वो तो बात ये है कि फन और फनकार, कल भी मैंने एक वीलॉग किया था एक जगह बैठ के, अगर चाहत फतेह अली खां जैसे लोग फनकार कहलाए जाएंगे ना तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्लासिकल म्यूजिक की इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो,
0: किसी भी म्यूजिक की
2: किसी भी ठीक नहीं। मैं एक खास म्यूजिक
0: क्लासिकल तो वो बनना चाहता है लेकिन
2: मैं
0: करता
2: अपने,
0: तो
2: अपनी कौम पे, अपने लोगों पे, अपनी कम्युनिटी पे हैरान हूँ कि चाहत फतेह अली खां जैसे बंदे को फंक्शनों पे बुलाते हैं और उससे गाने जो सुनते हैं चीमा साहब, ये मैं शो में बैठ के आपको बता नहीं सकता।
0: बेहुदा, लफ्ज बेहुदा यूज करें।
4: नहीं नहीं वो असल में बच्चों को, जो बच्चे स्कूल ही ना जाते हैं उनके लिए वो ए बी सी डी सिखाने के लिए और अलिफ बे पे सिखाने के लिए उनको बुलाया जाता है।
2: बाहियाती के लिए पिछले लंदन में उनका शो हुआ था और उसमें उन्होंने ऐसे ऐसे इस्तारे इस्तेमाल किए कि फैमिलियां उठ के चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी नुसरत फतेह अली खान, गुलाम फरीद साबरी, चाहत फतेह अली खान, इनका तकाबुल जो है चाहत अली खान से नहीं करना चाहिए बल्कि चाहत अली खान को जूते मारने
0: चाहिए। एक सेकंड, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कोशिश करेंगे चाहत फतेह अली खान की पिक्चर जो है ना वो लाएं, क्योंकि कई दफा नाजरीन या सामीन जो नाजरीन हमारे उनको नहीं पता चलता है कि चाहत फतेह अली खान किस बला का नाम है।
1: हाँ जी
0: ठीक है, तो आप बड़ा मेहरबानी अगर हो सके इसी गुफ्तगू के दौरान ना तो उनकी पिक्चर जरूर लाइएगा। जी
3: भाई आप अनारकली की तरफ कभी गए हो, पुरानी अनारकली से
4: बानो बाजार
3: न्यू हॉस्पिटल की तरफ या नहीं?
0: बिल्कुल,
3: वहां पे मदारी बैठे होते थे, वो बंदर का डांस भी हो रहा होता था,
0: ये चाहत फतेह अली खां जी।
3: तो मैं तो तस्वीर इनको उसी मदारी से
0: मदारी से मैं बंदर से दूंगा वैसे।
3: मैं यही कहने लगा था लेकिन अब फर्क आप खुद निकाल लें कि ये मदारी है या बंदर है।
0: ना नहीं, लेकिन पता क्या आयशा बड़ी इंप्रेस है सिंगर से।
1: अल्लाह खैर
0: यार, मैंने अगले दिन आपकी गाड़ी में अगले दिन आपकी गाड़ी में मैंने इनको सुना, लेकिन एक हकीकत आपको बताता चलू, बेसिकली ये बहुत पुराने क्रिकेटर है।
4: यस
0: ठीक है ना, ही यूज टू प्ले क्रिकेट ठीक है, और ये पहली दफा इंग्लैंड जो है ना वो काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे।
2: हाँ जी
0: ठीक है जी, और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं हुए ठीक है, नहीं तो आप देखे ना इनकी थोड़ी सी मुशाबत जो है
4: वो ये क्रिकेट की इनकी तस्वीरें भी उधर ये आ रही होंगी स्क्रीन पे।
0: हाँ जी,
4: जब ये उधर आए थे।
0: बिल्कुल जी, वो प्रोड्यूसर साहब इस काम में माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, तलाबट्टी की वजह से तो ये प्रोग्राम चलता है। अक्सर हम कहते हैं कि उनका शुक्रिया, द मिनट वी से समथिंग ही ऑलवेज प्रोड्यूस दैट एवरीथिंग। तो लेकिन एक चीज मैं और भी कहूंगा, मैं भी इससे कुछ कह सकता हूँ कि इजाजत है मुझे?
4: इजाजत
0: कह सकता हूँ। खवातीन तो मैं ये समझता हूँ कि एक आजकल हमें याद है हम पहले एक घंटे का ड्रामा देखा करते थे, तीन तीन घंटे की फिल्में देखा करते थे ठीक है, अब मेरे ख्याल में ड्रामे भी आधे घंटे पे आ गए हैं, फिल्में भी डेढ़ घंटे पे आ गई हैं, लेकिन जमाना इतना तेज हो गया ना कि अब रील्स पे आ गए हैं लोग।
2: हाँ जी,
0: कि दो मिनट वो भी छोड़े जो है कोई
3: second.
0: किसी का वीलॉग जो है ना वो 15 मिनट का बड़े मुश्किल से सुना जाता है,
2: 3 मिनट से
0: समझे कि यही होता है कि जी आप जो है ना स्क्रॉल करो आगे क्या है आगे क्या है, तो ये एक एंटरटेनमेंट है असल में। हाँ, लेकिन ये वो एंटरटेनमेंट है जिसको हमने उछाल तो बहुत दिया।
2: हाँ,
0: अगर देखा जाए तो ना वो सिंगर है ना उनको किसी सुर का पता है, उन्होंने माशाल्लाह अपने सुर भी बना लिए अब तो ठीक है जी, लेकिन खवातीन इसको उस हद तक रखे तो ठीक है, बाकी आपकी सेहत और आपकी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं है कि आप इनके शो अरेंज करें।
3: बिल्कुल ऐसे,
0: और स्पेशली आप फैमिलीज के साथ बैठ के ये शो देखेंगे तो जिस तरह के उनके गाने हैं ऑनेस्टली अगर उसकी आप वर्डिंग सुने ना, और वो बड़े जूम इन और जूम इन में इतने हैं कि बेहूदगी दिया था कि बाबा जी ने तो बड़े शराफत से काम लिया था, तो बाबा जी ने जो शराफत से काम लिया था वो हम नहीं लेते, हम इनको उस स्क्रोल के हद तक या मजाक की हद तक या उनको एक ऐसा सिंबल दिखाने की हद तक, और यार चाहत फतेह अली खां ना बन ठीक है ना, ये चलेगा। इज नॉट अ सिंगर, प्रॉब्ली ही वाज अ गुड क्रिकेटर, आई डोंट नो बिकॉज आई हैव नेवर प्लेड विद हिम, लेकिन ये वो चीज है जो बच्चों के साथ साथ अपनी फैमिलियों की पहुंच से भी दूर रखे।
2: जी जी,
4: लिखा होता
1: है सस्ती शोहरत, अटेंशन सीकर, ये उस कैटेगरी में
2: नहीं, लेकिन जो बंदे उनको बुलाते हैं उनकी दिमागी तवाज़ुन भी,
0: बाबा जी वो तो पैसा कमा रहे हैं, आप उनपे तो जा ही ना, ही इज स्मार्ट कि जब आई एम सॉरी टू से कि जी जब कुछ भी हो आप ये देखो ना, पाकिस्तान वो मुल्क है कि अगर आप खंबे के नीचे खड़े हो जाओ और यूं उंगली कर दो ना और ऐसे देखना शुरू कर दो, तो कम से कम 20-30-40 बंदे आपके गिर्द इकट्ठे हो गए ना, वही चीज ढूंढना शुरू कर देंगे जो आप कर रहे हो।
2: मुंडे ने नारकली का नाम लिया ना, उसे जाके उत्ते वेखना शुरू कर दे, 5 मिनट तो ते पाँह बंदे इकट्ठे हो गए, वह भी वेखना शुरू कर देंगे।
0: एग्री, सो यो चीज है दुनिया में, आप ये देखें ना, हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ले लेते हैं, अब ये नहीं मैं कहता कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री माठी है, नहीं यार, मौला जट जैसे शकार दिए हैं उसने, नूरी नाथ जैसे करेक्टर दिए हैं उसने, लेकिन अगर आप उनको गौर से देखोगे ना तो ये भेड़ चाल ही चल जाती है। हमारे जो पाकिस्तानी कौम है उसमें ज़ाहिर है शरा फांदगी बहुत कम है, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, लेकिन उसको फिर जैसा वो कहते होते हैं ना कि फिर वैसी ही ऑडियंस चाहिए ना आपको, और जैसी ऑडियंस है वैसी ही प्रोडक्ट आपने बना के देनी है, तो ये मशहूर तो होगा इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इस बोतल के लेवल पे ये लिखा होना चाहिए कि बच्चों और फैमिली की पहुंच से दूर है, किसी इज्जतदार महफिल में आने के काबिल नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
3: नहीं बस, आप दूसरे टॉपिक की तरफ चले।
0: दूसरा टॉपिक जो है ना, हमें सेगमेंट में बहुत थोड़ा टाइम रह गया।
3: अच्छा
0: ठीक है ना,
3: मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इसी पे बात करनी है, ये इतना ही अच्छा क्रिकेटर होगा जितना ये
0: अच्छा इस एक्टर
4: है। नहीं अच्छा, आपने चाहत से दिखाएंगे तो रे, रेलिवेंट हो गई बाबा जी से चली के राहत से चाहत तक का सफर जो है। तो बाबा जी की जी पार्टी है, उन्होंने उधर वो पेप्सी क्या नाम है
0: उसका, बाबा जी की पार्टी ने नहीं, वो मियां साहब की पार्टी,
4: मियां साहब की पार्टी, वो लिबर्टी चौक में,
0: हाँ
4: जो
0: बाबा जी, वो आपको पता है खबर का, एक कोई पेप्सी साहब है, उनको सुने कभी आपने?
2: नहीं,
4: वो भी सेकंड
3: जिसकी आवाज लड़कियों की तरह पूरा वो बोलता है बंदा,
0: मुझे नहीं पता,
4: वो अजीब सा लिबर्टी चौक में करेक्टर है। लिबर्टी चौक में उन्होंने नून लीग वालों ने जब इलेक्शन आना था तो उनको जनाब जी खड़ा कर दिया लिबर्टी चौक में कि जी ये जरा आवाम
0: जिहड़े चार वोट पैणे ने
4: वो भी ना पैण।
0: नहीं नहीं, वो तो खैर स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कि आपको मिल्टन में
1: ऐसे चाहत साहब के,
0: चाहत साहब का शो दिया जाए, तो आप विल यू बी एबल टू सेल इट, यानी सोल्ड आउट वाला ये वो कर सकेंगे?
1: मैं तो अपने हाथों से काम नहीं कर सकूंगी, मैं उनके टिकट बेचूं, लेकिन उनको देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ।
0: इसके पीछे क्या वजह, क्यों आते हैं उनको देखने के लिए लोग?
1: क्योंकि लोगों को ऐसी एंटरटेनमेंट चाहिए चीप किस्म की, उसके लिए कहीं भी किसी वक्त भी कहीं भी बंदा जा सकता है।
2: देखें, नेगेटिविटी की भी अपनी वैल्यू होती है ना, एक पॉजिटिविटी की वैल्यू है, नेगेटिव लोग देखना चाहते हैं कि यार इसकी मुखालफत क्यों हो रही है, ये क्या शख्स है, इसको देखें तो सही कि लोग वाकई सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, तो नेगेटिविटी देखने के लिए भी तो लोग
1: क्यूरियोसिटी से लोग
2: जाएंगे।
0: ठीक है, लेकिन एक चीज, हमारे पास टाइम है सिर्फ 2 मिनट, आप सबके लिए एक सवाल करूंगा और वन बाय वन में उसका आंसर लूंगा।
2: अच्छा जी,
0: क्विक एंड शॉर्ट, आप इसको वल्गैरिटी कहते हो? इसके गाने मैंने सुने हैं, थोड़े देखे हैं, सामने आते हैं क्योंकि आई यूज्ड टू वॉच हिम फॉर फन, गंदे हैं। हमारी आज की अगली नस्ल जिन रैपर्स को सुनती है, जो इंग्लिश में वो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? आशा से शुरू होते हैं।
1: सुनते हैं, सब कुछ होता है, और मेरा ख्याल है हमसे ज्यादा उन्हें हर चीज की नॉलेज है, बच्चों को यहाँ की अवेयरनेस है इस टाइम, मतलब उन वो जो एजेस में उन्हें जो सब कुछ पता चल गया जिसकी चीज की उन्हें अवेयरनेस है, हमारी एज में मतलब ये चीजें नहीं थी जब हम थे यंग। बस ये कि आप उन्हें समझाएं, बच्चों को हर चीज डिस्कस करें, ऐसा उनके साथ रिलेशनशिप रखें कि आपके साथ जो है वीकली डिस्कशन हो, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में जरूर आप देखें, और यू नो कीप पोस्ट, कीप अपडेटेड।
0: बाबा जी
2: देखिए सर जी, जमाना बदलता रहता है, जब हमने फिल्में देखनी शुरू की उस वक्त हीरोइन का हाथ पकड़ना भी जो है सेंसर वाले काट देते थे, उसके बाद मुख्तर इतवार आते रहे, अब बात जो है बहुत आगे बढ़ गई, अब जो आपने रैपर्स की बात की है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम आपस में हम लोग कहना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन वो एक रिवाज बन गया है। आप अपने बच्चों को देखें, जब दूसरे दोस्तों के साथ खड़े होते हैं तो सारे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि सब्र शुक्र करके बैठ जाना चाहिए।
4: और मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को भी इस तरह का त्याग करना चाहिए कि वो इस मूवमेंट पे इनको फॉलो मत करें।
0: शौकत अली जो गंदे गंदे गाने अजकल चलते हैं, तुम क्या आते हो इसके बारे में?
4: तेन
0: पता ना इत्थे एक नंबर है बहुत वड्डा, उहनूं कहिंदे ने 911। इहनां नूं कि मैं तेरी सारी उमर जमानता ही करांदा रहां। आपका क्या कहना
3: सर? घर का माहौल जो है ना वो बहुत असर रखता। आप अगर एक पौधे को टाइम पे पानी देते हैं तो वो बीज बड़ा होके एक दरख्त बनता। तो हमें अपने बच्चों को इस अंदाज में परवान चढ़ाना चाहिए कि जो हमारा माशरती माशी और इस्लामी माहौल जो है ना वो उनके अंदर सारी चीज़ें पाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इतने बैकवर्ड हो जाएं, इतने पीछे रह जाएं कि वो दौड़ में शामिल ही ना हो सकें। लेकिन उन्हें अच्छे बुरे की पहचान माँ और बाप दोनों का फर्ज है कि वो उन्हें दें।
0: जरूर। सो खवातीन हज़रात, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, राइट आफ्टर द ब्रेक विल सी यू अगेन।

0: तैयार हो जाएं इस बकर ईद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: इस सीढ़ी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बेटी के लिए तालीम का रास्ता चुन सकूं।
6: TCFSC कई सीढ़ियां बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सालों से लगा रहा है। इस रमजान आपके अतियात और जकात भी किसी बच्चे के लिए सीढ़ी बन सकते हैं, तो TCF का साथ दें और बदले लाखों जिंदगियां।
7: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.

0: मैं ये समझता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनकी बुनियाद प्रॉपर नहीं बनी, वो आके यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों का आप माँ बाप ने, जैसे अभी जुबैर भाई ने कहा कि बच्चों के साथ दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर पाकिस्तान की एक मस्जिद का थोड़ा सा तजर्बा कर लें, मोहल्ले की मस्जिद, वहाँ पे जब नमाज का टाइम होता है या जुमे का टाइम होता है तो उस वक्त सबसे पहले क्या आवाज़ आती है, आप बच्चे नु पीछे कर दो,
1: हाँ, नमाज में भी
0: ठीक,
1: बिल्कुल।
0: बच्चों को पीछे निकाल दो। अगर वही एक बड़े के साथ एक बच्चा खड़ा हो तो वो शरारत नहीं करेगा, और जब आप सारे बच्चों को इकट्ठा कर दें पीछे तो वो एक दूसरे को थप्पड़ भी मारेंगे, शरारतें भी करेंगे, दौड़ेंगे
2: मारेंगे
0: भी।
2: भी।
0: बात यह है कि तरबियत करना माँ बाप का फर्ज है, और सबसे पहली चीज़ जैसे आपने कहा कि बाप तो सारा दिन बाहर रहता, माँ जो है ना वो एक जेवर देती है अपनी बेटी को भी बेटे को भी। और जो माएँ अपने बच्चों की ऊंच नीच को, खराफात को बाप से छुपाती हैं, वो सबसे बड़ी दुश्मनी करती हैं अपने बच्चे के साथ, अपने साथ, अपने बच्चे के साथ और अपने खामन के साथ। और वहीं से एक घर में जो है ना वो तनाज़ात शुरू हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि बाप जो 10 घंटे 12 घंटे काम करके है, उसका काम वो जब सुबह जाता है बच्चे या स्कूल जा चुके होते हैं या वो सोए होते हैं, वो जब घर आता है तो बच्चे सोए होते हैं, बाप घर आता है और खाना खाता सो जाता है। अगर वो नहीं बताती ना तो वो अपने बच्चों को डैमेज कर रही है, वो नुकसान कर रही है। उसे चाहिए कि अपने बच्चों की अगर पॉजिटिविटी बताती है तो वो नेगेटिविटी भी बताए, और बच्चे तभी परवान चढ़ सकते हैं। और जैसे आपने कहा, जहाँ वहाँ से जो बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ के आते हैं और यहाँ पे आके उन्हें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, यहाँ पे चाम है, यहाँ पे पैसा भी है, वहाँ पे अगर पैसा कम है तो वहाँ पे उन्हें वो प्रोटोकॉल ज़रूर होता है। फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है तो उसे एक प्रोटोकॉल है, एक डॉक्टर है उसके लिए एक प्रोटोकॉल
1: यार,
0: है।
1: इंजीनियर और एमबीए वहां पे मैकडॉनल्ड्स पे जॉब कर रहे होते हैं। आर यू खेलिंग मी? आई डोंट बाय दैट।
0: पता
1: ठीक
0: नहीं
1: है,
0: कहाँ आपने पाकिस्तान में इंजीनियर और डॉक्टर्स को मैकडॉनल्ड पे काम
1: डॉक्टर का
0: करता
1: मैंने नाम नहीं
0: देखा।
1: लिया, मैंने इंजीनियर्स ठीक है और एमबीए का नाम लिया है। तुम्हें डॉक्टर सुनाई दिया है क्योंकि तुम्हारे गिर डॉक्टर फिरते हैं। लेकिन मैं आपको इतला नहीं करता हूँ कि जब मेरे छोटे भाई ने, जो सबसे छोटा भाई था, उसने जब एमबीए किया तो उसके बाद जो है ना, उसने कहा जी कि आई फाउंड अ जॉब। हमने कहा फिक्र न कर, हम तुम्हारी नौकरी करवा देते। उनके नहीं, आई फाउंड अ जॉब माई सेल्फ। किधर? उनके जी मैकडॉनल्ड्स में। आर यू खेलिंग मी ब्रो? हमारे मतलब, मैं ये नहीं कहता कोई भी जॉब माड़ी है या कुछ ऐसा वैसा है,
2: लेकिन पढ़
1: लेकिन
2: लिख
1: जॉब के साथ जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए बंदे के साथ कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसे जॉब कौन सी मिल रही है। ओके, आई एग्री विद दैट। इसको जो इसने कहा है वो देख दू कि तेरा दिल कर रहा है बच्चे इतने उड़ के तो
2: होने तो चाहिए ना, को देखने की भा तोलती साढ़े ना।
1: चल रही है। नहीं लेकिन तू सोच रही आंदे चल शौकत, जे तेरी बेगम आए हफ्ते को बाद तेरे अंग्रेजी च गल करना तो फिर की करेगा?
2: इतनी छेती नहीं कर दी गल्ला। बच्चे
1: अच्छा,
2: बच्चे
1: बच्चे
2: मैंने
1: ने समझ लिया कि पहला साल ही है, पहले साल च उन्हें सब कुछ सीख लेना है।
2: सीख लेना
1: फर्ज कर लिया कि तेरा बर्खुरदार जेड़ा है, बड़ी बेटी जेड़ी आके कवे कि हे डैड हाउ यू डूइंग व्हाट सब टुडे।
2: मैं तो पूछना की चाहेंगे।
1: मेरा काम भी बढ़ाता जाएगा बाबा जी।
2: आपकी राय में सुनना चाहूंगी इस
1: बिल्कुल देता
2: बारे
1: हूँ एक चीज बहुत
0: में।
1: मोहतरम,
0: तब से यही
2: नहीं
0: राय दे रहे हैं और कौन दे रहा है?
1: अच्छा
2: देखो
1: ये
2: यार,
1: सारी तकरीर मैंने, यार खवतीनों रात, मैं तो बड़ा तंग हूं अपने पैनल से कि मैं सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं और फिर भी कह रहे हैं सबसे यही राय दे रहे
2: सर
1: हैं।
2: मैं एक चीज, सॉरी
1: एक सेकंड, पहले मुझे
2: जी
1: एक
2: जी
1: सवाल बाबा जी से करना है। बाबा जी मैं ये चाहता हूँ क्योंकि माशाल्लाह जितनी दुनिया और आपने देखी है या जितना वाइज तजर्बा आपका, शायद हमारा नहीं। जैसे इसने कहा कि ये जो दो कश्तियों के सवार हैं, अब देखे ना माशाल्लाह पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि माशाल्लाह कमाल के काम करते हैं, कि फख्र किया जाता है उन पे।
2: टैलेंटेड।
1: ठीक है जी, टैलेंटेड हैं और बड़ा पॉजिटिव टैलेंट लेके चलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ, जो कहते हैं जो घर पड़े हो बाहर भी पड़े, कुछ ऐसे भी हैं। ये एक नेगेटिव पॉजिटिव के भी होता है ना, कि कई दफा थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिव चलती है और कई दफा सिर्फ नेगेटिव चलती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
3: जी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। बातें दो किश्तियां जी, इतने किसी ने गल की सी,
1: अच्छा मैं ही की थी मैनू तुसी
3: जे
1: मतलब
3: तुसी कनाडा आना है ना तो फिर किश्ती इको ही रखो, फिर
1: किश्ती
3: तुसी
1: के रखो।
3: समझो कि कैनेडियन हो। इतने मतलब एक मिसाल देना कि इतने स्कूल, एक स्कूल के बच्चे स्कारबरो के बच्चे उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे सन को 8-8 9-9 साल के, उन्होंने कहा कि जी कौमी तराना सुनाए, वो 5 बच्चे उठ के शुरू हो गए पाक
1: बात
3: सर
1: सर
3: जमीन
1: जमीन
3: शान,
1: शाद बात
3: यानी उस बच्चे

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
2: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
3: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
4: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शाजिया हुसैन फ्रॉम टोरंटो 360 टीवी। जनाब आपके साथ गुड मॉर्निंग टोरंटो में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारी सुबह जो है बड़ी खुशगवार होती है और वेदर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मजीद खुशगवार बनाया जाए। शहर में हमारे बड़े प्यारे एक दोस्त मौजूद हैं जो कि राइटर और डायरेक्टर हैं, तो उनसे मैं मिलवाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वो क्या लेकर आ रहे हैं। बड़ा जबरदस्त कुछ लेकर आ रहे हैं, तो इनसे वहीं पे इनसे डायरेक्ट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका मुझे बुलाने का अपने प्यारे से स्टूडियो में।
0: नईम आपका नाम है और सोशल मीडिया लैब के तौर पे जो है आपका प्रोफेशन जाना जाता है,
1: जी
0: क्या
1: है? सही कह रही हैं आप, ये मेरा सोशल मीडिया लैब के नाम से जो है मैं हर जगह मशहूर हूँ, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मॉडल शूट्स, एवरीथिंग।
0: अच्छा नईम, जैसा कि मैं अपने मेहमानों को बता रही हूँ कि आप जो है राइटर और डायरेक्टर हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज जैसा मैंने सुना है कि आपकी कोई अपकमिंग मूवी है जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से बनाई गई है, जरा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह बनाई है और क्या आने वाला है।
1: जी मूवी हमने शूट की थी लास्ट ईयर और मूवी का नाम है आने का, और ये बेसिकली ऑटिज्म के ऊपर है।
0: ओके।
1: इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो उनको दिखाया गया है कि वो इस स्पेक्ट्रम के अंदर थोड़े से अफेक्टेड हैं और किस तरह से वो डिफिकल्ट सिचुएशन को, डेंजरस सिचुएशन को डील करते हैं। तो इसके अंदर थ्रिलर एस्पेक्ट भी है।
0: ओके।
1: और वो मूवी बन गई है, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएगी और उसकी हम प्रीमियर करेंगे।
0: अच्छा, तो इसमें जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर है वो ऑटिज्म का उनको मसला है?
1: जी, उसको मैंने कोशिश ये की है क्योंकि मैंने लिखी थी मूवी। एक्चुअली हुआ ये इस तरह कि जब मैंने वो पूरा स्क्रिप्ट लिखा, तो जो मैंने जब खुद स्क्रिप्ट को, वो कैरेक्टर को पढ़ा मैंने, सो आई रियलाइज के इनका जो बिहेवियर है, इट्स वेरी क्लोज टू आर्टिस्टिक पर्सन, द वे शी इज टॉकिंग, द वे शी इज रिएक्टिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। सो फिर मैंने कहा क्यों ना इसको, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो भी, हम खुद भी इस चीज से गुजर रहे हैं, मेरा बेटा जो है वो भी डायग्नोज हुआ हुआ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको इसका रंग दिया जाए। तो जो मेन कैरेक्टर है वो भी इसके अंदर मैंने फिर इस तरह से डिजाइन किया कि शी इज ऑल्सो यू नो फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रम, एंड ऑल्सो उसको जो बचाने वाला कैरेक्टर है एंड में, वो भी आर्टिस्टिक है।
0: ओह वाओ। अच्छा, मैं अब जो सोशल मीडिया तो अब ज्यादा हो गया है, तो अब मैं नोट करने लगी हूँ कि जो आर्टिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो आ रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको भी हिम्मत मिल रही है।
1: जी जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ लाइक जब मैं छोटा था, टैबू था।
0: जी
1: exactly. लेकिन अब ये माशाल्लाह से पूरा एक
0: एड्रेस कर रहे हैं,
1: एड्रेस हो चुका है, और इस जो भी कह लें इसको, इसके बहुत इस लाइक सर ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है, इसके अंदर ADHD और बहुत सारी डिफरेंट प्रोग्नोसिस जो है वो आ जाती हैं। तो एंड लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फैमिली, जैसे आपने बताया, जो है इस चीज से गुजर रही हैं, बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन नाउ दे नो, स्कूल्स में उनको जो है डायग्नोस कर दिया जाता है, और फिर सिर्फ डायग्नोस नहीं किया जाता बल्कि पूरे स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो टेल रोड हैं, इसलिए आ सके उस पर्सन को, उस बच्चे या बच्ची को हेल्प कर सके जितना हो सके। और हमारी जो ये लिबरल गवर्नमेंट है, इस सैक्ट से कि उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम इसको बजट कटिंग की है, यू नो होपफुली दे विल रियलाइज कि ये बहुत जरूरी है। और
0: सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस जरूरी है कि पेरेंट्स में वो एक्सेप्टेंस आए, और उसके बाद वो काउंसलिंग प्रॉपर जो इसका एक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, जो एक प्लान होता है, राइट। लेकिन अभी मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आप इसको फिल्म के जरिए जो है वो प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ, जो कि मुझे लग रहा है कि उसमें प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके फिर उसका सोल्यूशन ढूंढा जाएगा।
1: जी आप सही कह रही हैं, हमने तो छोटी सी एक काविश है, एक कोशिश की गई है कि इसको आर्ट के जरिए, फिल्म एक आर्ट है बेसिकली,
0: जी बिल्कुल,
1: यू नो, तो उसको लोगों के सामने रखा जाए और दिखाया जाए कि जहाँ तक मैं कोशिश कर सका, मैं कोई इतना ज़बरदस्त राइटर नहीं हूँ, तो कि लोगों को, जैसा कि आपने बताया, कि एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि जस्ट बिकॉज दे टॉक डिफरेंटली, दे बिहेव डिफरेंटली, doesn't mean के वो आपसे किसी भी लिहाज से कम है, मैंने मूवी के अंदर ये दिखाने की कोशिश की है कि जो मेन कैरेक्टर है और जो बचाने वाला कैरेक्टर है वो एक्चुअली दे डिड प्रीटी डैम गुड टू सेव देमसेल्फ और टू एनालाइज द होल थिंग डिस्पाइट द फैक्ट के जैसे जैसे मूवी स्टार्ट होती है और वो सस्पेंस बिल्ड अप शुरू होता है आप कोई भी देखेगा तो कहेगा अरे ये क्या कर रही है यू नो दीज आर द टेल टेल साइन के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है लेकिन ऐसा उसको घुमाया है बाद में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि नो दीज आर वेरी स्मार्ट पीपल एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट देम.
0: पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है इस चीज के साथ डील करना?
1: ये सही कहा आपने, ये आई थिंक ये कल्चरल थिंग भी है. जैसा कि आपने कहा कि जो अभी आपने बात की थी कि सबसे पहली बात होती है उसको एक्सेप्ट करना कि किसी के साथ किसी शख्स के साथ या किसी बच्चे के साथ कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं इश्यूज हैं. बाद में उसको हर पेरेंट्स डिफरेंट एड्रेस करते हैं और ये भी हो सकता है कि खुद उनमें से वन ऑफ द पेरेंट्स भी maybe going through the same thing.
0: Exactly.
1: Like, तो वो फिर इस चीज को enhance कर देता है. Enhance in the sense के उसको मुश्किल बना देता है कि मैं इसको कैसे टैकल करूं. और हमारे जो एशियन कल्चर है यूजली पाकिस्तान इंडिया उसमें तो यही देखा जाता है कि ऐसे बच्चों को अब तो खैर काफी चेंजेस आ गई हैं विच इज गुड लेकिन मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि इवन मुझे पता है कि नाउ आई लुक बैक एंड सी के मेरे कुछ कजन भी जो थे वो इस चीज के अंदर थे और हम इट्स सैड टू से कि हमारे बड़ों ने उसको मतलब एकदम ही रफ उसको टेक किया और उनका डायग्नोज उस तरह से नहीं हो सका. बट इट्स गुड टू सी कि गुड चेंजेस आर कमिंग.
0: एटलीस्ट कनाडा में तो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से डील किया जाता है और पेरेंट्स की भी जो है वो काउंसलिंग वगैरह होती है कि वो किस तरह जो है वो क्योंकि एक्सेप्टेंस सबसे पहले वो उनको करवाई जाती है फिर उसके बाद जो है वो उनको प्रॉपर प्लान दिया जाता है कि किस तरह डील किया जाए. अच्छा ये तो हो गई बात इसकी. अब मुझे ये बताएं कि मैं पिछले दिनों और जो है मैं यूट्यूब पे कोई चीज़ देख रही थी फिर अचानक मुझे आपकी वो हॉरर एक सीरीज से टकरा हो गया और लिटरली वो वाकई लग रहा था कि वो ड्रॉन्ग कुछ उसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं.
1: जी वो एक्चुअली बेसिकली मेरा स्टेपिंग स्टोन था शो बिजनेस में आने के लिए लाइमलाइट में आने के लिए मगर वो मेरा पैशन है जैसे कि मुझे सस्पेंस हॉरर जॉनर से हमेशा कनेक्शन है एक इंटरेस्ट है तो मेरे और मेरे बहुत करीबी फैमिली फ्रेंड ने हमने डिसाइड किया कि इस तरह का कोई शो स्टार्ट करते हैं. कोविड हुआ हुआ था एवरीथिंग वॉज लॉकडाउन तो जैसे जैसे स्लोली ओपन होना शुरू हुआ था हमने कहा कुछ करना चाहिए
0: उस टाइम पे बड़े आर्टिस्ट निकले
1: तो वो बस हमने अपने प्रीटी बेसिक स्टफ के साथ लाइक गोप्रो के साथ हमने शुरू किया और वी हैड नो आइडिया व्हाट वी वर डूइंग व्हाट वी वर स्टेपिंग इनटू.
0: आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ उस प्रोग्राम करने रिकॉर्ड करने के दौरान कि जो आपको याद है क्योंकि इस बात को भी 4-5 साल तो हो चुके हैं कोई ऐसा कि दिमाग पे लगा हो कि ये दिस इज माय गॉड?
1: जी एक्चुअली उस प्रोग्राम को स्टॉप करने का रीजन ही यही है कि जो हमने लास्ट एपिसोड किया उसमें और आई थिंक दूसरे एपिसोड में हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई. अच्छा? खासतौर पर लास्ट एपिसोड में कि हमने कहा कि नाउ आई थिंक सेफ्टी माइट बी एट कंसर्न बिकॉज हमारे साथ कोई एक्स्ट्रा क्रू नहीं होता था. हम दोनों ही होते थे और जाके उस जगह को एक्सप्लोर करना और स्पेशली एक जगह को दिन में जाके एक्सप्लोर करना और फिर रात के अंधेरे में जाके एक्सप्लोर करने में बहुत फर्क होता है और देयर इज नो आपके साथ कोई बड़ा क्रू नहीं होता. सो मैं और मेरा दोस्त ही होते थे तो जो लास्ट हमने किया एक्चुअली जो सेकेंड किया था वो वॉन में एक घर था तो वहाँ इंटरसेक्शन पे एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ था.
0: Okay.
1: बहुत बुरा कई सालों पहले. तो वहाँ हमने जब किया तो जब हम रात में वापस गए तो हमें एक चीख की आवाज़ सुनाई दी.
0: Oh,
1: वो रिकॉर्ड हुई है उसके अंदर.
0: अच्छा.
1: हाँ जी तो वो मैंने उस वक्त मेरे ब्रेन ने उस वक्त कंप्यूट नहीं किया कि ये कोई एनिमल है कि क्या है लेकिन इट वॉज देयर एंड वी गॉट स्पूक्ड. सो वी एक्चुअली इट्स फनी दैट वो रिकॉर्ड भी हुआ है कि हम भागे हैं वहाँ से.
0: अच्छा यानी जैसे चीख सुनाई दी तो आपने कहा ओके होगा कुछ लाइक एनिमल होगा या कुछ भी فوری طور پہ پروسیس نہیں کرتا ہے نا ذہن.
1: میرے دوست کو زیادہ ہوا, لیکن میں چونکہ ٹو بی آنیسٹ وتھ یو آئم مور آن دی سکیپٹک سائیڈ ایز ویل, میں نے اس کو ریشنل لینے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ شاید میں بھی کوئی اینیمل ہے کچھ ہے, لیکن دیٹ ون وہ ایسی چیخ تھی کہ لگ رہا تھا کسی عورت کی چیخ ہے.
0: اچھا
1: ہاں, تو لیکن میں نے کہا واٹ ڈو آئی نو, مے بی کسی کوئی اینیمل, یو نو ون یو آر آؤٹ سائڈ یور برین از ہائپر ایکٹیو اینڈ سو ایک تو وہ ہوا. اور جو لاسٹ ہم نے ایپیسوڈ کیا تو جب ہم واپس,
0: ڈیڈ یو ریکارڈ؟
1: جی جی وہ ریکارڈ ہوا.
0: اوکے
1: ہاں جی. تو اور جو لاسٹ ہمارے ساتھ ہوا ہے تو وہ دیٹ واز پریٹی ڈراسٹک, وہ سب ریکارڈ ہوا ہے.
0: اوکے
1: ہم پہ پتھر پھینکے گئے.
0: او مائی گاڈ.
1: ہاں جی. اور وی ور سراؤنڈڈ.
0: واٹ آئی ہرڈ کہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ جنات کی طرف سے پھینکے جاتے ہیں, ان کے اس میں آپ لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں نا, مطلب
1: وہ ہم ایک کھنڈرات تھے تو اس کھنڈرات کو, اس کا نام ہے ہرمیٹیج روئن, وہ ہیملٹن میں ہے. یا وہاں پہ جانے کے لیے ایکچولی ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اٹس اے سیگوے.
0: سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں نے ہیملٹن کے بارے میں بہت ساری اسٹوریز سنی ہے کہ وہ تھوڑے سا لٹل بٹ.
1: ہاں جی, ہیملٹن میں ہم نے کافی ایک پاگل لوگوں کا ابینڈن ہاسپٹل ہے وہاں بھی گئے. دیٹ واز ویری کریپی ٹو ایکچولی.
0: او مائی گاڈ, سننے میں ڈر لگ رہا
1: ہے. یا دیٹ واز ویری کریپی. اور وہاں پہ جو سین, سوری میں اس سے ہٹ رہا ہوں, ہم ایک کپل کا باہر انٹرویو کر رہے تھے اور کپل کے باہر انٹرویو کرتے کرتے ہی اوپر سے پتھر گرا ہمارے اوپر.
0: واو,
1: تو وہ ریکارڈ ہوا تھا.
0: تو کپل جو تھا وہ کیا تھا؟
1: وہ دیور ایکچولی دے کیم ٹو اس اینڈ وہ ہمارے لیے وریڈ تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یو گائز آر پلیئنگ وتھ فائر,
0: او مائی گاڈ,
1: سو گیٹ آؤٹ آف ہیئر, اٹس ناٹ فنی. وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم اس کا کچھ فن بنا رہے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ وی آر ناٹ میکنگ فن آف دس تھنگ, وی آر ایکچولی میکنگ اے ریالٹی شو. تو وہ ہمیں ابھی یہ سمجھا ہی رہے تھے کہ اوپر سے پورا ایک پتھر گرا تھا وہاں بھی ایکچولی, تو وہ بھی ریکارڈ ہوا ہے. تو اور اس کے علاوہ جو آخری تھا وہ تو کافی ڈینجرس تھا.
0: اچھا, وہ آخری اور وہ دونوں ڈیفرنٹ تھے, یعنی پتھر آپ کو دو پروگرامز میں آئے؟
1: ہاں جی, دو پروگرام میں ہوئے ہیں. اور وی ہیڈ نو آئیڈیا.
0: شیطان سمجھ کے تو کوئی نہیں مارا,
1: پتا نہیں
0: کنکریاں,
1: یا تو کوئی ہمارے پیچھے آتا تھا. تو جو لاسٹ ہوا ہے وہ تو ایک دم جنگلوں میں تھا, تو وہاں پہ ہمارے پہ پتھر آ کے گرا. میں ریکارڈ کر رہا تھا, آئی واز اے کیمرہ مین. اور یو کین ہیئر, یو نو, ہوا میں جب پتھر جاتا ہے اور وہ گرا ہے جا
0: کے.
1: ہاں جی, تو وہ گرا ہے, میں ہم نے دونوں نے مڑ کے دیکھا ہے. ہم نے کہا اوکے
0: کریپی ساؤنڈ.
1: ہاں, تو پھر میں نے اپنے دوست کو یہی, میرا دوست ڈر گیا تھا, ڈر تو میں بھی گیا تھا, لیکن میں نے کہا لیٹس کیری آن, لیٹس ناٹ اسپوک اگین. تو پھر ہمیں ہاؤلنگ کی آواز آئی جیسے کتوں کی, وہ بھی ریکارڈ ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہم نے کہا دیٹس نارمل, یو نو, جنگل ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یو نو, کائیوٹیز ہو سکتے ہیں. تو پھر ہمیں فٹ اسٹیپس کی آواز آئی ہیں بہت ساری, لائک چاروں طرف سے آنے لگی ہمیں, ادھر سے بھی ادھر سے بھی. ہم نے کہا اوکے there are people, they are surrounding us.
0: Okay.
1: میرا برین اس وقت بھی پیرانارمل کی طرف نہیں جا رہا تھا, میں اس کو ہمیشہ ریشنل لیتا ہوں کہ مے بی دیر آر سم پیپل, دے آر ڈوئنگ سم بیڈ سٹف ہیئر, دے وانٹ اس ٹو گیٹ آؤٹ آف ہیئر. تو جو بھی تھا, اینی وے, تو
0: ہم ڈرگیز وغیرہ کی طرف جاتا ہے نا, کہ وہاں پہ کھنڈرات میں وہ اپنا اس تلاش کرتے ہیں. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں پتھر گرا یا دوسری چیزیں ہوئی, تو دیٹ واز ناٹ ریلیٹڈ ٹو ڈرگیز, رائٹ؟
1: نو, فنی تھنگ یہ تھا کہ آخر میں نے اپنے دوست کو کہا جب ہم واپس کھنڈرات میں گئے کہ یو نو وٹ, لیٹس سپلٹ, میں اس طرف جاتا ہوں, آپ یہیں رہو, اس کو فالو کرو. تو اس نے مجھے منع بھی کیا, اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تو میں نے کہا نہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو مجھے کچھ تھا کہ کچھ ہونا ہے, سو لیٹس, اگر جس پرپز کے لیے آئے ہیں تو پھر
0: کچھ کہہ رہا
1: کہ اس کو ریکارڈ کریں. تو پھر وہی ہوا, میں ایک طرف چلا گیا, وہ میں نے کہا کہ تم یہی رہو. تو جب میں گیا ہوں تو اس کے 5 منٹ بعد ہی اس کو ایسا لگا کہ میں وہاں نہیں گیا ہوں, بلکہ میں ایک کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہوں اس کو.
0: واو.
1: تو وہ ایک دم اس نے ٹرن کیا ہے, تو اس نے میرا نام لیا ہے. تو اس نے کہا تم یہاں کیا, تم تو ادھر, تم آر یو میسنگ اراؤنڈ وتھ می. وہ یہ سمجھا کہ میں اس کے ساتھ میس اراؤنڈ کر رہا ہوں. تو وہ دوڑتا ہوا دیوار کے پیچھے آیا, دیوار بس اتنی دور تھی, ٹوٹی ہوئی دیوار تھی, اس سمجھا میں اس کو ابھی پکڑ لوں گا. جب وہ واپس گیا ہے تو کوئی نہیں تھا وہاں پہ, تو اس نے پھر چیخ ماری ہے. تو پھر میں دوڑتا ہوا واپس آیا ہوں بہت دور سے, تو اس نے جب اس نے واقعی دیکھا کہ میں تو کافی آگے تھا, اتنی دوری کیسے جا سکتا ہے یہ 2 سیکنڈ میں, تو پھر اس نے بتایا کہ یہاں کوئی تھا. ہم نے کہا لیٹس پیک اپ ناؤ. اور وہ ریکارڈ ہوا ہے, وہ شبی ریکارڈ ہوئی ہے. وہ شبی ریکارڈ ہوئی ہے, تو وہ ہم نے دیکھی ہے, ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا اس چیز کو انہینس کیا ہے ہم نے. दिखाने के लिए फ्रेम को रोक के कि ये देखें यहाँ पे कुछ था,
0: जान जोखों में डाल दिया।
1: हाँ, उसके बाद हमने कहा, हमारी फैमिलीज ने कहा कि भाई इनफ इज इनफ है, अनलेस यू आर गेटिंग पेड बाय सम बिग प्रोड्यूसर।
0: मैं जल्दी आपको पे करूंगी। अच्छा ये बताइए नईम, अभी जैसा कि आप मूवीज जो है डायरेक्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि इसमें आपको अपनी फैमिली की कितनी सपोर्ट है, क्योंकि ये फैमिली की सपोर्ट के बगैर आपको लगता है कि ये चीज मुमकिन होती है?
1: मेरी जो माशाल्लाह से I'm blessed कि मेरी जो अदर हाफ है, मेरी वाइफ जो है, शी इज एक्चुअली द प्रोड्यूसर। जब इन द बिगिनिंग शी वाज यस लिटिल बिट स्केप्टिक कि ये क्या नया चीज है, मूवीज कैसे करेंगे, क्या होगा, बट शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट टू, सो उससे मुझे बहुत हेल्प है। तो यस, शी इज 100% सपोर्टिव। एंड समटाइम तो सेट के ऊपर, हालांकि डायरेक्टर मैं था, लेकिन शी ऑल्सो गेव सम गुड आइडियाज कि नहीं, सीन को ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो इट टर्न आउट प्रीटी गुड। सो इन दैट सेंस यस, शी इज ऑन बोर्ड एज वेल। सो या बगैर उसके सपोर्ट के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बच्चे जो हैं मेरे, दे आर, वो बड़े हो चुके हैं, सो दे लाइक माई प्रोजेक्ट्स। लेकिन इसीलिए जो मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपना लाने लगा हूँ, तो वो मेरी जो बेटी है वो कहने लगी, डैड डू समथिंग दैट आवर जनरेशन कैन ऑल्सो अटैच। आप, मतलब उनको ऐसा लगा कि मैंने जो लास्ट मूवी बनाई है ना, वो मतलब इंडिया पाकिस्तान के कल्चर से ज्यादा रिलेट कर रही है। तो मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये मेरे लिए चैलेंज था, तो फिर मैंने इस कहानी को ऐसा लिखा और ऐसा इंशाल्लाह शूट करूंगा कि वो
0: दूसरी कोई मूवी है।
1: जी जी जी, उस मूवी का नाम है डार्क मेमोरीज।
0: ओके,
1: हाँ, तो वो भी इंशाल्लाह वी गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। तो
0: उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे या अभी?
1: मैं यही बता सकता हूँ कि वो स्प्लिट पर्सनैलिटी के ऊपर है।
0: ओके,
1: और वो भी उसको एक डार्क रंग दिया गया है, एक थ्रिलर है वो भी। दिखाया ऐसी है कि कोई पैरानॉर्मल चीज है, लेकिन जो मूवी,
0: अच्छा, उसी तरफ जाते हैं।
1: लेकिन वापस जब मूवी रिवर्ट करेगी तो लोगों को पता लग जाएगा कि इट्स नॉट पैरानॉर्मल, ये सब इसके दिमाग में, बेचारा सफर कर रहा है किसी चीज से। तो ये कोशिश की गई है उसके।
0: अच्छा, यानी ये भी कुछ वैसे ही साउंड कर रही है कि लोग जो है इंटरेस्ट पैदा हो जाता है लोगों में इस तरह की, क्योंकि देखें ये जो प्यार भरी कहानियां, अब इंसान इससे बहुत दूर निकल चुका है। पोस्ट कोविड तो मुझे लगता है कि इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि प्यार भरी मूवीज या प्यार भरे गाने, अब तो जो है ना फास्ट फास्ट फास्ट, और उसके अलावा इस तरह की जो मूवीज हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट होता है लोगों को। तो लाइफ, आपको क्या लगता है बीइंग अ राइटर, आपको लगता है कि चेंज हुई है पोस्ट कोविड दुनिया, या क्या, या ये मेरा अपना परसेप्शन है?
1: नहीं, आई थिंक आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है आपकी, कि कोविड ने दुनिया को बहुत चेंज कर दिया है। नंबर वन के ये कि एक तो हर कोई सोशल मीडिया स्टार हो गया है,
0: एवरीबॉडी,
1: यू नो, सो कैमरा जो है वो अब इतना रैम्पेंट हो गया, और इतना, एंड इट्स गुड थिंग टू, यू नो, सबका टैलेंट बाहर आ गया है। एक तो ये, उससे एटीट्यूड में भी फर्क पड़ा है। और
0: एटीट्यूड में किस तरह का आपको लगता है?
1: एटीट्यूड में के जो एक्सेप्टेंस लेवल है सर्टेन चीज में बढ़ गया है, सर्टेन चीजों में बहुत कम हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपनी भी चार चीजें या पांच चीजें डाल देता है यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि दूसरे लोग जो हैं वो भी कुछ है। इसकी ये काफी है एक्चुअली,
0: they can do that,
1: yeah, they can do that, so it's like it's a very weird psychological thing. और गुड थिंग ये है कि लोगों को टैलेंट देखने को मिला है, और लोगों को पता लगा है कि इतने जबरदस्त टैलेंटेड लोग हैं,
0: बिल्कुल सही कह रहे
1: हैं, you know, और वो अच्छी चीज ला सकते हैं, ला रहे हैं,
0: ला रहे हैं, पॉजिटिव वे में अगर देखें तो बहुत सारे लोग उसमें उभर के आए हैं। और ख्वातीन स्पेशली घरों से काम उनका स्टार्ट हो गया है, यानी स्मॉल बिजनेस जो है वो ख्वातीन ने स्टार्ट किया है, और काफी जो है वो इसमें आगे बढ़ रही हैं। और मैं ये कहूंगी कि एक तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर ख्वातीन अपना हाथ बटाना चाहें, अच्छा इसमें वो ख्वातीन भी शामिल हैं कि जो कि वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन वो चूंकि घर और बच्चों के जिम्मेदारियों में फंस के वो काम नहीं कर पा रही थी बाहर जाके, तो उनका, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वी आर ब्लेस्ड के कैनेडा में बहुत मेजॉरिटी, आप इसको कहें कि जो है सारी वर्किंग खवातीन है, तकरीबन सारी खवातीन वर्किंग हैं और जो नहीं हैं अब वो भी घरों से काम कर रही हैं. तो मैं कहूँगी कि ये पोस्ट कोविड खवातीन के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ, ड्यूरिंग कोविड बड़ा अच्छा साबित हुआ है कि उन्होंने अपनी चीज़ें, चाहे वो खाना पकाने के हिसाब से या जिस हवाले से भी, घरों से उन्होंने अपने जो कपड़ों का शुरू कर दिया. तो यह हर चीज़ को अगर पॉजिटिव वे में देखें तो बड़ा अच्छा, मर्दों के लिए भी बड़ा अच्छा हुआ है कि उनके हाथ बटाने के लिए खवातीन आगे आ गई हैं.
1: नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. इट्स अ वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग. सोशल मीडिया जो है इट्स अ वेरी पावरफुल टूल. अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके आगे सर थाम चुका है. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. इट्स गोना इवॉल्व इनटू समथिंग सो जाइगेंटिक. मुझे याद पड़ता है लास्ट ईयर मैं नाइग्रा फिल्म फेस्टिवल में गया हुआ था. तो वहाँ डोना समर आई हुई थी, शी इज़ अ वेरी बिग प्रोड्यूसर. तो मैंने उनसे सवाल किया था कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी मूवी इंडस्ट्रीज हैं हॉलीवुड की, वो खुद भी रिप्रेजेंट करती हैं पैरामाउंट पिक्चर्स को. तो मैंने कहा था कि ये जो सोशल मीडिया है ये इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं. तो उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग अ बिग इम्पैक्ट, अ बिग डेंट. And it's also forcing giant companies like Paramount and bade bade jo naam hai to rethink our whole way of doing movie making and everything. So there you go.
0: Abhi thode arse pehle ki baat hai, mere khayal se 6-7 mahine pehle ki baat hai ki Pakistan ki main ek writer se baat kar rahi thi, khatoon hai. तो उनसे मैंने कहा कि आपके ड्रामे इतने फ्रिक्वेंटली आते थे, अब इतने कम क्यों हो गए. तो उन्होंने कहा कि शाजिया, अब जो YouTube ने और जो इस तरह का सोशल मीडिया है उसने ना लोगों की मेंटालिटी इस तरह की कर दी है कि अब वो लंबे ड्रामे नहीं देखना चाहते हैं. वो कहते हैं 10 मिनट के अंदर मुका दो. कहीं 10-10 मिनट की मूवीज आ चुकी हैं जिसकी वजह से अब हमारा स्कोप उतना नहीं रहा है. वो उनको शिकवा था, जाहिर सी बात है एक पुरानी राइटर हैं और बड़ी मंझी भी राइटर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये कि ये शिकवा उनको हो रहा था. कह रही थी कि बिल्कुल सोशल मीडिया ने जो है काफी बड़ा डेंट मारा है इस इंडस्ट्री पे.
1: नो डाउट.
0: तो ये कि नईम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होती रहेगी क्योंकि मैं मूवी देखने के बाद भी आपको जहमत दूंगी क्योंकि मैं देखूंगी. अगर जहां पे कुछ क्रिटिसाइज करना पड़ेगा वहां पे क्रिटिसाइज भी करूंगी, क्रिटिक बनूंगी मैं. और अगर जहां पे मुझे आपको सपोर्ट करना होगा मैं आपके शाना बशाना खड़ी होंगी. तो ये कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाजरीन, आपसे भी फिर मुलाकात होती है. देखिए मैं आपको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें कनाडा की दिखाती हूँ, पॉजिटिव साइड भी दिखाती हूँ, नेगेटिव अल्हम्दुलिल्लाह इतनी होती नहीं है, और जो होती हैं वो हमारी आपस में रिजॉल्व हो जाती है. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़.

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकुट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
4: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
5: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
6: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
7: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
8: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्फ बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
9: At Alam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief. Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients.
10: Supporting our local community is integral to the values we hold dear.
11: Every single client file we represent at Alam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by.
12: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: The Law Professionals at TM Law providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, Barrister and Solicitor at 647-838-4773 or you can visit

Coke Studio, Season 15.

0: और चाय दूं?
1: नहीं, काफी।
2: अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी।
0: वालेकुम सलाम पुत्र। अरे पुत्र, तुझे पता है तेरी खाला जुबैदा ने ना कल घर में दुआ रखी है, और मैं भी ना पीर साहब के मजार पे मन्नत मांग कर आई हूँ।
2: पर अम्मी जी, परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है
0: ना बेटा, दुआओं में भी बड़ा असर होता है।
2: सही है।
1: कल के मैच का ज्यादा प्रेशर मत लेना तुम, और ये हुक शॉट खेलते हुए अपना टेम्पर मत लूज किया करो, ध्यान से खेला करो।
2: जी अब्बा जी।
1: और नजर मोहम्मद साहब ने इस मैच के लिए खास कर दुकान पर नया टीवी लगवाया है, आधे सियालकोट को उन्होंने अपने वहां मधु किया हुआ है।
2: चाचा जी भी बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं वैसे। बहुत मिस करूंगा। बस ये बताओ, हो गया पैक? फोन पे फोन आ रहे हैं यार।
3: जानती हूँ कितना याद करोगे मुझे।
2: मैं तुम्हें भूलता ही कब हूँ जो याद करूँ, हर वक्त तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ।
3: अच्छा, तभी लेडीज इनक्लोजर के सामने फील्डिंग करते हुए 32 निकली हुई थी तुम्हारी, है ना?
2: मुझे मेरा कैप्टन है ना, वही खड़ा करता है मुझे वहाँ पे। वो कहता है मेरा सबसे गुड लुकिंग बंदा वही खड़ा होगा। बस वैसे भी जिस लड़की को देखता हूँ मुझे तुम्हारी शक्ल नजर आती है।
3: अच्छा, वो डैडी का फोन आया था, वो मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाऊँ, फिर मैं वहीं से तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाऊंगी। हाँ प्लीज। तुम्हें पता है डैडी और क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि पिछले मैच में तुमने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी।
2: कम ऑन यार, मुझे पता है तुम्हारे डैड मुझे कितना पसंद करते हैं, छोटी तारीफ नहीं करो मेरी।
3: 4 साल में बहुत कुछ बदल जाता है अकबर।
2: तुम्हारे डैड 40 साल में नहीं बदलेंगे मेरी गुड्डी। ओए, तुम्हारी बातें सुन रहा है छोटू? सो जा, सो जा, सो जा, सो जा।

0: वन स्कॉच विद वाटर. तू क्या लेगा?
1: ऑरेंज जूस.
0: ऑरेंज जूस पिएगा?
1: क्योंकि शायद तू जानता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ.
0: ऑरेंज जूस.
1: भाई कल मेरा फाइनल है, कुछ तो ख्याल कर.
0: तो जानता हूँ फाइनल तू ही जीतेगा. मैं एक मिनट शेख साहब से मिल के आ रहा
1: हूँ. यही रहा है. हाँ
0: आई नो.
2: बंदे को अजहर मजीद कहते हैं
1: जी.
2: आपसे पहले भी बात हुई थी साउथ अफ्रीका वाली बुक. पिछली सीरीज में भी आपसे कांटेक्ट किया था. कल के मैच का भाव बहुत ऊपर है.
1: मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है.
2: अगर एक मैच फिक्स हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है?

0: قوم يا شيخ شباب شيخ قوم قوم يا شيخ شباب يلا يلا قوم ها خلي معك خلي معك تعال يا شيخ
1: مالي زارو
0: يلا يلا يلا يلا, يلا. خش هنا سوي تفتيش 100% سوي تفتيش 100% خش هنا خش يا شيخ خش هنا يلا شباب
2: क्या बात
3: चाचा टीवी लगाए तो
2: अच्छा
4: ने अपनी हिरासत में ले लिया अकबरदीन को होटल के कमरे में मनुष्यात के साथ नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया पाकिस्तानी क्रिकेटर अकबरदीन की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान ये मैच हार गया बल्कि मुल्क भर में मौजूद क्रिकेट के लाखों शायकीन के दिल भी टूट गए इस वाकये से दुनिया भर में पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई है उधर दुबई पुलिस भी अकबरदीन से मिलने जुलने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है
0: Where did you find this drug? How did you find this drug?
1: I don't know.
0: I want to know. I want to know. Who is your boss?
1: No, what?
0: Who is your boss? Answer me. Kasar Ras bane kalima na Pakistani. Kasar Ras.
5: I don't know. ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए

0: मैं बेकसूर हूं। आप जानते हैं मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं हूं।
1: तुम्हें यहां आने की इतनी जल्दी थी? तुम जैसे अपस्टार्ट लोगों का यही तो मसला है, जहां थोड़ा सा पैसा देखा, थोड़ी सी शोहरत मिली, अपने आप से बाहर हो जाते हो और इवेंचुअली तुम लोग ऐसी जगहों पे आके एंड करते हो।
0: ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
1: मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये पेपर्स हैं, इन्हें चेक कर लेना।
0: ये क्या है?
1: डिवोर्स डीड है। मेरी बेटी सारा तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और उसने साइन भी कर दिए।
0: ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये मेरा और मेरी बीवी का आपस का मामला है।
1: जब शौहर दुनिया के सामने मुंह काला करता हुआ पकड़ा जाए तो फिर वो आपस का मामला नहीं रहता।
0: आप मेरा घर तबाह करने की कोशिश नहीं कर सकते।
1: मेरा घर तो उसी दिन तबाह हो गया था जब तुमने मेरी अकलौती बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाया था।
0: देखिए, ये लड़ाई हम बाद में भी लड़ सकते हैं, अभी मुझे निकलना है यहाँ से।
1: अब सारा और मिकाल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है।
0: मिकाल मेरा बेटा है।
1: था। मिकाल तुम्हारा बेटा था, आज से वो मियां आसिफ कुरैशी का नवासा कहलाएगा। बस
0: ऐसा नहीं हो सकता।
1: मैं मिकाल को इतना दूर ले जाऊंगा कि अगर गलती से भी उसे अपने बाप का ख्याल आए तो वो उसे बहम लगे, समझे?
0: रुको रुको, ये जुल्म है। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड। तुम ऐसा नहीं कर सकते, यू बास्टर्ड। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते।

0: करके तो मेरी पेमेंट मर जानी जे।
1: अब आशा करे।
2: आओ आओ, अब कुत्तों से डरने वाले शेरों आ जाओ। और ती ओवरहेड 200 पंजीरन खा गया मार जाओ।
3: मलिक साहब, तीन तो कैश ड्रॉप हुए
2: हैं। भी मेरे के पा दियो। एक तो मैच खिलावा, वो तो कैच भी लगा है।
0: मलिक साहब मेरे पैसे।
2: अच्छा तो चुप कर। शायद किथे?
3: वो जी वो।
2: ओ ए ओ एक गल कर।
3: सर वो बैटिंग के वक्त पहुंच जाएगा।
2: ओ तो मैच के दौरान किथे दफा हो गया हो?
4: ओ जी टक्कन कटे करने शादी में गया जी।
2: ओ केड़े टक्के ने?
5: ओ यार शायद तेरी मेहरबानी चल यार।
3: ओ यार मजा आ लेगा किसी टक्कर में से भी कुछ निकल आए।
5: ओ यार शादी हॉल से लेके होटलों तक सारे पेप्सी के टक्कर खोल लिए और लेकिन तेरी स्कीम का एक भी टक्कर नहीं मिला।
3: ओए मिलेगा मिलेगा वड्डा आया नवाब जाना।
5: ओए बस कर दे।
6: ओए भाई काशी भाई,
5: तू क्या कर रहे हैं?
6: मलिक साहब बुला रहे ने, सो के छे आउट हो गए ने।
5: ओ यार ओ सो छे विट्टे लुट गए। ओ तो चल। ओ शायद ओ सो छे विट्टे आउट हो गए यार। चल मेरा ब्रा हो चल। ओ चल यार।
3: यार 2 मिनट साथ वाले शादी हॉल से भी जरा चेक कर लेते हैं।
5: मैं बोतल पड़ गया ना, अपने सर पाड़ ले रहा है। चल यार
3: यार चल ठीक है चल।

0: तुमसे क्या क्या करवाएंगे आप?
1: अच्छा लिखी ला ली।
0: साडे लोकल शाहिद अफरीदी साहब तशरीफ ले आए।
2: हाय हाय मलक साहब, कसम से जब भी आप मुझे शाहिद अफरीदी कहते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है।
0: ये शाहिद अफरीदी से मिलने वाला टक्कर मिला तुम्हें?
2: किथे
0: टक्कर का ख्याल कर लो, और मैच जीत लो, वो मेरे माठे हो, मैच जीतो।
3: मैच जीत लो यार, मेरे भी 20 रुपए फंसे हुए हैं।
2: अच्छा जी, हाँ जी। लो जी, फिर होने लगी है बूम बूम।
4: Boom, boom.

0: Alla. Alla पुत्र, ये तुम्हारे और ये तुम्हारे मैन ऑफ द मैच के, ठीक है?
1: मलक साहब, मैन ऑफ द मैच के तो पूरे 1000 रुपए दे दे, उसमें से भी 500 रुपए काट लिए आपने।
0: ये जो पैसे कटे हैं बेटा, ये क्लब में लगेंगे सुईटू। हमेशा याद रखो, खूद ही मिट्टी खून ही लग दिए।
2: मार ना मार, ऐसे जूस ही वाया तो क्लब का हाल है।
1: छोड़ ना काशी, ऐसा तो पहले भी होता रहा।
2: ओ शान दी नई फिल्म लगी है यार, आज चलके देखना। दौड़ दौड़ के आने, दौड़ दा।
1: तू जा, मैं कर जाना।
2: ओ मेरा शून्या, अपनी चूड़ियां लेनी है, चूड़ियां लेनी है।
1: तू तो जानता है, ऐसे मौके के इंतजार में रहता हूँ मैं।
2: शहजादा है तू। और वैसे वो वसीम अकरम की जगह शुएब अख्तर ही कह सकता था। अच्छा,
1: काली आंधी कहता तो है तुझे।
2: चुप है।
3: अस्सलामुअलैकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
3: की हाल?
4: मैं ठीक हूँ। ले बे सलमा, इतना अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ ना कि तेरी टीके पांव ही खुल जाएंगे।
3: नौकरी पक्की है ना?
4: हाँ हाँ, तुझे तो पता ही है कि सोरा ने कभी कच्ची नौकरी वालों को मुंह नहीं लाया।
1: सलामुअलैकुम अम्मी।
3: वालेकुम सलाम।
1: ओ खाला, सलामुअलैकुम।
4: वालेकुम, कैसा है तू?
1: मैं ठीक।
3: सुना, मैच कैसा रहा?
1: अम्मी, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच।
3: ओ जिंदा रहे, जिंदा रहे। देखिए,
4: मैं तो कहती हूँ कि इसको भी किसी चंगी जगह पर सेट करा दे, मैं इसके लिए भी कोई सोनी मनमोनी सी ढूंढ कर लाऊं।
1: ओ खाला, खुदा के लिए, मेरी अभी शादी में बड़ा टाइम है, और वैसे भी अभी मुझे टीम में जाना है ना?
4: कर लो गल। पागल जिया।
1: बाजी देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ।
5: शाहद, तू सारे पैसे चूड़ियों पे खर्च कर देता है।
1: तू मेरी पैन है, पैन पे तो खर्च करता हूँ, और वैसे भी तुझे पसंद तो आती है ना।
5: हाँ, लेकिन
1: अच्छा बाजी, ऐते मैनू दसो, ये खाला चोला कब से आई हुई है?
5: शाहद,
1: मजाक कर रहा था। वैसे ये रिश्ता तुम्हें कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा है
5: शाहद? चल जा, लेके जा, चल।
4: एक सलमा, रिश्ता बहुत चंगा है, तू ये हाथ से ना जाने देना।
3: जी।
4: बस तूने ना मुंडे को कमरा ही सजवा कर देना।
3: जी।
4: हाय हाय, ये टीवी, एसी, फ्रिज और पलंग, आखिर को ये चीजें हमारी आयशा के काम ही तो आनी है ना। और साथ में लाख दो लाख थमा देना, ताकि मुंडा अपना कोई जाती कारोबार भी शुरू कर ले।
3: आपा, तां ते पता है मेनू फैक्ट्री तो किन्ने पैसे मिलते ने, और आशी दे सिलाई कढ़ाई दे पैसे होंदे ने। बस
4: मेरी बात सुन, तेरी ती के हाथ का भी मसला है। बड़ी मुश्किल से मैंने मुंडे वालों को राजी किया इस रिश्ते के लिए।
3: जी।
4: अब कह ना उसके प्यो को भी कि वो भी कुछ हया करे ना, उसको तो अपने शुगर लगाने से फुर्सत नहीं मिलती।
3: जी।
4: चल, मैं अब जा रही हूँ, उनके साथ ही आऊंगी तेरे घर अब। ठीक है, चंगा फिर।
3: ठीक,
4: रब रख,
3: रब रख।
5: मुझे नहीं करना व्याशा, ये मुंह पर पर के पैसे मांगते हैं लोग, हया भी नहीं आती लोगों को। बेचारी औरत फैक्ट्री में काम करती है, कहां से कमा के लाएगी पैसे?
1: बाजी, तू फिक्र क्यों करती है, मैं भी तो हूँ ना।
5: लेकिन ये हाथ, इससे तो बेहतर ये हाथ
1: नहीं लगा। ऐसे ना करो बाजी, ऐसे ना करो। तुसे
5: मैं तंग आ गई इस मजदूरी से।
1: बाजी ठीक ही तो है, लोगों को क्या मालूम कि तुम सारा कार का काम कर लेती हो। लोगों के तो मुंह से निकल जाता है, और जिनके हाथ है वो लोग भी तो बेकार ही बैठे होते हैं ना।
3: वे
1: हैं?
3: शायद
1: आया। अम्मी जी,
3: जा पत्ती ले के आ।
1: अच्छा जी। बाजी, मैं जरा जाके पत्ती ले आता हूँ, वरना पट्टी साहब आ गए ना तो उनकी चाय के लिए पत्ती नहीं होगी।
5: ओ तू फिक्र ना कर, अब्बा जल्दी नहीं आएगा, शेरे का मुकाबला है ना आज।

0: अब मेरी जान मेरा चन
1: पट्टी साहब आपा सोहरा आई सी कह रही सी कि ओ मुंडे आले मन गए ने मुंडा रेलवे च मुलाजिम है कह रही सी कि एक कमरे का समान देना होएगा ते होर 2 लाख रुपया चाहिए
0: आ यादा है करमाली कुदू 400 रुपया दे दे मेरे शेरे आस्ते पिस्ते तो बदाम खत्म होए ने
1: तुसी सुनिया नहीं मैं तन की क्या मैं तानू तड़ी ती दे रिश्ते बारे गल कर रही हूँ
0: ओ सुन लिया ना होर की कहां गुर्दा वेच दिया अपना जाके अपने फैक्ट्री वालों नु पूछ जे कोई कर्जा वगैरह दे दें ते
1: इन्ने पैसे किन्ने देने ने देवी दिए तो वापस कैसे करेंगे
2: अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: वालेकुम सलाम जनाब किधर
2: प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ
0: माशाल्लाह मैं जनाब नू शायद अफरीदी आखा के शायद पट्टी साहब
2: वैसे सूट तो अफरीदी करता है
0: मैं जुत्ती मारनी है खिंच के तेरे मुंह ते और बाले को होटल दे काम करने वास्ते क्यों नहीं गया
2: गया था वहां उसने खाने के ऑर्डर लेने वाली टेबल पे बिठा दिया था मुझे
0: मैट्रिक पास एथे वजीरे आला लग जाएगा
2: पता नहीं जी वैसे वजीरे आला दी रिक्वायरमेंट मैंने कभी चेक नहीं की
0: बकवास बंद कर प्यो जी का मजाक उड़ा रहे
2: तो आप जो करते हैं वो क्या है वो हमारा मजाक उड़ाना नहीं है
1: शेद
0: मैं तेरा मुंह तोड़ देना ही
2: कार में एक जवान बेटी बैठी है और आपको इससे ही फुर्सत नहीं है
1: शेद चुप कर जा शेद
2: नहीं अम्मी जी नहीं जरा इनको भी तो सुनने दें कि हम किस हाल में बैठे हैं
0: एनू चुप करा ले सलमा मैं तेनू कह रही हूं
3: ओए शायद चुप कर
2: अम्मी 10-10 घंटे बैठकर मशीन के सामने काम करती हैं और बाजी सलाई कर करके आधी हो गई हैं और आप कुछ को बादाम खिलाने के लिए पहच जाइए इसकी तो मैं
3: अल्लाह के वास्ते चला जा
0: ये तू कोई मेरे शेरे दे बारे च गल की थी थे
2: जितना मानना है मान ले लेकिन कसम खुदा दी जितनी शेरा मुझे अकेला मिल गया ना चींची मरोड़ दूंगा आपका सारा दूर हम पे चलता है
3: अल्लाह के वास्ते जा शाहिद
2: जाता हूँ बाजी जाता हूँ मैंने फर्स्ट ईयर में इसलिए पढ़ना छोड़ा क्योंकि मेरी सारी फीस मेरी बाजी देती थी समझे पट्टी साहब
0: इनू आज मैं छोड़ दे रही हूँ
2: अल्लाह करे इस पट्टी का हार्ट फेल हो जाए बेड़ा कर कोचे इसका
1: बस जवान लाद दे हाथ चुक दे पट्टी साहब
4: ओ चल छोड़ना ही है
2: कैसे छोड़ दूं मार मार के कमीज पाड़ दी है
4: तुझे शेरे के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था
2: एक बटे रही तो है कोई पीर साहब थोड़ी ना है जिसे कुछ कहेंगे तो गुनाह मिलेगा इतना तो कोई सोतेला बाप भी नहीं मारता होगा अपने बच्चों को
4: ऐसे कहते तो सही है तेरे अब्बा सारा दिन हम क्रिकेट खेलते रहते हैं पैसा एक भी निकाल लेके आते
2: वो दिन भी आएगा तू बस एक बार अपने पाई नू टीम भी चा लेंदे फिर देखना तेरा पाई भी इसी तरह बोर्ड पे लगा होगा
4: इसको तो बी बैंक ने उठाया तुझे तो अल्लाह ही उठाएगा
2: अल्लाह तो उठाएगा मगर ये लोग भी उठाएंगे तेरा भाई सिटी कप में ऐसी परफॉर्मेंस देगा फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे सियालकोट की टीम में आने से
4: ओ मेरे सोने टीम में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है
2: अच्छा अगर हम इस बार का टूर्नामेंट ही जीत लें तो कितनी देर लोगों की नजरों से बचेंगे
4: पिछले साल जो क्लब कप जीता था उसकी परफॉर्मेंस में और हमारे क्लब की परफॉर्मेंस में तूने फर्क देखा है
2: तो हम मेहनत करेंगे और वैसे भी परफॉर्मेंस कोई आसमान से नीचे नहीं उतरती
4: ये बात मलिक साहब को कौन समझाएगा
2: मैं समझाऊंगा तू चल
4: नहीं?
2: हाँ हाँ उठे यार चल
4: क्लोज तो जा
2: उठे यार
4: जूती तो पहन दे
2: जल्दी चल चल चल चल
5: बंदा पूछे मलिक साहब आपने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया बूटे गुज्जर को आम आदमी न समझो।
2: लेकिन उन्होंने मार कुटाई क्यों की?
5: उसकी बीवी को छेड़ा था मैंने।
4: कब?
5: अब मैं शक्ल से तुमको ऐसा लगता हुआ है? 18 लाख रुपए देने थे उसके, टैक्स कार्ड के बता रहा है 20 लाख देने ने।
4: 20 लाख?
5: हाँ, 4 साल पहले लिए थे, अब तो उसने फट पड़ना है ना।
2: मगर मलक साहब, 20 लाख तो बहुत ज्यादा होते हैं।
5: तो पुत्र क्लब जेड़ा है ना, और मुफ्त में नहीं चलता। और मेरी बीवी सही कह रही थी कि पुराने असासे बेच के जान छुड़ाओ। हर उसकी बात मैंने मानी, ये नहीं मानी मैंने।
6: जान छूट जाएगी जब बूढ़े गुजर ने कब्जा किया ना ग्राउंड पे और दफ्तर पे।
2: क्या मतलब?
6: मतलब उसने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो ग्राउंड भी मेरी, दफ्तर भी मेरा। हैं जी,

0: शाहिद, ओए यहाँ क्यों बैठा है? बुखार हो जाएगा, चल नीचे चल।
1: काफी अरसे बाद बारिश हुई है, सोचा थोड़ा मजा ही ले लो।
0: मजा ले रहा है या आंसू छुपा रहा है? काशिफ आया था मेरे पास, सब बता दिया उसने मुझे।
1: पता नहीं मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है।
0: अल्लाह एक बुआ बंद करता है ना, तो 100 खोल भी देता है। देखना जब उसने देना है ना, तो ना वक्त देखना और ना बंदे को देखना, सारे रास्ते खोल देने।
1: मगर इधर सारे रास्ते ही बंद हो गए।
0: छोड़ सारी बातें, चल खड़ा हो, चल उठ, उठ भी, चल नीचे चल के मुझे बता कि कल कौन से कपड़े पहन के जाएगा, मैं इस्त्री कर देती हूँ। आजा शाबाश।
2: ओ क्यों ए? ओ अब क्यों आए हो?
1: इकबाल साहब मुझे यहाँ काम करना है।
2: ओए अकल ठिकाने आ गई तेरी, ओ अब मैच नहीं खेलना?
1: नहीं जी।
2: ओ वड्डा शाहिद अफरीदी, ओए काउंटर पे बैठना है तूने, और खबरदार जो अगर तूने कोई मैच लगाया तो, यहाँ पर सिर्फ एक चैनल आता है, वो भी न्यूज। चल जा टेबल से ऑर्डर ले।
1: जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: चल सही है।

0: वसीम, ये रूटीन लोगों को दे, तो क्या करता है यार?
1: क्रिकेट के दीवानों के लिए वो घड़ी आ गई है जो उनके ख्वाबों को देगी हकीकत का रंग। क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान का पहला अंडर 19 T20 कप, जिसमें जीतने वाली टीम को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। क्रिकेट के मैदान में अपनी महारत साबित करने का ये है एक सुनहरी मौका।
2: वो किथे गया शायद, और ढूंढो किथे।

0: और मैंने इश्तेहार पढ़ लिया था यार।
1: तो मलक साहब सोचना क्या है, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा ये क्लब बचाने का?
0: और तू पागल हो गई, और बड़े हाई लेवल की क्रिकेट होगी, हाई लेवल की।
1: अरे हमने कौन सा तलवारें लेके मैदान में उतरना है, हमने भी तो क्रिकेट ही खेलनी है ना।
0: मैं तुम्हें समझाता हूँ, और पहले हम लोगों ने सियालकोट के क्लबों को हराना है, और अगर ये हो गया तो फिर 12 टॉप क्लास के क्लब है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शहरों से है।
2: ओ यार मलिक साहब,
0: हम मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, समझ आई?
1: बगैर खेले कैसे कह सकते हैं मलिक साहब के मुकाबला नहीं हो सकता?
0: अभी तुमने बड़े शहरों की टीमें देखी नहीं है, और यहाँ सवाल है 5 करोड़ रुपए का, समझ आई? ऐसे ऐसे पाए के खिलाड़ी है कि हम मुकाबला कर ही नहीं सकते। और हमारी आधी टीम जो है वो चप्पलों और पाटे पजामों वाली है, कितने कब
3: तो कितने उनका ढूंढोला।
0: और मैंने बख्श दे यार, मैं बसीत पंगा ला ही नहीं सकता, असल में हम लोग पंचर हो गए यार।
1: अच्छा
0: ओ, ओ, एक ही करन दिया है,
4: ओ,
0: है?
4: है?
0: ओ, बेनू कितने ला चले है?
1: मैं बड़े मलिक साहब की तस्वीर यहाँ से लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब इन्होंने क्लब बनाया था ना तो ये नहीं सोचा था कि ये हारेंगे या जीतेंगे, और हार जीत का फैसला तो खेल के ही होता है ना सर। और अगर इस क्लब के मुकद्दर में उस बूटा गुजर की भैंसों का तबेला बनना लिखा है ना तो बने, लेकिन कम से कम इस जिगरे वाले बंदे की तस्वीर के सामने नहीं। हट जा।
0: प्यो मेरा सी गैरत आन रही है, और दोवे रल के मेरा जमीर जगाओ, और ये होगा कैसे बताओ आके। आओ प्यो नु मोड़ो।

0: और स्वीटू ये बहुत बड़ा जुआ है, बहुत बड़ी गेम है।
1: क्लब तो हमारे हाथ से वैसे ही जा रहा है, क्या पता इस तरह चांस बन जाए क्लब बचाने का।
0: वो इन टीमों के पास एक से एक बढ़कर प्लेयर होती हैं और हर टीम के पास एक पुराना फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता है कोच के रूप में। हमारे पास तो कोई कोच ही नहीं है, हम तो पेंचर हो गए।
2: मलिक साहब है ना जी मसला,

0: और मैं क्लब का मालिक नहीं रखता, कोच कहां से लगूंगा?
1: आपके क्लब से इतने लोग खेल के निकले, उनमें से किसी को रख ले।
0: और 3-4 पुराने खिलाड़ियों से बात की थी, कोई कोच बनने को तैयार ही नहीं है। और मुश्किल वक्त में कौन किसी का साथ देता है?
1: मेरी बाजी कहती है, जब अल्लाह में किसी का हाथ पकड़ लेना तो ना वक्त देखता है ना दिन, फिर उसके रास्ते खुलते ही जाते हैं, खुलते ही जाते हैं।
0: तो ये तेरा कोच कौन से रास्ते से आ रहा है?
2: उससे क्यों नहीं बात करते?
0: किससे है?
2: वो जो गलती से पाकिस्तानी टीम में चला गया था।
3: साढ़े क्लब का मुंडा?
0: ओ ते बड़ी पुरानी गल है, अब काम आनेगा वो।
1: लेकिन क्यों?
0: ओ वो सियालकोट के लिए कभी खेलेगा ही नहीं।
1: मगर ट्राई करने में क्या जाता है?
0: ओ अब मैं उसको कहाँ लूँ यार?
2: कल 15 अप्रैल है। कल 15 अप्रैल है।
0: तो मैं की करा यार?
2: बड़े मलक साहब की बरसी है।
0: ओ पता है मिनू?
2: किसी और की भी बरसी है।
0: 15 अप्रैल? ओ स्वीटू, लगता है तेरा कोच आ रहा है।

0: चाची की बरसी पे आ गया है।
1: मलिक, क्या हाल है तेरा?
0: यार ऐसी भी क्या नाराजगी अपने शहर से है स्वीटू?
1: बस अम्मी के बाद
0: 15 साल हो गए इस बात को।
1: चाय पीने के लिए सिर्फ इसलिए माना हूं कि तू कोई पुरानी बात नहीं करेगा।
0: यार एक मशवरा लेना है तुझसे।
1: बोल।
0: ये जो कप हो रहा है, जो जीतेगा ना स्वीटू, वो यार सुना है 5 करोड़ रुपए मिलेंगे उसे।
1: हाँ, अगर अनाउंस किया है तो मिल भी जाएंगे।
0: और सुना है जो लड़का टैलेंटेड निकलेगा उसको पाकिस्तान में अंडर 19 में सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी है?
1: निकाल दे।
0: है?
1: अपने जहन से ये बात निकाल दे, तेरे क्लब के बस की बात नहीं है।
0: अच्छा,
1: जिस जिस लेवल का क्लब इस मुकाबले में होगा तुम लोगों का कोई चांस नहीं है।
0: लेकिन
1: क्या अगर
2: अगर आप हमारे कोच बन जाए तब तो जानत बन सकता है ना?
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: यार अक्कू, ये मेरे क्लब के लड़के हैं, ये काशिफ है और ये शाहिद है।
2: देखें सर जी, मैं आपसे साफ साफ बात करूंगा, ये तो आपसे बात करते हुए हिचकिचाएंगे। हम सारे चाहते हैं जी कि इस टूर्नामेंट में आप हमारे कोच बन जाए। मैं मानता हूँ कि दूसरों की टीम के मुकाबले हमारी टीम बड़ी कमजोर है,
3: लेकिन जी क्रिकेट तो बाई चांस होती है ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमारे कोच बन जाएंगे ना तो हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे ना हमारी टीम में बड़ा टैलेंट है।
1: बोल लिया। इसीलिए बुलाया मुझे क्या?
0: वो
1: ना मुझे कोचिंग करनी है ना मेरा क्रिकेट से कोई वास्ता है।
2: लेकिन सर
1: देखो, मुझे नहीं पता मलिक ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया, लेकिन गौर से सुनो, मैं वो आदमी नहीं हूं जिससे तुम उम्मीदें लगाओ।
4: सर जी, मलिक साहब ने बूटा गुजर के 20 लाख रुपए देने ने, पैसे टाइम पे ना दिए तो क्लब और ग्राउंड दोनों पर कब्जा हो जाएगा। मेहरबानी ताड़ी।
1: तुम लोग क्या समझते हो, टूर्नामेंट जीत के तुम क्लब बचा लोगे? ये तो बच्चे हैं, तू क्या पागल हो गया? कहां से लाएगा उस लेवल के प्लेयर्स? और प्लेयर्स तो दूर की बात, इस टूर्नामेंट की फीस 2.5 लाख रुपए है, कहां से करेगा?
0: बीबी के जेवर भेज दूंगा मैं।
1: इसी किस्म के जाहिल पने की उम्मीद थी मुझे तुझसे। क्लब तो तेरे हाथ से जा ही रहा है, अब चाहता है कि बीबी भी जाए? बच्चों को क्रिकेट के नाम पे ख्वाब दिखाना छोड़ दे, 18 करोड़ अवाम में से सिर्फ 11 खेलते हैं, बाकी सब ख्वाब देखते रह जाते हैं।
0: और तेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए तो इनके तो होने दे, और तू तो पेंचर हो ही गया है, इनको तो लेकर यार। और एक बात मत भूल तू, ये वसीम अकरम, जावेद मियादाद, कादिर इसी ख्वाब के सहारे ऊपर गए हैं, कहां पहुंच गए वो, और तू कोचिंग कर या ना कर यार, लेकिन हम लोगों की उम्मीदें तो ना तोड़ यार, मैं तो जरूर ट्राई करूंगा। चाहे बीबी का जेवर बेचना पड़ जाए या कार। और 15 मिनट से ज्यादा रुकी गया तो अपने बूढ़े बाप से तो मिल ले, जिसको यही नहीं पता कि वो जीते जी तुझे देख सकेगा भी कि नहीं। ओ अकबरा,

0: चार जेब बाबा भी कमाली है।
1: कौन है?
0: अपना इमाम दीन है, जिसका बेटा क्रिकेट नहीं खेलता था।
1: अच्छा अच्छा, वो जरा पकड़िया गया था।
0: हाँ वही यार, इस बेचारे ने भी क्या किस्मत पाई है यार। बस यार, जिस अकलौते बेटे ने सारे शहर में इसको मशहूर कराया, आखिर में वही इसके मुंह पर कालक मल के चला गया। बड़ा ही अफसोस होता है इसको देखकर।
2: अब्बा जी
0: ठहरो,
3: इस दहलीज को पार करने की कोशिश मत करना। मर गए अब्बा तुम्हारे लिए।
2: अब्बा
3: मत कहो अब्बा मुझे, मेरा कोई बेटा नहीं है। दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ।

0: ये लो अपने पे है। चलो जी आ जाए मलक साहब।
1: ओ फार्म वगैरह चेक कर लिए ना?
0: वो तो चेक कर लिया है मलक साहब, मगर पैसे?
1: ओ पैसे है ना मेरे को?
0: है,
1: देख लो, गलत ना हो
2: जाए। मलिक कैच इट। तू आज तक कैच नहीं पकड़ सका।
1: और तुझे तो पता है कि कैच के मामले में पेंचर हूं मैं यार।
2: चल तेरी टीम को भी चेक करते हैं, उनका भी तेरे जैसा हाल तो नहीं है।
1: मतलब
2: कोच को ये मालूमात तो होनी चाहिए ना।
1: ये अपनी टीम कैसी है?
2: ये पूरी तो नहीं है।
1: और पूरे यारा ने यार की हो गया यार।
2: गौर से पढ़, ये अंडर 19 कप है।
1: अंडर? हाँ
2: तो इनकी उम्रें चेक करो।
1: अरे यार इनके तो अभी शराब्ती कार्ड ही नहीं पड़े।
0: मैं टीम का कैप्टन और विकेट कीपर हूँ। ये जुबैर है, बड़ा चंगा बॉलर है जी, स्विंग का बादशाह है। बादशाह
2: कौन कितना बड़ा बादशाह है मैं रजिस्टर में स्कोर कार्ड देख के पता कर लूंगा। और कोई काम
0: नहीं?
2: इस सियालकोट के वो 7 बेहतरीन क्लब्स हैं, इनमें से जो जीतेगा वही सियालकोट को रिप्रेजेंट करेगा।
1: वो सारे क्लब जाते ना ही नजर नहीं आ।
2: इसलिए कि ये 7 बेस्ट क्लब्स।

0: हमारे सारे बैट्समैन को छक्के मारने की बीमारी है।
1: मजा भी तो छक्का ही चलता है यार।
0: 11 बॉलों में टीम बाहर भी हो सकती है। हमें एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक एंड बचा सके, जरा इंटेलिजेंट क्रिकेट खेले।
1: ओ यार, एहो जा प्लेयर में कुछो पैदा करा हूं।
2: दीवारे टीम से क्यों नहीं बात करते?
3: दुनिया में दो ही दीवारे मशहूर हैं जी, ओथे दीवारे चीन ते एथे दीवारे टीम। पर सीधी सी बात है जनाब, ये पैसे नहीं देते और दीवारे टीम पैसों के बगैर नहीं खेलता।
0: पैसे मिलेंगे लेकिन टूर्नामेंट के बाद।
3: ना जी ना, शेहों का बालू, और ये डील मेरी समझ में नहीं आती।
0: पर मैच पौने 3 लाख रुपए समझ में आते हैं। फाइनल तक 13 मैचेस हैं, अगर जीत गए तो 36 लाख रुपए मिलेंगे।
3: रिस्क है, फाइनल में पहुंचेंगे इसकी क्या गारंटी है?
0: तुम्हारी दुकान में ग्राहक आएंगे इसकी क्या गारंटी है?
3: हैं आप कोच, ऊपर तबीयत के बड़े ही शेख हैं। डन
0: डन, मैं तुम्हें नेट्स में देखने के बाद करूंगा।
3: हैं जी,
0: तबीयत का शेख हूं पर पेशे से कोच ही हूं।

0: फास्ट बॉलर हो।
1: ये बड़ी ग्राउंड वाले क्लब के लिए खेलता भी रहे।
2: हाँ तो छोड़ क्यों दिया पा? हैं?
3: वो सैब, वो मैच के दरमियान नमाज का टाइम नहीं देता था।
4: ओ मौलवी साहब, मैच के टाइम मैच खेलो, नमाज बाद में पढ़ लो।
5: ढेर दा काफिर बच्चा थे,
1: गली से दा खर बच्चा। साफ वलार दे कार में खराब हो गलीशा।
4: ओए खान साहब, पश्तो में क्या गालियां निकाल रहे हो?
2: तू यार बोलो।
5: खाना खराब नमाज के बारे में बात करते हैं
1: बच्चा गलीशा।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: करा। साहब जी आपने बुरा नहीं मनाना, इसका भेजा काम नहीं करता।
1: कौन बोल करो?
2: सर जी ये जी पागल आदमी है, बॉल ही मारी जा रहा है।
3: अभी तो शुक्र करो यार कर नहीं कराए। ये तुम्हारा कोपड़ी तो हेलमेट ने बचा लिया, लेकिन इन चप्पलों में अंगूठा कैसे बचता है?
1: खान अगर नमाज का वक्फा मिलेगा तो खेलोगे?

0: इधर आ जाओ सब, कमन कमन जल्दी, ये कल का बैटिंग ऑर्डर है। दीवारें टीन और साद ओपन करेंगे, उसके बाद जुबैर, सलीम, नवाजिश और फिर शायद।
1: कोच में पहले नहीं जाऊंगा,
0: रेस लगानी है कि क्रिकेट खेलनी है, तो जल्दी जाने की टेंशन है।
2: ओ सर जी, इसमें तो बॉलिंग का लिखा ही नहीं हुआ।
0: मैं जानता हूँ, ये मैं कल सुबह बताऊंगा, आप लोग जा सकते हैं।
1: चलिए यार।
0: इधर आओ शायद।
1: जी कोच।
0: ये लो।
1: नहीं कोच, मैं घर से खाना खा के आया हूँ।
0: मैंने खाने के लिए नहीं दिया। ब्रेक करने की कोशिश करो, इसकी प्रैक्टिस करो रेस्ट घुमा के।
1: मगर क्यों कोच?
0: पहला ओवर कल तुम कराओगे।
1: मैं क्यों?
0: तुम्हारी गेंद तेज पड़ती है लेकिन गुगली का मसला है, रिस्ट की मूवमेंट तेज होनी चाहिए।
1: मगर
0: क्यों, क्या हुआ? शायद अफरीदी की तरह बैटिंग करनी है, बॉलिंग नहीं करनी?
1: करनी है जी।
3: यार ओपनिंग में फास्ट बॉलर भेजते, तुम स्पिनर भेज रहे हो।
0: कल देख लेना।
3: कल देख लेना, क्या क्या देखूंगा मैं? ये समझ नहीं आ रही कि एक तो ये बॉल और ये सेब में क्या साइंस है।
0: ये तो अब्दुल कादिर से पूछो, जिसने शेन वॉन को सेब के जरिए गूगली सिखा दी थी।
3: ओ यार।
4: ओए, छट दे सेब को और सो जा।
1: तुसी सो जाओ बाजी।

0: यार 15 साल हो गई है, मिकाल से कोई कांटेक्ट नहीं है तुम्हारा।
1: पहले सालगिरह पे खत लिखा करता था, फिर बड़ी मुश्किलों से ये नंबर मिला, लेकिन आज तक उससे बात नहीं हो सकी।
0: पापी से कभी कोई? तो तुमने अदालत से कोई रिजू किया है?
1: पिछले 5-6 साल से इतने अदालत के चक्कर लगाए, अब तो ये भी पता नहीं चलता कि तारीख लगी भी है कि नहीं।
0: यार वो तुम्हारा पुत्र है यार,
1: मियां आसिफ कुरैशी का नवासा भी है। अब तो वैसे भी वो 15 साल से इंग्लैंड चला गया, पता नहीं उसको मेरी शक्ल याद भी होगी कि नहीं।
2: मलक साहब क्यों है? जल्दी से बाहर आए, ओ मुंडे गुथम गुथा
3: हो गए। ओ छड्डो छड्डो यार छड्डो, ओ मलक साहब छड्डो छड्डी यार, काशी
2: की हो रहा है तू? छड्डी यार छड्डो,
3: तेरा क्या मसला है? मैं तो मर्जी करूं।
2: सर जी ये टॉयलेट बैठ के ये वाला सिगरेट पीता है।
3: ओ तो
2: इधर दिखा दिखा मेनू। ओए चरसा रे सर्कट।
3: ओ नहीं जी ये तो वो
2: छूना काका नहीं आएगा, मैं समझ आई ना।
3: मैंने सलीम को कई बार ये सिगरेट पीते हुए देखा। मलिक साहब ये मेरा जाती मामला है।
4: चर्स पीना कानूनी मसला है, और जहाँ तुम पी रहे थे तुम्हारे बाप का घर नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कप्तान होते हुए ऐसी हरकतें कर रहे हो तुम।
3: तो फिर क्यों है? इससे मैच पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
4: मैच का मसला नहीं है, उसूल की बात है।
2: और तेरी बेहतरी लाई कैंडे ने।
3: और मलिक साहब अब्बा बनने की जरूरत नहीं है।
2: और तो तेरी माँ बना,
3: मुंह ना लगाए मुझसे।
4: ये किस तरह बात कर रहे हो तुम?
3: तो और किस तरह करूँ, क्रिकेट के कोच है, हमारी जिंदगी के नहीं है।
2: अब बंदे दा पुत्र बन जा, बंदे दा पुत्र।
3: ओ मलिक साहब मैं इन लड़कों की तरह नहीं हूँ जो इनके थल्ले लग के रहूंगा।
2: तो उत्ते चढ़ के रहो।
4: नहीं बकवास बंद करते हो, वरना मैं।
3: वरना क्या, निकाल दोगे? निकालो, बॉलर और बैट्समैन के बगैर टीम चल जाती है, विकेट कीपर के बगैर नहीं चलती। जा रहा हूँ छोड़ के।
4: ओए विकेट कीपर के बगैर टीम नहीं चल सकती, लेकिन चर्सी के बगैर चल सकती है।
3: देखूंगा जब चलाओगे।
4: जाओ यहाँ से।
3: जा रहा हूँ मैं।
2: अकबर साहब किसी अस्पताल से आपका फोन आया।
5: जैसे ये होश में इनको 2 पैनाडोल और ये इंजेक्शन दे देना।
6: जी सर।
4: क्या डॉक्टर साहब सब ठीक तो है?
5: सड़क पर बेहोश मिले थे, वॉलेट में से एक चिट मिली जिसमें आपका नाम और नंबर था। गालिबन आप इनके बेटे हैं।
4: जी।
5: कुछ देर पहले इनको होश आया तो बताया कि आपको बुलाया है, तो लड़ना शुरू कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं मर जाऊँ तो सिर्फ तभी बुलाइएगा। आप ऐसा करें, हर आधे घंटे बाद इनका ब्लड प्रेशर चेक करें। ओके
6: राइट सर।
4: अब कैसी हालत है इनकी?
5: अल्लाह ने करम किया है, बचत हो गई है, बस सिर्फ बाएं हाथ की हड्डी पे चोट आई है। दर्द बहुत ज़्यादा था इसलिए पेन किलर के साथ नींद का इंजेक्शन दिया है। आप ऐसा करें कि घर से इनके कुछ कपड़े मंगवा लें, इनको कुछ दिन रुकना पड़ेगा यहाँ। ठीक है?
6: जी ठीक है।
5: ठीक है।

0: أكبر؟
1: ها
0: أكبر؟ यार ये देख जरा, एदा मतलब ये होया कि चाचा नु पता है कि तू सियालकोट ही चेगा। ओ बिस्मिल्ला, आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो।
2: अकबर साहब, आपने तो सियालकोट क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। बंदे को क्लीन गुमसम कहते हैं।
3: सदके
2: रोजनामा शगाफ, स्पोर्ट्स एडिटर।
1: जी बोलिए।
2: परसों के फाइनल मैच के बारे में आपकी क्या तासुरात है?
1: देखें क्या होता है।
2: देखेगा तो गुमसुम, आप बस एक जुमला इनायत कर दीजिए।
1: जुमला आप इनसे लीजिए, मेरे पास जुमले जरा कम ही होते हैं।
2: अरे साहब, सहाफी बरादरी से आपकी ऐसी क्या नाराजगी है? उस बात को तो 14-15 साल गुजर चुके हैं,
1: मगर कुछ चीजें फिर भी नहीं बदली।
0: मला खाली खिदमत के लिए हाजिर है करीम साहब।
2: बड़े मिजाज हैं। वैसे टीम के यही नाम छुपवाए थे ना आपने?
0: दिखाइए। जाहिद काशिफ जाहिद, हाँ यही नाम है।
2: विकेट कीपर कौन है?
3: सलीम छीमा पागल।
2: वही जिसे आप लोगों ने निकाल दिया है? खबरें सब रखता है गुमसुम। विकेट कीपर मिला या खुद ग्लव्स पहनकर मैदान में उतरने का इरादा है?
1: मिल जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
2: चलो
3: ठहरे, चाय आ रही है।
2: चाय भी इनको ही पिलाएं, बल्कि इनको तो ठंडा पिलाएं, बहुत गर्म चल रहे हैं। मलिक साहब, गुमसुम एक सच्चा सहाफी है। एक नाम लिख लो।
0: बताइए।
2: माइकल जोसेफ, माइकल मैग्रिड भी कहते हैं। मैं बताऊं, 2 साल पहले सियालकोट यूनाइटेड का विकेट कीपर था, आजकल फारिग है। लड़का बहुत काम का है।
0: बड़ा नाम निकाला है आपने।
2: कलीम गुमसुम है, मगर इतना भी नहीं कि टैलेंट को पहचान न सके। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
2: बड़े ही मिजाज हैं।
0: बड़े मिजाज हैं।
1: माइकल मैग्नेट कहाँ मिलेगा? हमें पता है पिछले क्लब ने तुम्हारे पैसे मार लिए थे, लेकिन अब मैं तमाम बातों का कॉन्ट्रैक्ट बना के लाया हूँ, चाहो तो किसी से भी चेक करवा लो।
0: बिल्कुल जेन्युइन कॉन्ट्रैक्ट है। जब साइन कर रहा था ना, पैंचर ही हो गया सी में।
4: मारने वाले तो उसके होते हुए पह मार लेते सर, लेकिन जहाँ इतना जुआ खेल लिया वहाँ एक और सही। ट्रायल कब लेंगे?
0: और ट्रायल का तो अब टाइम ही नहीं रहा। अब जो भी निकलेगा, मोइन खान या कामरान अकमल, मैच में ही निकलेगा सवेरे 8 बजे।
4: देख लो, आज आपके घर के सामने मुआयदा किया है मैंने।
1: मैग्नेट, मोइन खान ही निकलेगा। आप मुझे बता देते, मैं पिला देता आपको। आपकी नाराजगी मुझसे है, खुद से नहीं। यही समझ के पानी पी लीजिए कि मैं नहीं, एक अनजान आदमी कुछ सबाब कमाना चाहता है।

0: सर जी सर जी सुनाओ जरूर सर जी, वो चाचा शायद मार देंगे सर जी।
1: सारी दुनिया दे बच्चे खराब कर छे मेरी कल खोल के बड़ा शायद फरीदी।
2: ओ हेलो सुनो सारे, ये हमारा नया विकेट कीपर है माइकल जोसेफ, सारे इसको मैग्नेट कहते हैं।
3: हेलो
2: मिले सारों से।
3: हेलो
2: ओए कैसा है?
3: एकदम मैग्नेट, तू सुना?
2: फिट?
4: बाल से बड़े चंगे लग रहे हैं।
3: ठीक है भाई।
2: ओ मौलवी क्या हुआ?
5: पूरे शहर में और कोई विकेट कीपर नहीं मिला था तुमको।
2: तो इसको क्या है?
5: खाना खराब काफिर है।
2: काफिर है
5: तो तुमको नहीं पता है?
2: और मैच खेलना है, मिलाद नहीं करानी।
5: मानन पापा काफिर शक्ल मिल दो, खुद एक खबर शहर हो इस पास तेरे की।
2: और क्या बोल रहा है?
5: उस काफिर का बच्चा की वजह से मैच में बरकत नहीं पड़ेगा।
2: अब बात कर दे मोदी।
6: मलक साहब 9:30 बज चुके हैं, हम सिर्फ 20 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हमने मैच शुरू करना है। आप प्लीज उन लोगों को जल्दी से बुला लें।
0: मलिक साहब तुसी टेंशन ना लो।
1: और टेंशन क्यों ना लवा यार? और शायद ते चला गया और कोच भी गायब हो गया, मेनू तो पंचर ही कर गए यार। उफ किथे जावा मैं?
7: माशाल्लाह
8: भट्टी साहब प्लीज।
7: ओ भाई मैंने अपना मुंडा गेंद और बल्ले के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं किया। चंगा भला 8,000 रुपया महीने पर काम करता था वर्कशॉप में, आपके चक्कर में होर पता नहीं कितना नुकसान कर बैठेगा।

0: अकेले बैठने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन फायदा तभी है जब इंसान के पास बहुत वक्त हो। जहां तक मुझे याद है, इस वक्त तुम्हारा एक मैच है जो तुम्हें खेलना है। चले
1: कोच, वो आपकी बाइक कहां गई
0: है? लेकिन फिलहाल किसी और के हाथ में, चलो। हम पहले बैटिंग कर रहे हैं, स्कोर कम से कम 170 से 190 के बीच में होना चाहिए। टीम तुम ओपन करोगे, स्ट्राइक रोटेट करते रहना।
1: ठीक है सर जी, लेकिन मेरे साथ कौन है?
0: शायद जाएगा तुम्हारे साथ
1: कोच। मैं?
0: हाँ, आज कप्तान को लीड करना चाहिए।
2: अश्के भाई अश्के।

0: ये आपका ऑफिशियल लेटर है। इनॉग्रल फंक्शन के लिए आपको इस्लामाबाद बुलाया जा रहा है। बाय द वे, ये सियालकोट से आपकी टीम का कोई नाम है या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप?
1: शाहीन, सियालकोट शाहीन।
0: बेस्ट ऑफ लक।
1: थैंक्स।
0: सी यू देयर।

0: मोजेस लग रहा हूँ ना है?
1: पूरा सियासतदान लग रहा है।
0: इस्लामाबाद है आखिर।
1: मैं होटल जा रहा हूँ, ऐसा कर तू अटेंड करके आ जा।
0: चिलकर थोड़ी देर की बात है।
2: गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द पबजी क्रिकेट टूर्नामेंट। आज आप सब लोग इसलिए यहाँ मौजूद हैं कि आप अपने अपने शहर के बेहतरीन क्लब से वाबस्ता हैं। अब आपके हाथों में अपने शहर की रेप्यूटेशन और आगे 5 करोड़ का इनाम है।
0: शायद कितने गए यार?
3: अगर यहाँ पर बिस्तर और टीवी आ जाए तो कमरा बड़ा टैट है।
4: हाय
3: हाय,
4: रुक क्यों गए? प्लीज कंटिन्यू।
3: जी वो मैंने धो लिए।
4: वाओ, जर्सी तो बड़ी अच्छी है आपकी, सियालकोट शाहीन्स। ओह, अगर टीम का कैप्टन इतना अच्छा है तो बाकी टीम कैसी होगी? हम
3: देखे, मैंने सुना था शहर की लड़कियाँ खुली डुल्ली होती है, मगर आप तो बहुत खुली डुल्ली है।
4: रियली?
3: मुझे आपका तो नहीं पता, मगर मैं तो ये इस्तेमाल करने आया था।
4: उधर नजर ही आ रहा है।
3: जी क्या मतलब है आपका? देखिए आप जैसे भी है, मगर मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ।
4: आप ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। लेडीज टॉयलेट में आप खड़े हैं और मुझे कह रहे हैं।
3: हैं लेडीज टॉयलेट?
4: जी लेडीज टॉयलेट मतलब लड़कियों का वॉशरूम
3: है। लड़कियों का वॉशरूम? अस्सलाम वालेकुम।
4: गुड लक मिस्टर सियालकोट।
2: अब सियालकोट से आने वाला वो क्लब जिसने सियालकोट के बड़े बड़े क्लब्स को ढेर करके अपनी जगह बनाई, सियालकोट शाहीन। इस वक्त भी एक टेबल खाली है, इस्लामाबाद हंटर्स टेबल। इस्लामाबाद हंटर्स इस टूर्नामेंट का सबसे टफ कॉम्पिटिटर और सबसे महंगा क्लब है, जिसने क्वालिफाइंग राउंड में कंटिन्यू 11 मैचेस जीते और उनके आने का अंदाज भी मुनफरिद है।
0: उठ के आ रहे हैं क्या?
2: प्लीज वेलकम इस्लामाबाद हंटर्स।

0: यार तुझे इस्लामाबाद हंटर टीम के बारे में वाकई कुछ नहीं पता?
1: पिछले 15 साल में कुछ पता नहीं चला तो इसका क्या पता चलना था?
0: लेकिन तुझे उससे मिलना चाहिए था यार, आखिर वो तेरा पुत्र है।
1: मगर मुझे तो सिर्फ मियां आसिफ कुरैशी का नवासा लगा।
0: ऊपर वाले के काम में बेहतरी होती है, देख ले इस टूर्नामेंट के जरिए तुझे तेरा बेटा मिल गया।
1: लेकिन मलिक, लड़कों को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए।

0: ਮੇਰੇ ਮਲਕ ਕਲਬ ਨੂੰ ਵੀਨਾ ਮਲਕ ਕਲਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ?
1: ਉਹ ਕੁਛ ਖਾਨ, ਹਮਾਰਾ ਕਮਰਾ ਬਦਲੋ ਯਾਰ।
2: ਕਿਉਂ?
1: ਕਾਫਿਰ ਹੈ ਵੋ, ਹਮਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ।
2: तो पढ़ लेना, वो कौन सा तुम्हें कोई रोके?
1: आपको नहीं पता इन लोगों का।
3: सही कह रहा है सर, आपको नहीं पता हम लोगों का। आप इसे किसी और लड़के के साथ डाल दें। वो मौलवी, वो कमरे में शराब की बोतलें पड़ी हैं, बंद कर देना, किधर खराब ही ना हो जाए।
1: गलत सड़े।
3: और वो अलमारी में बच्ची भी है, जरा ध्यान से ना, ना कहीं पकड़े ही ना जाओ। बच्ची का नाम पूछ रहा है।
4: बस कर दे यार मौलवी, हाथ हौला रख।
3: ओ मेरी तस्वीर ले, ओ इधर खींचो है, ओ
5: इधर जा रहे हो, इधर
3: तस्वीर ले मेरी।
5: शाबाश शाबाश
3: शाबाश, चल चल चल,
5: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चल चल चल ठीक है ठीक है। शाबाश
6: शाबाश। मिस्टर अकबर, आपकी टीम के मैचेस का स्केड्यूल।
2: ठीक, हमारा पहला मैच किसके साथ है?
6: इस्लामाबाद हंटर्स के साथ है। ठीक है ना?
7: सबका ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।
8: हाय, सॉरी मैंने आपको डरा दिया। अगर आप माइंड ना करें, हम दो मिनट के लिए बात कर सकते हैं?
9: जी हाँ।
8: मेरा नाम अलीना है, मैं अमेरिका में कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ, आजकल छुट्टियों के लिए आई हुई हूँ। आई वर्क फॉर अ स्टूडेंट मैगजीन और हम क्रिकेट टूर्नामेंट कवर कर रहे हैं।
9: जी जी,
4: खाना खराब, कुछ तो शर्म करो।
8: ओ सॉरी, मेरा मतलब है क्रिकेट कब खेलना शुरू किया?
9: मैंने ना बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था।
8: बचपन से ही शौक था?
9: हाँ जी बिल्कुल, मैंने जब आफरीदी भाई को देखा था ना, तो मुझे शौक पैदा हो गया।
8: रियली? अच्छा, घर में बहन भाई है?
9: मेरी ना एक
4: ये तो वाकई बच्ची है।
8: अच्छा, वो क्या करती है?
10: कप्तान ने फायदा उठा लिया जल्दी आने
8: का।
9: जी, पर बचपन में ही हो गया।
8: अच्छा, मैंने आप लोगों का मैच का रिकॉर्ड देखा था, उसमें लग रहा था कि nobody expected you guys to win.
9: Win? Good win जी, good win.
8: Sorry, मेरा मतलब था कि किसी को आपकी टीम से उम्मीद नहीं थी।
9: हाँ, लेकिन फिर भी हम पहुँच गए।
8: आप इस्लामाबाद के लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
9: मैंने क्या कहना है जी?
8: कोई तो पैगाम होगा।
9: हाँ, वो बच्ची बसाली।
8: Excuse me?
9: I love you बोल दे, हाथ से नहीं जाने देना। वो
8: Are you crazy?
9: ओ नहीं नहीं जी, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये नहीं था। ओ तुम्हें कितने मुंह तुम लोगों का, कुत्तियों भाई की खुशी देखी नहीं आती है? अभी तो बात करनी शुरू की थी। तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन वो ना।
11: Mr. Asif Qureshi, your club is simply outstanding on paper.
12: Well, not only on paper, but ground also. इस्लामाबाद हंटर्स ने अभी तक एक मैच भी नहीं हारा।
11: However, your grandson plays county cricket in England.
12: I know. ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो वहां पढ़ने के साथ साथ काउंटी भी खेलता रहा, और आज इस्लामाबाद हंटर्स उसके काउंटी एक्सपीरियंस से फायदा भी उठा रही है।
11: मेरा मतलब ये नहीं था।
12: अपनी वीकनेसेस की जस्टिफिकेशन हमारी स्ट्रेंथ में मत ढूंढे।
11: लेकिन आपकी टीम में इस्लामाबाद की रूलिंग एलीट क्लास के लड़के खेलते हैं। 95% of Islamabad doesn't even know how to play for your team.
12: अब वक्त आ गया है कि हम अपने इन प्लेयर्स की टूटी फूटी इंग्लिश से जान छुड़ाएं। इसीलिए मैंने एजुकेटेड लोगों की टीम तश्कील दी है। अब ये लड़के अगर नेशनल टीम में हुए तो बगैर किसी कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी के ये फॉरेन प्लेयर से बात कर सकेंगे।
13: एक्सक्यूज मी सर।
12: Good. I forgot to tell you, we are throwing a party in the honor of our young players.

0: ओए पे है ही बड़ा लाता है यार,
1: ये पाकिस्तान है या फिर अमेरिका?
2: ओ यार ये क्या बदतमीजी हो रही है,
3: ओ यार ये क्या बदतमीजी हो रही है,
4: गौर से सुन लो, कोई कुछ पिएगा नहीं।
5: यार वो मोटा जब भी देखो किसी ना किसी औरत को जप्पी डाल के खड़ा होता है यार, एक आदमी का इतना बीवी कैसे हो सकते
6: है? ये बीवी वाली जप्पी नहीं है।
0: वो कितने की है भाई?
7: फ्री है सर।
0: और जान दे यार जान दे, कितने फ्री है?
6: मैं फेमस ही बहुत हूँ, क्या करूँ, लड़कियाँ मेरे पीछे खुद ही आती हैं।
8: ओह दैट्स ट्रू।
3: वड्डा आया हुमायूं सईद, पार्टी हो रही है पार्टी।
1: ओ कैसी पार्टी यार, लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए हैं।
3: ओए अच्छी बात है, और वो बच्ची चक्कर बच्ची।
1: नहीं यार।
9: हेलो।
1: आप कैसी हैं?
9: ठीक।
1: वाह काशी, वो बताया था ना तुझे, वो रसाले वाली रिपोर्टर।
7: ओ अच्छा याद आया।
9: सो कैसी लगी ये पार्टी?
1: पार्टी मैंने तो देखी नहीं, आगे खुली की खुली।
7: ओ जी बस ठीक है।
9: वैसे यहाँ के लोगों के हिसाब से पार्टी काफी अच्छी है, नहीं?
3: ओ जी कभी हमारे साथ पार्टी करे, ओ पूरा सियालकोट झूम रहा होता है।
9: रियली?
1: एक मिनट

0: शी।
1: आप सियालकोट के बारे में कुछ बता रहे थे।
2: आप क्या सुनना चाहती हैं सियालकोट के बारे में?
1: आप अपने बारे में कुछ बता दें।
2: मैं सियालकोट के बारे में बता देता हूँ।
3: सियालकोट ना बड़ा ही खूबसूरत शहर है, मैं सच बोल रहा हूँ। तमाम स्पोर्ट का सामान ना वहीं से जाता है, और वहाँ शुएब मलिक भी है, और तो और सानिया मिर्जा भी वहीं पर है।
1: आप बहुत क्यूट हैं।
2: हैं जी?
4: अरे मियां साहब, इनसे मिलिए, ये हैं सियालकोट की टीम के मालिक।
5: मलिक खालिद,
6: आपकी टीम से हमारा पहला मैच।
4: और ये है सियालकोट के कोच अकबर दी।

0: इनकी टीम को टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स कहा जा रहा है बिकॉज इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है।
1: वो तो होनी ही थी, इनफैक्ट इसका एक्सपीरियंस काम आया होगा।
0: ओके गाइस, यू कैरी ऑन प्लीज।
1: वाह, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ा।
2: छोड़ने की आदत आपके यहां पाई जाती है, मेरे यहां नहीं।
1: किस्मत मिले भी तो ऐसी जगह जहां मैं तुमसे खुल के मिल भी नहीं सकता।
3: मुझे इजाजत?
2: मैं नहीं मलिक, कोई जरूरत नहीं है। मियां आसिफ कुरैशी अपनी बेटी का घर तो तबाह करना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस क्राउड के सामने कोई सीन क्रिएट करना नहीं।
1: मैं तुम्हें
0: आजी क्या बातें हो रही थी?
2: मियां आसिफ कुरैशी साहब अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे कि इनका दामाद एक्स क्रिकेटर रह चुका है।
0: ओ रियली? मैं भी कहूं कि उसमें इतना टैलेंट कहां से आया?
2: बाप ही से आया होगा। एक्सक्यूज मी।

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050

0: थोड़ा पानी दीजिएगा प्लीज।
1: पूछोगी नहीं कि मैं कैसा हूं?
0: कोई मुझसे पूछे कि तुम कैसे हो?

0: Oi. Hey, Summer. Look, even the beggars are here.
1: Beggars in the party.
0: Oi. तुम लोगों के शहर में कोई डांस वास भी होता है कि ऐसे ही उठ के आ गए हो?
1: डांस? They can't even play cricket.
0: Let's go, baby.

0: मुजरा खत्म, चल निकल यहां से।
1: छोड़।
0: नहीं छोड़ूंगा।
1: गिरेबान छोड़।
2: बिकुल,
3: इनफ मिकान, लेट्स गो।
4: आई टेक लीव नाउ, बट ये ख्याल रहे आइंदा ऐसी कोई हरकत ना हो। प्लीज, गुड डे।
5: माई फुट। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमारे खानदान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वैसे तो नहीं पहुंच सकता, अब गली मोहल्लों की टीम बनाकर यहां आ गया। मैं भी देखता हूं वो लड़के कैसे खेलते हैं।
1: उनको आप तो कुछ नहीं करेंगे। वो टूर्नामेंट खेलने के लिए अपनी टीम लाया है ना, उसका जवाब भी मैं उसको ग्राउंड में दूंगा।

0: टॉस के लिए इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शाहीन से कप्तान तैयार, और टॉस जीता है इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मिकाल ने, लेकिन हाथ मिलाने से मना कर दिया। तो इब्तदाई से राइवलरी दोनों कप्तानों के दरमियान, और बिल्कुल सही कहा शाहीन ने कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, शायद इसीलिए यहाँ पर मिकाल ने हाथ मिलाने से मना कर दिया। और यहीं से इस मैच की गर्मा गर्मी का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त पहला मैच इस टूर्नामेंट का।
1: हेलो, इधर इधर इधर, क्राउड पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये इन लोगों का होम ग्राउंड है, और रात के वाक्य को अपने जहन से निकाल कर खेलना है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलने आए हैं।
0: मैच की पहली गेंद, और जिस तरह से आगाज किया इसी से ही अजायम का इजहार होता है। पहली गेंद पे 4 रन हासिल किए इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने, और ताबड़तोड़ स्ट्रोक से खेले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाउंड्रीज पे बाउंड्रीज स्कोर की जा रही हैं, और बहुत ही मुश्किल में है शाहिद भट्टी सियालकोट शाहीन से कप्तान, एक और चौका हासिल किया। वो इसकी स्ट्रेटेजी इस वक्त बिल्कुल भी नाकाम नजर आ रही है, और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स के जो बैट्समैन है होम ग्राउंड और होम क्राउड का पूरी तरह से एडवांटेज उठाने में कामयाब
1: है। जो होना था हो गया, घबराने की बात नहीं है, हमें सिर्फ 225 रन पे फोकस करना है। अगर वो लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। पहले भी कहा कि क्राउड पे ध्यान नहीं देना है, यूं समझो कि हम सियालकोट में खेल रहे हैं। साथ तुम टीम के साथ ओपन करोगे।
2: कोच मुझसे पहले साथ को क्यों भेज रहे हैं?
1: तुम बैठ जाओ अभी।
2: कोच समझा करें, अगर शुरू में प्रेशर पड़ गया तो लड़के कैसे बनाएंगे स्कोर।
3: ठीक कह रहा है यार, ठीक कह रहा है। और शुरू के 6 ओवर में तो रन बनाने हमने।
1: मैंने कह दिया है नहीं।
2: कोच प्लीज।
3: और चल यार तू पैडमैन, यार पैडमैन।
2: ठीक है।
3: और चल टीम तू भी पैडमैन यार।
0: सियालकोट शाहीन के लिए शाहिद भट्टी और शेख इनिंग का आगाज करते हुए बड़ा उमदा आगाज। पहली गेंद पे उठता हुआ स्ट्रोक, फिल्डर गेंद के पीछे 225 रन चेस करने हैं, और इस किस्म के स्ट्रोक्स खेलना होंगे शाहिद भट्टी को। अगली गेंद, एक और उमदा स्ट्रोक, फिल्डर गेंद को नहीं पहुंच सके, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। इम्प्रोवाइजेशन और पावर कर दिया।
4: मैं तो पहली क्या सी इन्हें आउट हो जाए।
0: शायद भट्टी आउट होकर वापस पवेलियन में, नए आने वाले बैट्समैन माइकल, अब देखना ये कि क्या अपने वाबस्ता तवक्कात को पूरा कर सकेंगे या नहीं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से विकेटें गिरती जा रही हैं, कदमों का इस्तेमाल, स्टंप का चांस, और एक और विकेट हासिल की इस्लामाबाद हंटर्स ने। कोच के चेहरे पे परेशानी, डग आउट में परेशानी, माइकल तमाम तर उम्मीदों का मरकज, सामना करने के लिए तैयार। उठतावा स्ट्रोक माइकल की जानिब से, और उम्मीदों की शमा रोशन की अपने स्ट्रोक के जरिए, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और उमदा स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में माइकल कामयाब। डग आउट में खिलाड़ियों ने तारीफ की स्ट्रोक की। इस मर्तबा गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया। इस्लामाबाद हंटर्स के बॉलर्स और फील्डर्स दबाव डालते हुए मिकाल हर वो मुमकिन हर बात बांधते हुए जिससे बैट्समैन पे दबाव पड़ सके। इस मर्तबा अपना बदला लिया और क्रीज पे से हट गए सामने से।
2: डर गया
0: की कोशिश की माइकल ने। एक अच्छी राइवलरी
5: देख के जुड़े, देख के देख के देख के,
0: ना सिर्फ ऑन द ग्राउंड बल्कि ऑफ द ग्राउंड भी। अंपायर से शिकायत की मौलवी मजीद ने। माइकल खेलने के लिए तैयार, आखिरी विकेट इस वक्त मौजूद है। सियालकोट शाहीन की रन लेने की कोशिश, मजीद और माइकल के दरमियान में अंडरस्टैंडिंग का नॉट करने का खतरा, और यकीनी तौर पर रन आउट हो जाएंगे। तो इस तरह इस्लामाबाद हंटर्स की टीम ने इस टूर्नामेंट के पहले मैच में कामयाबी हासिल की। इब्तदाई मैच अपने नाम किया, माइकल और मौलवी दोनों सर को झुकाए हुए, दोनों जानू इस वक्त पिच पर मौजूद है, और इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ी अपनी खुशियों को, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हुए जुबिलेशन सेलिब्रेशन देखी जा सकती है इस्लामाबाद हंटर्स के खिलाड़ियों के दरमियान। और ये सर को झुकाए हुए, एक जानिब कहीं खुशी और दूसरी जानिब कहीं गम के मनाजिर आप देख सकते हैं।

0: और शक्लें तुम लोगों की देखने वाली थी। और तुम लोग मैच खेलने आए थे या किसी के कुलों पे आए थी है?
1: मलक साहब वो खेल गया था रहते, इतना स्कोर मारा उन्होंने।
0: हाँ हाँ, तो विकेट छोड़ के खलो जाना सी।
2: वो खाना खराब हर बॉल के लिए उनके पास एक शॉट था, हम क्या करता?
0: तो कह देते ना हमें, हम उनसे कह देते कि हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। और तुम, बल्कि तू, और तू एक बॉल नहीं पकड़ सका।
3: मलक साहब, क्राउड देना शोर सी फोकस ही नहीं हो रहा था।
0: और कुड़ियों से फोकस हटता तो बॉलों पे फोकस करता ना। और बैटिंग के टाइम पे क्या हो रहा था दसो? और तुम लोग विकेट ऐसे दे रहे थे जिमें मामा दुआमा दे दिया ने। और मैग्नेट, और तू 20 ओवर पूरे नहीं कर सका, अब बस घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं।
4: ओ मलिक साहब, वो लोग मुझे गालियां निकाल रहे थे।
0: ओ केड़िया गाला करन दे
5: बस कर मलिक।
0: ओ नहीं यार, मेरी सारी जायदाद दांते लगी है, मैं तो पेंशन हो गया।
5: मैं जानता हूं बड़े मैच का प्रेशर ऐसे ही होता है, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम वेस्ट इंडीज में जाकर खेले तो इसका मतलब वो तो जीत ही नहीं सकते, क्योंकि उनका सपोर्टिंग क्राउड ही नहीं होता। और दूसरी बात ये कि तुम लोग शाहिद पे बहुत भरोसा करते हो, शाहिद के आउट होते ही तुम लोगों की लाइन लग जाती है, इसीलिए मैं शाहिद को ओपन नहीं करवाना चाहता था। कोई भी मैच एक प्लेयर से नहीं, पूरी टीम से जीता जाता।
4: हेलो,
0: फोन बंद कर यार तू।
4: मलिक साहब, वो न्यूज पर।
0: और क्या न्यूज पर?
6: मिकाल, इज दैट ट्रू?
7: जी, ऑल्दो ये बात मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था, मेरे टीम मेंबर्स और मेरे कोच को भी नहीं पता ये बात। मैं उनको इस बात से एसोसिएट नहीं करना चाह रहा था कि वो मेरे फादर की टीम के अगेंस्ट खेले।
6: लेकिन आपने अपने फादर को इस्लामाबाद हंटर्स का कोच क्यों नहीं बनाया?
7: देखिए, अब हमारे उनके साथ कोई लिंक्स नहीं है, जैसा कि कुछ लोग वाकिफ होंगे कि 15 साल पहले उन्हें ड्रग स्कैंडल में पकड़ा गया था। And me and my family have no contact with him ever since.
8: शिराजी साहब, करना पड़ता है, जीत के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, खास तौर पे जब हारने की आदत ना हो। $5,000 फॉर दिस स्पॉट
9: डन।

0: आने दो
1: शिराजी साहब, एक्सक्यूज मी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे।
2: आपने अच्छा नहीं किया।
1: देखो अकबर, आजकल ऐसी बातें कहां छुपी रहती है।
2: छुपी रहती है अगर आप चाहते तो।
1: तुम्हें तो खुश होना चाहिए, किसी तरह तो तुम अपने बेटे के काम आए। एक इंटरव्यू ने उसे इस टूर्नामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बना दिया है। सबकी नजरें मिकाल पर हैं। आज के न्यूज़पेपर में उस पर आर्टिकल लिखे गए हैं। मीडिया इज लविंग हिम एंड ही इज लविंग द अटेंशन।
2: वो मेरा बेटा है, आपकी बिसात का कोई मोहरा नहीं।
1: सही कहा, अगर मोहरा होता तो कब का तुम्हारी तरह उठा के बाहर फेंक चुका होता।
3: मैं?
1: तुम नहीं, मैं। तुमने जो करना था 15 साल पहले कर चुके। अब मेरी बारी है।
2: तुम जैसा घटिया इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा।
1: और ये घटिया आदमी इतना बड़ा काम करने जा रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। मैं ये गेम हमेशा के लिए बदलने वाला हूं। बहुत खेल लिया गली मोहल्ले वालों ने, इट्स अ जेंटलमैन्स गेम। ये गेम इसलिए नहीं बना था कि तुम जैसे सड़क छाप इसमें गन मारे। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ख्याल में मैं इस टीम पर यूं ही पैसा लगा रहा हूं? इस टूर्नामेंट के बाद ये टीम इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के साथ लीग मैचेस खेल रही होगी। 5 साल के अंदर मैं इस टीम को पाकिस्तानी टीम से बड़ा स्टार बना दूंगा। और 5 साल बाद इस टीम के लड़के तुम्हें पाकिस्तानी नेशनल टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी इन 65 सालों में पाकिस्तान की गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज तो दूर कर दी गई है सिवाय क्रिकेट के। अब वक्त आ गया कि यह भी उनकी पहुंच से दूर कर दी जाए।
2: तुम्हारा यह ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
1: कौन रोकेगा मुझे, हा? तुम या तुम्हारी सड़क छाप टीम? कहां से लाओगे ऐसी फैसिलिटीज, टैलेंटेड प्लेयर्स, पैसा, फॉरेन कोचेस? इस्लामाबाद हंटर इज अनबीटेबल। हमसे तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं बनता।
2: इस टूर्नामेंट के शुरू में मैंने भी एक मां से यही सवाल किया था। जानते उसने क्या जवाब दिया?
4: दूसरों के पास चाहे दुनिया की हर चीज हो,
2: लेकिन वो जानमाज़ पे गिड़गिड़ाती मां की दुआओं का मुकाबला नहीं कर सकती।

हार और जीत खेल का हिस्सा होता है। अगर आज तुम लोग हार भी जाओ तो कम से कम ऐसे हारना कि एक दूसरे से आंखें मिला सको, क्योंकि आज हार तुम 11 लोगों की नहीं होगी, सियालकोट के 10 लाख लोगों की होगी।

0: अम्मीजी।
1: अश तेरे लिए तो मैं अपने आधा मान तोड़े हैं। वेख यार, तू मेरा मान ना तोड़े।

0: किया क्या डॉक्टर साहब ने?
1: अब्बा जी वो कहता है दिल का मामूली सा दौरा था और हम लोग तमा समझते रहे। डॉक्टर कहता है दिल की नालियां भी बंद है, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी वो अम्मी जी के ऑपरेशन के पैसे कहां से आएंगे?
0: पैसों के बारे च फैक्ट्री वाले ने गल
1: की थी मैनेजर से बात अब्बा जी, वो कहता है 50-60 हज़ार तो दे सकते हैं, पर अब्बा जी डॉक्टर कहता है 7-8 लाख का खर्चा है।
0: 7-8 लाख?
2: अभी अभी खबर मिली है कि क्रिकेट टूर्नामेंट में इस्लामाबाद हंटर्स ने कराची लायंस को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है।
3: Come on now, cheer up. देख लेना तुम वापस फॉर्म में आ जाओगे।
4: पिछले 3 मैचों से यही कोशिश कर रहा हूँ, मगर बॉल है कि बैट पे मिडल ही नहीं होती है।
5: और शायद कोच बुला रहे हैं यार।
4: आता हूँ 2 मिनट।
3: देखो फेसबुक पे मैंने तुम्हारा फैन पेज बनाया है, इतने सारे फैंस हैं अभी से, देखो।
4: क्या फायदा, मुझसे ज्यादा फैंस तो निकाल के होंगे।
3: तो हु केयर्स, मैं तो उसकी फैन नहीं हूं ना।
4: क्यों? अमीर है, खूबसूरत है, पैसा है उसके पास। और वैसे
5: शायद कोच बुला रहे हैं यार।
6: ओ कोच से बोलो रुक जाए, क्या मौत पड़ी है।
7: टूर्नामेंट का सेमीफाइनल खेलना, ये मौत पड़ी है।

0: ये मत भूलें कि हम यहां टूर्नामेंट खेलने आए हैं। लाहौर की टीम पिछले 3 साल से फैल्कन ट्रॉफी जीत रही है। उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग है। उनके 2 खिलाड़ी अंडर 19 क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इसलिए अगर हमें यह मैच जीतना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट की तरफ।
1: कोच मैं तो सिर्फ
0: मैं नहीं सुनना चाहता कि उस लड़की ने तुमसे क्या कहा।
1: वो बेचारी तो
0: क्या बेचारी, हाँ ऐसी बेचारियां तुम्हें बहुत मिलेंगी आगे। पहले वो कर लो जो करने आए हो। इस्लामाबाद की टीम फाइनल में पहुंच गई है।
1: फिर तो आप शुक्र करें।
0: क्या बोला? क्या बोला
2: यार? छठ यार की होगी।
0: एक मिनट, क्या शुक्र करूं? पिछले 2 महीने से कुत्ते की तरह रात दिन एक कर रहा हूं मैं, और उस टीम के जीतने पे शुक्र करूं मैं? साला उस टीम का बाप लगता हूं मैं जो शुक्र करूं?
1: उस टीम के कप्तान के तो लगते हैं ना।
0: क्या बोला?
1: कोच कॉलर छोड़े।
2: और छठ दे अकबर
1: कॉलर छोड़े। कोच
0: मेरी नीयत पे शक किया तुमने? हाँ
1: अगर इतनी नीयत साफ थी तो पहले क्यों नहीं बताया कि वो आपका बेटा है? और ये क्यों नहीं बताया कि 15 साल पहले आपको चौरसी और जानी होने की वजह से टीम से निकाल दिया गया था?
2: अकबर
1: हर मैच के बाद मेरी परफॉर्मेंस की बजा रहे होते हो और अपने बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकते।
2: ओ यार एक मिनट समझ कर रहो।
1: जो कर खानदान का नहीं हो सकता हमारा क्या होगा? नहीं खेलने मेरे क्रिकेट से खेल ले लगे।
2: छोड़
1: मुझे मार। चल
2: दरबार से बाहर निकलो। इसे पास कर दे यार।
1: वड्डा है वो। चुप जा रहा हूं मैं। जा रहा हूं वड्डा अपने आप नु समझता पिया है। छड्डा यार बस मैं कह दिया।
0: ये तो बाहर है टीम से। और तुम में से भी अगर किसी के यही ख्याल आते ना तो दफा हो जाओ यहाँ से अभी, इससे पहले कि मैं तुम लोगों को बाहर निकालूं।
2: यार की करे क्या हो? अकबर वो साड़ी टीम का कप्तान है ना यार।
0: कैप्टन था है नहीं। टीन अब से तुम कैप्टन हो। टॉस की तैयारी करो।
2: पता नहीं की हो इंडिया सब बकवास।
3: Gil Lahore Thunders. Amateurs out of the night. What a performance. Can't really blame these people, can you? You should never have put so much hope in their hearts. It's wrong of you. They never amount to anything but street players. Enjoy your life in Sialkot. Just one more thing. What is it you Muslims say amongst each other again? Mere liye Allah hi kafi hai. कहा है तुम्हारा अल्लाह।

0: impossible.
1: और बादल बरसना शुरू हुए और इस बारिश के जरिए मौका मिल गया है सेलकोट चाइंस को कि इस मैच में कमबैक कर सके, क्योंकि बैटिंग करते हुए उनकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा खराब थी और डकवर्थ एंड लुईस सिस्टम के तहत अब एक ओवर में 13 रन स्कोर करने हैं लाहौर थंडर्स की टीम को। और क्या काशिफ उर्फ काली आंधी सेलकोट चाइंस के लिए ये रन सेव कर सकेंगे या नहीं। पहली गेंद करने के लिए तैयार काशिफ आए, ऑन साइड पर बैट्समैन ने खेला आसानी के साथ, एक रन चहलकदमी के अंदाज में मुकम्मल किया और दूसरा रन लेने की कोशिश, लेकिन बैट्समैन ने वापस क्रीज में लौटने पर मजबूर कर दिया साथी बैट्समैन को। एक दफा फिर आए शॉर्ट बॉल, गेंद की लाइन को मिस किया और टेंशन मुसलसल बढ़ते हुए दोनों टीमों के डगआउट में। और इस मरतबा उठता हुआ स्ट्रोक के लिए फील्डर के सर के ऊपर से और गेंद दो फील्डर्स को बीट करने के बाद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, तो अब 3 गेंदों पर 8 रन दरकार। एक और शॉर्ट बॉल उठता हुआ स्ट्रोक इस मौके पर फील्डर के सर के ऊपर से होती हुई गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, तो अब 2 गेंदों पर 4 रन दरकार है। देखना यह है लॉर्ड थंडर्स इस मैच में इन 2 गेंदों पर 4 रन स्कोर कर सकेगी या नहीं। एक और शॉट इस मरतबा फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, तो 2 रन का यकीनी तौर पे स्कोर में इजाफा हुआ। तो अब क्या काशिफ और काली आंधी इन 2 रन को सेव कर सकेंगे या नहीं, या बैट्समैन राणा जावेद मीदाद की तरह आखिरी गेंद पे छक्का लगाने में कामयाब हो सकेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैच होता हुआ लाहौर थंडर्स के सपोर्टर लाहौर की टीम को सपोर्ट करते हुए। काशिफ बॉलिंग के निशान पे तैयार, तमाम तर टेंशन इस वक्त ग्राउंड में मौजूद और आसमान की जानिब दिखा है काशिफ की जानिब से। आखिरी गेंद, इस गेंद पर फैसला होगा इस मैच के नतीजे का।

0: Mr. Nick, you have been very confident of your team.
1: Of course, Simon. You can't really blame us for that now, can you?
0: But as we know, cricket is by...
1: Look, mate. I have every confidence in the world that tomorrow's match will be like every other match we played this season, okay?
2: और रिजल्ट्स भी वही होंगे जो पिछले मैचेस में आप लोग देखते आए हैं
3: लेकिन सियालकोट शाइंस तो बहुत ऊपर आई है
2: देखिए मैं ये नहीं जानता कि कौन ऊपर आया है कौन नहीं मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी टीम टॉपर है और रहेगी
4: शाहिद आपको आपकी टीम में शाहिद आफरीदी भी कहा जाता है लेकिन पिछले कुछ मैचेस में आपकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही
5: जी मुझे मालूम है
4: वैसे आपके कोच से आपको कुछ टिप्स मिले
5: जी यही कि कोशिश किया करो कि हर बॉल में डलो और
2: नशा करके गेम खेलने के बारे में नहीं बताया आप लोगों को तो इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि इस किस्म के रेपुटेशन के कोच के साथ इन लोगों को और सीखने को क्या क्या मिला
5: क्या मतलब है तुम्हारा
2: तुझसे बात नहीं कर रहा हूं
3: लेकिन ये तो आपके वालिद हैं
2: व्हाटएवर मेरा इस किस्म के आदमी के साथ कोई ताल्लुक नहीं
6: खामोश निकल चुप
2: उंगली नीचे रख के बात करें
6: देखो मैं जैसा भी हूं मगर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप ही हूं
2: फिलहाल उसी के बनिए जिसके साथ बैठे हुए हैं और क्या पता उस क्लब डांसर की तरह इसकी फर्क सिर्फ इतना है कि अभी पकड़े नहीं गए होंगे लकी है तेरी माँ
5: चुप होए
7: क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हंटर्स और सियालकोट शाइंस के कप्तान एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैदान जंग का मंजर पेश करने लगी लोगों का ये कहना है कि दोनों खिलाड़ी क्रिकेट पर एक बदनुमा दाग है
8: अब ये सड़क छाप टीम मियां आसिफ कुरैशी की टीम से जंग लड़ेगी ये दो टके का आदमी ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग मी डाउन आई टीच हिम अ लेसन
1: नथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग टुमॉरो नाइट वी गोना लिफ्ट दैट कप एंड आस्क फॉर द यंग गाय When has he ever created a problem for you?
8: तुम साले गोरे लोगों को सही वक्त पर सही बात करने आती है 15 साल पहले उसने मेरा क्या बिगाड़ लिया था जो अब बिगाड़ेगा बड़ा राइजिंग स्टार बना फिरता था लेकिन नेक उसे एक जर्ब लगाना बहुत जरूरी है उसे ऐसी चोट पहुंचाओ जिसकी तकलीफ मुझे कल स्टेडियम में नजर आए Who do you want to choose from the team?
1: If I was to choose someone, I'd choose it someone that they couldn't replace. I'd go for the wicket keeper, Michael Magnett.
8: Wow. I like it. Right. Cheers.
9: Hello? Akbar?
6: Michael, kahan?
0: Taxi! Oh, taxi, aur ruk ja bhai!

不管你下制下。

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111. Or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। Experienced and regulated immigration consultant शहबाज अकबर के साथ। Master of Business Class Immigration, Express Entry, Skill Class Immigration, Refugee Claims and Family Sponsorships. Call now at 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada.
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिचवे
4: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करता मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca.
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: माइकल
1: क्या हुआ इन्हें?
2: सर काफी इंजर्ड है, खून बहुत ज्यादा हो गया।
1: इनको सीधा ओटी में लेके जाएं और आई विल मेंटेन करें।
3: पर क्या होया?
0: माइकल को कुछ लोगों ने मारा है बहुत ज्यादा।
3: ओह माय गॉड।
4: वैसे तो इनके लेफ्ट हैंड में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, लेकिन इनका जख्म गहरा होने की वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि इनका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जो कि बहुत रेयर है।
0: डॉक्टर साहब, इस बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए।
4: इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप बस फौरन खून का इंतजाम कीजिए। आपने जो सैंपल्स दिए थे उनमें से कोई भी वो नेगेटिव नहीं,
0: लेकिन तीन चार लड़के और भी हैं।
1: तो प्लीज बुलवाए उनको, बल्कि आप पहले उनसे मालूम करें अगर किसी का वो नेगेटिव हो तो। वक्त बहुत कम है, प्लीज।
3: की कह रहे हैं डॉक्टर?
0: वो नेगेटिव ब्लड चाहिए, सैंपल्स भी मैच नहीं हुए। तुम्हें से है किसी का वो नेगेटिव ग्रुप? तीन साथ कहां से लाऊं मैं वो नेगेटिव?
5: कोच, हमारा ओ नेगेटिव
6: मौलवी, तू ते
5: मजहब एक नहीं है तो क्या हुआ? बनाया तो अल्लाह पाक नहीं है ना? जितना खून निकालना निकाल लो कोच खाना, लेकिन उसका जान बचना चाहिए।
6: शाबाश।
4: बच्चे को होश आ गया है, आप में से जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं वो मिल सकते हैं।
6: ओ शुक्र है मालका।
2: सिर्फ घर वाले जा सकते हैं।
5: भाई है हमारा।
7: अपना आएगा अपना।
2: भाई है।
7: भाई है अपना।
2: ओए भाई है। प्राए भाई आएगा।
8: सक्का प्राए।
2: मैं फाइनल खेलूंगा ना कोच, मुझे फाइनल खिलाना कोच। मुझे फाइनल खिलाना मलिक साहब, मुझे फाइनल खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाएं। मलिक साहब मुझे मैच खिलाना। मलिक साहब मुझे फाइनल खिलाना। कप्तान,
0: ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ।
6: ओ यार अकबर, तेरा क्या कसूर है? वो जिसने ये हरकत करवाई है, असल खबीसु नसल तो वो है। अकबर यार, अल्लाह सब ठीक कर देगा। है?
0: मैं क्या करूं मलिक? बीवी बेटा करियर सब कुछ छिन गया मुझसे, और क्या क्या कुर्बानियां दूं? अब मुझे समझ भी नहीं आता कि मेरा कसूर क्या है। यही कि मैं गरीब था, या यही कि मैं इन गरीबों का साथ दे रहा हूं, उनकी मदद करना चाहता
6: हूं। ओ यार अकबर, जब इतने सारे सवालात हो ना, तो एक ही जगह से जवाब आता। यही है वो जगह, यही है।
0: 15 साल से एक ना करता गुनाह की सजा भुगत रहा हूं मैं। तू जानता है कि मैं बेकसूर हूं, पर इतना इम्तिहान क्यों? अगर इसी मुकाम पे लाना था तो फिर इन बच्चों के साथ क्यों खड़ा किया? मुझमें मजीद इम्तिहान की हिम्मत नहीं है। इस इम्तिहान को खत्म कर दे। इतना भी गुनाहगार तो नहीं हूं ना मैं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं, इतना भी गुनाहगार नहीं हूं। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया।

0: मैंने कुछ नहीं किया था।
1: मैं जानता हूं बेटे, मैं जानता हूं। कौन कहता है कि अल्लाह सिर्फ अपने गुनाहगार बंदों का इम्तिहान लेता है। मैंने तुम्हें गलत समझा, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है। मुझे माफ कर दो बेटो, मुझे माफ कर दो।
0: मैं नहीं जानता आज रात के बाद हमारी जिंदगियां कैसी होंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि हम में से ज्यादातर तो शायद इस खेल से जुड़े भी ना रहे। कौन जाने हमारी किस्मत ने हमारे लिए किस मंजिल का तायुन किया, लेकिन मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि आज हमारी मंजिल सिर्फ एक है। जीत हमारे कदम चूमे ना चूमे, लेकिन आज हम हारेंगे नहीं। आज इस ग्राउंड में कोई मुस्लिम, हिंदू या ईसाई नहीं, इस मुल्क का गरीब उतरेगा। हर वो गरीब जिसके सर पे चाहे छत हो या ना हो, लेकिन दिल में ईमान जरूर है। खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन ईमान को नहीं। इसलिए कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने कहा था कि हार के लफ्ज से मेरी आशनाई नहीं। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने ईमान की ताकत से एक हुजूम को एक कौम बना दिया था। कसम खाओ उस शख्स के सामने जिसने शिकस्त को भी शिकस्त फाश दी। तुम आज नहीं हारोगे, कसम खाओ कि तुम नहीं हारोगे। आज तुम नहीं हारोगे।
2: इजाजी का

0: सियालकोट से ताल्लुक रखने वाली ये टीम बॉलिंग करने जा रही है।
1: आ जा, आ जा, ले आ जा, आ जा, आ जा।
2: ठीक है, और कोशिश करने के बाद मिडिल
3: शर्टन ओवर अंप कराने गया। यार खान कोच ने क्या सी दूजा एंड तू संभालेगा यार।
2: सही तो कह रहे।
3: ओ यार तुमको दोस्ती का वास्ता यार, ये ओवर अंप को कराने दो।
2: दे दे काशी, दे दे। शाबाश शाबाश शाबाश।
4: मजीद मौलवी पहला गेंद करने आए हैं, जोर से भागते हुए। देखते हैं कि पहला गेंद वो क्या करते हैं। पहला ही बॉल बाउंसर और बैट्समैन जमीन के ऊपर। व्हाट अ बॉल! और गुस्से से घूरते हुए मौलवी मजीद
3: और न छूटे।
4: मजीद मौलवी गेंद करने आ रहे हैं, दूसरा गेंद है उनका। उन्होंने गुस्से से बैट्समैन की तरफ देखा, भागे। देखते हैं ये कौन सा गेंद करते हैं। गेंद की बैट पे गेंद लगी, जोरदार अपील। लगता है कि वो आउट हैं, मगर ये क्या। मौलवी मजीद सबको कह रहे हैं खामोश रहो।
5: ये अपील क्यों नहीं कर रहा यार।
3: अभी हम नो बॉल करा के तेरा सर पड़ेगा, बच गया तो फ्री हिट ले लेना।
4: मौलवी मजीद तीसरा गेंद करने आए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है बैट्समैन कांपते हुए। मजीद मौलवी आए गेंद की और बॉल कर दिया। बहुत ही अच्छा बॉल विकेटों के दरमियान।
6: भैया साहब व्हाट अ स्टार्ट।
3: पठान को बेवकूफ समझता
7: है। ओए क्या बात है।

0: Balki.
1: Gel buradan be bana duy. Tikortak gel. Tikortak gel.
0: बॉलर ने गेंद की स्क्वायर काट, जबरदस्त किस्म का फ्लिक।
2: 203 रन बनाना है सियालकोट शाहीन की टीम को।
3: इस्लामाबाद हंटर्स की शानदार बल्लेबाजी, 203 रन का हदफ सियालकोट शाहीन के।
0: बॉल की रिटर्न शॉट, कैच छूट गया, जोरदार हिट और पुल शॉट।
3: और सिकंदर यहां आया, का पहला ओवर तो खत्म हो गया। और अब देखना यह है कि कप्तान निकाल अगले ओवर के लिए किसको लेकर आते हैं।
0: डका उससे कोई इशारा कोच का, वो क्या कह रहे हैं? मिकाल खुश नहीं है इस बात पर। लगता है कि कोई नए बॉलर की तरफ इशारा किया जा रहा है। और बॉलर आ गए हैं फहद।
4: बॉल कराओ और ये बताओ कि फील्ड क्या सेट करनी है।
5: जो फील्ड है वही रहने दो।
4: जिस हिसाब से बॉलिंग कराओगे उस हिसाब से फील्ड सेट करनी पड़ेगी।
5: बस कीपर से कहो 4 फीट पीछे हो जाए।
3: बैट्समैन ने स्टांस लिया, दौड़ना शुरू किया उन्होंने। फहद इस मैच में क्या करेंगे?
0: 153.9। फहद अपना दूसरा गेंद करने आ रहे हैं। देखते हैं कि पहला गेंद तो बहुत तेज किया था, दूसरा गेंद कितना तेज करते हैं। वाओ, व्हाट अ बॉल, इतना तेज। बॉल की स्पीड इतनी थी कि बैट्समैन को पता ही नहीं चला कि गेंद कहां से गई।
3: और फहद अगली गेंद करने के लिए तैयार। तमाशाइयों का जोश उरूज पर। फहद ने गेंद की और 7 बोल्ड हो गए। मिडिल स्टंप दो चुका। और यूं लगता है कि इस्लामाबाद हंटर्स ने फिर सियालकोट शाहीन्स के पर उतर दिया। और ये फहद का जज्बाती अंदाज, बैट्समैन को कहा पवेलियन वापस जाओ। और लंबी डाइव, बेहतरीन रनिंग
0: और रन आउट मिस।
3: खूबसूरत डग आउट की तरह हेलमेट का इशारा।
0: कवर ड्राइव, स्क्वेयर कट, बहुत अच्छी रनिंग, बोल्ड,
3: बेहतरीन डिफेंस,
0: खूबसूरत शॉट,
3: एक और बोल।
4: वाजिश तुम जाओगे।
6: कोच क्या हो गया?
4: जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बैठ जाओ आराम से।
7: ओ अकबर यार, 5 खिलाड़ी आउट हो गए ने, की करंट है?
4: मुझे किसी भी तरह ये 5 गेंदे गुजारनी है, ठीक है? सुनो, कुछ भी हो जाए ये 5 गेंदे खेलनी है तुमने, समझे? जान क्यों निकली हुई है? जाओ, कम ऑन, घबराओ नहीं।
6: नवाजिश संभाल के, शाबाश
4: शाबाश।
3: और सिकंदर यहाँ बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की है सियालकोट शाहीन ने। और फहद जो तबाही फेर रहे हैं उनके आगे एक और बैट्समैन को भेजने के बजाय एक नॉन रेगुलर बैट्समैन आया है। देखिए फहद क्या करते हैं इस बार। और ये फुल टॉस सीधा जिस्म पे लगा।
6: ओए यार,
3: नवाजिश नीचे गिर गए।
6: नवाजिश नवाजिश, जल्दी आ, जल्दी जल्दी,
4: चोट लगी उसे, देख के आओ।
6: इसकी तो कोच, अब मैं जा रहा हूँ।
4: तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मना किया, तुम बैठ जाओ आराम से।
6: कोच वो हमारे सर पे सर फाड़ रहे हैं और आप कहते हैं बैठे रहो।
4: जो भी कर रहे हैं, मैंने तुम मना किया है ना।
6: पर
8: तुम लड़न रहे हो, जिन्हें जाना सी वो चला भी गया।
3: सिकंदर सियाल को शाइन का एक और सरप्राइज। और अब मजीद बॉल भी बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। तेज तूफानी फहद, मजीद बॉल भी ना, बल्ला घुमाया और गेंद हवा में।
9: ये तुम्हारा पापा के लिए।
3: बॉलर के गुस्से पर बैट्समैन का गुस्सा हावी दिखाई देता है।
0: कवर ड्राइव, फुल टॉस, सरों के ऊपर से ड्रेसिंग रूम में।
9: जो लेके आओ ये तुम्हारा मामा के लिए।
3: जज्बात उरूज पर, क्रिकेट चंद में बदल गई है। गुस्सा हो गए हैं। और गेंद इस बार मजीद बॉलिंग के पल्ले पर नहीं आई। और इस बार वो हो गया जिसकी उम्मीद 3 गेंदों पहले की जा रही थी।
4: शायद अब तुम जाओ और हुक नहीं करना।
6: कोच अब मैच में रही क्या गया?
4: 106 रन्स, जब शायद अफरीदी 37 गेंदों पर सेंचुरी बना सकता है, तुम्हारे पास तो 54 बॉल्स हैं। जाओ।
0: अब नए आने वाले बैट्समैन हैं सियालकोट शाहीन के कप्तान शाहिद। पूरा क्राउड उनके लिए शोर मचाता हुआ।

0: बहुत ही जारहाना बैटिंग है शाहिद की और इस दफा रन आउट का खतरा। भागे बॉलर बीच में आ गए
1: और यहाँ रन आउट हो गए।
2: बकवास है यार,
1: सियाल को शाहिद को एक और सदमा।
0: ये बहुत गलत हुआ है, इसलिए कि शेख बहुत देर से खेल रहे थे। ये बहुत बुरा हुआ है। लगता यह है कि बैट्समैन ने बिल्कुल नहीं देखा बॉलर को और बॉलर की बैट्समैन की तरफ, पता नहीं चला, दोनों आपस में टकरा गए
1: और शाहिद बट्टी फिर चल पड़े। शॉट लग रहे हैं, रन कम हो रहे हैं, हर गेंद पर रन बन रहे हैं। शाहिद बट्टी के उमदा शॉट,
0: हमीद ने सीधा खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में और वो आउट हो गए।
3: संभाल के काशी,
1: इंतहाई गैर जिम्मेदारी, काशिफ का लिया दिया आउट।
0: आने वाले बैट्समैन है माइकल मैग्नेट और साथ देंगे वो अपने कप्तान का हाथ, उनका पहले ही इंजर्ड है।
1: सियालकोट के लिए हालात गंभीर, 7 गेंदें 22 रन और सिर्फ 1 विकेट इस्लामाबाद हंटर को।
3: माइकल यार तू, ओ ये देख, बैट उठा सकता हूँ मैं, और हमारे लिए कितनी कुर्बानी देगा। अगर आज पीछे हट गया ना शायद, तो आइंदा कभी किसी की माँ अपने बच्चे को ख्वाब नहीं दिखाएगी। चल जा शाबाश।
0: माइकल मैग्नेट ने सिर्फ रोकना है, इसलिए कि 6 बॉलें अगर शाहिद भट्टी को मिलती हैं, तो शाहिद भट्टी जो हैं, वो ये मैच जिता भी सकते हैं।
1: बाप का हैट्रिक बॉल सीधा मार देते
3: जिसे। माइकल, माइकल, माइकल, माइकल,
4: तू ठीक तो है ना?
3: हाँ, टूटे हुए को और क्या तोड़ेंगे यार। इसका ओवर खत्म हो गया ना, बस यही करने आया था मैं।
4: मगर तेरे तो खून निकल रहा है।
3: चुप, एम्पायर को पता चल जाएगा। उठा मुझे।
4: अच्छा उठ उठ, शाबाश।
1: और अब सियालकोट शाहीन के लिए सूरतेहाल को जिस तरह, 6 गेंदें बाकी 22 रन और 1 विकेट सियालकोट शाहीन के पास, और अच्छी खबर उनके लिए ये कि कप्तान शाहिद भट्टी के पास स्ट्राइक। इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मीकाल गेंद की योग करना चाहते थे, कोई रन नहीं बनेगा, 1 गेंद जाया हो गई। मीकाल की अगली गेंद शाहिद भट्टी के बल्ले पर हवा में और गेंद बाउंड्री के बाहर।
2: शाबाश शाबाश शाबाश,
0: बहुत ही खूबसूरत शॉट।
1: और मिकाल की अगली गेंद शॉट गेंद, शायद बट्टी ने छोड़ दिया। अंपायर अपनी जगह खामोश खड़े हैं। रवैये पर हैरान कुन तौर पर,
0: मुझे हैरत है, बैट्समैन ने भी इशारा किया मगर अंपायर ने कहा कि नहीं, ये वाइट बॉल नहीं है।
2: अंपायर ने खरीद लिया इन्होंने।
1: इस्लामाबाद हंटर्स के कप्तान मिकाल एक बार फिर, और इस ओवर में यह दूसरा छक्का होगा।
0: अब कोई चांस नहीं है, 2 गेंदों में 10 रन चाहिए, बड़े छक्के लगने हैं, या तो चौका या छक्का, इसके अलावा कोई चारा नहीं।
2: कम ऑन,
1: 2 गेंदें 10 रन। मिकाल की अगली गेंद को कवर में खेला है शाहिद भट्टी और 4 रन हो गए।
0: आपने देखा, उन्होंने थोड़ी सी जगह दी, रूम दिया और उन्होंने कट खेला 4 रन के लिए। फील्डर को भी मौका नहीं मिला गेंद रोकने का।
1: आखिरी गेंद, अगर मगर का खेल खत्म। इस्लामाबाद हंटर्स को 1 विकेट, सियालकोट शाहीन्स को 6 रन

0: सिलेक्टर्स जा चुके हैं, कल फिर चक्कर लगाना पड़ेगा।
1: कोच आप रोज ही ऐसा बोलते हैं।
2: हाँ।

0: तो तुम हो सियालकोट के शाहिद आफरीदी?
1: जी मैं।
0: जो जात तुम्हें यहाँ तक लेके आई है वही जात तुम्हें आगे पहुँचाएगी, 3 मैचेस में चांस मिले या 300 में। लेकिन इस सब्ज यूनिफॉर्म को पहनने के बाद पिच पर किसी एक शहर का आफरीदी नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का शाहिद खड़ा होना चाहिए।

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसेस आगर रिचवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
4: Rah Bakers and Sweets, 60 saal se aapke haseen lamhon mein shamil, khushiyon se bhare meethe zaike, nafasat aur quality mein sabse behtar. Khalis ajza se taiyar karta mithai, cakes, biscuits and snacks. वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट राहत बेकर्स.ca।

0: एंड मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ एंड इट माइट कम अक्रॉस एज ए आई डोंट नो इट मे कम अक्रॉस समथिंग वेरी वियर्ड मुझे ऐसे लग रहा था कि आप लिप सिंक कर रहे हैं दैट्स हाउ गुड यू आर
1: थैंक यू सर थैंक यू सो मच

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब्बे करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब्बे करीम आपको आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्बे मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मैं देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए। राबते के नंबर है 905-257-1342।

0: बेहतरीन वक्त है इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से रابطہ कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary aur Munir Hussain, 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: करम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवी के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 905-828-0009। यो लॉगिन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अपने

0: आईसीसी इमिग्रेशन के आरडीएमडी और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर ले 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। आईसीसी इमिग्रेशन।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: कंस्ट्रक्शन लोन के लिए है ना मेगा मॉर्गेजेस फाइनेंशियल इंक के मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157।
4: जी हाँ, 4165700157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते का नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब से होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैशी साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 4165700157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले अपने लॉयर के साथ। आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद, कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ वक़्त पता चल जाता है, बाज़ वक़्त नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ वक़्त जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी या मेरी बेटी बैठी हुई थी या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, कि कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को लालच, हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, प्लीज मुझे कॉल करें। मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, 416-570-0157 मेरा नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया,
4: बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी साहब, और मंडे इंशाल्लाह से भी बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कीजिए 416-570-0157, 416-570-0157, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। सदर ट्रंप कहते हैं कि अभी भी मैं ही फैसले करता हूं, मैं ही करूंगा, कांग्रेस जो है वो फैसला नहीं करेगी। बाजी खबरें थी कि उनसे जो है अब वो क्या फैसला नहीं कर सकेंगे, उनकी ख़त्म हो गई है जो कह लीजिए अथॉरिटी, लेकिन उनका कहना है कि मेरी ही अथॉरिटी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, और इसके साथ साथ ईरान का 90% उनकी बहरी और फ़ज़ाई तबाह होगी। बहुत सी बातें इस हवाले से की हैं, थोड़ी देर में से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी।

आप भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते, तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में रابطے کے نمبر 416-593-0003 استاد نصف علی خان کی خوبصورت آواز اور وقت ہو چلے آپ کو لے چلنے کا کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز کی طرف جو آپ کے لیے پیش کرتی ہیں وانی
1: نیوز کے لیے ہمیں دعوت دیا ہے ٹیم بھٹی ریئل اسٹیٹ فار آل یور ریئل اسٹیٹ نیڈس کال طلحہ بھٹی 647-295-7861 647-295-7861
2: Good evening. You're listening to Radio Pakistan Toronto. This is Meevani with local updates. Service on parts of Line 6, Finch West, has been stopped due to a collision between LRT and a vehicle. The TTC says there is currently no service between North Finch Oakdale and Finch West due to the crash just after 4 p.m. Members of the public are being advised about an increase in military traffic next week as personnels from Canadian Army travel through southern and eastern Ontario for filming a documentary. Prime Minister Mark Carney is rejecting the notion that Canada might use energy or critical minerals as leverage in upcoming trade talks with the US. The province's Special Investigations Unit has been called in after a stabbing investigation in St. James Town turned fatal Friday when a 52-year-old man attempting to flee the scene fell from a balcony and died. Health Canada has approved the second generic version of brand name Ozempic, this one manufactured by Canadian Complex Autopex. Police in York Region and Toronto have received judicial authorization to release the photos of a youth suspected in two separate synagogues shooting in the GTA last month. Registrations open for candidates in October's municipal election. Fort McMurray marked 10 years since destructive wildfire. Hamilton police are investigating a deadly shootout that took place inside a city housing building and believe shooter may have been injured. A young person is facing charges in connection with an investigation in a small community outside of Kingston, Ontario. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
3: Assalamu alaikum. You are listening to Radio Pakistan Toronto.
1: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर चरगा लाहौरी फिश चपली कबाब कड़ाही गोश्त चिकन टिक्का मसाला चिकन बिरयानी सीख कबाब रेशमी कबाब चिकन बोटी चिकन टिक्का बिहारी कबाब लैम चॉप्स अफगानी टिक्का निहारी और बहुत कुछ खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 It's 905-268-0088 टन और डंडा के इंटरसेक्शन में सिसागा तैयार हो जाएं इस बकर ईद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
0: याद रखें अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन स्पाउसल सपोर्ट चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773 कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773
1: मेटा फर्नीचर होलसेल गैलरी अगर आप ब्रांड न्यू पायदार और लेटेस्ट डिजाइन के फर्नीचर की तलाश में हैं, तो मेटा फर्नीचर आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करता है बेहतरीन क्वालिटी और प्राइस की गारंटी मिसिसागा ब्रामटन स्कारब्रो और कैम्ब्रिज की चारों लोकेशंस पर ब्रांडेड ट्रेडिशनल और

0: और बेस्ट डील्स आपको मिलती हैं, एवरी वीक स्पेशल डील मिलती हैं, और 10-30% फॉर श्योर डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी किसी भी स्टोर से, ब्रांड नेम स्टोर से, क्योंकि डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, कंटेनर्स के कंटेनर्स रेगुलरली आते हैं, इसलिए आपको ये मार्जिन दे सकते हैं। मिसागा में लोकेशन उनकी 3050 वेगा बुलेवार्ड, 295 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट ब्रॉम्पटन, 1319 कैनेडी रोड स्कारबोर्ड, 35 बुश रोड कैम्ब्रिज, और बहुत जल्द पांचवीं लोकेशन भी इनकी ओपन होने वाली है। चारों लोकेशन के लिए एक नंबर है 416-901-2810, मेटा फर्नीचर डॉट कॉम इनकी वेबसाइट है। पवन मीरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। मीरा साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
1: थैंक यू वटी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल, मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं, पांचवी का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे। और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और फिर कंटेनर बाइंग। आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद जैसे भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने देखने में हो सकता है हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60, अप टू 80, ये तो इवन वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है हमारी, उससे 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही पांचवी का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा। और जो कंटेनर में लाते हैं, क्योंकि लोकल चाहे एशले फर्नीचर अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं, क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है, और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है, तो वो फिर जो बचत होती है हम तो दो पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, मेरा तुझको सौंप दूं वापिस कर देते हैं आपको, और वीकेंड आता है तीन चार आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मेड एक्सेप्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम 6099 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको दे रहे 1099। ये देखो ये है हुनर, ये आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी है वो, तो मतलब ये एक डील होगी। एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड, ड्रेसर, मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं, आपको 799 का देंगे। लैकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास तीन मॉडल है 1699 के, आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी। कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड्स हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन भाई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है, तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है। तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं, माइकल अमीनी का एक सोफा 3000 से, एक सोफा 3000 से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलते हैं 4500 का, हम देते हैं 3000 का, तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए। तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है। तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं एक बार क्या फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मंद होंगे, तो आपको हमारा स्टोर हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा, और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में, तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच,
0: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, नेक्स्ट अरुण आपसे बात करते हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810, 416-901-2810, मेटाफिनिश.com इनकी वेबसाइट है। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.

ब्रामटन में सबसे ज्यादा मॉर्गेज डेलिक्वेंसी हो रही है, यानी सबसे ज्यादा मॉर्गेजेस लोग पीछे जा रहे हैं उसके, तीन तीन महीने पीछे हैं और कह रहे हैं कि 20 घर लगते हैं तो एक जो है वो पावर सेल पे। तो थोड़ी देर में इस हवाले से मैं बात भी करूंगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, ईरान की नई तजावीज से मुतमिन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वो बहुत इज्जत करते हैं। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान की क्यादत तकसीम हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटमी हथियार हों, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को आज ज़्यादा खतरा होता, ईरान की क्यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ, ईरान की मौजूदा क्यादत उलझन का शिकार है, नेवी और फिजाई सब कुछ तबाह हो चुका है, ईरानियों को यह भी आइडिया नहीं है कि उनकी क्यादत किसके पास है। और दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि अमरीका को धमकी आमेज लहजा और तौसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम लीजाज कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। जनाब आज कल परसों और तरसों मंडे यानी चार दिन जो है आपको जाना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में। इस वीकेंड पे मदर्स डे की बहुत ही स्पेशल आपको गिफ्ट्स वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और परफ्यूम ब्रांड नेम परफ्यूम्स की बहुत बड़ी वैरायटी आपको हर ब्रांड नेम आपको वहाँ मिलेगा। इसके अलावा फाइन चॉकलेट्स और डिज़ाइनर सनग्लासेस भी मिलेंगी। लीजा कॉस्मेटिक्स.com पे जाके आप मज़ीद डिटेल ले लीजिए। और अगर हम बात करें टाइमिंग्स की तो सैटरडे 9 से 6 बजे और संडे 10 से लेकर 6 बजे तक आपके लिए ओपन है लीजा कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल। इसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है वो है जनाब विंडोज़ के हवाले से। अगर आपके विंडोज़ और डोर्स पुराने हो गए हैं तो आप कॉल कर लीजिए राइट विंडो फोर्स के सुभानु जी को 416-206-3200। ये मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज़ और डोर्स इंस्टॉल करते हैं और इनसे आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक जो है वो कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर इनकी, आप विंडोज़ और डोर्स अभी इंस्टॉल करवा लें, पेमेंट चाहे 1 साल बाद कर दीजिए, कुछ डाउन पेमेंट देनी होगी, सम कंडीशंस में अप्लाई, इंस्टॉलमेंट्स उसके बाद आप बना सकते हैं। कॉल कर कंफर्मेशन लीजिए 416-206-3200 416-206-3200। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: In since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Juni Global Advisor Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 437-264-3175। इट्स 437-264-3175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंड फ्री फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: हाँ जी हाँ, 416-710-6777 पे आप कॉल कर लीजिए। शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंक्वेट हॉल, जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी बेटी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना, तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है। इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही है, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे रابطہ करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं, आपको पता है।
2: 416-710-6777 पे आप रابطہ कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरी डे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरी डे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल हमसे रब्ता कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के। तो जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंक्वेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 416-710-6777, 416-710-6777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शम्स भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
3: इंशाल्लाह। थैंक
2: यू। और जनाब अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके लिए दिया जाएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। 2-3 छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन है। लीजर्स कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कहम में और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है। और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री। इसके अलावा डिजाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी और मदर्स डे के लिए स्पेशल स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। यूनिट इनका 3 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल जमान साहब। स्टे ट्यून।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matana Khan at 416-825-9275.
1: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East Lawrence Bridgemount ka intersection 416-757-9999. Daanton ki koi bhi bimari ho aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye. Tamam insurance plan accept karte hain. Insurance na rakhne walon ke liye special discount. Root canal treatment aur retreatment ke specialist hain. Mississauga location 1110 Bloor Street East Bloor or Dixie intersection 905-232-5678.
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: अगर आपकी कॉर्पोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉर्पोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं साथ-साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको यह लोन पे ऑफ करना होगा डेडलाइन इज कमिंग सून अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं مزید معلومات کے لیے ابھی کال کر لیجئے 905-783-1922 اٹس 905-783-19

8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे पे अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9582800009 9058280009। योर लॉगिन हो अलकरम ज्वेलर्स.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।

0: ट्रंप का अख्तियार ईरान से और जंग करनी है या नहीं, फैसला अमरीकी कांग्रेस करेगी। अमरीकी सेक्रेटरी ने ईरान जंग को पहले ही ख़त्म करार दे दिया है, तो क्या जंग का इख्तियार अमरीकी कांग्रेस के पास जाने से अमरीका को ईरान से निकलने का मौका मिल जाएगा? वैसे सर ट्रंप तो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा इख्तियार है।
1: जी देखें, बिल्कुल वो तो अपना बहुत कुछ जो है ना वो मानते हैं, लेकिन बहरहाल जो अमरीकी कानून है वो तो यही कहता है कि अब उनको जो है 60 दिन के अंदर अंदर इजाजत लेनी होती है, चाहे जाए कि वो
0: कांग्रेस
1: खुद कोई, हाँ जी, चाहे जाए कि वो खुद जो है ना वो कोई
0: फैसला
1: और
0: करें।
1: कानून पास करने की कोशिश करें, लेकिन अभी जो है ना फिलहाल की सिचुएशन के मुताबिक तो उनको एक रास्ता जो है वे आउट मिल रहा है। खुद भी बहुत सारे जराये जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि जितनी मुजाकरात की बात हो रही है, जितना जो है ना वो जिक्र हो रहा है कि जी आ जाए, बात कर लें, फोन कर लें, हम तैयार हैं, बैकडोर रबते हो रहे हैं, जो है ना वो चैनल खुला हुआ है, अभी एक दोबारा जो है वो तजवीज भी पाकिस्तान के जरिए जो है वो अमरीका को भिजवाई गई है। तो बहुत सारी जो है ना वो मतलब लोगों का ख्याल है कि अमरीका खुद भी जो है ना इसमें से अब निकलना चाहता है, और उन्होंने अपने लोगों को वहां पे भी जो है ना जितने उनके सेनेटर्स हैं और आवाम के अंदर भी वहां पे जो बेचैनी पाई जाती है, वहां पे भी प्राइसेस बड़ी जो है ना वो ऊपर गई हैं, और भी ऊपर जाने की जो है ना वहां पे है, तो वहां पे आपको पता है कि वो तो हमारी तरह नहीं है, वहां पर तो जैसी जो है ना थोड़ी सी भी महंगाई होती है तो वो बिल्कुल जो है ना वो लोग सवाल पूछते हैं कि जी क्या जरूरत थी आपको जो है ना वो ऐसी जंग के अंदर अपना हिस्सा डालने की जिसमें आपका कोई लेना देना जो है ना उसके अंदर नहीं था। तो वो
0: ठीक
1: बाहर एक प्रेशर वो भी जो है ना वो अमरीकी आवाम का जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, जिस वजह से वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इस जंग से जो है ना जल्द अज जल्द जो है ना वो निकले। तो बहरहाल
0: ठीक
1: एक रास्ता जो है उनको जरूर मिला, जिसके तहत वो कह सकते हैं कि नहीं मैं तो जंग मजीद करना चाहता था, लेकिन अब मुझे कांग्रेस ने जो है ना वो इजाजत नहीं
0: इजाजत
1: दी,
0: नहीं दी।
1: तो इसलिए जो है
0: ठीक,
1: ना वो हम वायदा करने जा रहे हैं।
0: आप सुन रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 FM। हमारे स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0003। पाकिस्तान से बिलाल जमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपकी लाइव कॉल लेंगे। इमरान खान साहब की नाहक कैद को 1,000 दिन मुकम्मल हो गए हैं। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकबर राजा ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर योम मजदूर रैली से आज खिताब भी किया है। सवाल उनकी तरफ से या हमारी तरफ से या लोगों की तरफ से कि क्या अगले इलेक्शन तक जेल ही अब इमरान खान साहब का मुकद्दर है, और क्या इस हवाले से कोई गैर तहरीरी माहिदा पहले ही पीटीआई की क्यादत कर तो नहीं चुकी? बिलाल साहब,
1: ये देखें जो जाहिरी हालात है ना वो कुछ इसी तरह की पिक्चर पेंट करते हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब जो है वो कोई मतलब उनके इलम में ये बात है, लेकिन बाहर जो लोग हैं जैसे बैरिस्टर गौहर हैं, सुहेल अफरीदी हैं, ये लोग आए तो बड़े एंथुजियाज्म के साथ थे। आपको याद होगा कि जब अली मिन गंडापुर को
0: हाँ
1: हटाया
0: हटाया
1: गया
0: था
1: था
0: जी, बिल्कुल सही है।
1: तो लगता था कि अब तो बस मतलब ये कि देखें 2024 नवंबर की तारीख थी जब ये लास्ट जो एहतजाज था, एक बड़ा एहतजाज पीटीआई की तरफ से सामने आया था, उसके बाद तो कोई बड़े जलसे भी जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने नहीं आए। केपीके के अंदर कहीं पे वो ऐसा कोई बड़ा क्राउड जो है वो नहीं इकट्ठा कर सके जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें। फिर उन्होंने एक वो इमरान खान की रिहाई की फोर्स बनानी थी, उसका जो है ना मतलब क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, किसने करवाई, कितने बंदे उसके अंदर रजिस्टर हुए, तो जमा कहते हैं ना जुबानी जमा खर्च जो है वो सिर्फ नजर आता है क्यादत की तरफ से। और अब पीटीआई की अपनी जो मतलब के जो आप कह लें कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे वो अब जो है ना वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आया जो क्यादत बाहर मौजूद है, जिस तरह के सोहेल अफरीदी हैं और दूसरे लोग हैं, ये चाहते भी हैं कोई तहरीक जो है ना वो रन करना या नहीं जो है ना वो चाहते। अलीमा खान की तरफ से भी हमने जो है ना वो देखा है कि सिर्फ बयान की हद तक, लोगों को कॉल करने की हद तक जो है वो मामला है, लेकिन कोई इतना सीरियस जो है ना वो देखें 1,000 साल का मतलब 1,000 दिन का मतलब है कि 3 साल से ऊपर जो है वो खान साहब को जो है ना वो हो गए हैं जेल जेल के अंदर, तो एक बड़ा जो है ना वो टाइम पीरियड
0: होता है
1: है। 4 साल
0: बिल्कुल,
1: बाद तो वैसी हुकूमत जो है ना वो अपना टाइम
0: इलेक्शन
1: पीरियड जो है ना वो
0: को
1: पूरा
0: बिल्कुल
1: पूरा
0: ठीक।
1: कर लेती है।
0: अच्छा, अभी
1: तो लगता है कि कोई कोई इस तरह का फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी तय
0: तय
1: है
0: किया हुआ है,
1: कि
0: ठीक,
1: इस इलेक्शन तक जो है ना वो खान
0: उनको
1: साहब
0: अंदर ही
1: बाहर नहीं
0: रखा,
1: आएंगे।
0: ठीक। अच्छा, अभी सोहेल अफरीदी साहब की बात की आपने, वो कहते हैं सूबे को इसके हक की गैस ना मिली तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गैस पैदा करने वाला सूबा होने के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। क्या सूरत हाल ओवरऑल कैसी है? क्या ओवरऑल गैस की केपी में लोड शेडिंग बाकी जगहों से ज्यादा हो रही है?
1: जी देखें, जो इस वक्त गैस की लोड शेडिंग है वो तकरीबन हमने सर्दियों के महीनों में देखा था कि जब गैस की जरूरत ज्यादा होती है, गर्मियों के अंदर हुकूमत की पहली प्रायोरिटी जो है वो
0: बिजली
1: इंडस्ट्रीज होती है, और ये हुकूमत पहले ही वाजे कर देती है कि जब सर्दियां आती हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर खपत भी ज्यादा होती है और हमारे यहाँ पे सर्दी भी दो दो महीने तो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसमें हुकूमत की कोशिश होती है कि लोगों को कम से कम गीजर के लिए और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए, मैं खुद मतलब कि जितनी देर भी हम लोग सर्दियों में कोई ऐसी तंगी नहीं थी, लेकिन गर्मियों के आते ही जैसे ही यूजेज कम हुआ है कि अब सिर्फ चूल्हे जलाने हैं आपने और तो कोई आपका और तो कोई मतलब यूज ही नहीं है, तो अब वो चूल्हे जलाने के लिए भी जो है ना सारा दिन जो है ना वो गैस अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपको हैरत होती है कि कहाँ इतनी गैस जो है ना वो चलेगी। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री को जो है ना वो प्रायोरिटी देती है, तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके साथ जो घरेलू एरियाज जो है ना वो लगते हैं वहां पे सारा सारा दिन भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो बाकी मार्केट के जो एरियाज हैं वहां पे जो क्या कहते हैं अपना हुकूमत की प्रायोरिटी होती है कि लोग सिलेंडर वगैरह जो है ना कमर्शियल
0: इस्तेमाल
1: सिलेंडर
0: कर
1: वगैरह
0: लें।
1: यूज करें, तो वहां पे जो है ना वो लोड शेडिंग ज्यादा की जाती है, और नॉर्मल एरियाज के अंदर जो है ना वो नॉर्मल जो हुकूमत की एक
0: सही।
1: रूटीन है सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, और फिर जो है ना वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और
0: सही
1: फिर शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ये टाइमिंग
0: ठीक
1: है। इस टाइमिंग के अंदर जो है ना वो गैस
0: नहीं
1: अवेलेबल
0: होती।
1: होती है।
0: अच्छा, वफाकी वजीर तवने अवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता रोज हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है, बिजली की लोड शेडिंग का वो कहते हैं मुकम्मल खात्मा हो गए हैं। हुकूमत ने लोड मैनेजमेंट को आवामी रिलीफ मैनेजमेंट का नाम भी दिया था, तो क्या इस बार हुकूमतें आवाम को बिजली के बिलों में भी रिलीफ देंगी लगता है आपको?
1: जी देखिए, पिछले साल जब ये नई PTM की हुकूमत आई थी तो मरियम नवाज ने भी जो है वो वजीर आला बनते ही एक अच्छे रिलीफ का जो है ना वो ऐलान किया था, और जरूरत होती है जब गर्मियों का महीना आता है तो आपको पता है कि लोड जो है वो बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी पंखे लाइटें और ये मतलब ये कूलर
0: चलते हैं।
1: वगैरह ये चीजें जो है ना वो चलती हैं, तो जो आपका जो कंज्यूमर होता है जो अपने कोशिश करता है कि उसका बिल 100 यूनिट से 200 यूनिट से कम रहे, वो भी चाहते हुए उसको उससे जंप जो है ना वो करना पड़ता है, उससे बाहर जो है ना वो आपका वो ज्यादा आता है। तो अब
0: ठीक है।
1: हुकूमत जो सोलर की नई पॉलिसी लेकर आया है वो भी बड़ी अजीब है कि एक तरफ जो है वो सोलर सार्फीन जो है वो आपको 4,000 मेगावाट जो है वो बिजली मुफ्त और सस्ती जो है ना वो पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन उसका भी सारा बोझ जो है वो अपने सार्फीन के ऊपर जो है ना वो डाला हुआ है कि वो जो आपको 4,000 मेगावाट मिल रहा है वो आप 13 रुपए यूनिट में उनसे खरीद रहे हैं, और आगे आवाम
0: ठीक
1: को वही जो यूनिट्स हैं वो चालीस चालीस
0: चालीस
1: रुपए में
0: रुपये
1: जो है ना वो दे
0: ठीक
1: दे रहे हैं। तो अगर कम से कम जो है ना वो आप इतनी कमाई जो है वो लोग वो वहां से कर रहे हैं, तो
0: सही,
1: उसके जरिए जो है वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ
0: कुछ
1: जो
0: ना
1: है
0: कुछ
1: वो
0: होना
1: जरूर मिलना
0: चाहिए।
1: चाहिए।
0: चलें और चलें, कॉल्स की तरफ चलेंगे जनाब। स्टूडेंट्स में रबे के नंबर 416-593-0003। फर्स्ट कॉलर है 6910, आप ऑन एयर सर। 6910 6910 आप ऑन एयर सर, बात कीजिए।
2: वालेकुम साहब,
0: जी वालेकुम सलाम।
2: है ये कि दिन ब दिन गैस के प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये तो बड़ी एक अजीब सी तजर्बा किया गया है पूरी दुनिया में, खाली पहली दफा नहीं हो रहा, हम तो खैर इससे हुई संभाल है। ये हमेशा रिपब्लिकन जब भी बैठते हैं कोई ना कोई नई गेंद छेड़ते हैं, हिस्ट्री है तो, और उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुल्कों को होता बहुत है। ये कि लगता है ये गुर्बत की जगह गरीब खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं नए नए, हालांकि पोप ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि बिगाड़ने में तो सेकंड लगते हैं लेकिन बनाने में कई
0: टाइम
2: साल लग
0: लगता है।
2: जाते हैं,
0: ठीक
2: लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे जो कि इस टाइप के लोग हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो फिर वही है कि हाँ कुछ बेहतरी नजर आई थी, लेकिन अब है ये कि जब तक ये जंग के आसार खत्म नहीं होंगे, और अल्लाह कह रहे पाकिस्तान कम से कम इसमें अपना एक फायदा तलाश कर लेके एटलीस्ट के जो इन्होंने ईरान से राहदारी खोलने की कोशिश की है, तो ये एक अच्छा है कि कम से कम पाकिस्तान को अमेरिका से ये तो तवक्को करनी चाहिए कि भाई ठीक है आपको लड़ना लड़ते रहे, लेकिन हमारे लिए ये फ्री हैंड दे दे कि हम कम से कम ईरान से अपने तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई ले ले। तो मैं समझता हूँ शायद अभी जो लग रहा है कि फिलहाल जो गैस इतने पेट्रोल इतना महंगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उस जैसी कीमतें नहीं पड़ी, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में भी पढ़ने के बड़े चांसेस हो गए खबरों में आया था, और
0: ठीक
2: पूरी दुनिया ही यानी कि यहाँ तो खैर जो हो ही रहा है गैस की प्राइसेस, और
0: सही
2: इवन अमेरिका का भी यानी कि
0: जी हम आप एक्सपर्ट हैं।
2: डॉलर पर गैलन तो ये तो बहुत
0: बिल्कुल
2: बड़ा
0: ऑल राइट
2: वो है।
0: थैंक यू सर,
2: तो बहरहाल
0: बहुत
2: अल्लाह
0: शुक्रिया।
2: ताला जो है
0: ठीक, थैंक यू। 7997 सर आप ऑन एयर हैं। 7997
3: कैसे हैं आप? ठीक
0: जी, शुक्रिया सर, थैंक यू।
3: मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा आज। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिसी का सालिस जो होता है, जो मेडिएटर होता
0: जी
3: है,
0: जी।
3: वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी दोनों तरफ बड़ी ग्रिप होती है, वो दोनों को समझाती है कि भाई ये नहीं ऐसे करना है, और किसी डिसीशन पे लाती है।
0: जी।
3: तो एक तो सालिसी होता है और एक होता है वो मैसेंजर होता है, कि इधर का मैसेज पकड़ा उसको पहुंचा दिया, उसका मैसेज पकड़ा इधर पहुंचा दिया। मेरा सवाल ये है कि हमने काफी हम बहुत दफा पाकिस्तान में लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट की غلط پالیسی کی وجہ سے. اب یہ 10-15 دن یا 20 دن جتنے دن اسلام آباد بند رہا ہے یہ تو وہ کنٹری والے ہی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. باقی جو یہ گیس ویس کا جو معاملہ ہے, ابھی جو بتا رہے ہیں کہ 15 یا 13 ڈالر کا روپے کا لیتے ہیں اور 40 روپے کا دیتے ہیں, تو کیا یہ اسٹیٹ پبلک کے لیے, کیونکہ ابھی یہ مزدوروں کا دن منانے لگے ہیں, تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں انصاف اور اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے ایماندار ان کے ساتھ نہیں ہیں, تو آپ باہر جا کے لوگوں کی نیگوسیشنیں کراتے پھر رہے ہو. پہلے اپنے ملک کو تو ٹھیک کر لو, ایک تو بات یہ تھی. دوسری آخری بات میں جو کہنا چاہوں گا کہ جو بھی لوگ ہیں اس میں, یہ جو ابھی جو بھی کنٹری میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پولیٹیکل گورنمنٹ ہے یا فوج ہے, اگر کچھ نہیں ہوتا پرابلم صحیح ٹھیک نہیں ہوتا.
0: یہ میں نے
3: کسی
0: کو, منیر نیازی کا شعر ہے, کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے, سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے. 5794 سر آپ آن ایئر ہیں. 5794
4: السلام علیکم جناب. بٹی صاحب یہ دیکھیں, جب تک یہ جنگ لگی ہے نا اس میں مسائل تو ہوں گے, اور ان مسائل میں الٹیمیٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بھائی ان کو ریلیف دینا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کی بھی کچھ مجبوریاں ہیں, آئی ایم ایف بھی ہے, اور اس سے سب سے بڑی بات جو ہے دیکھیں پاکستان کے کم از کم کہنے پہ چلے سیز فائر تو ہوا ہے نا بٹی صاحب, یہ تو دنیا تسلیم کر دی ہے نا کہ چلے سالسی, اب یہ سالسی دیکھیں, شاید ایران کو تو ہم منا لیں, اب امریکہ کو منانا تو بڑی مشکل بات ہے. تو بات وہی ہوگی جو آپس میں بیٹھ کے ان لوگوں نے اپنی شرائط طے کرنی ہے, اور پاکستان کا مسئلہ ہے کہ وہ ہمیشہ انشاءاللہ پاکستان کی بہتری اور حمایت ہی کرے گا ایران کی. تو باقی رہ گئی بات بٹی صاحب, اس میں ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ جناب پاکستانی گورنمنٹ لوگوں کے ساتھ, لیکن اب یہاں دیکھ لیں, اب یہاں نہیں, کل بھی آپ نے بتایا تقریباً 400 روپے کے مترادف ہمارا بھی پٹرول ہو گیا, اب ہمارا کروڈ آئل بھی ہے, ہمیں کیا گورنمنٹ کہنے لگا دی ہے, کچھ نہیں. یہ دیکھیں یہ سرمایہ دار جگیردار, ان کا نقطہ نظر اور ان کا لوٹنے کا واردات طریقہ ایک ہی ہوتا ہے. باقی رہ گئی بٹی صاحب, ہاں صاحب نے تمام پتے اپنے جو ہے نا وہ استعمال کر لیے ہوئے ہیں, اب ایک ہی بات ہے, اب وہ بھیک مانگ رہے ہیں عدالت سے, یار کبھی مجھے ضمانت دے دے, میں تھوڑی دیر کے لیے باہر آ جاؤں. بٹی صاحب کب سے میں کہہ رہا ہوں پالیٹیشن وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے, اپنی پارٹی کو بچاتا ہے. نواز شریف آپ کے سامنے مثال ہے, 3 دفعہ کیا اس کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں زیادتی کی گئی. یار جس وقت 2 روپے کی روٹی اور 5 روپے کا جناب آپ کو مختلف چیزیں مل رہی تھی, 30 روپے 40 روپے 50 روپے آپ کو چینی مل رہی تھی, اس کے ساتھ ملک کے ساتھ بگاڑ کیا گیا نا, اور جن لوگوں نے کیا آج وہ اسی پہ پریشان ہے اور پشیمان ہے. تو اس لیے سیاست کرنی چاہیے ملک کے خلاف, جو لوگوں کا انڈیا ہو جائے, اسرائیل ہو جائے یا افغانستان, جو ان کا نقطہ نظر ہے اس سے ہٹ کے سیاست کریں, سیاست میں واپس آئیں اور اپنے آپ کو بچائیں, اپنے فالوورز کو بچائیں, اس طرح نہ کریں.
0: وعلیکم السلام سر. جی وعلیکم السلام جناب, میں آپ ڈسکنیکٹ ہو گیا, چوئس صاحب آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے, دوبارہ کال کر لیں. اچھا ہمارے پاس 3-0010 آپ بات کرنا چاہیں گے, 0010 لاسٹ 4 ڈیجٹ 0010.
5: سر میرا آپ کے سامعین سے اور آپ سے یہ سوال ہے اور بلال صاحب سے کہ سب لوگ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, لیکن آئی پی پی کے مالک کون ہیں؟
0: بتایا تو وہ سارے وہی بڑے لوگ ہیں سر, آئی پی پی کے مالکان بھی,
5: ان کے بڑے کے نام تو پتہ لگنے چاہیے نا,
0: صاحب کے ذمہ لگاتے ہیں سر کہ ان کے نام بتائیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت شکریہ. 6141 سر آپ آنے رہے ہیں. 6141 اچھا 5415 واپس آ گئے سر, آپ بات کیجیے. 5415 آج ذرا جلدی کیجیے گا, ٹائم تھوڑا کم ہے میرے پاس. 5415
6: السلام علیکم, میں صرف دو باتیں کروں گا.
0: جی جی,
6: پہلی بات یہ ہے کہ ہماری طرح ان ملکوں میں گورنمنٹوں پر پریشر ہوتا ہے. بٹی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کینیڈا میں کتنے مہنگائی کے خلاف جلوس نکلے ہیں, کتنے مظاہرے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں امریکہ میں کتنے مظاہرے ہو رہے ہیں, لوگ کتنے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دن رات. اور ڈونلڈ ٹرمپ تو وہ بندہ ہے जिसकी उम्र 87 ईयर है और उसने अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता वो, उस पर क्या आवामी सोशल मीडिया का दबाव होगा भाई?
0: ठीक
6: यार, ये बातें मैं कहता हूँ ना, जब मैं भट्टी साहब कहता हूँ कि नियत का फतूर है, तो फिर ये नियत का फतूर इन चीजों से नजर आता है कि बंदे का हर वक्त अपने आप को अपने सर में जो मट्टी डालने वाले हालत है ना, इन लोगों को इस चीज से निकलना चाहिए। और एक बात भट्टी साहब, एक बात मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूँ बात, भट्टी साहब देखें, या तो आप किया करें तबसरा, मतलब तबसरा रोज वही बात, आप एक पार्टी बन के जब बैठ जाते हैं ना तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है, हम मजबूर होते हैं, हमें और बात करनी पड़ती है। मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप तबसरा करें, हम आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
0: मुझे कह रहे हैं,
6: और आपका भी कद बड़ा होगा।
0: मुझे कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं
6: नहीं, आज जो तबसरा करते हैं भाई, आप सवाल करते हैं।
0: ठीक है, थैंक यू। 8156 आप ऑन ले रहे हैं, 8156।
7: हेलो
0: जी, जी आप बात जल्दी बात कीजिए।
7: देखिए आईपीपी का तो सबको पता है किसके हैं, 52% तो गवर्नमेंट के अपने, 28% तो नायदालों के पाकिस्तानी, बाकी 8% चाइना के, 7% को गल्फ के लोगों के, कुछ और तो वो तो है, नाम भी सबको पता है, मिया मंशा के चार हैं,
0: अच्छा
7: शहबाज शरीफ के लड़के सलमान, शहबाज का भी एक है।
0: चलिए अच्छा किया सर, आज आपने बता दिया, ठीक है सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।
7: जांगी
0: तरीन भी, अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक है सर जी, आज टाइम थोड़ा कम है, मैं इधर बाकी कॉल दी। 6141 सर आप ऑन ले रहे हैं, 6141।
8: अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
0: जी वाले सलाम सर।
8: भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े जब हुकूमत में आए थे ना, ऊपर से फ्लड आ गया, फिर जंगे आ गई, फिर एक बाजू में जंग, फिर दूसरे बाजू में जंग। देखे, दुनिया भी जानती है कि ये पाकिस्तान अगर आज बांध के कुटाई करता है ना, तो अगर इसे एनर्जी सस्ती मिल गई तो इसे संभालेगा कौन? तो अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: थैंक यू। 9558 आप बात करना चाहेंगे? 9558। अच्छा चले, आप सुन रहे हैं बिलास साहब। मैंने बरसबीले तस्करा जो है वो उनका मुनीर नियाजी का शेर कह दिया था, तो भाई के सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप?
1: नहीं, वो तो जो है ना, क्या कहते हैं, अपना सवालों के जवाब अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत सारे मामलों के अंदर जो तजिया होता है, देखें जब आप ग्राउंड रियलिटीज को जो है ना वो देखते हैं ना, अभी भाई ने बात की महंगाई की और एहतजाज करने की, लेकिन एक जो है ना वो लेवल होता है, उसको आप क्या कह लें कि जब पानी जो है ना वो सर से जो है ना वो गुजर जाता है,
0: ठीक,
1: तो अभी जो है ना वो देखेंगे वो स्टेज जो है ना वो ठीक है कि हम हकूमत की भी जो है ना वो सपोर्ट अपनी जगह पे होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि हकूमत अपनी अयाशियां जो अपने मामलात हैं उनको जो है ना वो नहीं कवर करती और सारा का सारा बोझ जो है सिर्फ आवाम के ऊपर ही डाल देती है, तो फिर जो है ना वो बहरहाल एक जो है ना सवाल जो है ना वो
0: जरूर। और सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, वीकेंड है, आप भी 2 दिन रेस्ट कीजिए, मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
1: जरूर, थैंक यू।
0: एंड लिसनर्स, आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी खोने की चीज़, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्त जिंदगी। इंशाल्लाह मंडे शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी, वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम, पर मेज़बान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दिमाग।

0: मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत की दौलत से माला माल रखे, आमीन। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने सिलसिलेवार सेगमेंट अल्लाह ताला के 99 नामों से।
1: ये कादिर
2: ऐ कुदरत वाले, जो शख्स दो रकात नमाज पढ़कर 100 मर्तबा अल-कादिरो पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके दुश्मनों को जलील और रुस्वा फरमा देंगे अगर वो हक पर होगा। अगर किसी शख्स को कोई दुश्वार काम या किसी काम में दुश्वारी पेश आ जाए तो 41 बार या कादिरो पढ़े, इंशाल्लाह वो दुश्वारी दूर हो जाएगी।
3: World Islamic Mission Canada is making history in the town of Oakville with the forthcoming construction of Masjid Nurul Haram, an architectural landmark. Come and help us build this mosque together that will benefit this generation and future ones as well. Please donate generously to this project by calling 905-257-1342 or online at wincanada.com.
0: अदाकारा संगीता 14 जून 1957 में कराची के इलाके नाजमाबाद में पैदा हुईं। इनका असल नाम परवीन रिजवी है। इनकी 3 बहनें और 1 भाई है। इनके वालिद का नाम सैयद तबीब रिजवी और वालदा का नाम महताब बानो है। इनकी वालदा भी एक अदाकारा थी। इनको फिल्मों में इनकी वालदा ने ही मुतारिफ करवाया। इनकी बहन कविता इन्हीं की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हुई, जबकि इनकी छोटी बहन हिना रिजवी भी अदाकारी के शोबे से मुंसलिक हैं और टीवी के कई ड्रामों में काम कर रही हैं। अदाकार रहमान फिल्म कंगन बना रहे थे जब उन्होंने संगीता को देखा, जो इस वक्त 8वीं क्लास की तालिबिल्म थी और उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। रहमान ने इन्हें अपनी फिल्म कंगन में हीरोइन सेलेक्ट कर लिया। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई और नाकाम रही, लेकिन संगीता अपनी फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राइवेट तौर पर मुकम्मल की। तो अब हम आपको जो गाना दिखाने जा रहे हैं, मशहूर ज़माना गीत उमरिया बीती जाए कोई रिश्ता ना आए, इंजॉय कीजिए।

0: मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदकात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फोन करें 1-866-754-3111।
1: लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोवेस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी, वीडियो एंड अप्लायंसेस, मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोविड ड्राइव, वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828।
2: At Clinicare Discount Pharmacy, we accept all drug plans with easy prescription transfers and free medication management services. Located at 2250 Markham Road, Unit 3, Scarborough, Ontario, with free delivery in the GTA and halal vitamins available. For more info, visit www.clinicarediscountpharmacy.com.

0: 3 0 2 1 0 6।
1: लाहौर आने के बाद संगीता ने बहुत सी फिल्मों में काम किया जिसमें सलाम मोहब्बत, गृहस्थी, अफशा, इंसाफ और कानून, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ और खलश जैसी फिल्में शामिल हैं। उर्दू फिल्मों के साथ साथ उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम शुरू कर दिया जिसमें वारिस, राजू, पन्नू और खुदा ते मां शामिल हैं। अदाकार संगीता ने अपनी फिल्मी कैरियर में एक कामयाब हीरोइन बनने के लिए बहुत मेहनत की। यह मैं इनकी कुछ फिल्मों का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। 1972 में फिल्म बाजार, 1972 में ही दूसरी फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा, 1973 में फिल्म खुशिया, 1974 बात पहुंची तेरी जवानी तक, 1974 मंजी किथे डावा और 1984 नाम मेरा बदनाम शामिल हैं। इनके सुपरहिट गानों में जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, कोई करके बहाना सानू मिल माइया और राता आ गई चाननिया शामिल हैं। मेरा एक काम कर दो ना, ये दिल मेरे नाम कर दो ना।

सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू अल्लाह। टोरंटो में रहते हुए अगर आपके पास मेडिकल कवरेज नहीं है तो आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर की फ्री क्लिनिक में कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। इनके डॉक्टर आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल के फासले पर हैं। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर क्लिनिक की दो लोकेशन है, स्कार्बरो और मिसिसागा। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप सबसे ये दिली दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप दिल खोलकर मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को डोनेट करें। जज़ाकअल्लाह खैर।

0: लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी वीडियो एंड अप्लायंसेस मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828।
1: At ClinicCare Discount Pharmacy, we accept all drug plans with easy prescription transfers and free medication management services. Located at 2250 Markham Road, Unit 3, Scarborough, Ontario, with free delivery in the GTA and halal vitamins available. For more info, visit www.clinicareddiscountpharmacy.com.
2: घर खरीदना है या बेचना, या आप हैं first time home buyer, honest advice के लिए मुझसे राब्ता कायम कीजिए। मेरा नंबर है 416-835-1997, या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.badr.ca.
3: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

हिदायतकार एस सुलेमान की फिल्म अन्नाड़ी में उन्होंने साइड हीरन का रोल किया और ये फिल्म कामयाब रही। 1972 में हिदायतकार सेवन रिजवी की फिल्म मेरी जिंदगी है नकमा में इन्हें अदाकार रंगीला के मुकाबले हीरन का रोल दिया गया। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली बनाई। ये इनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी जिसमें वो मरकजी किरदार में आई थी। 1975 में फिल्म तेरे मेरे सपने में मोहम्मद अली के साथ बतौर हीरोइन काम किया। ये फिल्म भी सुपरहिट फिल्म रही। संगीता ने पाकिस्तान के तमाम नामवर हीरोज के साथ काम किया जिनमें वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम और शाहिद के नाम काबिले जिक्र हैं। इसके अलावा मुनव्वर जरीफ और रंगीला के साथ भी हीरोइन के रूप में काम किया। चन सजना वे नेड़े नेड़े हो, आइए देखते हैं ये गीत।

अदाकार संगीता ने अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। उन्होंने PNR प्रोडक्शन के नाम से एक इदारा कायम किया और PNR के बैनर तले मुसन्निफ और हिदायतकार इकबाल रिज़वी के साथ फिल्म तेरे मेरे सपने बनाई, जिसमें इनकी छोटी बहन कविता ने भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। इस फिल्म के सुपरहिट होने के साथ साथ बहुत अच्छा बिजनेस भी किया। इस फिल्म में मोहम्मद अली और शाहिद ने हीरो के रोल अदा किए। बतौर हिदायतकार इनकी फिल्म सोसाइटी गर्ल एक कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में आज के मशहूर डायरेक्टर सैयद नूर बतौर राइटर मुतारिफ हुए थे। इनकी ये पहली फिल्म थी जो कि 1976 में रिलीज हुई। इसी साल यानी 1976 में इनकी दूसरी फिल्म मुझे गले लगा लो रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने खुद भी अदाकारी की। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। संगीता की वालदा मेहताब बानो ने PNR के बैनर तले फिल्म मोहब्बत और महंगाई बनाई। ये फिल्म भी हिदायतकार इकबाल के साथ मिलकर बनाई गई। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction? Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
1: लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी वीडियो एंड अप्लायंसेस मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन और कॉल 905-450-2828
2: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

1978 में उन्होंने फिल्म मुट्ठी भर चावल बनाई, जो फिल्म सिख कल्चर और मजहब पर मबनी नावल एक चादर मैली से लिया गया था, जिसकी फिल्मी तश्कील में उन्होंने कमाल कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने जबरदस्त अदाकारी और हदायतकारी की। फिल्म मुट्ठी भर चावल पाकिस्तान में इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकी, मगर इस फिल्म को बैनुल अक्वामी सतह पर काफी सराहा गया। इस फिल्म में इनकी अदाकारी को भी बेहद पसंद किया गया। इस फिल्म में इन्हें दो निगार अवार्ड मिले, जिसमें एक बेस्ट एक्ट्रेस और दूसरा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड था। उन्होंने 4 निगार अवार्ड और 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किया। अपने 50 साल फिल्मी कैरियर में तकरीबन 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्में शामिल हैं। इनकी डायरेक्शन में रिलीज होने वाली फिल्में 1976 में फिल्म सोसाइटी गर्ल और मुझे गले लगा लो, 1977 इश्क इश्क, 1978 मुट्ठी भर चावल, 1982 मियां बीवी राजी, 1996 खिलौना, 1998 निकाह और 2019 में फिल्म सिर्फ तुम ही हो रिलीज हुई। कुछ बोलिए हुजूर, ये लब खोलिए हुजूर।

संगीता ने हुमायूं कुरैशी से शादी की। इनकी इस शादी से इनके घर वाले खुश नहीं थे, लेकिन तमाम घर वालों की मुखालफत के बावजूद संगीता ने हुमायूं कुरैशी से शादी की, जो ज़्यादा देर तक ना चल सकी। इनकी दूसरी शादी नवीद भट्ट से हुई। इनकी तीन बेटियां थीं, तीनों की शादी हो चुकी है और वो नानी भी बन चुकी हैं। इनकी कोई भी बेटी शोबिज से वाबस्ता नहीं। संगीता ने इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार थी और बहुत से फिल्म मेकर सरमाया डूब जाने के डर से फिल्में बनाने से डरते थे। वो संगीता ही थी जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने बहुत से टीवी ड्रामों में भी अपने फन के जोहर दिखाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला संगीता जी को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप इंजॉय कीजिए शाहिद और संगीता पर फिल्माया ये खूबसूरत सा गीत और मुझे दीजिए इजाज़त इस याद दहाने के साथ कि मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। जेमी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।

0: जब से हमने इनाम घर शुरू किया है, एक दोस्त हमारा ऐसा है कि उन्होंने, मेरा ख्याल है जितनी दफा वो इनाम घर में आए हैं और जितने टिकट इनाम घर के उन्होंने खरीदे हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि उन जितने इनाम घर के टिकट किसी ने नहीं खरीदे, और शायद इतने ज्यादा शोज में राबी भी ना आई हो जितने ज्यादा शोज में हमारे ये दोस्त आए हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है इनाम घर के लिए, मेरे लिए, कि इनको खड़े होकर इनके लिए क्लैप करें, असद अहमद के लिए। असद अहमद,
1: जी असद, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। इनाम घर जो है हमारा, एक जब शुरू किया था तो एक पौधा था, छोटा सा बीज लगाया। तो जब इन्होंने स्टार्ट किया तो 10-15-20-50 लोग थे, करते करते मेहनत की इन्होंने। और अच्छी बात ये है कि रेगुलर और परसिस्टेंस जो होती है किसी भी चीज एफर्ट्स के लिए, किसी भी इवेंट के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो बहुत जरूरी है। और हर कंपटीशन को इन्होंने फेस किया, मार्केट के कंपटीशन को फेस किया, हर डोमेन को फेस किया, स्पॉन्सर्स मिले इनको। और सबसे अच्छी जो बात इस प्रोग्राम की शुरू से रही है कि ये प्योर फैमिली प्रोग्राम है, हमेशा फैमिली एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, प्योर फैमिली इवेंट रहा है। इसमें आप देखें कि आप बड़े बिछड़े हुए लोग भी मिल जाते हैं, वो तो कहते हैं जी हमने तो 3 साल पहले चमचे मुलाकात हुई थी, इनाम घर में दोबारा से मिला दिया।
2: एग्जैक्टली,
1: और वो प्रोग्राम मुझे अभी भी याद है कि जब टोरंटो हमारे 360 में और इन स्टूडियो में था, वो प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम, अर्शद भट्टी साहब आपको याद होगा, साबिर भाई भी उधर ही थे, और फर्स्ट इवेंट था, उसमें 30-35-40 लोग थे, उस वक्त 40-50 लोग थे। और लेकिन स्टार्ट जब हुआ था और बड़ा उसका एक करिश्मा क्रिएट हो गया, वो उन्होंने $1500 का बम्पर प्राइज रखा, और उसमें जब पर्चियां डली तो मेरे 40-50 पर्चियां डली, और इनका जो स्टाइल होता है तो बड़ा अच्छा होता है कि जो पर्ची निकलेगी वो गेम से बाहर है, जो पर्ची निकलेगी वो गेम से, ऐसे ही
3: एलिमिनेट
1: हो जाता है। करते करते 10 पर्चियां लगी तो हम सबकी दिल की धड़कने तेज हो गई, मेरी पर्ची भी उसके अंदर ही थी, $1500 नजर आ रहे थे, बच्चे भी पीछे थे, बच्चे कह रहे थे ये क्या होने वाला, मैंने कहा ये सब कुछ देखते जाओ क्या होता है। करते करते 5 पर्चियां पीछे रह गई, मैंने शम्स भाई को देखा, शम्स भाई मुझे देखा, कहते हौसला करो कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिक्र ना करो बन जाएगी बात, है तेरा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। सबकी दिल धड़कने तेज हो गई, कुछ लोग सीट पे, एक पर्ची निकलती तो सीट से लोग यूं पड़े हुए ऐसे हो गए। 3 पर्चियां रह गई, मुझे याद है अभी भी, उस वक्त तो टोरंटो 360 के कैमरे यूं चेहरों पे जा रहे थे, कभी उसके चेहरे पे, कभी उसके चेहरे पे, कभी उसपे, वो ऐसे ऐसे तो निकल रहे थे लोग कि 3 बंदे रह गए और $1500 सामने, एक पर्ची निकली तो मैं तो बिल्कुल साइलेंट हो गया था। तो मुझे भी याद है, खामोश हो गया था कि $1500 के पीछे सिर्फ 2 पर्चियां
3: निकल गए।
1: हाँ, तो बस सांस रुक गए सारों के, उधर से साबर भाई ने कैमरा ऐसे लगाया, सारों की दिल की धड़कने तेज हो गई, तो सब देखते रहे। अब जो आखिरी पर्ची वो निकली ना किसी की, जब एलिमिनेट हुआ तो हम लोग सब खड़े होकर जंप हो गए, उसमें आखिरी में मेरा नाम था और $1500 जीते। और वो आज तक मुझे याद है कि वो जब सेलिब्रेशन थी वो इतनी, वो मतलब ऐसी थी, क्रिसमस सेलिब्रेशन थी, उसको लोगों ने हाँ देख के बड़ा एंजॉय किया।
0: एक जब इनका निकल आया ना 1500, इत्तेफाक से जो अगला शो था वो भी हमारे फ्रेंड ग्रुप में किसी का निकल आया, अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई अंदर से मिले हुए हैं। एक खातून GTA में जो हर पार्टी में जाती थी, हर पार्टी में होती थी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो मिले हुए हैं आपस में। अल्लाह का करना ऐसा देखें कि अगला इनाम उसका निकल आया, उस खातून का,
1: हम नाम नहीं बताएंगे,
0: तीसरा हम नाम नहीं लेंगे, तीसरा इनाम उस खातून का निकल आया।
1: फिर वो क्या कहने लगी थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो बहुत ही आला प्रोग्राम है। और इसके साथ मैं उनके लिए भी कहूंगा कि एक तरह जोरदार तालियां बजाएं, जो मेरी लाइफ पार्टनर है, हमारे साथ रही, शगुफ्ता असद, इधर आइए शगुफ्ता, इधर आना,
3: आ जाए आ जाए,
1: इधर बैठो। ये पॉजिटिव पर्सनैलिटी, हमेशा लोगों को जोड़ के रखना, कम्युनिकेशन कम्युनिटी के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव रोल रहा है, और हम सबको कम्युनिटी के अंदर जोड़ के रखते रहे। और इस प्रोग्राम में और इनाम घर में भी इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, शम्स भाई के साथ हमेशा खड़ी रही, हम सपोर्ट करते रहे एनी प्रोग्राम, और आगे भी हम खड़े।
0: जो लोग राबी भी ना आई हो, जितने ज्यादा सोच में हमारे ये दोस्त आए हैं, तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शहर से इस वक्त निकाल देना है कि आप माशाल्लाह सर्जन है टोरंटो हॉस्पिटल में, हम ये समझेंगे कि आप, हम आपके साथ यूनिवर्सिटी में मिले हैं और ये आपका आखिरी साल है।
1: ठीक है,
2: ठीक है। तो मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर नासिर साहब, नासिर चौधरी साहब। रिसेंटली इन्होंने इनाम घर में आए थे और हमें बड़ी खुशी मिली, क्योंकि वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, वेरी डाउन टू अर्थ, और माशाल्लाह टोरंटो हॉस्पिटल में सर्जन है। तो इनसे थोड़ी दो चार बातें करते हैं। सर ये बताइए कि पहली दफा किसी खातून को देख के दिल कब धड़का था और वो कौन सा ईयर था?
1: धड़का ही नहीं किसी और को देख के।
2: स्टेथोस्कोप लाओ, चेक करो ये सिंदर है कि नहीं।
1: रियली नहीं धड़का।
2: अच्छा
1: क्योंकि क्योंकि क्योंकि मैं किसी औरत को औरत नहीं, उसको पेशेंट समझ के मतलब उसको ट्रीट करता हूँ।
2: अरे डॉक्टर साहब, ये तो यूनिवर्सिटी का जमाना है।
1: अच्छा अच्छा,
2: ये यूनिवर्सिटी का जमाना है।
1: वो तो बहुत,
2: आप डॉक्टर नहीं बने अभी।
1: बहुत दफा धड़का।
2: अच्छा बहुत दफा धड़का। पहली दफा कब धड़का था वो बताइए।
1: पहली दफा धड़का था, मैं एफसी कॉलेज में पढ़ता था लाहौर में।
2: अच्छा,
1: तो वहाँ पे मेरे साथ एक
2: क्लास फेलो थी।
1: क्लास फेलो थी।
2: अच्छा वेरी गुड।
1: उसको देख के धड़का था वो।
2: चले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप इनाम घर में आए, और बस इनको आपसे मुतारफ कराना था, आज इनको बुलाने का मकसद यही था, और आते रहिए इनाम घर में
1: इंशाल्लाह,
2: एंड कीप इन टच। और क्या कहेंगे आप इनाम घर के लिए?
1: इनाम घर एक भाई जबरदस्त, बड़ा अच्छा प्रोग्राम, मुझे तारिक अजीज की याद जो है वो दोबारा से ताजा हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं हैं कि ये बिल्कुल उसी लेवल पे चला जाए जो तारिक अजीज साहब का प्रोग्राम था, और बिल्कुल उससे मिलता जुलता। मुझे तो सिर्फ एक चीज थी कि वहां पे तारिक अजीज की जगह पे शमस खड़े हुए नजर आए हैं, और कोई फर्क नहीं नजर आया, और अल्लाह ताला इसको बहुत ज्यादा कामयाबियां दे। और
2: घर में हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं क्योंकि हमारा बड़ा पैक्स कैजुअल होता है, और वन टू वन हम बैठ के किसी के साथ ना उनके दिल का हाल जान सकते हैं, ना उनको अपने दिल का हाल बता सकते हैं। तो आज की जो महफिल है ये दिल का हाल बताने के लिए, इसीलिए बिग बॉस भी आ गया, इसके भी देखेंगे दिल में क्या है। तो बहुत शुक्रिया अरशद भट्टी साहब आपका, थैंक यू वेरी मच, जिस तरह से आप इनाम घर को प्रमोट कर रहे हैं, और साबिर गाया साहब हमारे साथ होते हैं, हमारा जो भी इवेंट होता है उसको कवरेज देते हैं, और रेडियो पे आप हमारी एड चला रहे हैं, टीवी पे आप चला रहे हैं, हम आपके बहुत ज्यादा मशहूर हैं, और थैंक यू वेरी मच। क्या कहेंगे आप?
4: नहीं शुक्रिया आपका भी, आप एंटरटेनमेंट जो है वो लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं माशाल्लाह फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम, अब तो काफी महीने हो गए बल्कि साल हो गए, और इनाम घर के बाद अब आपका ईद बाजार जो है,
2: जी
4: ईद बाजार का जो आपका माशाल्लाह एक नया वेंचर है, तो बहुत आप, हम आपके साथ हैं और पूरी उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कामयाब भी होगा, क्योंकि एक चीज आप मैंने देखी, आप मेहनत बहुत करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है।
2: थैंक यू।
4: और जहाँ पे जरूरत है मेहनत की वहाँ भी ज्यादा करते हैं। आजकल आपको पता है कि ईद बाजार तो बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे चीज हो रहे हैं
2: जी,
4: लेकिन कुछ आपने बहुत सी इनोवेटिव इनोवेशन लगता है कि मुझे बहुत सारी नई चीजें लेकर आ रहे हैं, तो
2: आज आपको सारी तफसील मिलेगी इंशाल्लाह।
4: वेरी गुड, हम उम्मीद है कि बहुत कामयाब रहेगा, और जो हम इसके लिए कर सकते हैं वो भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, जितना कर सकते हैं।
2: थैंक यू।
4: और कोशिश कर भी रहे हैं, होपफुली बी वेरी सक्सेसफुल इवेंट।
2: बहुत शुक्रिया। और टोरंटो 360 टीवी और रेडियो पाकिस्तान
4: जी,
2: इन दोनों में कितने साल का फर्क था जब रेडियो पाकिस्तान टोरंटो शुरू हुआ और फिर आपने टोरंटो 360 टीवी शुरू किया?
4: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो शुरू हुआ था 2002 में।
2: ओके।
4: और टोरंटो 360 टीवी को 7 साल, 2017 कह ले, मतलब 8 से 9 साल है, तो बहुत फर्क है।
2: ओके।
4: मतलब 10 से 15 साल का फर्क है दोनों।
2: ओके। तो आपके खैर से अब हम कह सकते हैं कि जी आपके दो बेबी हैं।
4: तीन हैं मेरे वैसे।
2: हाँ, तीसरा बेबी भी बता दें सर, वो क्यों छुपा के रखा?
4: वो जो असल बेबी है, वो दो बेटे और एक बेटी है, और ये जो है ये मेरे दूसरे हैं।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह।
4: ये जो है ये मेरा ब्रेड एंड बटर है।
2: अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोगों ने टीवी स्टेशन खोले
4: जी जी,
2: ठीक है, और चैनल्स भी खोले
4: जी जी,
2: और बहुत से आते जाते रहते हैं
4: जी जी,
2: आप सुनते हैं 2 साल बाद वो डिसअपीयर हो जाते हैं, टोरंटो 360 की क्या रीजन है माशाल्लाह कि अभी तक टिका हुआ है, आप ऐसा क्या करते हैं जो और लोगों को फॉलो करना चाहिए?
4: अच्छा, मेरे ख्याल है कि बेसिक आपके पास चीजें होनी बड़ी जरूरी है
2: जी।
4: एक तो आपको जर्नलिज्म का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बेसिक प्रोफेशन तो रेडियो था, टीवी तो मैंने यहाँ वहाँ की भी थोड़ा बहुत करते थे
2: जी।
4: टीवी तो यहाँ पे वक्त के साथ था, जो है इंसान जो है अपने आप को इन्वॉल्व करता है। तो मेरे ख्याल में इसमें भी मेहनत की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीजों को देखने की जरूरत है। स्टूडियो अच्छा होना चाहिए
2: जी,
4: आपके पास एडिटर अच्छा होना चाहिए। आउटडोर के लिए साबिर साहब हमारे साथ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, शुरू से ही जब से मैंने कही भी इम्पोर्टेंट अच्छा होना चाहिए
2: जी।
4: बाकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो नीयत अच्छी होनी चाहिए
2: ठीक।
4: अगर आप बस चुप करके काम करते रहे, सभी लोग करते, चाहे मेहनत तो सारे कर रहे हैं ना, हर बंदा मेहनत करता है तो किसी का खुदा हाथ पकड़ लेता है, अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ तो काम चल रहा है इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है। लेकिन सारे लोग अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल थोड़ा सा प्रोफेशनली अगर करेंगे तो ठीक रहेंगे। मेरे ख्याल वो है कि शॉर्ट टर्म नहीं है ये, लॉन्ग टर्म है काम।
2: एक आखिरी सवाल ऑन द लाइटर मोड, साबिर गाया को कैसे काबू किया हुआ आपने इतने अच्छे से माशाल्लाह?
4: साबिर गाया जैसा वीनती शख्स कोई भी नहीं, बस वो क्योंकि ये भी यहाँ पे जो मैंने पहली बात की ना प्रोफेशनलिज्म, ये इतने अरसे से 30-35 साल से, तो इनको बड़ा अजीब लगता है कोई जब इनके आगे को हर्डल आ जाए तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम। मेरी कोशिश तो बड़ी ही है, इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो जितनी कोशिश करते हैं कैमरे के आगे कोई ना आए, तो मेरे ख्याल ये लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। एक बंदा इसकी मेहनत से जो काम कर रहा है तो उसकी मेहनत का कम से कम ये ख्याल जरूर रखें कि इस, वरना माशाल्लाह जितने मेहनती ही हैं, मतलब रात को आप 1-2 बजे भी बात मैं कॉल करता हूँ कोई काम होता है तो माशाल्लाह ये करते हैं। तो हमारी मेरे ख्याल एक और बात जैसे शादी की टीम वर्क हमारा जो है ना वो बहुत जबरदस्त है,
2: जबरदस्त।
4: हम लोग सारे जो है एक टीम की तरह फैमिली की तरह काम करते हैं, शादी यही काम होती है।
2: आपका बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको और तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच। इमराना चौधरी से रिक्वेस्ट है कि आ जाए, आपके साथ भी दो दो हाथ हो जाए, आ जाइए। इमराना चौधरी आइए, मैं फिजियो क्लिनिक को ऑन करती हूँ और माशाल्लाह इनके 3 क्लिनिक है। अगर आप लोगों को कनाडा में तो जरूरत पड़ती रहती है, स्लिप एंड फॉल होता है, बड़ी चीजें होती है, तो इनसे जरूर रब्ता करें, ये पूरी आपकी हेल्प करेंगी और इनाम घर का डिस्काउंट इनसे जरूर लिया करें। और हमारा आपको पता है ईद शॉपिंग फेस्टिवल भी आ रहा है, उसके लिए भी कुछ बोल दे हमें, कुछ बेस्ट विशेस दे दे।
5: इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो तो जरूर ही विन होएगा और टॉप ऑफ द लिस्ट होएगा, क्योंकि जहाँ पे आप हैं वहाँ पे सारे अवाम ही आपके साथ है और खासकर मैं तो हूँ इंशाल्लाह।
2: थैंक यू वेरी मच। साथ एक हमारी बहन बैठी हुई है, काफी माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल है, नॉलेजेबल है, उनसे बात करते हैं, रुबाब सैयदा से। और हमारा जो ईद फेस्टिवल होने जा रहा है, हमें उसमें इनकी हेल्प चाहिए, तो आके बताएंगे कि हमारी ईद फेस्टिवल में रुबाब सैयदा क्या हेल्प करेंगी। ईद फेस्टिवल हमारा मई को 23, 24, 25, 26 को होने जा रहा है और हर दिन हमारी एक्टिविटीज प्लान है, हर दिन सोने का इनाम दिया जाएगा। और जो लोग सुन रहे हैं वो भी आए और जो वेंडर्स सुन रहे हैं वो भी आए, सो थैंक यू वेरी मच रुबाब सैयदा, आप इनाम घर में आती हैं और बहुत से लोगों को भी लेके आती हैं।
6: जी अस्सलाम वालेकुम। असल में काफी माशाल्लाह मेरी जो ग्रुप्स हैं उसमें 100-200 लेडीज हैं और उनको मैं लेकर आती हूँ और प्रेशर भी देती हूँ कि कोई बुक करा ले टेबल, तो काफी लेडीज बुक भी कराती, पूरी पूरी टेबल 20-22 औरतें। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ कि इनाम घर में मेरे अलावा भी जो ये फेस्टिवल हो रहा है उसमें मैं कुछ पंजाबी सॉन्ग्स तो मैं गाऊंगी, लेकिन एज ए वॉलंटियर मैं वहाँ पर डिसिप्लिन भी कर सकती हूँ। और कई जगह पर जैसे मैं जिम जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो जैसे मैं अपनी कंट्री में माशाल्लाह मैंने एज ए कैरोप्रैक्टर इंग्लैंड से मैंने कोर्सेज किए थे, तो इंशाल्लाह ताला अगर किसी को कमर में ऑल बॉडी में कहीं पेन है या कोई हड्डी में कोई एज ए कैरोप्रैक्टर, मैं कह रही हूँ आपको कि मैं एज ए वॉलंटियर आप लोगों का काम कर सकती हूँ जो इनाम घर में। उसके अलावा मैं किसी फिजियोथेरापी में, जैसे इमराना है, इन्होंने भी मुझे चांस दी है, तो अगर वहाँ कोई पेशेंट्स आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए बहुत रिजनेबल प्राइस करूंगी और यानी इंस्टेंट उसी वक्त आपको आराम आएगा, ये नहीं कि आपको 2-3 वीक्स लगेंगे और विद मेडिसिन विद आपको एक्सरसाइज के।
2: जी क्या होने जा रहा है पहले दिन पे?
7: अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबको मुइज भाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुइज भाई जो है वो ऑन एयर सबको लेके जाते हैं और पता लगता है कि कैमरे पे कौन कैसा लगता है। और शाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको मौका दिया कि इस बार हम लोग थोड़ा सा फैशन शो का ट्विस्ट जो है आपके मशहूर इनाम घर से रिलेटेड और जो आप इस बार आपने इनिशिएटिव लिया है ईद बाजार का उसमें लेके आए। ये कोई इतना बड़ा फुल फ्लेज्ड फैशन शो नहीं होगा लेकिन अच्छा सा हम कर रहे हैं और आप सबको पसंद आएगा। इसकी जो डिटेल है वो मैं अपनी बेटर हाफ को देता हूँ, वो बेटर बता सकेंगे।
8: वैसे तो मुझे माइक की जरूरत होती नहीं, मेरी आवाज ही इतनी है, शब्द हमारी सही है, यू नो हमारी आवाज ही बहुत है।
7: अच्छा हुआ इन्होंने बोल दिया।
8: So,
0: घर में इन पे हाथ वाला रखा।
8: ये सभी कहते हैं, पता नहीं मैंने कौन सा भारी हाथ रखा हुआ इनके ऊपर। हाँ ना, इन्होंने किया है। सो यस, थ्रेड्स ऑफ द वर्ल्ड इज माय फैशन कंपनी जो कोलैबोरेशन विद इनाम घर। सो इनाम घर में थ्रेड्स ऑफ द वर्ल्ड फैशन शो कर जो रहे हैं, इट्स आवर एक्चुअली प्रिविलेज कि हम इतने बड़े इनाम घर के शो में वी आर डूइंग अ फैशन शो।
0: सलमा एंड काशिफ, ये माशाल्लाह दोनों सिद्दीकी हैं। इन्होंने भी आई थिंक चार माह पहले इनाम घर को ज्वाइन किया था और काफी दफा ये इनाम ले चुकी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनको इनाम घर कैसे लगा।
9: तो इनाम घर मुझे लगा कि वो पहला प्रोग्राम है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इंजॉय करते हैं एंड प्लस इट्स अ फैमिली ओरिएंटेड काइंड ऑफ प्रोग्राम। So, जब हमने पहला ज्वाइन किया उसके बाद तो हमें इतना मजा आया कि हमने सोचा कि नाउ वी विल बिकम इनाम घर फैमिली एज वेल, इनकी टीम का पार्ट होंगे और वी आर नॉट गोना मिस एनी ऑफ इट्स एपिसोड्स। सो वी लव इनाम घर और जहां इनाम घर होता है वी आर ऑलवेज देयर। शम्स भाई, रवि जहां पे भी होते हैं वी आर देयर टू सपोर्ट देम and congratulations to them for their festival that they are doing,
0: Eid festival.
9: Kashif Siddiqui,
10: bas ye hai Eid festival ke liye we can't wait and I think it's going to be amazing aur jaise aap log uske liye events wagera announce kar rahe hain it seems very interesting and we will definitely like to be a part of it and participate inshallah.
0: Thank you very much. अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ईद का पहला दिन तो नहीं, ईद का कह रहा हूँ, ईद फेस्टिवल जो होने जा रहा है 23, 24, 25, 26 उसकी डिटेल्स हम दे रहे हैं। 23 को आपने देख लिया कि थ्रेड्स ऑफ द वर्ल्ड बीना ब्यूटी ये फैशन शो आपके लिए लेके आ रही है। अब हम दूसरे दिन के लिए जो हमारी प्लानिंग है उसके बारे में बताते हैं और उसके लिए जो इसको कंडक्ट करेंगी दो खवातीन मैं उनको बुलाता हूँ, माशाल्लाह इनाम घर पे जुड़ी हुई है और उनमें से एक ने बम्पर प्राइज भी जीता हुआ है। तो रुखसाना को और रास्ता को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे आ जाएं और इस कंपटीशन के बारे में
11: आ रहा है। और मैं रास्ता एहसन हूँ और शम्स भाई का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें सिलेक्ट किया कि हम इसको करें। और मेरे साथ रुखसाना है तो 30 लोग जो है वो इस सिंगिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और जो जीतेगा उसको गोल्ड का प्राइज मिलेगा।
8: तो सही कह रही हूँ,
11: मैं भी गाना चाहूंगी क्योंकि शौक तो मुझे भी है थोड़ा थोड़ा, मैं सिंगर नहीं हूँ लेकिन जब हम लोग घर में गाते हैं तो दिल चाहता है कि थोड़ा सा गाएं।
0: हाँ, लेकिन टीम के लोग जो है वो इनाम नहीं हासिल कर
11: तो हमने कब कहा कि हम इनाम दें।
12: फैमिली एवरीबॉडी, मेरा नाम रुखसाना रिजवी है और जैसा कि शम्स भाई ने कहा कि वो रिंग देते हैं, ये देखो मैंने पहनी हुई है, प्रूफ है कि गोल्ड रिंग, डायमंड रिंग, डायमंड रेयर हाँ मेरे पास है। तो इस दफा जो है वो एक बड़ा अच्छा इन्होंने एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ईद फेस्टिवल के नाम से। आई थिंक इज अ प्लेटफॉर्म जो कि क्रेडिट गोज टू शम्स भाई एंड रावी कि ये नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं स्टेज के ऊपर। और मैं भी काफी अरसे से इनके साथ मंसलिक हूँ, इनके स्टेज पे भी मैं भी गाती हूँ और मैं भी गाऊंगी लेकिन इनाम की हकदार नहीं होगी। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे आप तमाम लोगों से, अगर आप किसी को जानते हैं या आप खुद गाते हैं प्लीज कम टू द 24 और हमें अपना नाम और नंबर लिखवा दीजिए। हम डिटेल्स जो है फर्दर शम्स भाई से जो है वो लेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे. इट्स वेरी एक्साइटिंग, मुझे पता है ये बहुत मजा आएगा आप लोग का. रियली यू गाइस एंजॉय. आप जरूर आइए, अपने फ्रेंड्स को, अपने बच्चों को, अपने मोहल्ले वालों को, इंटरनेट पे जहां जहां कॉन्टेक्ट है, जैसे ही फ्लायर शॉप्स भाई हमें भेजते हैं आप उनके साथ शेयर कीजिए. कोई भी सवाल हो आप लोग कर सकते हैं.
11: दूसरी बात ये है कि हम लोग सोशल मीडिया पे अपने फ्लायर्स भी लगा रहे हैं. जिस जिस को भी जो सिंगिंग करनी है और जो समझते हैं कि हम सिंगिंग कर सकते हैं, वो मुझसे और रुखसाना से रابطہ करके रजिस्टर करवा सकते हैं.
2: वालेकुम अस्सलाम. ये बताएं कि आपको इनाम घर का कहां से पता चला और फिर आप इनाम घर में कैसे शामिल हुई?
13: जी, इनाम घर के बारे में सुना तो था जब हम कनाडा आए, और फिर एक होटल में हमारी मुलाकात हुई राबी से, शम्स भाई से. वहां से हमारे ताल्लुकात जो पिशावर के थे वहां से हम कनेक्ट हुए, फिर आना जाना, और फिर इन्होंने ये एजाज मुझे दिया कि अपने नाम घर की टीम में शामिल कर लिया. और मुझे बहुत अच्छा लगा, एक घर की तरह, एक फैमिली की तरह हम यहाँ पे हैं. और बिल्कुल भी हमें अपने पिशावर की और अपने लोगों की उस तरह याद नहीं आती जैसे बंदा इतने टाइम से आप मिस करते हो. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. और इन दोनों की वजह से आप सब से मिले, आप सब एक फैमिली की तरह हम बन गए हैं. और राबी का, शम्स भाई का बहुत बहुत शुक्रिया.
2: थैंक यू वेरी मच. और ईद फेस्टिवल को भी आपने अटेंड करना है, उसमें क्या करेंगे आप? ईद फेस्टिवल, आपको पता है आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपको छुट्टी लेनी है, आपको चार दिन मई 23 24 25 26 को आना है उसमें.
13: तो इसकी टाइमिंग क्या होगी? 4 बजे से
2: शो तो 12 to 12 है. शॉपिंग जो है वो 12 से 12 बजे तक हो सकेगी, लेकिन हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो शाम में शुरू होंगे. स्टेज
13: हम शाम को आपको अटेंड करें,
2: आप शाम को करें, लेकिन सुबह आके शॉपिंग भी करें ना, इतनी कंजूसी
13: मत. रोज तो शॉपिंग नहीं करेंगे, हम टीम का हिस्सा है, हम तो शॉपिंग नहीं करेंगे. हमें इनाम नहीं मिलेगा तो हमें शॉपिंग भी नहीं करनी.
2: अच्छा नहीं, मैं क्लियर करता जाऊं, टीम के लोग शॉपिंग कर सकते हैं. तालियां अपने पैसों पे. टीम के लोग शॉपिंग कर सकते हैं और गिफ्ट नहीं जीत सकते, फोटोग्राफी भी करते हैं. तो मेरे पास ये साबिर गया, स्टेज पे आ जाए साबिर गया. थैंक यू. देखिए सब आपके लिए खड़ा होना चाह रहे हैं, खड़े हो जाए. वैसे तो मैं शुरू से इनको देखता आ रहा हूँ, लेकिन जब ये जब हमारे शो में आए ना, तो मैंने इनकी डेडिकेशन देखी. तारीफें करना तो मेरा काम है, मैं प्रमोट करता हूँ सबको, लेकिन इस शख्स में जो मैंने चीजें देखी, मसलन रात के 1 बजे शो खत्म हो गया, 12:30 1 बजे, और ये उस वक्त भी चाह रहे हैं कि मुझे रिकॉर्ड करें. शो के आखिर में मुझे आगे कहते हैं कि 2 लफ्ज बोल दो. यानी मैं थका हूं अपने शो से और मैं घर जाना चाह रहा हूं, और ये आके मुझे कहते हैं कि नहीं 2 लफ्ज बोलो. फिर ये इनको मैंने देखा, ये अपनी तारों को जिस तरह से सेट करते हैं, जिस तरह से ये टेपिंग लगाते हैं, तो आपको सलूट है जितनी आप मेहनत करते हैं. क्या कहेंगे साबिर का?
14: शम्स भाई आपका बहुत शुक्रिया. अब मैं जो भी कर रहा हूं यहाँ पे 40 साल से, मेरा वीडियो का जो काम है, इसके साथ साथ मैंने जॉब भी किया है बोइंग कनाडा में एयरक्राफ्ट इंजीनियर. लेकिन ये मेरा समझने का एक पैशन है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता. और मैं जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं क्या करता हूँ काम में, और आपको इंटरव्यू के लिए छोड़ता नहीं हूँ, आखिरी वर्ड भी ले लेता हूँ आपने जो कहा. लेकिन पता ही क्या है कि अगर आप अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर वो रिकॉर्डिंग सही ना हो, ऑडियो सही ना हो, और आप लोग जैसा बना रहे हैं, कैमरे आप घुमाते रहे तो पता नहीं चलता कि क्या दिखा रहे हैं आप. कैमरा स्टिल होता है, वो टीवी के लिए करता हूँ. आप लोग जो बनाते हो वो अपने शौक के लिए लोगों को दिखा देते हैं, बहुत अच्छा काम है. तो मेरा जो काम है वो मैं अपना परफेक्ट काम करता हूँ. मैं किसी को ना तकलीफ देता हूँ, जो मुझे तकलीफ देते हैं मैं झगड़ा करता हूँ, क्योंकि मेरा काम खराब ना हो. अब जैसे ये मोइज खड़े हैं यहाँ पे, अगर मैं कोई मेरे सामने कैमरे के आ जाता है, अगर मैं मोइज के कैमरे के सामने आ जाऊं तो क्या फील करेंगे ये? तो इसलिए मैं तारिक को भी कई दफा हटाया मैंने.
2: अच्छा, कहते हैं कि नेक काम में जल्दी करनी चाहिए, आप झगड़े में जल्दी क्यों करते
14: हैं? झगड़े में जल्दी नहीं, पहले आराम से कहता हूँ भाई प्लीज जगह दे दो, अगर वो नहीं देते हैं तो फिर मैं आवाज उठाता हूँ. बाबा जी होते हैं, बाबा जी कभी आ जाते हैं तो मैं सिर्फ आवाज निकालता हूँ, बाबा जी हट जाते हैं. तो उनको पता है कि भाई उनके पीछे कैमरा है. लेकिन
2: आज भी बाबा जी को आपने हटाया?
14: नहीं नहीं हटाया नहीं, उनको तो आना चाहिए था।
2: अच्छा,
14: आपने शायद बुलाया नहीं होगा उनको, या वो सो रहे हैं इस वक्त, कहना अपना सही कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं अरशद भट्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे सिर्फ ये कहा था कि आप जाके सेल फोन से बना लेना, लेकिन मैंने देखा ऐसी महफिल अगर टीवी पे ना दिखाए, और जो भी काम मैं करता हूँ वो सेल फोन का अगर हो तो वो टीवी पे नहीं नजर आता सही तरह, क्वालिटी नहीं आती है। तो इस कैमरे के लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जब मैं कैमरे लगाऊं तो उसके सामने ना आया करें प्लीज। फिर बाजी आप भी कभी कभी आइए, कभी आप मैंने आवाज जरूर लगाई है आप लोगों के सामने, लेकिन कोई बात नहीं।
2: थैंक यू,
14: ओके,
2: क्लैप फॉर सामर गाइस।
14: आप लोगों का, आप लोग इज्जत देते हैं, आप लोग हमें बुलाते हैं, 360 आपका स्पॉन्सर है इस प्रोग्राम का, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। क्या इसी तरह से देखें ना, मैंने कुछ सीखा भी तो है आप लोगों से, ये थोड़ी कि मैं खुद ही सीख रहा हूँ। आप लोग जो करते हैं गलत तो मैं उसको सही करता हूँ, जो सही मैं, जो मैं गलत करता हूँ आप लोग सही कर रहे होते हैं, उसको मैं सीखता हूँ, उसको ठीक करता हूँ। तो शमसी बहुत शुक्रिया, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस। थैंक यू,
2: थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे ताकि आप हमारी हेल्प करते रहे।
14: जितनी लिख दिया,
15: अरशद भट्टी ने यहाँ कहा था कि उनका टीवी जो है 7 से 8 साल पहले 2017 राइट उसी वक्त में आई अपना KCXL मीडिया लेकर, एंड दैट वाज द टाइम आई एंटर्ड इनटू प्रमोशंस। द रीजन टू गेट इनटू प्रमोशंस वाज कि मेरा अपना बिजनेस था INSR इंग्लिश और इमिग्रेशन और PR सेटलमेंट का, जिसके लिए मुझे प्रमोशन चाहिए थी। और मैंने देखा था कि मेजॉरिटी लोग यहाँ जाहिल हैं, आता नहीं है, बस फेसबुक में पिक्चर डाल देते हैं और उसको वो प्रोमो कहते हैं और उसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं। तो मैंने अपने बिजनेस की प्रोमो खुद स्टार्ट की, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि कम्युनिटी में ये चीज मिसिंग है, द रियल प्रमोशन वॉज मिसिंग। अब प्रोमो किसी के हाथ में भी सेल फोन पकड़ के आप कहते हैं कि उसको आप प्रोमो कर रहे हैं, नहीं। अ पर्सन लाइक मी, जैसे कि Shams said, mentioned here, I have 3 master's degrees. I'm a professor in English. I've taught at different Canadian universities, Seneca, Centennial, Brock, और मेरा अपना यहाँ कॉलेज है। तो जब मैं अपने कॉलेज की प्रमोशन लेके निकली और मैंने देखा कि कम्युनिटी में जो भी डिफरेंट बिजनेसेस हैं, उनको भी प्रमोशन चाहिए और कोई खास यहाँ है नहीं जो प्रमोशन करना जानता हो। So I went live with my cell phones. And a person like me, मैं समझती थी कि no ways I can come on TV because of my figure, because of my physique. But it happened opposite. Within 3 months, I got the first award from Canada, 40 absolute fabulous women comes here. उसके बाद मुझे Women Days Award मिला, उसकी Women's International Award मिला, तो कम से कम 6 से 7 award मिले। और ये क्यों मिले? मैंने उनसे question किया, why are you giving me an award? मैं टीवी शोज करती थी और उस वक्त मैं डिफरेंट टीवी चैनल्स पर आती थी, आई वाज कनेक्टेड विद इंडियन मीडिया। उन्होंने मुझे कहा, यू आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस अवार्ड। सो दैट वाज वन
2: थिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया केसी। और हमारा ईद शॉपिंग फेस्टिवल होने जा रहा है, इसके बारे में 2 लफ्ज कह दें कि हमें आपकी बेस्ट विशेस मिल जाए ईद शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से।
15: दो नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा कहूंगी। मैं यहाँ पढ़ रही थी, द सुपर बेस्ट, टोटली अमेजिंग, extra awesome, Inamghar, Canada. So the adjectives, the adverbs says all there. Super best, totally amazing, extra awesome, Inamghar, Canada. Inamghar, jis tarah maine first jaise maine mention kiya, aapko cash prizes milte hain. What else? Aur jo maine cheez yahan Inamghar mein dekhi, of course, through Shams Armand, your sense of humor, sir. कॉमेडी, फनी, लाइटर मोड, हम सब डिप्रेस्ड है किसी न किसी चीज को लेकर, इनाम घर वो आपकी डिप्रेशन दूर करता है, आपको एंटरटेनमेंट देता है। और जब मैंने देखा कि सो मेनी ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, दे वांट टू, इट्स बीन थर्ड ईयर नाउ, 3 साल से मैं इनके साथ जुड़ी हुई और देख रही हूँ कि लोग बढ़ते ही जा रहे हैं और एंटरटेन होते जा रहे हैं। एंड ब्यूटिफुल पीपल लाइक बीना, they dropped in, Shagufta was there from the beginning. So, ab iski kya ek wajah hai? Wo ye hai that the very Inam Ghar, the super best, the extra amazing, is for the people, is for you all, is for the community, And that's why this Eid shopping festival, जिसमें आपको ईद की शॉपिंग भी मिलेगी एंड एट द सेम टाइम इनामगढ़ की जो एक्टिविटीज है जैसे कि हमने अभी सुना वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा. All the best, Shams. I do have questions for you, but that will be जब आप शुरू करेंगे अपनी वीडियो.
10: Thank you.
11: मैं अपनी सारी कम्युनिटी का थैंक यू करना चाहूंगी कि जो इतने सपोर्टिव हैं और सबसे बढ़कर हमारे शम्स रहमान. और मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ टोरंटो 360 मिस्टर अर्शद भट्टी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और ऑफ कोर्स हमारे साबर भाई इनको कौन नहीं जानता है. तो किसी भी काम के पीछे मैं कहती हूँ कि टीम वर्क होता है और यहाँ पर मैंने देखा कि शम्सुर रहमान ने जिस तरह अपने इस बेबी, मैं इसको बेबी कहूंगी, इनाम घर कैनेडा को लेकर चल रहे हैं और चले हैं. तो माशाल्लाह मैं कहूंगी कि इसमें इनका बहुत सारा अमल दखल इन्हीं का है और जिस तरह ये कंट्रोल करते हैं, मतलब इनका थोड़ा सा एक डोमिनेंट मिजाज है जो कि बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज को लेकर चलने के लिए. क्योंकि अगर आपका ये मिजाज नहीं होगा तो फिर आप थोड़ा सा लीनियंट होंगे तो फिर आप चीजें जो है वो इधर उधर लोग कर देते हैं, राइट. तो अभी मैं आपको पिछले जमाने इसलिए कहूंगी क्योंकि बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ कि हमारा ईद मेले मेला होता था और एक फेयर उधर कौन सा फेयर ग्राउंड था, मार्टर फेयर, हाँ. तो वहां पे एक अदद पाकिस्तानी सिंगर आता था जिसका हम वेट करते थे और ये इस तरह का मेले का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जो कि इस तरह के ईद मेले लगे. ये गुज़िश्ता 10 सालों से ये मेले लगना शुरू हुए हैं और हमारी कम्युनिटी जिस तरह ग्रो की है इस दौरान और इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारी कम्युनिटी को बहुत जरूरत है कि इस तरह के मेले और मजीद हों. और उसी सिलसिले में जो है इनाम घर कैनेडा लेकर आ रहा है ईद शॉपिंग फेस्टिवल. तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें आप लोग, ये 23rd को हो रहा है, 23rd से लेके 26th मई तक हो रहा है, सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक. और इसमें हमारे चार जो है हर दिन की मुख्तलिफ एक्टिविटी है जिसमें हमारा फैशन शो है, जिसमें हमारी सिंगिंग का है, जिसमें हमारी मदर्स डे के उसमें हवाले से है और फिर कपल्स डे जो है मैं लेकर आ रही हूँ
2: चांद रात को.
11: तो आप लोग तैयार हो जाएं, कपल्स तैयार हो जाएं, अपनी अपनी बीवी के साथ आना है, खबरदार जो कोई इधर उधर से कोई लेके आया और बीवियों को भी उन्हीं के साथ आना है.
2: और अगर बीवी की तबीयत ठीक ना हो उस दिन,
11: नहीं तो फिर एक काम कर, ज़ूम पे ले लेंगे सिंगल, वो हमारी तरफ साइड में खड़े होके देखेंगे. अभी भी टाइम है, अभी कितना 23rd मई तक टाइम है.
2: सिंगल्स के लिए भी कुछ
11: कर लेते हैं, क्या ख्याल है?
2: बिल्कुल,
15: इसी का मसला
2: नहीं, सिंगल्स के लिए जरूर कुछ करेंगे क्योंकि पता नहीं क्यों मैं हर वक्त सिंगल फील करता हूँ.
16: मोहित हमारे बहुत अच्छे, हमेशा हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे हर इवेंट पे आते हैं, हर फंक्शन हमारा बहुत अच्छे से कवर करते हैं. तो थोड़ा इनाम घर के बारे में बताइए.
17: जी अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले शम्स रहमान भाई, भाभी, सबका शुक्रिया अदा करूंगा. वो हमेशा कोई भी यहाँ पे इनाम घर का इवेंट हो या इनके फैमिली इवेंट हो, वो हमेशा भूलते नहीं है और मैं भूल जाता हूँ, मगर मुझे रिमाइंड पे रिमाइंड कराते रहते हैं. बहुत अच्छी बात है, आज भी मैं भूल गया था, सुबह इनका मैसेज आया. और इनाम घर में काफी साल हो गए, तीन चार साल हो गए इनाम घर मैंने उनके साथ जुड़े हुए भी. और इनाम घर के जो कॉन्सेप्ट है, मुझे शुरू में हम लोग छोटे थे तो देखते थे तारिक अजीज का, देखते थे ये टीवी आपका हुआ, तो उस तरह के शोज अब तो नहीं आते. और वो जो महफिल इन्होंने जमाई हुई है शम्स भाई ने और पूरी इनकी टीम ने, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और ये हमारे लिए नहीं है, लेडीज के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है. और मैं खुद अपने जो है बच्चे यहाँ लेके जाता हूँ बहुत.
18: जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. सबसे पहले शम्स भाई आपका बहुत शुक्रिया, भाभी आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह इंट्रो दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये मैंने तब भी बोला था जब आपने मुझे स्टेज पे बुलाया था फर्स्ट डे, तो तब भी मैंने यही कहा था कि मेरे पास अल्फाज नहीं, क्योंकि जब इंसान आपको इतनी अच्छी और दिल से कोई किसी को रेस्पेक्ट देता है तो फिर एक लाइक हार्ट टचिंग होता है कि वो उसके पास वो

0: इज्जत दी, कैश प्राइस से आपने मुझे नवाजा। तो ये देखिए, कैश प्राइस जो होता है वो इंसान पैसा आने जाने वाली चीज है, पैसा खत्म हो जाता है, लेकिन उस पैसे के पीछे, उस प्राइस के पीछे जो मोहब्बत होती है, जो प्यार होता है, जो रेस्पेक्ट होती है, वो हमेशा सारी जिंदगी जो है ना वो आपके दिल से नहीं निकलती, वो हमेशा बच जाती है। तो इनामगर जो है माशाल्लाह से इतना प्यारा और अच्छा प्रोग्राम है।
1: हमारे शॉपिंग फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: जी बिल्कुल, इनामगर के बाद अब ईद शॉपिंग फेस्टिवल होने जा रहा है जो 23, 24, 25 और 26 को। माशाल्लाह से आप सब तशरीफ लाइएगा और एक सुनहरी मौका है, ईद है, शॉपिंग कीजिएगा। मैं तो सिंगल हूँ लेकिन मैं तो किसी को लेके नहीं आ सकता, लेकिन आपके पास तो ये मौका है। तो वंस अगेन आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि और भी दोस्त हैं, तो मैं अपना शम्स भाई वंस अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सलामत रहे, आपकी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
2: वालेकुम सलाम। कहते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। सो ये दोनों जो है हस्बैंड एंड वाइफ फुल ऑफ अदब से भरे हुए हैं। सो अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और हमारी तमाम गुड विशेस और दुआएं के साथ हैं। मैं इस वक्त जरूर ये जिक्र करूंगी कि हम इनके एक्स हैं, मतलब ये आवाज जो है उसका आरफा मुजफ्फर जो है हमारा कुछ थोड़ा साथ रहा है उनके साथ, और मुझे ये आवाज की तरफ से ही इतना रिकग्निशन मिली है। सो ये बात है। और हमारे साबिर का बहुत जबरदस्त किस्म के अमेजिंग हीरो हैं अरशद भट्टी साहब 360, सबको गुड लक। और आपका जो ये फेस्टिवल आ रहा है ये बहुत बड़ा कदम है आपका, अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत सख्त किस्म की कामयाबी दे, एंड आई एम श्योर बहुत जबरदस्त होगा। आप देखें कितने हसीन चेहरे, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जोश और खरोश के साथ बैठे हुए हैं। सो मेरी सारी दुआएं,
3: गुड लक इंशाल्लाह। यू नो मैं जहां भी देख रही हूँ माशाल्लाह आपके फ्लायर्स एंड यू नो मार्केटिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह लोग भी आएंगे।
1: थैंक यू। आप हमारी क्या मदद करेंगे? ईस्ट साइड से कुछ लेके आए ना हमारे लिए वेंडर्स।
4: थैंक यू।
3: इंशाल्लाह हो सके जो भी।
1: मुझे पूरी उम्मीद है इनसे, ये हमारा नाम काफी फैलाती है क्योंकि 3-3 टेबल बुक करती है एक शो में, तो और इनके साथ इनकी वालदा भी होती है माशाल्लाह, तो और इनका अपना भी एक शो आ रहा है, उसके बारे में बताएं हमें।
3: जी May 1st को है, इट्स अ कॉमेडी नाइट एंड म्यूजिकल नाइट, तो ये गैलेक्सी बैंक्वेट हॉल में होने वाला है May 1st।
1: तो ये चार्टर्ड सिनेमा था सिर्फ हमारे लिए इन्होंने बुक किया था, तो बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि आपको इनाम घर कैसा लगता है और इसके बारे में बताइए।
5: इनाम घर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और मैं पहले कभी भी किसी में नहीं गया, फर्स्ट टाइम मैं इनाम घर में आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, सारा कुछ है, और मैं सब आवाम से अपील करता हूँ कि वो भी जरूर आए इनाम घर में, इनाम घर में। और स्पेशली जो ये मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसमें आप सब विजिट कीजिए, क्योंकि आप लोग आएंगे तो इस मेले में 4 चांद लग जाएंगे, और इस मेले में आप शॉपिंग कीजिए, सारा कुछ कीजिए, ताकि सब लोग खुश खुश अपने डॉलर जो क्रेडिट कार्ड मशीन क्रेडिट कार्ड है वो थोड़े खत्म हो, इजीली पे कर सके बाद में आप। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया,
1: थैंक यू। नहीं, थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताइए, इनका माशाल्लाह लिमोजिन का बिजनेस है, तो आप क्या खिदमत कर सकते हैं लोगों?
5: हमारा लिमोजिन का बिजनेस है, तो मैं तो सबसे यही कहूंगा, मैं इनाम घर की तरफ से यही कहता हूँ कि सब आए, मोस्ट वेलकम। जब आप लोग चाहें आप गाड़ी बुक करवाएं, जहाँ जाएं, नियाग्रा फॉल जाना चाहें, ब्लू माउंटेन जाना चाहें, मशकोका जाना चाहें, जहाँ जाना चाहें, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और जो भी हो सका इनाम घर की वजह से आपको डिस्काउंट मिलेगा।
1: Thank you.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. My name is Musarrat Tahira.
1: Musarrat Tahira.
6: So, मैं थोड़ी सी confused हो गई थी किसको बुला रहे हैं। मेरे cousin सिर्फ मुझे ताहिरा बुला सकते हैं। तो that's why I was, anyways. मैंने तो समझा था कि ये कुछ इनफॉर्मल सी गैदरिंग होगी। मैं तो अपने संडे कपड़े पहन कर आई हूँ, grandkids को साथ ले आई हूँ। But anyways, mashallah, it's a very formal gathering. तो नाम घर, आई मीन व्हाई एम आई अटैच्ड टू यू इज बिकॉज़ एक तो आपको जो शो है ना, इट्स लाइक वेरी फैमिली ओरिएंटेड. इट हैज अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, अ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी, अ लिटिल बिट ऑफ सिंगिंग, अ लिटिल बिट ऑफ मॉडल्स. एंड द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट इट इज इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु आर टैलेंटेड.

0: but want the exposure to an audience-based community, so it allows you to do that. Like me, I'm not a person who came from a public background. I'm actually from the medical field. So for me to stand up in front of people, I did like teaching. I did teach. To stand up in front of people and to talk to people was quite embarrassing, or I was very shy. And now I can't stop talking. I have somebody to tell me, shut up now. So what else can I say about myself? The only reason why I like Inamkar, like I said, is the food. It's a nice ambience, nice environment. I like dressing up. The place looks beautiful. You know, banquet halls are beautiful. So it allows you to get out and forget about your family. Okay, can you listen to your like smut mulaki hai, sab kuch sunna baaki hai. You know, gaana suno hai na, wo saab hota hai Inamkar mein jab aati hai. Now, it's funny, आपको मैंने आपसे मैंने एक सवाल करना है
1: जी.
0: ये जब मैं आपने इनवाइट भेजी व्हाट्सएप ग्रुप में, मैंने एक्सेप्ट की, मैंने कहा अब इनाम जाके पूछूंगी शम्स से, ये जो आप कर रहे हैं ईद फेस्टिवल इनाम घर, व्हाट्स गोइंग ऑन? बिकॉज मैं जब जहाँ जाती हूँ, आप कपड़े खरीदने जाते हैं, जूते खरीदने जाते हैं, ग्रोसरी जाते हैं, सो आई आस्क पीपल, ओ हैव यू हर्ड ऑफ इनाम घर? वो कहते हैं वो क्या है? मैं कहती हूँ वो शो है जिसमें क्विज होता है, एंड द बेस्ट पार्ट टू बी विन अ बम्पर प्राइज, सो यू नो इट, व्हाई डोंट यू कम टू द नेक्स्ट वन, आई विल इनवाइट यू और समथिंग, यू नो. सो मैं उनको ये इंट्रोडक्शन करती हूँ नाम घर. अब ईद बाजार आ गया, जब उससे कोई ईद बाजार का पूछते हैं तो कहती है वो क्या होता है कि वहाँ पे वेंडर्स आएंगे, लॉट्स ऑफ स्टॉल्स, चीजें थी तो फूड स्टॉल्स आएंगे, तो शायद थोड़ा सा बीच में कोई गाना शाना हो, शायद कोई थोड़ा सा फैशन शो हो, तो दैट्स अन ईद बाजार. अब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं तो ये क्या हो गया? अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं क्या बताऊंगी जब मैं आपके
2: शो. डॉक्टर फैसल सईद है, मैं बैंक में काम करता हूँ, आईटी का काम है, और इसके अलावा मैं अखबारों में लिखता हूँ, मैगजीन, टीवी शोज. मैं मुख्तलिफ चीजों पे, सोशल मौजूदात पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कोई भी इंटरेस्टिंग चीज हो जो चल रही हो उसके ऊपर लिखता हूँ. टीवी इंटरव्यूज होते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस होते हैं, इस तरह की चीजें. और इनाम घर में मैं काफी दिनों से आ रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है. टोरंटो में मुझे तकरीबन 30 साल हो गए हैं और मैंने कम्युनिटी को डिफरेंट तरीकों से ग्रो करके देखा है. इनाम घर एक बहुत मुख्तलिफ प्रोग्राम है जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट किया जाता है. दूसरे प्रोग्रामों में लोग आते हैं, अटेंड करते हैं, सारी परफॉर्मेंसेस स्टेज पे होती हैं. ये प्रोग्राम जो है इसमें सब अटेंडीज को शरीक होने का मौका मिलता है और सब लोग एंजॉय करते हैं, इसलिए ये
1: यूनिक शौक है गाने का. बाकी मैं शुरू से गा रहा हूँ और मैं इधर आके बहुत डिप्रेस्ड हो गया था. कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, काम पे जाना, मुश्किल से काम मिला, काम पे जाना और घर वापस आके सो जाना, फिर उठना, फिर काम पे जाना. मेरे को ऐसा लगा कि खत्म हो जाऊंगा यहाँ पे. फिर मैंने सर्च करा, भाई मिले मेरे को उधर, तो मैंने इनको बोला कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे गाने का शौक है. तो भाई बोलने लगे कि हाँ हमारे इवेंट्स होते हैं तो आप प्लीज आइए उन पर. तो लास्ट टाइम इनके घर गया तो मेरे को इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे फैमिली में बैठ गया हूँ मैं आके, जैसे हम सब कजिन बैठते थे, गाते थे, इतना अच्छा लगा. उस दिन के बाद मैं हमेशा ही मतलब देखता रहता हूँ कभी इवेंट आने वाला है, कभी इवेंट आने वाला. तो आज भाई ने फिर से बुलाया, बहुत अच्छा लगता है. मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, बस मेरे को गाना अच्छा लगता है, मेरे को रिलैक्सेशन मिलती है. और आप सब लोग को देख के इतने पॉजिटिव फेस है आपके, हमेशा हर एक बंदा स्माइल कर रहा है हर एक, तो ये कनाडा में बहुत मुश्किल होता है. तो इसीलिए थैंक यू सो मच भाई कि इतना आपने मेरे को मौका दिया, और थैंक यू सो मच.
3: आज आपने कम से कम 4-5 गाने हमें सुनाने हैं नाश्ते के बाद. पहले नाश्ता कराएंगे आपको ताकि एनर्जी आ जाए, फिर आप गाना सुनाएंगे. थैंक यू वेरी मच.
1: वालेकुम अस्सलाम.
4: ये इस शो पे आके मुझे बड़ी खुशी हुई, और पाकिस्तान से जब से हम आए हुए, मैं, मेरी बेगम, मेरे बच्चे, और इनके बारे में जब पता चला कि इनाम घर शो है, इसमें हम पहली दफा आए और आके बड़ी खुशी हुई हमें. मतलब इनके साथ इस तरह लगता है कि जिस तरह हमारे घर के ही फर्द हैं. फिर बाद में बेगम को मैंने तारुफ कराया कि ये मेरे क्लास फेलो भी रहे फॉरवर्ड हाई स्कूल पिशावर में, और मेरे काफी दोस्त जो है बड़े खुश हैं कि आप लोग वहाँ पे कनाडा में इकट्ठे हो गए और आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है. और मजीद हम इनाम घर में कोशिश करेंगे कि इसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी दें, और हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे हमारे कम्युनिटी के जानने वाले भी, खास तौर पे इमाम बारगाँव में या जो हमारे शिया कम्युनिटी के जितने लोग हैं, सादात कम्युनिटी के जितने लोग हैं, हम उनको इस प्रोग्राम में लाने की कोशिश भी करेंगे और साथ साथ लेके भी आ रहे हैं, और उम्मीद है कि ये इनका जो नया ईद का जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है 23, 24, 25 और 26 का, इसमें हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम कम्युनिटी के लोगों को जमा करके वो इस प्रोग्राम को कामयाब करें, और इंशाल्लाह आप लोग भी इसमें जरूर आए और इस प्रोग्राम को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की देंगे हम लोग, और शम्स भाई के लिए दुआ करेंगे कि दिन दुगनी रात चौगुनी उनको, उनकी बेटी, उनकी फैमिली जितने भी है वो आगे से खुश रहें और आगे बढ़े।

0: से कहा था तुमसे प्यार
1: सही पानी चीनी गिरा।

0: बहुत अच्छा। मेरी बहन माशाल्लाह माशाल्लाह,
1: ये मेरा बहुत साथ देती है, मेरी बहन हर जगह पे
0: माशाल्लाह। क्या बात है, वाह वाह।
1: और जिन्हें मरने से होगी

0: पहले चाहते हैं तेरे हैं हम तेरे।
1: ओ बेवफा तूने मुझे कहीं का ना छोड़ा।

0: हम उनके मशहूर हैं और उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ की आवाज बुलाऊंगा कि आप स्टेज पे आए और हम आपको रिकॉग्नाइज करें। अर्शद भट्टी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको आप 360 टीवी के सीईओ से रिक्वेस्ट करूंगा कि ई आवाज वालों को गुलदस्ता देना है जिन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टेज पे आइए।
1: आपका शुक्रिया कि आपने आरफा मुजफ्फर को ये आवाज दी। बहुत मशहूर,
0: वो बताएंगे कहाँ खड़ा होना है।
2: माशाल्लाह आपका काम बहुत जबरदस्त है, नॉट ओनली विद ये बात, सभी के लिए आप करते हैं माशाल्लाह, तो इसी तरह से करते रहें, तमाम लोग आपसे माशाल्लाह बड़े खुश भी रहते हैं।

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: वेलकम टू आइकॉन इवेंट स्पेस, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, ICON is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
2: At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves,
3: which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases.
4: Our legal team comprises many legal professionals.
5: Every individual deserves dedicated legal representation.
6: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.
7: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
8: मिसिसागा रिजवे
7: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
0: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करता मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
9: You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage?
10: Oh yes, Shiraz Hussein, who did our mortgage too.
9: Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. The expert in their services. And you know what Shiraz said?
11: We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders. And program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise.
12: Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams.
13: A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
8: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.